0: ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर भी गया। हमने जब इसे सुना तो यह साफ हो गया कि आवाजें बांग्ला में थी, मतलब ये वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रहे जवानों के ड्रेस के कलर पे गया। जब इसे जूम करके देखा गया तो ये साफ हुआ कि वीडियो में नजर आ रहे जवान बीएसएफ के नहीं है। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों की वर्दी का रंग मुख्य रूप से खाकी होता है। हालांकि अब बीएसएफ जवानों को आधुनिक डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट ड्रेस भी दी जा रही है। इस नई कॉम्बैट ड्रेस डिजिटल पैटर्न में है और इस नई वर्दी में रंगों का अनुपात 50% खाकी, 45% हरा और 5% ब्राउन है। यह रंग संयोजन जवानों को रेगिस्तान और सीमावर्ती इलाकों में दुश्मनों की नजरों से छिपाने में मदद करता है। वीडियो में जवान जिस रंग की वर्दी में नजर आ रहे हैं ऐसा बांग्लादेश सेना से जुड़े जवान पहनते हैं। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आए। पहला सवाल यह कि वायरल हो रहा है वीडियो कब और कहां का है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आया कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
1: फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो दो बांग्लादेशी फेसबुक अकाउंट पर मिला। वीडियो को 21 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो ड्रग डीलर को पकड़ने का है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर 21 मार्च और 22 मार्च 2026 को शेयर किया हुआ मिला। मौजूद जानकारी के मुताबिक चौपाई नवाबगंज जिले में एक कुख्यात ड्रग और बाबा तस्कर को बांग्लादेशी सेना ने यावा के साथ गिरफ्तार किया था। मतलब साफ है वीडियो मार्च में एक ड्रग डीलर के पकड़े जाने का है। हाँ, ये बात सच है कि बंगाल में सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। बॉर्डर की 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपी जाएगी ताकि वहां पर फेंसिंग लगाई जा सके और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाया जा सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। शख्स को गिरफ्तार करने के वायरल वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। असल में वायरल वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का। मार्च 2026 में वहां की सेना ने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया था। यह वीडियो उसी घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हाल ही में शपथ ली। उनकी पार्टी तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन यह आंकड़ा बहुमत से दूर था। इसके बाद जोसेफ विजय की टीवीके को कांग्रेस समेत कई दूसरी पार्टियों का समर्थन मिल गया। इसके बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। अब इससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में विजय राहुल गांधी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने राहुल गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: तमिलनाडु की राजनीति में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वह है विजय। फिल्मों में थलापति के नाम से पहचाने जाने वाले विजय ने सियासी पारी के जरिए तमिलनाडु की जनता के दिलों में भी जगह बना ली है। विजय ने धमाकेदार जीत के साथ राजनीतिक पारी का आगाज किया और अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और लोकसभा विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के पैर छूते हुए दिखाया गया है। इसमें राहुल गांधी नए सीएम को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए कहा, टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ले ली है। गवर्नर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मंच पर मौजूद राहुल गांधी के एक्टर विजय ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। ये संस्कार देख मंच पर सभी नेताओं ने ताली बजाकर सम्मान किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के पैर छूते हुए दिखाया गया है। इसमें राहुल गांधी नए सीएम को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के सीएम विजय ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह संस्कार देख मंच पर सभी नेताओं ने ताली बजाकर सम्मान किया। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने हर जगह खंगाला, लेकिन दोनों में से किसी भी नेता ने या किसी भी ऑफिशियल जगह पर इस तस्वीर को शेयर नहीं किया गया था, क्योंकि अगर ये सही होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और हर जगह सुर्खियों में होता, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। इसके अलावा फैक्ट चेक की टीम ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला। राहुल विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही जरूर होता, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इस दावे की सच्चाई पर शक करते हुए इसे सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल यह कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, और दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड तस्वीर को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की हकीकत क्या है। वायरल तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल फोटो को सर्च किया। हमें इस तस्वीर से जुड़ा असली वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के रूप में मौजूद मिला। इसमें कहीं भी सीएम विजय राहुल गांधी के पैर छूते नहीं दिख रहे हैं। इसे 10 मई 2026 को अपलोड किया गया था। हमें यही वीडियो एक और YouTube चैनल पर भी 10 मई 2026 को अपलोड किया मिला। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वायरल तस्वीर को AI डिटेक्शन टूल के जरिए सर्च किया। सबसे पहले हमने साइट इंजन टूल का इस्तेमाल किया। इस टूल ने 65% तक तस्वीर के AI से बने होने के संकेत दिए। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने एक दूसरे टूल अनडिटेक्टेबल का इस्तेमाल किया और इसके जरिए फोटो के बारे में सर्च किया। इस टूल ने भी फोटो के AI से बने होने की संभावना जताई। अतिरिक्त पुष्टि के लिए हमने इसे एक और डीप फेक डिटेक्शन टूल की मदद से चेक किया। हाई मॉडरेशन की एनालिसिस भी इस तस्वीर के AI से बनाए जाने की 92.9% की पुष्टि करती है। हाई मॉडरेशन के अनुसार इस इमेज के GPT मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना 75% से ज्यादा है। साफ है हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीर AI निर्मित साबित हुई। इसे AI टूल की मदद से बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और राहुल गांधी की वायरल तस्वीर में सच्चाई नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। फैक्ट चेक में वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
3: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि तीन बच्चे अपने घर की छत पर ही मजे से पूल पार्टी कर रहे हैं। इसके लिए इन्फ्लेटेबल स्विमिंग पूल, जिसे कई सारे लोग हवा भरने वाला पूल भी कहते हैं, उसका यूज किया है। उसमें हवा भर कर उसमें पानी भर दिया गया है। उसमें मजे से अपनी पार्टी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो मजे से खा पी भी रहे हैं। वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और एक ट्रे पानी में तैर रहा है जिसमें स्नैक्स रखा हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी लोग पसंद कर रहे हैं।

0: पूरा शहर।
1: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तहलका मचा रहा है। एक स्कूली बच्चे ने अपनी जादुई आवाज से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है। वीडियो में बच्चे को फिल्म धुरंधर का जाइए सजना गाना गाते हुए देखा जा सकता है। बच्चे ने ये गाना इतने बेहतरीन अंदाज में गाया है कि सुनने वाले बस सुनते ही रह गए।

0: थैंक यू।
1: सोशल मीडिया पर बीएसएफ के जवानों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बीएसएफ के कुछ जवान ट्रेन में सफर के दौरान देशभक्ति गीत गा रहे हैं, जिनकी आवाज हर एक भारतीय के दिल को छू रहा है। लोग इस वायरल वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं और देश के इन जवानों के लिए पूरे सम्मान के साथ उनकी मधुर आवाज की तारीफ कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों बीएसएफ के एक जवान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। वीडियो में जवान को देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों बजाते हुए देखा जा रहा है। जवान ने ये गीत ट्यूबलर ब्लेस यानी खास तरह की घंटियों पर इतनी भावनाओं के साथ बजाया है कि सुनने वाला भावुक हो गया है। वीडियो में जवान पूरी लगन और ध्यान से संगीत बजा रहा है।

0: अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो नजर आया वो आपने अब तक तो नहीं ही देखा होगा। वीडियो में नजर आता है कि एक शख्स जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अतरंगी क्या है, तो आपको बता दें कि उस आदमी ने अपने कंधे पर एक बड़ा सा कैमरा रखा हुआ है और उसको बैलेंस करते हुए तेजी से दौड़ रहा है। का मतलब वो कैमरामैन है जो रेस ट्रैक पर दौड़ने वाले धावकों को कैमरे में कैद करता होगा, तभी तो वो इस तरह से कैमरे को बैलेंस करते हुए भागने की प्रैक्टिस कर रहा है और खुद को ट्रेन कर रहा है।
1: ओ भाई साहब, भाई ये कौन सा जुगाड़ कर दिया आपने?
2: ये हमने स्कूटी का एसी बना दिया है।
1: स्कूटी का एसी?
2: हाँ जी,
1: मतलब
2: एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है जो एकदम, पहले ना मुझे बहुत गर्मी लगती थी, अब तो मन करता है स्कूटी पे बैठा रहूँ।
1: अच्छा जी, हाँ। ओ भाई साहब, तो भाई साहब ये चल कैसे रहा है, ये क्या हिसाब किताब है इसका?
2: ये मैंने इसमें दो नोजल लगा रखी है और एक मोटर लगा रखी है इसके अंदर और पानी की बोतल है।
1: पानी की बोतल है?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, एक बार जुगाड़ दिखाना एक बार।
0: सोशल मीडिया पर जुगाड़ का एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गर्मी से बचने के लिए एक शख्स ने काफी अतरंगी जुगाड़ भिड़ाया है। जुगाड़ की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स गर्मी से बचने के लिए स्कूटी पर फव्वारे को फिट किए हुए है। इस फव्वारे के स्कूटी चलाते हुए भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं।
1: 1500-1600 रुपए का,
2: इसमें और कुछ भी नहीं है, ओनली एक मोटर है।
1: अच्छा,
2: ये पानी की बोतल है।
1: अच्छा,
2: पानी है और ये हमने पाइपिंग ले जाके
1: अच्छा
2: कनेक्शन कर दिया।
1: ये कनेक्शन दे दिया?
2: ओनली कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है सीधा।
1: अच्छा जी,
2: ये देखो मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कनेक्शन कर रखा है।
1: ये कनेक्शन कैसे दिया आपने?
2: ये हमारे बैटरी के कनेक्शन है। यहाँ पे हमें 24-48 वोल्ट मिल जाते हैं जिससे हमारी मोटर चल जाती है।
1: अच्छा जी,
2: आराम से।
1: और ये कितनी देर चलेगा? ये
2: चलता रहता है, जब भी मुझे जरूरत होती है बोतल भरता हूँ और मेरे चालू हो जाती है, पानी मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
1: अच्छा जी, तो भाई ये बताओ कितने लीटर पानी डाला आपने?
2: अभी मेरी आधे लीटर की बोतल है।
1: और कितनी देर चलेगी?
2: कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चल जाती है।
1: अच्छा जी, तो फिर उसके बाद क्या करते हो आप? पानी भर लेते हो दोबारा?
2: पानी भर लेते, रस्ते में पानी तो कहीं भी मिल जाता आराम से।
1: अच्छा,
2: पानी की जरूरत ही नहीं है।
1: तो गर्मी लगती नहीं है?
2: बिल्कुल भी, ठंडक एकदम।
1: ओ भाई,
0: इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक किशोर लड़के की बेवकूफी उस पर ही भारी पड़ जाती है। वायरल क्लिप में करीब 15 साल का एक लड़का ऊंट के पास खड़ा नजर आता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है और ऐसा महसूस होता है कि लड़का सिर्फ मजाक मस्ती कर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका अंदाज देखकर साफ समझ आ जाता है कि वह खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है। वह बार बार ऊंट के आसपास घूमता है, उसे छेड़ने की कोशिश करता है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगा रहता है। शायद लड़के को लग रहा था कि वह कोई ऐसा स्टंट करेगा जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। इसी जोश में वह अचानक ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बारे में उसने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा। लड़का ऊंट की टांग के नीचे से निकलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वह आसानी से निकल जाएगा और लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करेंगे, लेकिन ऊंट को यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे ही लड़का ऊंट के नीचे से निकलता है, ऊंट तुरंत रिएक्शन देता है। अगले ही पल ऊंट अपनी पिछली टांग से लड़के को इतनी जोरदार किक मारता है कि उसका पूरा स्टंट वहीं खत्म हो जाता है। किक लगते ही लड़का बुरी तरह लड़खड़ा जाता है और उसकी हालत देखने लायक हो जाती है। एक क्यूट से हाथी के बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी का वह बच्चा जंगल सफारी घूमने आए पर्यटकों को अपने इलाके में देख उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में दिखाई देता है कि पर्यटकों की जीप जंगल में एक हाथी के बच्चे के सामने रुकी हुई है। वह हाथी का बच्चा उन पर्यटकों को अपने इलाके में देख उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है। वह पर्यटकों को बार बार अपनी सूंड उठाकर और सिर को झकझोरते हुए वहां से भगा रहा है। पर्यटक उस मासूम गजराज के इस हरकत को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: कौन से ग्रह मुकदमेबाजी में फंसा देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है और कब व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंसता भी है और बचता भी है? ज्योतिष में मुकदमेबाजी और जेल के क्या होते हैं योग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at Quo.com/tune in. That's Quo.com/tune in.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: और चलिए बात करते हैं ब्रजभूमि की, जहां मंदिरों में पुरुषोत्तम मास से अधिक मास के दौरान पूरे साल मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले बरसाना के राधा रानी मंदिर में होली खेली गई और फिर नंदगांव के कृष्ण बलराम मंदिर में पारंपरिक होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गोस्वामी समुदाय के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

0: बरसाना और नंदगांव के मंदिरों में फिर उड़ा रंग और गुलाल। गाए गए होली के रसिया तो भक्ति में झूम उठे श्रद्धालु। पुरुषोत्तम मास के दौरान होली का यह उत्सव श्री कृष्ण की नगरी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दरअसल पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के दौरान ब्रज के मंदिरों में पूरे साल मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों का आयोजन इन दिनों बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले बरसाना के राधा रानी मंदिर में भक्तों ने भगवान संग होली खेली और फिर नंदगांव के कृष्ण बलराम मंदिर में पारंपरिक होली महोत्सव का आयोजन किया गया।
1: 17 मई से शुरू हुए अधिक मास में ब्रज के प्रमुख मंदिरों में जो साल भर आयोजन होते हैं उन सभी का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में नंद बाबा के मंदिर में होली का आयोजन हुआ। जो बताया जा रहा है ये जो कार्यक्रम है 17 मई से और 17 जून तक ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में होंगे। नंदगांव में होली खेली गई। बरसाना की होली जो थी उसमें नंदगांव के हुरियारे थे और वहीं जो नंदगांव में होली हुई उसमें बरसाने के हुरियारे थे। तो जो अधिक मास का महीना है उसमें ब्रज के सभी मंदिरों में ये प्रमुख आयोजन हो रहे हैं जिसका यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं।
0: आमतौर पर लोग फागुन महीने के दौरान ब्रज में खेली जाने वाली विश्व प्रसिद्ध होली के बारे में जानते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के दौरान की ये होली भी ब्रज की अनूठी परंपरा का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है ब्रज में मौसम नहीं परंपराएं चलती हैं। इसीलिए यहाँ ज्येष्ठ के महीने में भी होली खेली जाती है और गर्म हवाओं के बीच बसंत के गीत कुछ यूँ गूंजते हैं।

0: ब्रज के संतों और गोस्वामी समुदाय के लोगों का कहना है कि पुरुषोत्तम मास में होने वाले ऐसे उत्सवों का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में राधा कृष्ण की भक्ति और उत्सवों में शामिल होने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
1: ब्रज में होली एक ऐसा उत्सव है कि हमारे पदन में आवे कि ये नित्य हो रही है, लाला की जो है पूरे वर्ष भर हो रही है। और ये भाव भी है कि निकुंज में राधा रानी और ठाकुर जी नित्य हो रही खेले, और या को जो साकार रूप ये अधिक मास में तो भगवान श्री कृष्ण को नाम एक उत्सव प्रिय है, उनको उत्सव बहुत प्रिय है। तो ब्रजवासी कोई ना कोई बहाने तो उत्सव मना, अब अधिक महीना अधिक को नाम ही अधिक है तो या मतलब सब चीज अधिक हो गई, तो ये उत्सव अधिक है गई। साल में तो आम ही है बाकी बात अधिक। अब ये जो होली है ये भाई कोई एक हमारे प्रतीकात्मक उत्सव है अधिक मास को।
0: बरसाना और नंदगांव के मंदिरों में पुरुषोत्तम मास की इस होली का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिनका जोश और उत्साह मंदिर में बरसते रंग गुलाल से सराबोर होकर बढ़ गया। कोई मग्न होकर राधा कृष्ण की भक्ति में झूमने लगा, कोई दोनों हाथ हवा में उठाकर जयकारे लगाने लगा, और किसी ने इस अद्भुत पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया।
2: पुरुषोत्तम मास में आए और इस साल मैंने होली नहीं खेली थी, तो बलराम जी और ठाकुर जी ने दोनों ने कहा लाली जय रुक, तो मैं तो सबसे पहले मैं प्यार का रंग लगाऊ, तो आज जो रंग लग रहा है बिल्कुल दिल से लग रहा है, जितना बरस रहा है बरसने दो, दिल खुश हो रहा है मेरा।
1: तो ऐसा कहीं नंदगांव बरसाने के अलावा और कहीं देखने को मिला इस तरह का? जो
2: ना मिला ना मिल सकता है ना कभी मिलेगा।
3: जिस प्रकार से फागुन के महीने में जो होली का उत्सव यहाँ पे होता है अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष की, वही जो होली का उत्सव है वो आज यहाँ पे मनाया गया है।
4: ये होली का जो त्योहार है इस प्रकार से सब लोग यहाँ आए हैं, और ऐसे ही उत्सव बहुरंगन रंगीलो सांवरो बहुरंगन रंगीलो, इन सबके सुंदर सुंदर गायन हुए हैं। ये उत्सव से पूरा बरसाना उत्प्रोत रहा है, कल खूब रंग चला है गुलाल चला है ऐसी ज्येष्ठ मास की गर्मी में, और आज जो है नंदगांव नंद भवन में यही उत्सव नंद भवन में मनाया।
0: वहीं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के दौरान ब्रज में होली ही नहीं बल्कि धुलेंडी जन्माष्टमी और दिवाली जैसे बड़े त्योहार भी अभी मनाए जाएंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
7: कौन ग्रह मुकदमेबाजी में फंसा देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है? और कब व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंसता भी है और बचता भी है? ज्योतिष में मुकदमेबाजी और जेल के क्या होते हैं योग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।

जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और अमीर को कांटा भी लग जाए। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछन आए लाख। बड़ा उल्टा जमाना। हम क्या कह दें भैया, पर अपने जीवन काल में जितने युवान बैठे हैं, भाई भैया बैठे हैं, हमारी बहनें विराजमान, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो, बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना, मौका बार बार नहीं मिलता है, तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ है। जागो, समय बार बार नहीं मिलता है, आज खो दोगे ऐसे ही पछताते रहोगे। हमने खोया नहीं, आज भी हम मेहनत करते 18 घंटे तक। ये जो टीवी पे तुम देख रहे हो ये हमारा पुराना मकान है, आज भी है। टीवी की स्क्रीन पर देखो, ये इतना ही मकान था, खप्पर छवे थे, इसी में माताजी पिताजी हम पांचों लोग रहते थे, खटिया नहीं थी, नीचे जमीन में सोया करते थे। आज तो थोड़ा ठीक ही हो गया, इसी में हमने अपना जीवन जिया। नहाने का तो कोई जगह ही नहीं थी, कुआं पे रोज नहाने जाते थे भैया। पर भगवान सबका मालिक है, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जैसी हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने बनाई, आज जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं, सुदामा चरित्र सुन रहे हैं, जो जहां जहां बैठे हैं, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बनाते। ये हमारी माता जी टीवी पे दिख रही हैं, इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी। आज भी हमारी माता जी पैदल चलती हैं, बहुत सीधी हैं, साधारण हैं, आज भी हमको रोज समझाती हैं। इन्होंने ही हमको सिखाया, बेटा किसी भी परिस्थिति में तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। हमने अपनी माँ से सीखा है, उनकी बड़ी कृपा। पर सुदामा जी का जीवन बड़ा विचित्र है, चार बेटे हैं, कुछ है नहीं खाने को। एक दिन एक महात्मा आए, सुशीला से कहा, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हैं। कह दिया जाओ द्वारका। पत्नी ने कहा, महाराज

कुछ दे देंगे, उनके पास जाओ, उनके पास जाकर के मिले आप। सुदामा जी बोले, देवी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर, मित्र के घर, राजा के घर और भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है, कुछ ले जाना पड़ेगा। और देवी जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम भगवान के पास क्या ले जाए। सुशीला कहती, नाथ तुम्हारे मित्र तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं कि हमारी हालत क्या है। हाँ, पर एक बात बोले, इंदौर के पागलों, भगवान के पास ले जाने के लिए कुछ ना हो ना, तब भी तुम परेशान मत होना, अपने आंखों के आंसू ही भगवान के चरणों में चढ़ा कर आ जाना। पुष्प को चढ़ा कर आ जाना, फूल को चढ़ा कर आ जाना, अपने मन को

भगवान के चरणों में चढ़ाकर आ जाना, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कुछ घरों से चावल उधार मांगे, अपनी के साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया। पुरानी साड़ी थी, तुरंत फट गया, सड़ी हुई थी, बांध दिया, ले जाओ। जा तो रहे हो, भगवान से हमारी प्रार्थना कर देना। क्या? एक मास दुई पाख में

एक महीने में दो एकादशी होती हैं, लेकिन अपने भगवान से कह देना कि हमारे घर तो रोज एकादशी है, रोज एकादशी। बच्चों को झूठ बोल बोल करके पानी पिला देती, तुलसी दल खिला देती, बेटा आज एकादशी है कल खा लेना, कल फिर कुछ नहीं मिलता तो फिर जल पिला देती। बच्चे सूख गए, आंखें बच्चों की घुस गई, शरीर सूख गया। बच्चे कहते हैं अब तो रो रो करके फूट फूट करके, माँ आखिर ये एकादशी कितने दिनों तक रहती है, कब तक एकादशी रहेगी। बिचारी सुधी सुशीला आंखें टेढ़ी करके फूट फूट करके रोने लगती। क्या जवाब दे बच्चों को, गरीब के माता पिता ही जानते हैं कि त्योहारों पर उनके दिल में क्या गुजरी थी। जब दूसरों के बच्चे पटाखे फोड़ते, तरह तरह का पकवान खाते, मेला में जाते, गरीब का तो बच्चा माता पिता जानते हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे बचा के रखते। जवाब नहीं दे पाते, उत्तर नहीं दे पाते। सुदामा जी पत्नी के कहने पर चल पड़े भगवान से मिलने के लिए।

द्वारका पहुंच गए, सबको कथा पता ही है। द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? हमें अपने मित्र कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल बोले, तुम मित्र लग तो नहीं रहे। सुदामा बोले, पूछ लो, हमारा नाम बता देना, कहना दीन सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर गए, क्या बात महाराज? कुछ भी नहीं, आपका कोई मित्र बता रहा है और हालत उसकी बेहाल है। कैसी? सीस

0: भाई कोई किराए के मकान में रहता हो तो जब तक मकान नहीं बन जाएगा तब तक उसे कामना का कांटा लग जाएगा। मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ये कामना का कांटा लग गया। अब ये तभी निकलेगा जब खुद का मकान का गृह प्रवेश होगा, और गृह प्रवेश होगा तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, अरे महाराज खून पसीना लगाकर हमने मकान बनवाया है। तो जिस दिन गृह प्रवेश होता है उस दिन दो चार दिन बड़ा प्रसन्न रहता है, कभी इस कमरे में लेटेगा, कभी किचन में, थोड़ा छत के ऊपर भी चाय पिएगा, अरे सब भगवान की कृपा है, उन्हीं ने बनवाया है। तो दुख कब तक था, जब तक किराए के मकान में थे, अब कामना का कांटा निकल गया, सुख आ गया, लेकिन ये सुख क्षणिक होता है, मकान तो बन गया लेकिन तब तक दूसरा कांटा लग गया, मकान तो हो गया लेकिन गर्मी आ गई, एसी नहीं है, एसी होनी चाहिए। अब लो एसी लगी, आ हा हा, फिर तो आदमी जिसके पास नई नई एसी लगती है 18 नंबर में 3 दिन तक पड़ा रहता है, हाँ दो तीन दिन तक तो 18 नंबर से ऊपर ही, बाद में समझ में आता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। बोलो सीताराम। अब जब एसी लग गई, हा हा, 3 दिन तो वही खाएगा वही पिएगा, हम किसी और का अनुभव नहीं खुद का बता रहे। 4 साल पहले जब हमारी जिंदगी में पहली बार हमारे कमरे में दरबार वाले आए, बोले भूत आए, हमने कहा कह दो एसी के निकलने के बाद ही भूत भगेंगे। जिनको कभी हमने कमरे में नहीं बुलाया उन्हें भी एसी दिखाने के लिए कि अपन भी चिल रूम में है धरा है, हाँ। और 3 दिन तक पड़े रहे वहीं, नहाए डुप फिर पड़े, फिर थोड़ा चटर पटर करें, 20 नंबर करें, 18, ज्यादा ही ठंडी कर रही भाई एसी, थोड़ा कंबल लाओ। जब 3 दिन बाद जुखाम बैठ गओ, गलो बैठ गओ, और शरीर को तो ठीक है, भीतर के हड्डा भी कोल्ड आइसक्रीम बन गए, तब फिर भीतर के गर्ग जी बोले अरे निकलो। तब फिर समझदार लोग मिले, उन्होंने समझाया 18 नंबर में गुरुजी तप जाओगे, कम से कम 24 पे तो रखो। तो कामनाओं का काटा, मकान हो जाए, एसी हो जाए, तो 2-3 दिन तो बड़ी प्रसन्नता रहती, पर नई कामना का कांटा लगता। बोले क्या? बोले मकान तो हो गया, एसी तो हो गई, लेकिन पड़ोसी अपनी मोटरसाइकिल से मार्केट जाता है, अगर खुद की मोटरसाइकिल हो जाए। लो नई नया दुख आ गया, और अगर मोटरसाइकिल भी लिप गई अब तो ठीक है भैया, मकान होगा, एसी हो गई, मोटरसाइकिल गुरु जी और तो सब ठीक है, बरसात में मोटरसाइकिल में चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो एक छोटी सी कार ले जाए, बहुत बढ़िया रहे। अब छोटी कार ले गई, चलो आशीर्वाद, जा कार ले गई, अब जा, अब पूरा हो गया। गुरुजी डीजल बहुत महंगो है, तनक व्यापार चल जाए। अरे भाई ठीक है, आशीर्वाद है, जा व्यापार चल जाए, अब तो ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं। गुरुजी कार के पहिया बहुत छोटे हैं, आपने 800 लिवाई, बुलोरो हो जाए, पहिया छोटे हैं, टंकी नीचे घल जाती। हम मामा जी एक बार, हमारे मामा जी बैठे हैं, तो हम मामा जी एक बार जा रहे थे एक विवाह में, तो मामा जी के पास में छोटी कार थी, शादी में अभी भी है, हाँ छोटी कार थी, हमें ध्यान है, तो जा रहे थे जंगल के रास्ते से, और हम लोग तो जहां हम लोगों के चरण पकड़े वहां तो पड़ जाए, वहां तो कल्याण हो ही जाता है, भांजों का जहां चरण पड़े तो मामाओं का तो कल्याण हो ही जाता है। एक जंगल के रास्ते हो जा रहे थे, एक जने बगल में हमारे भैया बैठे थे, वो बोले मामा जी चले चलो, छोटी गाड़ी, इतना पत्थर टंकी में घलो, फटाक पूरा तेल ऐसे बह गया जैसे राई के दाने रोड पर बिखर जाते हैं। हाँ, फिर निकाला भरा, हम बताना ये चार है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: If teaching is what you're meant to do, WTU is where you can become great at it. Earn your bachelor's or master's in education online on your schedule and with support that's available when you need it. Make your passion your profession. Learn more at WGU.edu.
3: Tune in how to A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: बद्रीनाथ धाम में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नारायण पर्वत की गुफा में 21 दिनों की साधना और परिक्रमा संपन्न। आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही बागेश्वर धाम सरकार की 5 दिवसीय सत्य नारायण कथा। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 2 दिन बाद बारिश के आसार, तापमान में 8 डिग्री तक आ सकती है कमी। देश की सीमाओं को अवैध बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन RCB, IPL के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को दी करारी शिकस्त। गुजरात टाइटंस को 92 रनों से बेंगलुरु ने दी मात। RCB के 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेंज कर आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर ढेर। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने खेली नाबाद 93 रनों की कप्तानी पारी। विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने बनाए 43-43 रन। IPL के इतिहास में कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची है बेंगलुरु की टीम। सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में हासिल किया 3रा स्थान। क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद अब क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस। एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से होगा मुकाबला, फाइनल में पहुंचने का मिलेगा दूसरा मौका। IPL में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच। न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगे हैदराबाद और राजस्थान की टीमें। दोनों ही टीमों के लिए आज करो या मरो का मैच। IPL की फाइनल की रेस से बाहर होगी आज आने वाली टीम। जीतने वाली टीम खेलेगी क्वालिफायर मैच। राजस्थान रॉयल्स के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद को रहना होगा सावधान। इस सीजन में खेले 14 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी हैं तो हैदराबाद के पास भी है क्लासन जैसा जबरदस्त बल्लेबाज। क्लासन ने मिडिल ऑर्डर में किया है शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। IPL में अब तक शानदार रहा दोनों ही टीमों का सफर। हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में 3रे स्थान पर रही, वहीं राजस्थान की टीम ने 4थे स्थान के साथ प्ले ऑफ में बनाई जगह। बद्रीनाथ धाम में आज से दिखेगा आस्था का नया सैलाब। धाम में आज से बाबा बागेश्वर की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का हो रहा है शुभारंभ। पूरे 5 दिन चलेगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सत्यनारायण और हनुमंत कथा। बाबा की कथा सुनने और दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज से पहले नरनारायण पर्वत पर 21 दिनों की गुप्त साधना में लीन थे बाबा बागेश्वर। आज दोपहर से शुरू करेंगे कथा वाचन। बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरी की 21 दिवसीय साधना। पहले 11 दिन उन्होंने नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में किया एकांत और कठोर तप। बाकी के 10 दिन प्राचीन खाकचोक हनुमान मंदिर में की बजरंग बलि की विशेष आराधना। 21 दिन की साधना के दौरान बाबा बागेश्वर ने नारायण पर्वत की परिक्रमा भी की। श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटे तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर पूरी की परिक्रमा। धर्मशाला में कम पेंशनियर के रूप में मनाया जाएगा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन। 6 जुलाई को है दलाई लामा का जन्मदिन। दलाई लामा के जन्मदिन से पहले आयोजित होगा 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव। लोगों को तिब्बती संस्कृति के बारे में जानने का मिलेगा मौका। देश विदेश से कई गणमान्य अतिथि, अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग होंगे शामिल। धर्मगुरु पर बनी फिल्म की जाएगी हिंदी में प्रदर्शित। तमिलनाडु के कुडलूर जिले में श्री कुथंडावर मंदिर उत्सव का भव्य आयोजन। महाभारत के पात्र अरावन को समर्पित है यह सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। उत्सव में सच सवर कर तैयार होती हैं स्थानीय महिलाएं। भगवान कुथंडावर यानी अरावन से करती हैं प्रतीकात्मक रूप से विवाह। भव्य जुलूस, पारंपरिक नृत्य, संगीत प्रतियोगिताएं भी होती हैं आयोजित। फतेहपुर शेखावटी के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 10 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर शुरू। गर्मी की छुट्टियों में सैकड़ों बच्चे आध्यात्मिक और संस्कार का ले रहे हैं शिक्षा। नगर आराध्य देव मंदिर बच्चों को गीता और धार्मिक ग्रंथों का दिया जा रहा है ज्ञान। पीले वस्त्रों में बच्चे अनुशासन और मानवता की सीख रहे हैं संस्कार। फतेहपुर शेखावटी में बाल संस्कार शिविर बना आकर्षण का केंद्र। 5 साल के बच्चे भी गीता के प्रसंग सुनाकर सभी को कर रहे हैं प्रभावित। विकास चैतन्य महाराज के सानिध्य में गीता ज्ञान शिविर का शुभारंभ। शिविर में बच्चों को धर्म संस्कार और जीवन मूल्यों की दी जा रही शिक्षा। श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज के 496 स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन। स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों को धार्मिक और गीता आधारित शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन। 11 अर्च को 22 देव कन्याओं और 25 क्विंटल फूल मालाओं और 11,000 दीपों से हुई आरती। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश विदेश से आए हजारों सैलानियों ने की बने आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का होगा संपूर्ण विकास। मुख्यमंत्री योगी ने किया 342 जन कल्याण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। परियोजनाओं के माध्यम से शहर में आधुनिक शहरी सुविधाओं का किया जाएगा विस्तार। पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत बिहार में सरकारी स्तर पर कारपूल और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का आदेश। पदाधिकारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक। नौतपा शुरू होने के बाद से उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी। भीषण लू और हीटवेव से जूझ रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला एक बार फिर रहा देश में सबसे गर्म स्थान। 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। गंभीर लू की श्रेणी में रखा जाता है 47 डिग्री से ज्यादा का तापमान। बांदा के अलावा प्रदेश के 5 और जिलों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार। राजस्थान में लू का प्रकोप जारी। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म स्थान। 46 डिग्री सेल्सियस के साथ बीकानेर और फलोदी बने राजस्थान के दूसरे सबसे गर्म स्थान। जबकि जैसलमेर में 45 डिग्री और कोटा में भी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। से गर्म जगह घोषित। पिछले कुछ दिनों से लू की चपेट में हरियाणा का सिरसा, रोहतक में 45 डिग्री और भिवानी में भी 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दक्षिण भारत में भी सूरज की तपिश तेज। हैदराबाद में लू के प्रकोप के बीच नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। हिमाचल प्रदेश के कसौली के आसपास के जंगलों में लगी भीषण आग। राहत कार्य के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रात में भी किया तैनात। MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश। जंगल की भीषण आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खास बेम्बी बकेट ऑपरेशन का ले रहे हैं सहारा। हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका। जमे पाले की वजह से यात्रा मार्ग पर चलना हुआ बेहद मुश्किल। SDRF के जवान यात्रियों को सहारा देकर सुरक्षित रास्ता पार करा रहे हैं। हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्तों पर भारी बर्फ जमने से श्रद्धालुओं को हुई दिक्कतें। कड़ाके की ठंड और पाले के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा बनी चुनौतीपूर्ण। रास्तों पर तैनात SDRF की टीम लगातार संगतों की मदद में जुटी। मौसम बदलते ही हेमकुंड साहिब में फिर बर्फबारी देखने को मिली। बर्फ जमे पैदल मार्गों पर फिसलन बढ़ने से खतरा भी बढ़ा। महाराष्ट्र के अमरावती में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बीच आसमान से गिरी फुहारों ने दी लोगों को राहत। तेज हवाओं के साथ जमकर बरसे बादल। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर, 12 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी।
3: इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी,
4: कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा, देश दूसरा कहाँ से लाएगा सर।
2: पॉलिटिशियंस और आप। वरुण धवन स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का चुनरे चुनरी गाना रिलीज, 5 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी डेविड धवन निर्देशित फिल्म। रितेश देशमुख के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी, 100 करोड़ क्लब में एंट्री, 24 दिन में 101 करोड़ रहा नेट कलेक्शन। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में भी की शानदार कमाई, फिल्म के 67 दिन में की वर्ल्ड वाइड पार की 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई। सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म माँ इंटी बंगारम का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन अवतार, 19 जून को सिनेमाघरों में हुई रिलीज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: कौन से ग्रह मुकदमेबाजी में फंसा देते हैं, किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है और कब व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंसता भी है और बचता भी है। ज्योतिष में मुकदमेबाजी और जेल के क्या होते हैं योग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: At WTU, flexibility is our foundation. With a learning model that lets you set your own schedule, one-on-one mentorship, and flat rate tuition, WGU helps you become a great teacher on your terms. Learn more at wgu.edu.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक बड़ी विशेष एकादशी के बारे में जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी। ये एकादशी हर साल नहीं आती है, पुरुषोत्तम मास में आती है और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो आज पद्मिनी एकादशी की महिमा के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 6:21 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 5:56 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन

तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। हम आज बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी के बारे में। तो पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, साल में वैसे तो कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं, पर अधिक मास में एकादशियों की संख्या बढ़ जाती है और अधिक मास होने के कारण दो एकादशी ज्यादा हो जाती है। इस बार ज्येष्ठ के अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी होंगी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी का पालन करने से यज्ञ, व्रत और तपस्या का फल मिलता है, साथ ही साथ मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको योग्य और उत्तम संतान चाहिए तो वो पद्मिनी एकादशी के पालन से प्राप्त होती है। इस बार पद्मिनी एकादशी का अवसर 27 मई को है और 3 साल में एक बार ये अवसर आता है, तो हम सबको इसका पालन अवश्य करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो पद्मिनी एकादशी अधिक मास की एकादशी है और इसका अवसर 3 साल में एक बार आता है। तो पद्मिनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे ये भी जानते हैं। पद्मिनी एकादशी पर दोपहर 12 बजे के पहले बेहतर होगा प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लें। दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। रात में 4 पहर की पूजा करें, 6 बजे से शुरू करें। 6 से 9 का पहला पहर है। पहले पहर में भगवान की पूजा श्री हरि की पूजा नारियल से करें। दूसरा पहर रात के 9 बजे से 12 बजे तक। दूसरे पहर में पूजा करें बेल से। तीसरा पहर रात के 12 बजे से 3 बजे तक, इसमें पूजा करें सीताफल से। और चौथा पहर रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, चौथे पहर में नारंगी यानी संतरे और सुपारी से पूजा करिएगा। अगले दिन सुबह 4 पहर की पूजा खत्म हो जाने पर पुनः भगवान की पूजा करिएगा।
और इसके बाद निर्धनों को अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। पद्मिनी एकादशी पर सामान्य रूप से आप सुबह शाम भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का, राम रक्षा स्तोत्र का, गजेंद्र मोक्ष का, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। लेकिन पद्मिनी एकादशी पर रात के चार पहर की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी के प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। आपको पहले बताया कि पद्मिनी एकादशी पर साधना करने से, पूजा करने से मनचाहे संतान की प्राप्ति होती है। तो पद्मिनी एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें? पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान को पीले फूल और पीला फल अर्पित करें। इसके बाद पति और पत्नी मिल करके अधिक से अधिक ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। और इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। जो पीला फल अर्पित किया था उसको पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर ऐसा पद्मिनी एकादशी पर पति पत्नी करते हैं तो मनचाहे संतान की प्राप्ति सरल हो जाएगी। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी तपस्या का फल चाहते हैं, अपनी साधना का फल पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रात के समय में पूजा की व्यवस्था करिएगा। पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद भगवत गीता का जितना पाठ कर सकें उतना पाठ करें, या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। और इसके बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान से याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें।

क्षमा आपको प्राप्त होगी। तो आज हमने बात की पद्मिनी एकादशी की और इसके महिमा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आप किसी मुकदमे के चक्कर में फंसे हुए हैं तो हर मंगलवार को अपने घर में शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए तो आपको मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: बद्रीनाथ धाम में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नारायण पर्वत की गुफा में 21 दिनों की साधना और परिक्रमा संपन्न। आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही बागेश्वर धाम सरकार की 5 दिवसीय सत्य नारायण कथा। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 2 दिन बाद बारिश के आसार, तापमान में 8 डिग्री तक आ सकती है कमी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। मेघालय के उमरोई में चल रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में सैनिकों के साथ आकर्षण का केंद्र बने K9 योद्धा, साहस, अनुशासन और भरोसे का प्रतीक बनकर सामने आए 4 पैरों वाले योद्धा। धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 92 रनों से दी शिकस्त, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से हम पर मुकदमे चलते हैं, हमारी जेल जाने की नौबत भी आ जाती है, और इससे बचने के उपाय क्या है उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।

0: काम किया जाता है, शुरू करते हैं, वो काम लंबे समय तक चलता है। इसीलिए कभी भी शनिवार के दिन से मुकदमे की शुरुआत मत करिएगा, नहीं तो मुकदमा समाप्त होने में काफी विलंब होगा, मुकदमा लंबे समय तक चलता रहेगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं 27 मई 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार,

0: कर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि ज्योतिष में मुकदमे और कारावास के लिए कौन से ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मुकदमे के बारे में, जेल जाने के बारे में, मुकदमा लंबे समय तक चलने के बारे में। ज्योतिष मुकदमे के बारे में और जेल जाने के बारे में क्या कहता है? किसी भी कुंडली में छठवां भाव और ग्यारहवां भाव, सिक्स्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस मुकदमे का होता है। कुछ दशाओं में आठवें भाव का और तीसरे भाव का रोल भी मुकदमेबाजी में या जेल यात्रा में आ जाता है। शनि ग्रह मुख्य रूप से न्याय, कानून और मुकदमे का स्वामी होता है।

0: नौबत आ जाती है। इसके अलावा सूर्य चूंकि शासन का मालिक है तो सूर्य भी सजा और दंड दिलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुकदमा लड़वाता है या मुकदमे में फंसाता है वो होता है मंगल। मुकदमे में फंसाने और लड़वाने में मंगल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो मुख्यतः अगर आप देखें तो मंगल की स्थिति की वजह से व्यक्ति मुकदमा लड़ता है, मुकदमे में फंसता है, वाद विवाद कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट इन सब के पीछे ज्यादातर मंगल की भूमिका देखी जाती है।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए।

0: रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आइए अब जानते हैं कि कब व्यक्ति के जेल जाने की नौबत आ जाती है।
0: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मुकदमा चला, विवाद हुआ, मुकदमे की सुनवाई हुई और आदमी जेल चला गया। तो आखिर ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति जेल चला जाता है, कुंडली में लग्न का स्वामी या छठवें भाव का स्वामी अगर कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के जेल जाने की संभावना बनती है, बन जाती है। सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर राहु का संबंध बन जाए, राहु का संयोग बन जाए, तो भी गलत दशा आने पर व्यक्ति जेल जा सकता है, जेल की संभावना बन जाती है। मंगल किसी व्यक्ति को जेल भेजता है और अगर मंगल निगेटिव है तो बिना कारण के व्यक्ति को फंसा देता है, बिना कारण के व्यक्ति फंस करके जेल चला जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बिना वजह के आरोप या बिना वजह की समस्या पैदा करता है और व्यक्ति झूठे आरोप में फंस करके कुछ समय के लिए जेल चला जाता है। सूर्य के पर्वत पर अगर तिल है तो भी जेल जाने के योग बन जाते हैं। अनामिका अंगुली के नीचे अगर तिल बना हुआ हो तो व्यक्ति के जेल जाने की संभावना बन जाती है। कुंडली का 12वां भाव परफेक्टली जेल यात्रा की सूचना देता है। छठवां और 12वां ये दोनों भाव एक दूसरे के पूरक भाव हैं और इनमें गड़बड़ी होने पर जेल जाने की प्रबल संभावनाएं जीवन में बन जाती हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कल सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, बड़ी समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न आदित्य जी ने हमें लिखा है, और आदित्य जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1980, जन्म का समय रात में 9:15, जन्म स्थान है उन्नाव उत्तर प्रदेश। आदित्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और कर्ज के चक्कर में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे कर्ज से मुक्ति मिले, जल्दी मेरा जीवन बेहतर हो पाए। आदित्य जी आपकी कुंडली के अनुसार ऐसा लग रहा है कि कर्ज उतारने के लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी, कोई संपत्ति आप बेचेंगे, और संपत्ति बेचने के बाद आप इस साल के आखिरी तक अपने कर्जे चुका सकेंगे। आने वाला समय आर्थिक मामले में आपके लिए बेहतर दिख रहा है। जून 2027 के बाद स्थितियां आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न अंजलि शर्मा ने हमें लिखा है, और अंजलि शर्मा हमें मेल लिखती हैं रांची झारखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अप्रैल 1992, शाम के 6:35, जन्म स्थान है पटना बिहार। मेल लिखती हैं रांची से। ये लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, कुछ दिन बेहतर चलता है और कुछ दिन समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर चल सके। अंजलि, सबसे पहले अपने क्रोध पर और अपने डोमिनेशन पर काबू रखिए। हर मामला क्रोध से और जिद से सुलझाया नहीं जा सकता। थोड़ी शांति बनाए रखें और धैर्य के साथ अगर आप चलें तो मुझे लगता है चीजें बेहतर की जा सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में केवल पेशेंस का, धैर्य का अभाव है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी चिंता की जाए। आप और आपके पति दोनों लोग एक एक ओपल बनवा करके पहने, बार

0: ओपल पहनिए। रोज सुबह आप 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर ऐसा निरंतर आप करें तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जानेंगे सूर्य और चंद्रमा से मुकदमेबाजी और जेल का संबंध क्या है।
0: देखिए, आपको बताया कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इनकी बड़ी भूमिका होती है मुकदमेबाजी के मामले में। सूर्य और चंद्रमा का मुकदमेबाजी और जेल से क्या संबंध होता है? देखिए, सूर्य या चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हों या सूर्य चंद्र का संबंध राहु के साथ बने तो व्यक्ति को मुकदमे का सामना करना पड़ता है। और आम तौर पर सूर्य चंद्रमा के जो मुकदमे होते हैं ये सरकार से या गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं। सरकार या राज्य से संबंधित मुकदमे माने जाते हैं। टैक्स के मुकदमे, कर, व्यापार, बिजली, सरकारी विभागों के मुकदमे इसी में आते हैं। जब सरकारी मामलों में आदमी मुकदमे में फंसता है तो ज्यादातर उसमें सूर्य और चंद्रमा की भूमिका होती है।
1: और अब वक्त हो गया है मंगल का जेल और मुकदमेबाजी से क्या संबंध है उसे जानने का।
0: देखिए, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस कचहरी केस मुकदमे के मामले में। मंगल जेल और मुकदमेबाजी में क्या करता है? मंगल के कारण किसी भी मामले में मारपीट, हिंसा और अपराध की नौबत आ जाती है। मंगल की वजह से झगड़े, लड़ाई और वाद विवाद होते हैं। व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जिससे विवाद और मुकदमे की नौबत आ जाती है। मंगल ज्यादा खराब हो तो छोटे से झगड़े में, छोटी सी बात में व्यक्ति जेल चला जाता है। और मंगल वाले मामले में मारपीट, झगड़ा, लड़ाई होती है और मुकदमा काफी समय तक व्यक्ति को परेशान करता है। जब किसी विवाद में या किसी मामले में वायलेंस आ जाए, हिंसा आ जाए, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई हो और उसमें पुलिस कचहरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि ये गड़बड़ी मंगल की वजह से पैदा हुई है।
1: और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, करियर में व्यर्थ का तनाव इस समय हो सकता है, चिंता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जानते हैं राहु का जेल और मुकदमेबाजी से क्या संबंध है।
0: देखिए, राहु का भी जेल से, मुकदमे से, कोर्ट कचहरी से संबंध होता है। क्या संबंध है? राहु के कारण अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो ये मुकदमा झूठा होता है, काल्पनिक होता है। व्यक्ति बिना कारण के मुकदमे में फंस जाता है। और अगर राहु गड़बड़ हो, मंगल भी कमजोर हो, तो बिना वजह के व्यक्ति जेल चला जाता है। हालांकि राहु वाले मुकदमे में या राहु वाले कोर्ट केस में कुछ समय के बाद मुक्ति और छुटकारा मिल जाता है। राहु काल्पनिक समस्या पैदा करता है, झूठे मुकदमे डलवाता है और ये कुछ समय के बाद अपने आप शांत हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है।
1: तो चलिए अब जानेंगे कि शनि का मुकदमेबाजी और जेल से क्या संबंध है।
0: शनि को न्याय का देवता मानते हैं, कानून से शनि का गहरा संबंध भी माना जाता है। तो शनि का मुकदमेबाजी और जेल से क्या संबंध है? देखिए, शनि न्याय और कानून का मुख्य ग्रह है। दो ग्रह लीगल सिस्टम से संबंध रखते हैं, शनि और बृहस्पति। शनि न्याय और कानून का मुख्य ग्रह है। कुंडली में शनि खराब हो अगर तो व्यक्ति मुकदमे में उलझ सकता है, मुकदमे में फंस सकता है। और शनि काफी लंबे समय तक मुकदमेबाजी जीवन में करवाता है। और शनि अगर किसी व्यक्ति को जेल भेजता है या जेल में डालता है तो व्यक्ति लंबे समय तक जेल में ही रहता है। और ऐसी दशा में कभी कभी सारी उम्र व्यक्ति की जेल में कट जाती है। शनि का संबंध जेल वाले हाउसेज से बने और शनि की नकारात्मक दशा आ जाए तो व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है, लंबे समय तक जेल में सजा काटनी पड़ती है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है, काम का प्रेशर है, करियर में नए अवसर मिलेंगे और धन की बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी,

0: श्रीमती मीरा ने हमें लिखा है और मीरा जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 4 मई 2002, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, क्या मेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं कमजोर हैं। गवर्नमेंट जॉब इतना प्रबल नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी बेटी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ले, फाइनेंस की पढ़ाई कर ले, मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में अगर नौकरी करने का प्रयास करे तो उसमें काफी सफलता मिल सकती है। केवल गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे रहना बहुत बेहतर नहीं होगा। आप अपनी पुत्री के बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए उनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करवाएं और सुबह शाम दोनों समय इनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहें, बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न के उत्तर का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी,

0: श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और योगेश जी हमें भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1980, जन्म का समय शाम के 5:35, जन्म का स्थान है दमोह मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं भोपाल से। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से अपना मकान लेने का बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है। तो अपनी प्रॉपर्टी का लाभ कब तक होगा और भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से जमीन खरीद कर मकान बनवाने का प्रयास मत करिए, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट अगर खरीदें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 2026 के अगस्त के बाद आप बना बनाया मकान या फ्लैट इसी साल में खरीद सकते हैं। अपने प्रयास जुलाई के महीने के बाद से करना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः अगर धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब जानते हैं जिनका जन्मदिन 27 मई को आने वाला है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जन्मदिन 27 मई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, इस साल अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है, साल के अंत में स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या तुलसी का पौधा किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए? देखिए, तुलसी को एक दैवीय पौधा माना जाता है। ये संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक भी है। आप उसी व्यक्ति को तुलसी का पौधा उपहार में दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत करीबी हो। ऐसे ही किसी व्यक्ति को तुलसी का पौधा उपहार में मत दीजिएगा।
1: और आइए जान लेते हैं 27 मई 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके करियर संबंधी बाधाओं का निवारण होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 27 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: गुडलक में हम जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे। आज की गुडलक राशि है मिथुन। जीवन की बेहतरी के लिए श्री हरि की उपासना करना अच्छा होगा, साथ में अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल और पूजा करें।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: हैं कि अगर आप मुकदमे की समस्या से परेशान हैं तो क्या करेंगे, मंगलवार का सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए, मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला चढ़ाइए मंदिर जाकर, और रोज सवेरे एक मंत्र का जप करिएगा 108 बार, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: To thrive in today's tech world, you need more than coding tutorials. That's why WGU's computer science degree teaches you the building blocks behind AI and automation, like algorithms, data structures, architecture, and more. You'll earn multiple industry certifications, gain real experience, and graduate with a degree employers trust. Plus, it's flexible, affordable, and online. Move your tech career forward at wgu.edu.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: क्या है पद्मिनी एकादशी की महिमा? पद्मिनी एकादशी पर मिलते हैं कौन से वरदान और पद्मिनी एकादशी का क्या है पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Your Saturday nights will never be the same.
4: The biggest hits back to back in the mix.
5: Get ready for the biggest mix show on the planet.
6: The Tailgate Block Party.
3: The Tailgate Block Party.
5: 6 hours nonstop. Nonstop.
6: The best DJs from around the world.
3: The Tailgate Block Party.
5: Saturday night.
3: 8 p.m. Eastern.
6: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
5: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
7: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
12: और इस विवाद के सामने आने के बाद शाहरुख खान की फिल्म किंग इस वजह से भी चर्चा में आ गई है, और उसकी वजह है किंग में रणवीर सिंह का कैमियो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह किंग में छोटा मगर एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। सवाल है कि रणवीर सिंह से जुड़े इस विवाद का जल्द निपटारा नहीं होता तो क्या इससे शाहरुख की किंग संकट में फंस सकती थी? चलिए यहां जानते हैं।
13: रणवीर सिंह पर बैन से क्या किंग पर लगेगा ग्रहण? शाहरुख की किंग से रणवीर का कैसा कनेक्शन? इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने जा रही शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग से अब बॉलीवुड के धुरंधर का नाम जुड़ता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह किंग में कैमियो करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि किंग में रणवीर सिंह का किरदार भले ही कुछ मिनटों के लिए पर्दे पर आए, लेकिन वो किरदार फिल्म में बेहद अहम रोल निभाएगा। वैसे भी धुरंधर की बम्पर कामयाबी के बाद रणवीर सिंह को जबरदस्त हाइप मिली है, और वो गैर जरूरी रोल तो नहीं ही करेंगे। खबर है कि रणवीर का किरदार फिल्म में एक ऐसे सीक्रेट मैसेंजर का होगा जो शाहरुख के लिए काम करता है। दावा किया जा रहा है कि मूवी के एक टेंस सिचुएशन पर वो सुहाना को शाहरुख की तरफ से एक गोपनीय लेटर देंगे। उस लेटर में दुश्मनों से बचने और सेफ लोकेशन तक जाने का पूरा रूट मैप होगा। ये तो हुई किंग में रणवीर के कैमियो की बात। हालांकि रणवीर के किंग में काम करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
14: कितने खून किए?
13: लेकिन अगर ये सच है तो किंग पर ग्रहण का पेच यहीं पर फंसता है, क्योंकि FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने सभी निर्माताओं से अपील की है कि वो रणवीर सिंह को अपनी फिल्म में कास्ट ना करें और एक तरह से एक्टर पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब ये कि जब तक रणवीर सिंह पर से ये बैन नहीं हट जाता है, उनका किसी भी फिल्म में काम कर पाना मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन अगर रणवीर सिंह ने किंग के लिए शूटिंग कर ली होगी तो किंग के साथ ऐसी कोई परेशानी ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स की मारी जाए तो रणवीर ने किंग में अपने किरदार की शूटिंग कर ली है, और ये तब हुआ जब पिछले दिनों सिद्धार्थ आनंद साउथ अफ्रीका में किंग का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे।
14: दुनिया ने दिया।
13: चूंकि दीपिका फिल्म में अहम किरदार निभा रही है और इस वक्त प्रेग्नेंट भी है, इसलिए रणवीर उनसे मिलने साउथ अफ्रीका गए थे। इसी दौरान इंटरनेट पर एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें शाहरुख और दीपिका किसी गाने की शूटिंग कर रहे थे। वहीं पास में रणवीर अपने बेटे को गोद में लिए दिखाई दिए। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसी विजिट के दौरान रणवीर ने अपना कैमियो शूट किया था। हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर रणवीर के बैन से किंग की शूटिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: सौरभ गांगुली की बायोपिक का इंतजार दर्शकों को काफी समय से है। अब दादा के फैंस के लिए एक नई गुड न्यूज आई है। सौरभ के बायोपिक दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी की शूटिंग की शुरुआत हो गई है। सौरभ के पुराने घर पर इस फिल्म के कुछ सीन्स फिल्माए गए हैं। इस फिल्म में राजकुमार राव सौरभ गांगुली के किरदार में नजर आएंगे। इसी साल सौरभ के जन्मदिन पर फिल्म का फर्स्ट लुक दर्शकों के सामने आ सकता है।

0: क्रिकेट के मैदान में कामयाबी के परचम लहराने वाले सौरव गांगुली की कहानी अब बड़े पर्दे पर लाने की शुरुआत हो गई है। लंबे समय से सौरव गांगुली की बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी की चर्चा चल रही थी। राजकुमार राव को सौरव गांगुली के किरदार के लिए कास्ट भी कर लिया गया था और कई महीनों से वो इस किरदार में ढलने की भी तैयारी कर रहे थे और अब खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत कोलकाता में हो गई है। सोमवार को बेहला में सौरव के पुराने घर से इस शूटिंग का शुभारंभ हुआ। घर के अंदर और आसपास के इलाकों को कैमरामैन ने कैमरे में कैद किया। इस दौरान शूटिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई। दादा द सौरव गांगुली स्टोरी में सौरव के बचपन से लेकर एक मशहूर क्रिकेटर बनने तक की कहानी को पर्दे पर उतारा जाएगा। इस फिल्म में राजकुमार राव सौरव गांगुली का किरदार निभाएंगे। अपराजिता ऑडी सौरव की मां का रोल अदा कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान अपराजिता लाल किनारी वाले सफेद साड़ी में दिखी। शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। इस फिल्म में सौरव गांगुली के क्रिकेटिंग करियर के अलावा उनकी पूरी बायोग्राफी दिखाई जाएगी, जिसमें सौरव और उनकी पत्नी डोना गांगुली के स्कूल के दिनों की प्रेम कहानी भी शामिल होगी। शूटिंग के दौरान सौरव के बचपन की सफेद स्कूल यूनिफॉर्म भी दिखी। 1989 में जब सौरव 11वीं में पढ़ रहे थे तब डोना 9वीं की छात्रा थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सूत्रों के मुताबिक अभिनेता शाश्वत चैटर्जी इस फिल्म में सौरव के पिता का रोल अदा कर रहे हैं। शूटिंग के लिए गांगुली के घर के आसपास के 90 के दशक का माहौल तैयार किया गया है। आने वाले दिनों में ईडन गार्डन स्टेडियम समेत कोलकाता के कई हिस्सों में इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। 8 जुलाई को गांगुली के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया जा सकता है। सौरव गांगुली ने क्रिकेट के फैंस के दिलों पर बरसों तक राज किया है। अब सौरव क्रिकेट के मैदान पर भले ही ना दिखे लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी जबरदस्त है। अब इस फिल्म के साथ सौरव एक बार फिर सुर्खियों में वापस आने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बना डालिए एक ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune In has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: Good news today, friend.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या है पद्मिनी एकादशी की महिमा? पद्मिनी एकादशी पर मिलते हैं कौन से वरदान और पद्मिनी एकादशी का क्या है पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक गुड न्यूज। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम।
5: किस दिन के कांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही

0: वोट का दम, अनुशासन और भरोसे का प्रतीक बनकर सामने आए चार पैरों वाले योद्धा।
1: धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 92 रनों से मात दी। रजत पाटीदार ने बनाए 93 रन।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
1: उम्मीदों में रपहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
0: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना हमें अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
1: शुभ समाचार की शुरुआत बाबा बागेश्वर के साथ होगी, जो इन दिनों बद्रीनाथ में हैं। यहां पर वो आज से हनुमत कथा शुरू करने वाले हैं। जगत कल्याण और विश्व शांति के लिए बाबा बागेश्वर की बद्रीनाथ में 21 दिन की एकांत साधना संपन्न हो चुकी है। अब वो बद्रीनाथ धाम में अपने अनुयायियों के लिए 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा और हनुमान कथा का शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसका समय जो है वो क्या रहने वाला है, कैसी तैयारियां हैं, आगे आपको बताएंगे।
0: तो अब नंदगांव में भक्ति उत्सव और आध्यात्मिक उल्लास का अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव मंदिर में पारंपरिक होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कैसा रहा इसका रंग, ये भी आगे आपको दिखाएंगे।
1: बिल्कुल गीतिका, देखिए देश में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आधा हिंदुस्तान जो है प्रचंड गर्मी की चपेट में है, लेकिन इसी समय देश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी तो कुछ जगहों पर बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो 29 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा कहां कहां गर्मी से राहत मिलने जा रही है, आगे आपको जानकारी दी।
0: तो आईपीएल में कल आरसीबी ने गुजरात को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। तो आज एलिमिनेटर मैच होगा, ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। तो कैसी है ये तैयारी और कहां कितने बजे से मैच शुरू होना है, ये सब जानकारी इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे।
1: वही देखिए, आपको इंग्लैंड भी लिए चलेंगे आज, जहां पर हुई है अनोखी लुढ़कने वाली प्रतियोगिता। क्या क्या है इसमें दिलचस्प और रोमांच से भी क्यों भरी हुई है, ये आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
0: आज देश भर में पद्मिनी एकादशी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू जी में पवित्र डुबकी लगाई और फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पद्मिनी एकादशी को अधिक मास या कमला एकादशी भी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार पड़ने वाले मलमास में पड़ती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है।
1: वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। 11 अर्चकों 22 देव कन्याओं ने दिव्य गंगा आरती कराई। गंगा आरती में 25 क्विंटल फूल माला का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान गंगा घाट 11,000 दीपों से जगमग हुआ। गंगा आरती के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। गंगा आरती और गंगा घाटों में दीयों की रोशनी से देश विदेश से पहुंचे हजारों सैलानियों के चेहरे खिले।
0: बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के इच्छुक श्रद्धालुओं का इंतजार आज खत्म होने वाला है। बद्री विशाल धाम के नरनारायण पर्वत पर बाबा बागेश्वर की 21 दिन की गुप्त साधना आज पूरी हो रही है। दोपहर से बाबा बद्री विशाल के धाम में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। 5 दिन चलने वाली कथा को सुनने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं।
1: तमिलनाडु के कुडलूर जिले में श्री कूथनडावर मंदिर उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन महाभारत के पात्र अरावन को समर्पित है। उत्सव में स्थानीय महिलाएं सजा सवर कर तैयार होती हैं और भगवान कूथनडावर यानी अरावन से प्रतीकात्मक रूप से विवाह भी करती हैं।
0: राजस्थान में फतेहपुर शिखावटी के श्री लक्ष्मी नारायण नाथ मंदिर में 10 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों बच्चे आध्यात्म और संस्कार की शिक्षा ले रहे हैं। नगर आराध्य देव मंदिर में बच्चों को गीता और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया जा रहा है। बच्चे यहां अनुशासन और मानवता के संस्कार सीख रहे हैं। गीता ज्ञान का ये शिविर विकास चैतन्य महाराज के सानिध्य में शुरू किया गया था, जिसमें बच्चों को धर्म संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है।
1: कुंड साहिब में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से पूरी तरीके से ढक गया। जमे पाले की वजह से पाला यात्रा मार्ग पर चलना दूभर

0: गया। एसडीआरएफ जवान यात्रियों को सहारा देकर सुरक्षित रास्ता उन्होंने पार कराया। हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्तों पर भारी बर्फ जमने से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हुई।
1: धर्मशाला में कंपैशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन। 6 जुलाई को है दलाई लामा का जन्मदिन। दलाई लामा के जन्मदिन से पहले आयोजित होगा 3 दिवसीय तिब्बतीयन सांस्कृतिक उत्सव। लोगों को तिब्बती संस्कृति के बारे में जानने का इससे मौका मिलेगा। देश विदेश से कई गणमान्य अतिथि, अधिकारी, विदेश प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग इसमें शामिल होंगे। धर्मगुरु पर बनी फिल्म भी की जाएगी हिंदी में प्रदर्शित।
0: आईपीएल की मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार फाइनल्स में पहुंच चुकी है। पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स ने कल गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर पांचवी बार फाइनल्स में पहुंचकर आरसीबी क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद अब क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस। एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से अब उसका भिड़ंत होने जा रही है। फाइनल में पहुंचने का दूसरा मौका मिलेगा।
1: इबोला वायरस से पीड़ित लोगों और देश के लिए राहत वाली गुड न्यूज है। रूसी वैज्ञानिकों ने वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ये वैक्सीन दुर्लभ बुंडी बुगियो स्ट्रेन के खिलाफ विकसित करने का दावा किया गया है। अफ्रीका के कांगो और युगांडा जैसे देशों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, जो इस वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित है। रूस के इन देशों को मदद के लिए वैक्सीन की पेशकश की है।

0: तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत बाबा बागेश्वर की एकांतवास पूरा होने से करते हैं। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर ने अपनी साधना पूरी कर ली है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा करेंगे और एकांतवास के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। बाबा के नारायण पर्वत पर 21 दिनों तक साधना की, जिज्ञासा साधना को लेकर उनके जो भक्त हैं और श्रद्धालुओं ने जो है विशेष उत्सव का आस्था देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तब जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित रखा। दरअसल बद्रीनाथ धाम जो है हिंदू धर्म के चार प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर जो है देवता और ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बाबा बागेश्वर ने भी यहाँ नई ऊर्जा का संचार किया। तमाम तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन में, किस प्रकार से एक लंबे एकांतवास के बाद अब बाबा बागेश्वर जो है हनुमंत कथा करने जा रहे हैं और बद्रीनाथ में बागेश्वर बाबा जो है कथा करेंगे और उसी के लिए उत्साहित है तमाम श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे थे उनके एकांतवास पूरा होने का।
1: तो 21 दिनों की कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वापस लौटे। वो अपने भक्तों के बीच पहुंचे जिन्हें देखकर उनका मन उत्साह से भर गया और बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धर्म भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश भी दिया। उन्होंने साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद को परिणाम बताया और जब बाबा भक्तों के बीच पहुंचे तो उन्होंने शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। तो देखिए किस तरह से 21 दिन की अपनी साधना के बाद बाबा बागेश्वर जब भक्तों से मिले तो वो कितने प्रफुल्लित थे। आप देख सकते हैं चेहरे की मुस्कान उनकी। 21 दिन के तप के बाद वो अब अपने भक्तों से मिले, उन श्रद्धालुओं से मिले जो बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। दूर दूर से भक्त जो है वो बद्रीनाथ पहुंचे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए और आज से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है कथा सुनाएंगे, सत्यनारायण की कथा भी वो सुनाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें सीधे बद्रीनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की 21 दिन की तपस्या जो है वो पूर्ण हो चुकी है। 21 दिनों का तप उनका पूरा हो गया है और आज से बद्रीनाथ में कथा होगी।

0: और अब आपको बताते हैं कि बाबा एकांत साधना पर थे, जिसका मतलब है कि भीड़ शोर और सांसारिक गतिविधियों से दूर रहकर मन, आत्मा और ईश्वर पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना है। इसमें देखिए, साधक कुछ समय के लिए अकेले वातावरण में रहकर तप, ध्यान, जप, मौन और आत्मचिंतन करता है। हिंदू आध्यात्मिक परंपरा में एकांत साधना को मन की शुद्धि और आत्मिक शक्ति बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया माना गया है। ऋषि मुनि, योगी और संत अक्सर हिमालय, जंगल, गुफाओं या शांत स्थानों में जाकर साधना करते थे, ताकि उनका मन बाहरी विचलनों से मुक्त रहे। और बाबा की कैसी रही ये यात्रा, अब दिखाते हैं।
1: जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहां पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहां पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहां ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहां ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो, और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों। और नारायण भगवान जो है, जब नर नारायण के रूप में आए थे तो नारायण भगवान ने, श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार, हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे। वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई।
2: एकांतवास और तपस्या पूर्ण करने के बाद बाबा ने देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों से भी मुलाकात की। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे सैनिकों से मिलकर बाबा ने उनका उत्साह बढ़ाया और उनके त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति को नमन किया और वहां समय के साथ चलने का संदेश भी दिया। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो सेना के जवानों से मिले, उनका आत्मबल बढ़ाया और जवानों से मिलने पहुंचे बाबा बागेश्वर नाथ। पहाड़ों पर बाबा की एकांत साधना के बाद ये मुलाकात जवानों से।
3: दुनिया में सबसे कीमती समय, और समय को जिसने परख लिया उसने समझो जीवन को समझ लिया। समय के साथ जिसने चलना सीख लिया उसने समझो दुनिया के साथ चलना सीख लिया। कल तक जो एम्बेसडर लग्जरी कार हुआ करती थी आज टैक्सी हो गई, क्योंकि वो समय के साथ चल। तक जिस रेडियो की खबरों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे आज वो कबाड़ हो गए। क्यों? कि उस समय के साथ नहीं चला। अब वो रेडियो मोबाइल में आ गया और अब वीडियो में, विजुअल में यूट्यूब आ गया। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आप समय के साथ चलो। और याद रखना, 24 अवतारों में भगवान के कमर के नीचे के जितने भी अंग हैं सब सेम रहे, ऊपर अलग अलग, कभी बारह है कभी नरसिंह।
0: तो देखिए, बाबा बागेश्वर आज दोपहर 2 बजे से कथा शुरू करेंगे बद्रीनाथ धाम के पास अराइवल प्लाजा मैदान में होने वाली इस 5 दिन की कथा को लेकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। यहां कथा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बद्रीनाथ में वाटरप्रूफ पंडाल और विशाल भंडारे की व्यवस्था भी है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर 21 दिनों तक साधना में लीन रहे बागेश्वर सरकार बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, 21 दिनों की उनकी यह कठिन एकांत नारायण और हनुमत साधना मंगलवार को पूरी हो गई है और वो गुफा से बाहर आ गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, न ही उन्होंने किसी को दर्शन दिए। साधना पूरी होने के बाद अब आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का शुभारम्भ होने जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि भगवान बद्री विशाल बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से उनकी नारायण पर्वत पर एकांत नारायण और हनुमत साधना निर्विघ्न संपन्न हो गई है। अपनी इस साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो आज से 5 दिनों तक चलने वाली सत्यनारायण कथा में करेंगे।
1: लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहाँ भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है चाइना बॉर्डर के किनारे, वहाँ पर भी देव तालाब में रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे। जय बद्री विशाल, जय बागेश्वर धाम।
0: अपने 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटे तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की।
2: नीचे गिरोगे तो संसार की तरफ, ऊपर चढ़ोगे तो परमात्मा की तरफ।
0: बद्रीनाथ धाम के महंत भी इस परिक्रमा के पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं और बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने को लालायित हैं।
3: जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई। पूरे जगत के कल्याण के लिए ये एक मंगलदायक जो है आशीर्वाद सिद्ध हुआ। सारे विश्व में इसका जो है सबको प्रसाद मिलेगा। महाराज जी ने सारे विश्व के लिए साधना की है और सबकी मनोकामना की पूर्ति की ये संकल्प है। तो मैं भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे महाराज जी की साधना सफल हुई और सभी को इसका महाप्रसाद मिलेगा। ये बद्रीनाथ जी भगवान की कृपा और महाराज जी का आशीर्वाद सारे विश्व को मिलेगा। जय बद्री विशाल।
0: गुफा से आकर बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि 21 दिनों की इस कठिन तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई। उन्होंने इस मौके पर एक फिल्मी गीत भी गुनगुनाया।
3: फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें। प्रसन्न रहो।
0: बागेश्वर धाम के कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आज से शुरू होने वाली सत्यनारायण और हनुमत कथा के लिए सभी तैयारियों का जायजा लिया है। दूर दूर से श्रद्धालु जो उनकी साधना और परिक्रमा पूरी होने की दुआ कर रहे थे और उनके दर्शन के इच्छुक थे, उनमें अब कथा को लेकर बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु उनके प्रवचन सुनने बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। चमोली से कमलन सिलोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आज अधिक मास की पहली एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। ये एकादशी 3 साल के बाद आई है। ज्येष्ठ मास में 27 साल के बाद ऐसी एकादशी तिथि का संयोग बना है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पद्म पुराण में कमला एकादशी बताया गया है, जबकि इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत पड़ता है। ऐसे में साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली है।
5: मृगों की दिक्कत देखिए, पद्मिनी एकादशी है आज और नदी में ऐसे में तमाम श्रद्धालु पहुंचे, बढ़ चढ़कर पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, तमाम इतनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे। बात करेंगे अब चारधाम की। देखिए चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती चली आ रही है। विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसा ही उत्साह जो है बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी देखने को मिल रहा है।

0: ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और आकाश को चूमते शिखर। प्रकृति का ये सुंदर नजारा किसी को भी दो पल थाम ले। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा है बाबा बद्री विशाल का ये भव्य मंदिर, जहां इन दिनों भक्तों का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की तादाद रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 6,13,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। असल में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यहाँ भागवत कथा का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बद्री विशाल के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में लगातार आस्था का सैलाब महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ है, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: ये यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। गेट सिस्टम लागू होने के बावजूद गाड़ियों की कतारें 7 से 8 किलोमीटर तक लंबी हो रही हैं। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी कतारें नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम में जहां चार धाम यात्रा अपने पूरे उत्साह पर है, वहीं तीर्थ यात्रियों की हर छोटी बड़ी परेशानी में उत्तराखंड की एसडीआरएफ, पुलिस और मंदिर समिति सेवा सहायता के मिसाल बन रही है। बद्रीनाथ धाम का पंडा समाज भी जबरदस्त उत्साह के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों का स्वागत कर रही है। भीषण गर्मी के बावजूद यात्रा को लेकर लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। केदारनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की बजाय अपने देश को ही एक्सप्लोर करने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगह के खूबसूरत वीडियोज हमें भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको डलहौजी के रास्ते में ही पड़ने वाले एक ऐसे पिकनिक स्पॉट में लेकर चलते हैं जिसका नाम है रॉक गार्डन। लेकिन इस जगह की खूबसूरती को स्थानीय लोगों ने नहीं बल्कि पर्यटकों ने शूट कर भेजा है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं रॉक गार्डन की मनमोहक तस्वीरें।

जानते हैं कि रॉक गार्डन सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि डलहौजी में भी है? जी हाँ, यह एक रॉक गार्डन डलहौजी से 13 किलोमीटर दूर डलहौजी चंबा रोड पर स्थित है।

0: हिडन स्पॉट है, लोग काफी कम आते हैं और यहाँ आपको शांति और ट्रैंक्विलिटी में मिलेगी और हम यहाँ खूब मजे कर रहे हैं।
1: हम लोग राजस्थानी है, हम लोग डलहौजी घूमने आए थे, हम जब हमारा आइटनरी बना रहे थे तो हमें बीच में तो हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें ऐसा स्पॉट दिखा जहाँ का थोड़ी वॉक और थोड़ा वाटर बॉडी और ऐसा था, बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था। तो हमने और हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम हम यहाँ निकालें और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि दो लोगों को यहाँ आते ये नहीं पता चलता कि ये पॉइंट है, तो मैं हाँ ये हिडन पॉइंट मतलब जिसको कई लोग मिस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी जगह है।
0: से परेशान है तो यही मौका है, इस टाइम डलहौजी आए और रॉक गार्डन का मजा लें। यहाँ आपको पहाड़ी मैगी और पहाड़ी पकौड़ों का भी आनंद मिलेगा, तो जरूर आए।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको करना बस इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
3: तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गर्मी से कैसे मिल रही है राहत।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: क्या है पद्मिनी एकादशी की महिमा? पद्मिनी एकादशी पर मिलते हैं कौन से वरदान और पद्मिनी एकादशी का क्या है पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक गुड न्यूज। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरीके से सक्षम।
15: एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा।
2: देश भर में पद्मिनी एकादशी की रौनक, रामनगरी अयोध्या में लगा आस्था का मेला, पवित्र डुबकी के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।
15: सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 2 दिन बाद बारिश के आसार, तापमान में 8 डिग्री तक आ सकती है कमी।
2: देश की सीमाओं को अभेद बनाने के मिशन पर गृह मंत्री, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा, बॉर्डर पर घुसपैठ पर रोक के लिए बनाई गई मजबूत रणनीति।
15: मेघालय में चल रहे सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में K9 रोबोट का दम, अनुशासन और भरोसे का प्रतीक बनकर सामने आए 4 पैरों वाले योद्धा।
2: धमाकेदार जीत के साथ IPL के फाइनल्स में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 92 रनों से मात दी, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

बात करेंगे मौसम के मिजाज की। देखिए, आधा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी की चपेट में है। जम्मू से तेलंगाना तक लू के थपेड़े देखने को मिल रहे हैं। सबसे बुरा हाल जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के विदर्भ में देखने को मिल रहा है। यहां पर पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म स्थान बना हुआ है। ऐसे ही समय में देश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी तो कुछ हिस्सों में बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो 29 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखिए, आधे हिंदुस्तान को गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कितना अलग अलग मौसम देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रहा है।

0: हिंदुस्तान एक, मौसम के मिजाज अनेक। ये देश में मौसम के मिजाज की तस्वीरें। नौतपा शुरू होने के बाद उत्तर और पश्चिम भारत के लोग प्रचंड गर्मी के प्रकोप से त्राहिमाम कर रहे हैं। इन हिस्सों में कहीं कहीं तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। वहीं देश के पहाड़ी हिस्सों पर तो कहीं कहीं जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ चांदी से चमचमा रहे हैं, पारा गिर चुका है। और ऐसे ही वक्त में देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून के पहले ही रिमझिम बारिश भी देखने को मिल रही है। गर्मी के बीच कुछ जगह ये बारिश लोगों को राहत का पैगाम दे रही है। और तो और कुछ हिस्से एक दिन गर्मी, एक दिन ठंडक, तो एक दिन बरसात के दौर से भी गुजर रहे हैं। अब ऐसे गिरमिटिया मौसम के चलते लोगों को अपने रहन सहन का, पहनावे का, खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है। यानी उत्तर भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र में जहां नौतपा के शोले बरस रहे हैं, तो उत्तराखंड और लद्दाख में जमकर बर्फबारी हो रही है। चमोली में हेमकुंड साहिब आने के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ों का दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। यही सीन द्रास का भी है, जहां सड़कों पर चलती गाड़ियों पर बर्फ की परतें जम जा रही हैं। यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर चंडीगढ़ में प्रचंड गर्मी के चलते शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। बस गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं, वो भी धूप से बचाव के लिए छाता, गमछा, स्कार्फ या टोपी लगाए हुए हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक समूचा उत्तर और पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी के बुंदेलखंड का बांदा जिला तो जैसे भट्टी में तब्दील हो गया है। बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का सड़कों पर निकलना चुनौती बन गई। प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए एक बाइक सवार ने तो हरे पत्तों की छतरी बना ली। कोटा में मंगलवार को पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहाँ लोग तो ठीक ही हैं, अभीड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद जानवर गर्मी से इतने बेहाल हो गए कि विभाग की टीम उन पर ठंडे पानी का छिड़काव कर रही है। साथ ही जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। भालू आइसक्रीम खा रहे हैं, जबकि दूसरे शाकाहारी वन्य जीवों की डाइट में खीरा, ककड़ी जैसी चीजें शामिल की जा रही है।
1: गर्मी बहुत तेज है कोटा में, तो इनसे गर्मी से बचाने के लिए इनकी हाउसिंग और फीडिंग में कुछ चेंजेस करे हमने। हाउसिंग में जैसे इनको अभी नाइट शेल्टर जो होता है, जहाँ पे रात को आराम करते हैं एनिमल, वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, डक्टिंग चालू करी गई है, और ओपन एरिया जहाँ पे विजिटर्स जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जो फोकर्स लगाए हैं, स्प्रिंकलर चालू है सर। उसी के साथ डाइट में जो है हमने इनके पीने के पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल ऐड कर रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। शाकाहारी वन्य जीवों को जो वो खीरा, ककड़ी, इस तरह के मौसमी जो फल सब्जियां हैं वो दे रहे हैं ताकि पानी की कमी ना हो शरीर में, और मांसाहारी वन्य जीवों को फीड्स मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं सर।
0: राजस्थान के दूसरे शहरों में भी गर्मी का तांडव जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए राज्य के ज्यादातर जिलों में भीषण लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान और 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। कुछ जिलों में पारा 46-47 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुँच सकता है। हालांकि IMD के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर भारत की गर्म हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ की ठंडी नमी आपस में टकराने वाली हैं, और यही टकराव बारिश बनकर बरस सकता है।
2: अनुमान हमारा यह है कि अगले 4-5 दिनों के बाद में जो हीटवेव कंडीशंस है उसमें राहत मिल सकती है। 28 तारीख से एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी चल रही है वो 28 तारीख के बाद यानी 4 दिन के बाद से जो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फॉल इसमें उसके बाद के 3 दिनों में देखने को मिल सकता है।
0: मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि केरला में मॉनसून समय से पहले 26 मई को दस्तक दे देगा, लेकिन अब साफ है कि अगले 3-4 दिनों तक यहां मॉनसून के आसार नहीं हैं। ऐसे में उत्तर भारत में भी मॉनसून आने में भी काफी वक्त लगेगा। यानी गर्मी अभी और कहर बरपा सकती है, तब गर्मी से बचना और सावधानी रखना ही एकमात्र विकल्प है। चंडीगढ़ से असीम बस्ती और दिल्ली से मनीष लाटा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
3: गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है, हर दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवर भी भीषण गर्मी से परेशान हैं। इसी को देखते हुए तमाम चिड़ियाघरों में उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क प्रशासन ने वन्य जीवों की सुरक्षा और देखभाल के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन इंतजाम किए हैं। जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए चिड़ियाघर में कई स्थानों पर पानी के फवारे, स्प्रिंकलर्स, कूलर और छायादार व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुओं को विशेष गर्मी वाला खाना भी दिया जा रहा है, जिसमें रसीले फल, इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय और बर्फ से बने खाद्य पदार्थ शामिल हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। वहीं हिसार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मधुमक्खियों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भीषण तापमान का असर मधुमक्खियों के स्वास्थ्य और शहद उत्पादन पर भी पड़ता है, इसीलिए मधुमक्खी पालक और कृषि विशेषज्ञ मिलकर उन्हें सुरक्षित रखने के उपाय अपना रहे हैं। मधुमक्खियों के बक्सों को तेज धूप से बचाने के लिए उन्हें छायादार स्थानों पर रखा जा रहा है। कई स्थानों पर पानी की विशेष व्यवस्था की गई ताकि मधुमक्खियों को पर्याप्त नमी मिल सके और वो गर्मी से प्रभावित ना हो। और चलिए आपको लिए चलते हैं आईपीएल के मैदान में। आईपीएल में कल आरसीबी ने गुजरात को हराकर फाइनल में एंट्री ले ली, तो आज एलिमिनेटर मैच होगा। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर में होगा। राजस्थान की टीम हैदराबाद को पिछले 6 मैच से नहीं हरा पाई, वैसे दोनों टीमों में से हैदराबाद का प्रदर्शन राजस्थान से बेहतर है। दोनों के बीच 23 आईपीएल मैच खेले गए हैं, इनमें 14 हैदराबाद और 9 मैच राजस्थान ने जीते। अब जो मैच जीता वो दूसरा क्वालिफायर गुजरात के खिलाफ खेलेगी।
4: देखिए, मथुरा के नंदगांव में कृष्ण बलराम मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो है ब्रज में इन दिनों भक्ति उत्सव और आध्यात्मिक उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण के गांव यानी नंदगांव मंदिर में पारंपरिक होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
0: दाऊ भैया को तो बस गुलाल का टीका लगा है, लेकिन रंग खूब चढ़ा है भक्तों पर। मस्ती में सराबोर, जिसे देखिए कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। ढोलक की थाप है, फगुआ का राग है, नृत्य है, संगीत है, सब भाव में डूबे हुए हैं। मथुरा में मानो फिर से होली की रुत आई है, पहले बरसाना और अब नंदगांव।
5: आज राधा रानी के सखी के रूप में यशोदा मैया के पास फगुआ मांगने आए कि तेरे लाला ने आके आज हम पर रंग अभी गुलाल डालो, हमारे हार श्रृंगार वस्त्र बिगाड़ दिए, अब यशोदा जी तुम फगुआ दे। और उनसे लड़ झगड़ के, लड़ाई वैसी ना है, प्रेम में, प्रीत में। तो फिर हमारे यहाँ समाज भाई बरसाने गोस्वामी समाज के जो आए, उन पर खूब रंग अबीर गुलाल, आप देख रहे हैं कैसे रंग बिरंगे है गए, फिर उनको सब फगुआ स्वरूप उनको लड़ुआ दिए हैं। ये हमारी जो परंपरा है।
0: तस्वीरें मथुरा के नंदगांव में कृष्ण बलराम मंदिर की हैं, जहां पुरुषोत्तम मास के तहत पारंपरिक होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अधिक मास में आयोजित उत्सवों की श्रृंखला के तहत हुए इस विशेष होली महोत्सव में नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज के लोगों ने प्राचीन ब्रज संस्कृति से जुड़े पारंपरिक होली पदों का सामूहिक गायन किया। जैसे ही समाज गायन शुरू हुआ, पूरा मंदिर परिसर रंगन रंगीलो रस भरो और होली रसिया के स्वरों से गूंज उठा। श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमने लगे और वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो गया।
6: कल तो तुम हाहा खा रहे थे भाग के बरसाने से आ गए, और आज तुमने फिर वही रंग ले लिया। आज तो हम फगुआ लेने आई हैं, तुमसे तुम्हारी मुरली ले लेंगे, फगुआ में तुमसे तुम्हारा पीतांबर छीन लेंगे। तो इस भाव से सब गोपी आई, बड़ा आनंद हुआ, उनके ऊपर रंग चलाया गया, यशोदा मैया के स्वरूप में आके मुखिया जी ने उनका स्वागत किया।
0: होली गायन पर जहाँ लोग मस्ती में डूबे दिखे, तो वहीं रंगों की बरसात भी हुई। पूरा मंदिर परिसर घंटों तक रंग रस और राधा कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आया। मंदिर में आयोजित इस उत्सव के दौरान रंग और अबीर की जमकर वर्षा हुई। भीषण गर्मी में मंदिर परिसर में उड़ते रंग गुलाल और बरसते फूलों ने श्रद्धालुओं को ब्रज की दिव्य होली का एहसास करा दिया। अभिनेत्री और सिंगर आरती क्षेत्रपाल भी कान्हा के रंग में रंगी दिखी।
7: अभी बिल्कुल कैन से आई हूँ। कैन में ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन का परचम लहराने का मौका मिला, राधा रानी की कृपा से वो करके सीधा पुरुषोत्तम मास में आए। और इस साल मैंने होली नहीं खेली थी तो बलराम जी और ठाकुर जी ने दोनों ने कहा लाली जही रुक तुम्हें तो सबसे पहले मैं प्यार का रंग लगाऊं। तो आज जो रंग लग रहा है बिल्कुल दिल से लग रहा है, जितना बरस रहा है बरसने दो, दिल खुश हो रहा है मेरा। तो
0: करीब दो घंटे तक चले इस महोत्सव में रिक रसिया और होली गीतों ने सभी को ब्रज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया। मान्यता है कि इस माह में राधा कृष्ण की भक्ति और उत्सवों में शामिल होने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए आपको दिखाते हैं चीज रोलिंग कॉन्टेस्ट। ये अनोखी प्रतियोगिता इंग्लैंड में हुई जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 180 मीटर की खड़ी ढलान पर ये मुकाबला करना होता है। इंग्लैंड के ग्लूस्टर शहर में कूपर्स हिल्स पर आयोजित ये प्रतियोगिता वाकई में काफी दिलचस्प रही। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं इसी प्रतियोगिता में और दिखाते हैं इस खेल की लोकप्रियता और इसका रोबाज वहां पर कितना ज्यादा है। खड़ी पहाड़ी पर लुढ़कते लोग और डबल ग्लूस्टर चीज व्हील को हासिल करने की दौड़। खेल जितना दिलचस्प है उतना ही रोमांचक भी। इंग्लैंड के ग्लूस्टर शहर में कूपर्स हिल पर यह नजारा हर साल होने वाली चीज रोलिंग कॉन्टेस्ट में होता है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 180 मीटर की खड़ी ढलान पर डबल ग्लूस्टर चीज व्हील का पीछा करना होता है। पहाड़ी से लुढ़कते चीज व्हील को पकड़ना तो लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन विजेता वो होता है जो सबसे पहले ढलान पर नीचे उतर जाए। इस खेल में रोमांच है तो खतरा भी बहुत है, इसीलिए सभी प्रतियोगियों को कॉन्टेस्ट से पहले ये स्वीकार करना होता है कि वो अपने रिस्क पर इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी डबल ग्लूस्टर चीज के साथ जीत का जश्न मनाते हैं। ये कॉम्पिटिशन जीतना बेहतरीन फिटनेस और फुर्ती का प्रमाण माना जाता है। इस रोमांचक खेल के साथ ही ब्रिटिश परंपरा का लंबा इतिहास जुड़ा है। माना जाता है कि इस फेस्टिवल की जड़ें वसंत ऋतु के आगमन पर मनाए जाने वाले जश्न से जुड़ी है। यहाँ यह अनोखी प्रतियोगिता 1826 से चली आ रही है। इंग्लैंड में लोग हर साल बेसब्री से इस खेल का इंतजार करते हैं। अब साल दर साल इस खेल की लोकप्रियता और इसका रोमांच और भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए दीपिका सिंह की फनी इंस्टा स्टोरी।
8: कहाँ जा रही हो?
9: मरने।
8: इतनी सच दस के?
9: हाँ तो फोटो आएगी ना कल अखबार में।
10: और जिसने भी मेरे नाम का टोटका कर रखा है, गुड़िया बना रखी है मेरे नाम की, बहन यार प्लीज कमर वाली कील निकाल दे, बहुत दर्द होता है उठते बैठते कमर में।
11: पसंदीदा पति मिल तो गया पर अब यो पसंद ना आ रहा, यो तो पूरा दिन फोन चल लावे और बेफालतू का ज्ञान देवे, फोन ले लेगा।
3: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
4: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
12: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
13: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
17: भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक गुड न्यूज। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरीके से सक्षम। इक्कीस दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा। देशभर में पद्मिनी एकादशी की रौनक, रामनगरी अयोध्या में लगा आस्था का मेला, पवित्र डुबकी के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर कामना की, बनज झूला पर भी झूले लोग। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 2 दिन बाद बारिश के आसार, तापमान में 8 डिग्री तक आ सकती है कमी। देश की सीमाओं को अभेद बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर पर घुसपैठ पर रोक के लिए बनाई गई मजबूत रणनीति। धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल के फाइनल्स में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस को 92 रनों से मात दी, रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 93 रन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक बड़ी विशेष एकादशी के बारे में जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी। ये एकादशी हर साल नहीं आती है, पुरुषोत्तम मास में आती है और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो आज पद्मिनी एकादशी की महिमा के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 6:21 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 5:56 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन

तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है।

महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, साल में वैसे तो कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं, पर अधिक मास में एकादशियों की संख्या बढ़ जाती है और अधिक मास होने के कारण दो एकादशी ज्यादा हो जाती है। इस बार ज्येष्ठ के अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी होंगी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी का पालन करने से यज्ञ, व्रत और तपस्या का फल मिलता है, साथ ही साथ मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको योग्य और उत्तम संतान चाहिए तो वो पद्मिनी एकादशी के पालन से प्राप्त होती है। इस बार पद्मिनी एकादशी का अवसर 27 मई को है और 3 साल में एक बार ये अवसर आता है, तो हम सबको इसका पालन अवश्य करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि।

समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो पद्मिनी एकादशी अधिक मास की एकादशी है और इसका अवसर 3 साल में एक बार आता है। तो पद्मिनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे ये भी जानते हैं। पद्मिनी एकादशी पर दोपहर 12 बजे के पहले बेहतर होगा प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लें। दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव

ना करनी चाहिए। रात में चार पहर की पूजा करें, 6 बजे से शुरू करें, 6 से 9 का पहला पहर है। पहले पहर में भगवान की पूजा, श्री हरि की पूजा नारियल से करें। दूसरा पहर रात के 9 बजे से 12 बजे तक। दूसरे पहर में पूजा करें बेल से। तीसरा पहर रात के 12 बजे से 3 बजे तक, इसमें पूजा करें सीताफल से। और चौथा पहर रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, चौथे पहर में नारंगी यानी संतरे और सुपारी से पूजा करिएगा। अगले दिन सुबह 4 पहर की पूजा खत्म हो जाने पर पुनः भगवान की पूजा करिएगा। और इसके बाद निर्धनों को अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। पद्मिनी एकादशी पर सामान्य रूप से आप सुबह शाम भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का, राम रक्षा स्तोत्र का, गजेंद्र मोक्ष का, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। लेकिन पद्मिनी एकादशी पर रात के 4 पहर की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी के प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।

मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, बड़ी समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपको पहले बताया कि पद्मिनी एकादशी पर साधना करने से, पूजा करने से मनचाहे संतान की प्राप्ति होती है, तो पद्मिनी एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें? पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान को पीले फूल और पीला फल अर्पित करें। इसके बाद पति और पत्नी मिल करके अधिक से अधिक ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें और इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। जो पीला फल अर्पित किया था उसको पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर ऐसा पद्मिनी एकादशी पर पति पत्नी करते हैं तो मनचाहे संतान की प्राप्ति सरल हो जाएगी। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी तपस्या का फल चाहते हैं, अपनी साधना का फल पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रात के समय में पूजा की व्यवस्था करिएगा पद्मिनी एकादशी पर। भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद भगवत गीता का जितना पाठ कर सकें उतना पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और इसके बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान से याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें।

तो होंगे उनकी क्षमा आपको प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता समाप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।

0: होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो कि अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आप किसी मुकदमे के चक्कर में फंसे हुए हैं तो हर मंगलवार को अपने घर में शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए तो आपको मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: In the mood for? TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

जितने अमीर यहाँ बैठे, हमने अपनी बहन की शादी में भोगा, हमने भोजन में भोगा। भैया हमारे जीवन में जब भी 2 रुपया चढ़ता है, हम इन सेवादारों को तो नहीं लगता, लेकिन हमारे पास जब भी 2 रुपया या 50 रुपया कोई चढ़ा जाता, हम सुरक्षित रख लेते। क्यों? कम से कम एक व्यक्ति का भंडारा बागेश्वर धाम पर हो जाएगा। लोगों को लगता है हमारा हवा बना दिया। अरे बाबा तो बड़ा है, बड़ा नाम है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री चेला हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। भैया हम आज भी वही हैं। कथा से हमें दक्षिणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमने अपनी बहन के विवाह में जो ठोकर खाई थी, हम बाहर खड़े थे, छोटा सा मकान था, जब बहन की शादी हुई तो नाम लिखने वाला जो पहले दीवार पे लेखन होता था, शुभ लाभ लिखते थे, कन्या का नाम और वर का नाम लिखते थे, उसने 250 रुपया मंगाए थे। और जब हमारे पास 250 रुपया नहीं थे, तब हमने कपड़ों में डालने वाली नील खरीदी 7 रुपया की, उसको घोलकर लकड़ी का कूचे का ब्रश बनाकर और गांव के एक व्यक्ति से लिखवाया। हम सामने खड़े थे, उसी दिन हमने प्रण लिया था कि जिस प्रकार हमने अपनी बहन के लिए विवाह के लिए दर दर ठोकरें खाई, कभी भगवान हमको सामर्थ्यवान बनाएगा तो हमारी तरह अब किसी भाई को रोना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हनुमान जी ने बाह पकड़ ली और आपकी कृपा से हर साल महाशिवरात्रि पर 100-150 उन बेटियों का घर बस जाता जिनके माता पिता और भाई नहीं होते। कथा में कुछ मिल जाता हमको, कुछ चढ़ोतरी में मिल जाता है, कुछ हमारी मंदिर की दान पेटी में आ जाता है। भगवान की कृपा है, हमको हाथ नहीं फैलाने पड़ते। बीच बीच में जरूर थोड़ी थोड़ी दिक्कत जाती, लेकिन भगवान कृपा कर देते। इंदौर के प्रियजनों, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, यह बातें बताकर हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं। हम ये प्रार्थना करना चाह रहे कि तुमने अगर अपनी जिंदगी में भोगा हो तो तुम परेशान मत होना, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए हमारा दरवाजा खुला है। और जैसी बिगड़ी हमारी बागेश्वर बालाजी ने बनाई, तुम भी उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हारी भी वो बिगड़ी बनाएंगे, हमें भरोसा है। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के घर। भैया गरीबों को बहुत भोगना पड़ता, अमीरों को नहीं भोगना पड़ता। अमीरों के इतने बड़े बड़े रिश्ते नाते होते, बड़े बड़े लोग होते, व्यक्ति पहचान भी अमीरों से बनाता है, महिमा भी अमीरों की गाई जाती। गरीब मर भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और अमीर को कांटा भी लग जाए, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछन आए लाख। बड़ा उल्टा जमाना, हम क्या कह दें भैया। पर अपने जीवन काल में जितने युवान बैठे हैं, भाई भैया बैठे हैं, हमारी बहनें विराजमान, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो, बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना, मौका बार बार नहीं मिलता है, तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ है। जागो, समय बार बार नहीं मिलता है, आज खोदोगे ऐसे ही पछताते रहोगे, हमने खोया नहीं। आज भी हम मेहनत करते 18 घंटे तक, ये जो टीवी पे तुम देख रहे, ये हमारा पुराना मकान है, आज भी है। टीवी की स्क्रीन पर देखो, ये इतना ही मकान था, खप्पर छवे थे, इसी में माताजी पिताजी हम पांचों लोग रहते थे,
खटिया नहीं थी, नीचे जमीन में सोया करते थे। आज तो थोड़ा ठीक ही हो गया, इसी में हमने अपना जीवन जिया। नहाने का तो कोई जगह ही नहीं थी, कुआं पे रोज नहाने जाते थे भैया। पर भगवान सबका मालिक है, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जैसी हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने बनाई, आज जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं, सुदामा चरित्र सुन रहे हैं, जो जहां जहां बैठे हैं, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बना दे। ये हमारी माता जी टीवी पे देख रही हैं, इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी। आज भी हमारी माता जी पैदल चलती हैं, बहुत सीधी हैं, साधारण है। आज भी हमको रोज समझाती हैं। इन्होंने ही हमको सिखाया, बेटा किसी भी परिस्थिति में तुम मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। हमने अपनी माँ से सीखा है, उनकी बड़ी कृपा। पर सुदामा जी का जीवन बड़ा विचित्र है। चार बेटे हैं, कुछ है नहीं खाने को। एक दिन एक महात्मा आए, सुशीला से कहा, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश है। कह दिया जाओ द्वारका। पत्नी ने कहा, महाराज

कुछ दे देंगे, उनके पास जाओ, उनके पास जाकर के मिले आओ। सुदामा जी बोले, देवी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर, मित्र के घर, राजा के घर और भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है, कुछ ले जाना पड़ेगा। और देवी जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम भगवान के पास क्या ले जाए। सुशीला कहती, नाथ तुम्हारे मित्र तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं कि हमारी हालत क्या है। हाँ, पर एक बात बोले, इंदौर के पागलों, भगवान के पास ले जाने के लिए कुछ ना हो ना तब भी तुम परेशान मत होना, अपने आंखों के आंसू ही भगवान के चरणों में चढ़ा कर आ जाना। पुष्प को चढ़ा कर आ जाना, फूल को चढ़ा कर आ जाना, अपने मन को ही भगवान के चरणों में चढ़ा कर आ जाना, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कुछ घरों से चावल उधार मांगे, अपनी के साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया, पुरानी साड़ी थी, तुरंत फट गया, सड़ी हुई थी, बांध दिया, ले जाओ। जा तो रहे हो, भगवान से हमारी प्रार्थना कर देना। क्या? एक मास दुई पाख में

एक महीने में दो एकादशी होती हैं, लेकिन अपने भगवान से कह देना कि हमारे घर तो रोज एकादशी है, रोज एकादशी। बच्चों को झूठ बोल बोल करके पानी पिला देती, तुलसी दल खिला देती, बेटा आज एकादशी है कल खा लेना, कल फिर कुछ नहीं मिलता तो फिर जल पिला देती। बच्चे सूख गए, आंखें बच्चों की घुस गई, शरीर सूख गया। बच्चे कहते हैं अब तो रो रो करके फूट फूट करके, माँ आखिर ये एकादशी कितने दिनों तक रहती है, कब तक एकादशी रहेगी। बिचारी सुशीला आंखें टेढ़ी करके फूट फूट करके रोने लगती, क्या जवाब दे बच्चों को। गरीब के माता पिता ही जानते हैं कि त्योहारों पर उनके दिल में क्या गुजरी थी। जब दूसरों के बच्चे पटाखे फोड़ते, तरह तरह का पकवान खाते, मेला में जाते, गरीब का तो बच्चा माता पिता जानते हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे बचा के रखते। जवाब नहीं दे पाते, उत्तर नहीं दे पाते। सुदामा जी पत्नी के कहने पर चल पड़े भगवान से मिलने की।

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
12: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
9: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
14: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
15: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
9: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
9: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
17: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
9: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
18: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
19: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
18: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
9: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। तीन महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
9: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
9: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
20: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
14: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
21: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
9: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
22: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
9: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
23: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
9: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: फौजी 360 मार्केट मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
1: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
9: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
3: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
9: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
24: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
9: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
9: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
9: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. Tune in is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए गुड न्यूज आई सामने। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरीके से है सक्षम। 21 दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा। देश भर में पद्मिनी एकादशी की दिखी रौनक, रामनगरी अयोध्या में लगा आस्था का मेला, पवित्र डुबकी के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर की कामना, बनस झूला पर भी झूले लो। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 2 दिन बाद बारिश के आसार, तापमान में 8 डिग्री तक आ सकती है कमी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृह मंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर पर घुसपैठ पर रोक के लिए बनाई गई मजबूत रणनीति। आईपीएल में आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच, चंडीगढ़ में आमने सामने होंगे हैदराबाद और राजस्थान की टीमें, जीतने वाली टीम खेलेगी सेकेंड क्वालिफायर मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: बद्रीनाथ धाम में आज से दिखेगा आस्था का नया सैलाब, धाम में आज से बाबा बागेश्वर की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का हो रहा है शुभारंभ। पूरे 5 दिन चलेगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सत्यनारायण और हनुमत कथा, बाबा की कथा सुनने और दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। आज से पहले नर नारायण पर्वत पर 21 दिनों की गुप्त साधना में लीन थे बाबा बागेश्वर।

लग रहा है ड्रम। पुरुषोत्तम मास और भागवत कथा के चलते बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही है भक्तों की भीड़। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना। भारी भीड़ के बीच एसडीआरएफ पुलिस और मंदिर समिति यात्रियों की मदद में जुटी। बीमार श्रद्धालु को तुरंत सहायता और खोया सामान वापस लौटाकर पेश की जा रही है मिसाल। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालु की भारी भीड़। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन पूजन। भगवान बांके बिहारी के करोड़ों भक्तों से जुड़ी गुड न्यूज आई सामने। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास की जमीनों की रजिस्ट्री शुरू। 3 और जमीनों के मालिकों ने मंदिर के लिए की जमीन की रजिस्ट्री। कॉरिडोर के लिए अब तक मंदिर के आसपास की कुल 17 जमीनों की हुई रजिस्ट्री। मथुरा के एटीएम वित्त पंकज वर्मा ने बताया अब तक 1900 वर्ग मीटर जमीन की हो चुकी है रजिस्ट्री। मंदिर कॉरिडोर के लिए अपनी जमीन देने के लिए खुद आगे आ रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के वाशिम में लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से गिरा तापमान। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई जगह गिरे पेड़ के हिस्से। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है बकरीद। ईद उल अजहा के मौके पे हजारों श्रद्धालुओं ने अलग अलग ईदगाहों में पढ़ी विशेष नमाज। बकरीद की नमाज के लिए बांदीपुरा की मरकजी ईदगाह में जुटे सबसे ज्यादा श्रद्धालु। नमाज में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। नमाजियों ने लोगों में शांति समृद्धि और भलाई के लिए मांगी दुआ। नमाज को देखते हुए प्रशासन ने किए जरूरी इंतजाम। इस मौके पर विद्वान मौलानियों ने इस्लाम में कुर्बानी भाईचारे एकता और करुणा के महत्व पर डाली रोशनी। धर्मशाला में कैंपेशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन। 6 जुलाई को है दलाई लामा का जन्मदिन। दलाई लामा के जन्मदिन से पहले पर आयोजित होंगे 3 दिवसीय तिब्बतीयन सांस्कृतिक उत्सव। लोगों को तिब्बती संस्कृति के बारे में जानने को मिलेगा मौका। देश प्रदेश से कहीं गणमान्य अतिथि अधिकारी विदेशी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग होंगे शामिल। धर्मगुरु पर बनी फिल्म की भी की जाएगी हिंदी में प्रदर्शन। तमिलनाडु के कोडालूर जिले में श्री कुंठा डावर मंदिर उत्सव का भव्य आयोजन। महाभारत के पात्र रावण को समर्पित है ये सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। उत्सव में सज संवर कर तैयार होती है स्थानीय महिलाएं। भगवान कुठंडावर यानी अरावन से करती हैं प्रतीतात्मक रूप से विवाह। भव्य जुलूस पारंपरिक नृत्य संगीत प्रतियोगिताएं भी होती है आयोजित। फतेहपुर शेखावटी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 10 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर की शुरुआत। गर्मी की छुट्टियों में सैकड़ों बच्चे आध्यात्मिक और संस्कार लेने पहुंच रहे हैं। नगर आराध्य देव मंदिर में बच्चों को गीता और धार्मिक ग्रंथों का दिया जा रहा है ज्ञान। पीले वस्त्रों में बच्चे अनुशासन और मानवता की सीख रहे संस्कार। फतेहपुर शेखावटी में बाल संस्कार शिविर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। 5 साल के बच्चे भी गीता के प्रसंग सुनकर सभी को कर रहे प्रभावित। विकास चैतन्य महाराज के सानिध्य में गीता ज्ञान शिविर का शुभारंभ। शिविर में बच्चों को धर्म संस्कार और जीवन मूल्यों की दी जा रही है शिक्षा। श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज के 496वें स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन। स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों को धार्मिक और गीता आधारित शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका। जमे पाले की वजह से यात्रा मार्ग पर चलना हुआ मुश्किल। एसडीआरएफ जवान यात्रियों को सहारा देकर सुरक्षित रास्ता करा रहे हैं पार। हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्तों पर बर्फ जमने से श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कत। कड़ाके की ठंड और पाले के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा बनी चुनौतीपूर्ण। रास्तों पर तैनात एसडीआरएफ टीम लगातार संगतों की मदद में जुटी। मौसम बदलते हेमकुंड साहिब में फिर बर्फबारी देखने को मिली। बर्फ जमे पैदल मार्गों पर फिसलन बढ़ने से खतरा भी बढ़ा। महाराष्ट्र के अमरावती में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बीच आसमान से गिरी फुहाओं ने 2 लोगों को दी राहत। तेज हवाओं के साथ जमकर बरसे बादल। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का हुआ आयोजन। 11 अर्चकों 22 देव कन्याओं और 25 क्विंटल फूल मालाओं और 11,000 दीपों से हुई आरती। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश विदेश से आए हजारों सैलानियों के लिए बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का होगा संपूर्ण विकास। मुख्यमंत्री योगी ने किया
342

0: 40 जन कल्याण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम, परियोजनाओं के माध्यम से शहर में आधुनिक शहरी सुविधाओं का किया जा रहा है विस्तार। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ अभियान के तहत बिहार में सरकारी स्तर पर कारपूल और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का आदेश, पदाधिकारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, आईपीएल के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को दी करारी शिकस्त। गुजरात टाइटंस को 92 रनों से बेंगलुरु ने दी मात, आरसीबी के 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेस करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर हुई ढेर। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने खेली नाबाद 93 रनों की कप्तानी पारी, विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने बनाए 43-43 रन। आईपीएल के इतिहास में कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची है बेंगलुरु की टीम, सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में हासिल किया है तीसरा स्थान। क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद अब क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस, एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से होगा इसका मुकाबला, फाइनल में पहुंचने का मिलेगा दूसरा मौका। आईपीएल में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच, न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीमें। दोनों ही टीमों के लिए आज करो या मरो का ये होगा मैच, आईपीएल के फाइनल की रेस से बाहर होगी आज आने वाली टीम, जीतने वाली टीम खेलेगी क्वालिफायर मैच। राजस्थान रॉयल्स की धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद को रहना होगा सावधान, इस सीरीज में खेले 14 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना चुके सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी है तो हैदराबाद के पास भी क्लासन जैसे जबरदस्त बल्लेबाज है, क्लासन ने मिडिल ऑर्डर में किया है शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। आईपीएल में अब तक शानदार रहा है दोनों ही टीमों का सफर, हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पाया है पायदान, वहीं राजस्थान की टीम ने चौथे स्थान के साथ प्लेऑफ में बनाई है अपनी जगह। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर, 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म।
1: हमारी सरकार चली जाएगी।
0: वरुण धवन स्टार ऑफ फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का चुनरी चुनरी गाना हुआ रिलीज, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी डेविड धवन निर्देशक ये फिल्म। रितेश देशमुख के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी 100 करोड़ क्लब में हुई इसकी एंट्री, 24 दिनों में 101.4 करोड़ रहा नेट कलेक्शन। फिल्म धुरंधर ने दुनिया भर में भी की शानदार कमाई, फिल्म ने 67 दिनों में की वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। समांथा रूथ प्रभु की फिल्म माँ इंटी बंगारम का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन अवतार, 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं तकरार, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, यह आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
4: तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: हरियाणा को मिली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन DMU, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक गुड न्यूज, रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरीके से है सक्षम। इक्कीस दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा। देश भर में पद्मिनी एकादशी की दिखी रौनक, रामनगरी अयोध्या में लगा आस्था का मेला, पवित्र डुबकी के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर की कामना, बनस झूला पर भी झूले लो। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी से रात का काउंटडाउन शुरू, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 2 दिन बाद बारिश के असर, तापमान में 8 डिग्री तक आ सकती है कमी। IPL में आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच, चंडीगढ़ में आमने सामने होंगे हैदराबाद और राजस्थान की टीमें, जीतने वाली टीम खेलेगी सेकंड क्वालिफायर मैच।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात बद्रीनाथ में बाबा बागेश्वर की तपस्या, साधना और ध्यान की होगी। पहाड़ों पर गए बाबा बागेश्वर का एकांतवास पूरा हो गया है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा करेंगे और एकांतवास के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। बाबा ने नारायण पर्वत पर 21 दिनों तक साधना की। इस साधना को लेकर उनके भक्तों और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और आस्था देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तप, जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया। दरअसल बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता रहा है। बाबा बागेश्वर ने भी यहाँ नई ऊर्जा का संचार किया है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा बागेश्वर अपने एकांतवास से फिलहाल बाहर आ गए हैं।

0: वाला हरे भोज फकीरा
1: देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर 21 दिनों तक साधना में लीन रहे बागेश्वर सरकार बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 दिनों की उनकी यह कठिन एकांत नारायण और हनुमत साधना मंगलवार को पूरी हो गई है और वो गुफा से बाहर आ गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, न ही उन्होंने किसी को दर्शन दिए। साधना पूरी होने के बाद अब आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि भगवान बद्री विशाल बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से उनकी नारायण पर्वत पर एकांत नारायण और हनुमत साधना निर्विघ्न संपन्न हो गई है। अपनी इस साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो आज से 5 दिनों तक चलने वाली सत्यनारायण कथा में करेंगे।
2: लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहाँ भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 शायद मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है, चाइना बॉर्डर के किनारे, वहाँ पर भी देव तालाब में तो रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे। जय बद्री विशाल, जय बागेश्वर धाम।
1: अपने 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटे तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की।
3: नीचे गिरोगे तो संसार की तरफ, ऊपर चढ़ोगे तो परमात्मा की तरफ।
1: बद्रीनाथ धाम के महंत भी इस परिक्रमा के पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं और बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने को लालायित हैं।
4: जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई। पूरे जगत के कल्याण के लिए ये एक मंगलदायक जो है आशीर्वाद सिद्ध हुआ। सारे विश्व में इसका जो है सबको प्रसाद मिलेगा। महाराज जी ने सारे विश्व के लिए साधना की है और सबकी मनोकामना की पूर्ति की यह संकल्प है। तो मैं भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे महाराज जी की साधना सफल हुई और सभी को इसका महाप्रसाद मिलेगा। ये बद्रीनाथ जी भगवान की कृपा और महाराज जी का आशीर्वाद सारे विश्व को मिलेगा। जय बद्री विशाल।
1: गुफा से आकर बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि 21 दिनों की इस कठिन तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई। उन्होंने इस मौके पर एक फिल्मी गीत भी गुनगुनाया।
4: फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें। प्रसन्न रहो।
1: बागेश्वर धाम के कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आज से शुरू होने वाली सत्यनारायण और हनुमत कथा के लिए सभी तैयारियों का जायजा लिया है। दूर दूर से श्रद्धालु जो उनकी साधना और परिक्रमा पूरी होने की दुआ कर रहे थे और उनके दर्शन के इच्छुक थे, उनमें अब कथा को लेकर बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु उनके प्रवचन सुनने बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। चमोली से कमलन सिलोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: 21 दिनों के कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वापस लौटे तो वो अपने भक्तों के बीच पहुंचे, जिन्हें देखकर उनका मन भी उत्साह से भर गया और बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धर्म भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। उन्होंने साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम बताया और जब बाबा भक्तों के बीच पहुंचे तो उन्होंने अपना शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी लिया।
4: जब तप के प्रभाव के कारण, साधना के प्रभाव के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ भगवान की कृपा के कारण यहाँ का यह 21 दिन का साधना का क्रम, एकांतिक समय,
2: बहुत अभूतपूर्व रहा। 11 दिन की साधना एक यहाँ 300 मीटर की दूरी पर गुफा में पूर्ण हुई। उसके बाद में फिर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस दिन खूब संतों का आना हुआ। फिर लगभग 10 दिन की साधना खाक चौक में हनुमान जी की सन्निधि में बैठ करके की, वो भी अभूतपूर्व रही और अद्भुत अनुभव रहे। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और सभी बागेश्वर धाम के जितने लोग जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जुड़े, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उनके लिए यह साधना की। भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी मंगलमयी हुई। और बीच में तो ऐसा लगा भाई जैसे संसार में हम ही भर अकेले बचे हों, पर अब सब भरा भरा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा, बहुत प्रसन्नता है और अच्छे से सब हो गया। उसके लिए हम आप सबको साधुवाद दे रहे हैं। और जो तप का फल, साधना का फल मिला है, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा से राष्ट्र के काम आवे, इस देश के काम आवे, ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं।
5: बाबा बागेश्वर का ये एकांतवास उनके लिए बेहद यादगार रहा। इन दिनों उन्होंने बहुत कुछ सीखा और कुछ पल तो उनके काफी रोमांचक रहे हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर का उनके एकांतवास पर क्या कहना है।
2: आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं, और अपनी भाषा में कहें तो हम जिंदा हैं। बागेश्वर धाम की और पागलों की खूब याद आई। वो फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें। प्रसन्न रहो सीताराम।
6: नारायण पर्वत की परिक्रमा भी की, साधना
2: इन साधना के मध्य में बहुत अभूत अभूत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो हम कथा में सुनाएंगे। हमने और महाराज जी ने मिलकर लगभग 13 घंटा पैदल चलकर नीलकंठ के किनारे से पूरे नारायण पर्वत की परिक्रमा की। ये भगवान की कृपा थी, बड़े अनुभव आए, मौत के मुंह से बच के आए। बड़ा कठिन था वो, लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, वो एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहां भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 शायद मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है, चाइना बॉर्डर के किनारे, वहां पर भी देव तालाब में। तो रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे। जय बद्री विशाल, जय बागेश्वर धाम।
5: देखिए अब आपको बताते हैं कि बाबा एकांत साधना पर थे, जिसका मतलब है कि भीड़, शोर और सांसारिक गतिविधियों से दूर रहकर मन, आत्मा और ईश्वर पर पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करना। इसमें साधक कुछ समय के लिए अकेले वातावरण में रहकर तप, ध्यान, जप, मौन और आत्मचिंतन करता है। हिंदू आध्यात्मिक परंपरा में एकांत साधना को मन की शुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया माना गया है। ऋषि मुनि, योगी और संत अक्सर हिमालय, जंगल, गुफाओं या फिर शांत स्थानों में जाकर साधना किया करते थे, ताकि उनका मन बाहरी विचारों से मुक्त हो सके। बाबा की कैसी रही ये यात्रा, आइए जानते हैं।
7: दुनिया में सबसे कीमती समय, और समय को जिसने परख लिया उसने समझो जीवन को समझ लिया। समय के साथ जिसने चलना सीख लिया उसने समझो दुनिया के साथ चलना सीख लिया। कल तक जो एम्बेसडर लग्जरी कार हुआ करती थी आज टैक्सी हो गई, क्योंकि वो समय के साथ चल रही। कल तक जिस रेडियो की खबरों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे आज वो कबाड़ हो गए, क्यों? क्योंकि उस समय के साथ नहीं चला। अब वो रेडियो मोबाइल में आ गया और अब वीडियो में, विजुअल में, यूट्यूब आ गया। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आप समय के साथ चलो। और याद रखना 24 अवतारों में भगवान के कमर के नीचे के जितने भी अंग हैं सब सेम रहे, ऊपर अलग अलग, कभी बारह है कभी नरसिंह।
5: एकांतवास और तपस्या पूर्ण करने के बाद बाबा ने देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों से भी खास मुलाकात की। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे सैनिकों से मिलकर बाबा ने उनका उत्साह बढ़ाया और उनके त्याग, साहस तथा राष्ट्रभक्ति को नमन भी किया और वहां समय के साथ चलने का संदेश भी दिया।
7: दुनिया में सबसे कीमती समय, और समय को जिसने परख लिया उसने समझो जीवन को समझ लिया। समय के साथ जिसने चलना सीख लिया उसने समझो दुनिया के साथ चलना सीख लिया। कल तक जो एम्बेसडर लग्जरी कार हुआ करती थी आज टैक्सी हो गई, क्योंकि वो समय के साथ चल। कल तक जिस रेडियो की खबरों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे आज वो कबाड़ हो गए, क्यों? तो उस समय के साथ नहीं चला। अब रेडियो मोबाइल में आ गया और अब वीडियो में विजुअल में यूट्यूब आ गया। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आप समय के साथ चलो। और याद रखना 24 अवतारों में भगवान के कमर के नीचे के जितने भी अंग हैं सब सेम रहे, ऊपर अलग अलग, कभी बारह कभी नरसिंह।
5: तो बाबा बागेश्वर अपने एकांतवास से बाहर आ गए हैं और आज दोपहर 2 बजे से वो सत्यनारायण कथा की शुरुआत करेंगे। बद्रीनाथ धाम के पास अराइवल प्लाजा मैदान में होने वाली इस 5 दिन की कथा को लेकर यहां आने वाले श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। यहां कथा और श्रद्धालु की सुविधा के लिए बद्रीनाथ में वाटर प्रूफ पंडाल और विशाल भंडारे की भी व्यवस्था की गई है।
8: जो भक्त आ रहे हैं, जो बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं भक्त, उनके लिए भी बागेश्वर परिवार ने भोजन व्यवस्था, भंडारी की व्यवस्था की गई है और रुकने की भी व्यवस्था की गई है। जो बागेश्वर के भक्त आ रहे हैं उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था, टेंट पूरा वाटर प्रूफ टेंट है और 80x150 का टेंट लगा हुआ है, वाटर प्रूफ टेंट है। फ्लोर भी है, जैसे कि अगर बारिश भी हो रही है तो पानी अंदर ना आ पाए तो उसकी व्यवस्था की गई है, जिससे कि आराम से व्यवस्था पूरा भक्त बैठ करके कथा का रसपान कर पाए। इस पंडाल में 1000 भक्तों की व्यवस्था है बैठने की, और पंडाल के बाहर भी व्यवस्था की गई है, LED भी बाहर लगाई गई है कि भक्तों का, क्योंकि जनसंख्या भक्तों की आई रही है बद्री विशाल भगवान दर्शन करने के लिए, तो बाहर भी व्यवस्था की गई है।
5: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: तो चार धाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। स्थिति ये है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी देखने को मिल रहा है।

0: ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और आकाश को चूमते शिखर। प्रकृति का ये सुंदर नजारा किसी को भी दो पल थाम ले। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा है बाबा बद्री विशाल का ये भव्य मंदिर, जहां इन दिनों भक्तों का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की तादाद रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 6,13,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। असल में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यहाँ भागवत कथा का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बद्री विशाल के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में लगातार आस्था का सैलाब महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ है, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: ये यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। गेट सिस्टम लागू होने के बावजूद गाड़ियों की कतारें 7 से 8 किलोमीटर तक लंबी हो रही हैं। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां चार धाम यात्रा अपने पूरे उत्साह पर है, वहीं तीर्थ यात्रियों की हर छोटी बड़ी परेशानी में उत्तराखंड की SDRF, पुलिस और मंदिर समिति सेवा सहायता की मिसाल बन रही है। बद्रीनाथ धाम का पंडा समाज भी जबरदस्त उत्साह के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों का स्वागत कर रही है। भीषण गर्मी के बावजूद यात्रा को लेकर लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। केदारनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं चीज रोलिंग कॉन्टेस्ट। ये अनोखी प्रतियोगिता इंग्लैंड में हुई, जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 180 मीटर की खड़ी ढलान पर यह मुकाबला करना होता है। इंग्लैंड के ग्लूस्टरशायर में कूपर्स हिल पर आयोजित ये प्रतियोगिता वाकई में काफी दिलचस्प रही। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं इसी प्रतियोगिता में और आपको दिखाते हैं इस खेल की लोकप्रियता और इसका रोमांच वहां पर कितना ज्यादा है।
3: खड़ी पहाड़ी पर लुढ़कते लोग और डबल ग्लूस्टर चीज व्हील को हासिल करने की दौड़। खेल जितना दिलचस्प है उतना ही रोमांचक भी। इंग्लैंड के ग्लूस्टरशायर में कूपर्स हिल पर यह नजारा हर साल होने वाली चीज रोलिंग कॉन्टेस्ट में होता है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 180 मीटर की खड़ी ढलान पर डबल क्लस्टर चीज व्हील का पीछा करना होता है। पहाड़ी से लुढ़कते चीज व्हील को पकड़ना तो लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन विजेता वो होता है जो सबसे पहले ढलान पर नीचे उतर जाए। इस खेल में रोमांच है तो खतरा भी बहुत है, इसीलिए सभी प्रतियोगियों को कॉन्टेस्ट से पहले ये स्वीकार करना होता है कि वो अपने रिस्क पर इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी डबल ग्लूस्टर चीज के साथ जीत का जश्न मनाते हैं। ये कॉम्पिटिशन जीतना बेहतरीन फिटनेस और फुर्ती का प्रमाण माना जाता है। इस रोमांचक खेल के साथ ही ब्रिटिश परंपरा का लंबा इतिहास जुड़ा है। माना जाता है कि इस फेस्टिवल की जड़ें वसंत ऋतु के आगमन पर मनाए जाने वाले जश्न से जुड़ी हैं। यह अनोखी प्रतियोगिता 1826 से चली आ रही है। इंग्लैंड में लोग हर साल बेसब्री से इस खेल का इंतजार करते हैं। अब साल दर साल इस खेल की लोकप्रियता और इसका रोमांच और भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
6: Thank God I get to wake.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
8: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long.
9: This guitar about as hard as a cane.
8: To top 40 hits you just can't get enough of.
6: Thank God I get to.
8: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: हरियाणा को मिली देश की पहले हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन डीएमयू, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक गुड न्यूज, रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम। किस दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण की कथा। देश भर में फरवरी एकादशी की रौनक, रामनगरी अयोध्या में लगा आस्था का मेला, पवित्र डुबकी के बाद श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर की कामना, बनस झूला पर भी झूले लोग। आईपीएल में आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच, चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीमें, जीतने वाली टीम खेलेगी सेकंड क्वालिफायर मैच।
2: NECC, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
3: सज गए हैं, खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशु। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
3: बद्रीनाथ धाम में आज से बाबा बागेश्वर की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम में स्थित नंद नारायण पर्वत पर पूरी की 21 दिनों की गुप्त साधना। चारधाम यात्रा पूरी आस्था और भक्ति के साथ जारी, केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके बाबा केदार के दर्शन पूजन।

0: दिन जन्मदिन से पहले मनेगा 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव। फतेहपुर शेखावटी के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 10 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर शुरू। गर्मी की छुट्टियों में सैकड़ों बच्चे आध्यात्मिक और संस्कार ले रहे शिक्षा। हरियाणा को मिली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन डीएमयू। रेल मंत्रालय ने दी हरी झंडी। महाराष्ट्र के अमरावती में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बीच में आसमान से गिरी फुहारों ने दी लोगों को राहत। तेज हवाओं के साथ जमकर बर्फबारी। महाराष्ट्र के वाशिम में लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से गिर गया पारा। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम। अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर की कामना। बनस झूला पर भी झूले लोग। लखनऊ को विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने 342 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया।
1: दूसरी बार फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को दिखरारी शिकस्त। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई गुड न्यूज। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार। नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम। उत्तरी इराक के हमदानिया में एक छोटा सा प्राइवेट म्यूजियम बना आकर्षण का केंद्र। अल असलफ इस म्यूजियम का नाम है अरबी में, जिसका मतलब है पूर्वज। लंदन की सड़कों पर आइसक्रीम वैन के बाहर लंबी कतारें लगी। लोग ठंडे पेय और आइसक्रीम से राहत लेते दिखे। जर्मनी के ह्यूरथ झील पर इन्फ्लेटेबल वाटर स्लाइड बना आकर्षण का केंद्र। हर उम्र के लोगों ने की मस्ती।
0: रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर। 12 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी।
2: इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी।
3: कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर?
4: पॉलिटिशियंस और आप।
0: वरुण धवन स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का चुनरी चुनरी गाना रिलीज हुआ। 5 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी डेविड धवन की ये फिल्म। रितेश देशमुख के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी। 100 करोड़ के क्लब में हुई एंट्री। 24 दिन में लगभग 101 करोड़ रहा इसका नेट कलेक्शन। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में शानदार कमाई की। फिल्म ने 67 दिनों में की वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई। समंथा रूथ प्रभु की फिल्म इंटी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन अवतार। 19 जून को रिलीज होगा।
5: पापा मैं ఎంత ఎదురు చూసాడో తెలుసా
6: మీరేంటి
7: గుడ్నీ చుడి इसलिए अच्छा लगता है। इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
0: अच्छी सच्ची खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए। खबरों की प्लेट तैयार है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। हरियाणा को मिली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन डीएमयू। रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी।
8: इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई है गुड न्यूज। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार। नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम।
0: 21 दिन के एकांतवास से बाहर आए बाबा बागेश्वर। आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा।
8: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत का काउंटडाउन शुरू। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते 2 दिन बाद बारिश के आसार हैं। तापमान में 8 डिग्री तक आ सकती है गिरावट।
0: लंच टाइम में आज सबसे पहले बात करेंगे रणबीर कपूर की, जिसकी अपकमिंग फिल्म रामायण आने वाली है। रामायण के टीजर ने इस फिल्म की भव्यता से दर्शकों को परिचित करा दिया है और अब दर्शक इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
8: और देखिए बताया जा रहा है कि रामायण का ट्रेलर अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट पर रिलीज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए मेकर्स की योजना इसे जून जुलाई के महीने में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दिखाने की भी है। क्या है पूरी तैयारी देखिए।

0: 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में बन रही मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण, जिसके टीजर ने इस फिल्म के बिग स्केल का अनुभव करा दिया है। और अब इंतजार है इसके ट्रेलर का, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण का ट्रेलर इंटरनेशनल इवेंट सैन डिएगो कॉमिक कॉन पर रिलीज किया जाएगा। अमेरिकी शहर सैन डिएगो में होने वाले इस ऐतिहासिक पॉप कल्चर इवेंट में रामायण का ट्रेलर एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 जैसी फिल्मों के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान फिल्म का अपग्रेडेड VFX भी देखने को मिलेगा। ये रणबीर कपूर वाले फर्स्ट लुक टीजर से काफी अलग होगा। दावा किया जा रहा है कि मेकर्स इस ट्रेलर को अमेरिकी थिएटर्स में क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी के साथ अटैच करेंगे। सैन डिएगो में ये आयोजन 23 से 26 जुलाई के बीच होगा। सुनने में ये बात आम लग सकती है, लेकिन है नहीं। खासतौर पर रामायण जैसी भारी भरकम बजट में बन रही फिल्म के लिए तो ऐसे प्लेटफॉर्म की बेहद जरूरत है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन को कॉमिक कॉन इंटरनेशनल के रूप में भी जाना जाता है। कॉमिक्स, पॉप, संस्कृति और मनोरंजन के लिए ये एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो हर साल कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में आयोजित किया जाता है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मंच पर जो भी फिल्में आती हैं, उन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है। दुनिया के तमाम ऐसे फिल्म प्रोजेक्ट जो साइंस फिक्शन, एनिमेशन या फैंटेसी पर बेस्ड हैं, वो इस मंच पर आना चाहते हैं। मार्वल की सुपर हीरो फिल्में या टॉम क्रूज के सुपर एक्शन प्रोजेक्ट्स, सबका मकसद सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में दर्शकों को इम्प्रेस करना होता है। क्योंकि इस इवेंट में अगर किसी फिल्म को तवज्जो मिल गई, तो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी तगड़ी कवरेज हो जाती है, जिससे वर्ल्ड वाइड फिल्म की अच्छी कमाई की संभावना बढ़ जाती है। रामायण से पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक इंडियन फिल्म कल्कि 2898 AD का टाइटल लॉन्च किया गया था, जिसकी कॉमिक कॉन में खूब चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, रामायण के मेकर्स का प्लान कहीं बड़ा है। इसी साल होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े सपोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी रामायण की झलक दिखाई जा सकती है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई के बीच कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित होगा। इस दौरान मिडिल ईस्ट के बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पर फिल्म से जुड़े 15 से 30 सेकंड के फुटेज दिखाए जाएंगे। ये ज्यादातर ईरान, मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों के मैच के दौरान आएंगे। मेकर्स का मानना है कि इससे रामायण को मिडिल ईस्ट के दर्शकों का भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। इसलिए फुटबॉल के इस महाकुंभ में रामायण की झलक दिखाए जाने से इसका प्रमोशन घर घर तक हो सकेगा। रामायण पार्ट 1 इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी। इस साल दिवाली 6 नवंबर को है, लेकिन रामायण इससे चंद दिन पहले 30 अक्टूबर को रिलीज की जा सकती है। जिससे दीपावली की लंबी छुट्टी का फायदा रामायण को हफ्ते भर पहले से मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए आज के जमाने में फिल्म अच्छी या बहुत अच्छी बनाना काफी नहीं होता, प्रमोशन भी काफी मायने रखता है। वो भी फिल्म का प्रमोशन कब, कैसे और कहां किया जाए, ये आजकल ज्यादा जरूरी हो गया है। तो रामायण के मेकर्स ने इस फलसफे को भली भांति समझा, शायद इसीलिए रामायण के मेकर्स ने फिल्म का ग्लोबल प्रमोशन करना काफी पहले से शुरू कर दिया है।
2: ग्लोबल कैंपेन की शुरुआत अप्रैल 2026 में लॉस वेगास में आयोजित हुई दुनिया के सबसे बड़े फिल्म कन्वेंशन सिनेमाकॉन 2026 से फिल्म का आधिकारिक ग्लोबल प्रमोशन शुरू हुआ। सिनेमाकॉन के इतिहास में रामायण पहली ऐसी भारतीय फिल्म बनी जिसका सबसे बड़ा स्टैंडी पोस्टर वहां प्रदर्शित किया गया।
1: और फिल्म के को प्रोड्यूसर रावण का किरदार निभा रहे सुपरस्टार यश और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा खुद इस इवेंट में मौजूद थे। अप्रैल 2026 की शुरुआत में लॉस एंजलिस में एक विशेष प्रेस और स्क्रीनिंग इवेंट रखा गया था।
2: यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने रामायण की पहली एक्सक्लूसिव झलक दिखाई गई, जिसे बाद में भारत में भी जारी किया गया। भारत में फिल्म का पहला डिजिटल प्रमोशन बड़े स्तर पर 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर हुआ,
1: जब फिल्म के विजुअल्स आधिकारिक तौर पर देश के सामने यहां पर पेश किए गए।
2: चलिए और अब बात कर लेते हैं मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म गवर्नर की, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में मनोज वाजपेयी ने गवर्नर का रोल निभाया, जो कि देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए पूरा जोर लगा देता है। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है।
1: और देखिए भारत के इतिहास के उस कठिन दौर की कहानी दिखाई गई है जब देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था।
3: सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं।
4: ओके।
3: और 1 बिलियन से नीचे मतलब।
5: भारत के अतीत की वो तस्वीर है जब 1990 में देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था।
6: लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा, देश दूसरा कहाँ से लाएगा सर।
5: विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी और सड़कों पर दंगों जैसे हालात थे। ऐसी मुश्किल घड़ी में सिस्टम में एंट्री होती है एक ऐसे अर्थशास्त्री की जो इस डूबती नैया को पार लगाने का बेड़ा उठाता है।
7: असली धन वही है जो अपने हाथ में हो।
5: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। फिल्म गवर्नर का ट्रेलर इसी तनाव, डर और देश को बचाने की सीक्रेट प्लानिंग की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली झलक दिखाता है, जिसमें मनोज वाजपेयी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के किरदार में है।
8: 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे?
5: रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में मनोज वाजपेयी का किरदार पूर्व आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रमनन से प्रेरित होता है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। वेंकट रमनन 1991 के आर्थिक संकट के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे और उस समय देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है।
8: 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे?
9: इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है, ऑपरेशन रोकना होगा, हमारी सरकार गिर गई है।
5: ट्रेलर में दिखाया गया है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनता में गुस्सा और बेचैनी है। लोग सरकार और आर्थिक हालात को लेकर चिंतित हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देश को आर्थिक रूप से टूटने से कैसे बचाया जाए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार और बड़े अधिकारियों को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म में मनोज वाजपेयी का किरदार देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने और भारत को संकट से बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई देगा। ट्रेलर में मनोज वाजपेयी का अभिनय हमेशा की तरह बेहद संजीदा और प्रभावशाली नजर आ रहा है। दर्शकों को उनका शांत और गंभीर अंदाज काफी पसंद आ रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, फैमिली मैन के बाद आखिरकार मनोज वाजपेयी को वो भूमिका मिल ही गई जिसके वो हकदार थे। किसी ने कहा, तो मनोज वाजपेयी एस वेंकट रमनन की भूमिका निभा रहे हैं, जो एलपीजी सुधारों के दौरान आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर थे। तो किसी दूसरे यूजर ने कहा, मनोज वाजपेयी गंभीर भूमिकाओं में हमेशा एक अलग ही लेवल पर होते हैं।
10: आप फेल हो चुके हैं।
11: आई विल नॉट लेट इंडिया फेल।
4: मैडम खबर पक्की है।
5: मनोज वाजपेयी के साथ फिल्म में अदा शर्मा भी मुख्य भूमिका में है, जो तीखे तेवरों के साथ स्क्रीन पर खूब जम रही हैं।
6: बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।
5: तो तैयार हो जाइए, देश के इतिहास के सबसे बड़े और गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। गवर्नर अगले महीने की 12 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे?
1: चलिए बात अब बॉलीवुड के एक और विवाद की, जो बॉलीवुड की जेन जी अनन्या पांडे और पुरानी पीढ़ी की नामचिन हस्तियों के बीच में गहराया हुआ है। 22 मई को रिलीज हुई चांद मेरा दिल फिल्म में अनन्या पांडे ने एक सीन में भरतनाट्यम और आधुनिक डांस स्टेप्स का एक फ्यूजन परफॉर्म किया, लेकिन ये सीन अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
2: दरअसल कला और राजनीतिक जगत पर विचारों का नृत्य हो रहा है। सोनल मानसिंह, रमा वैद्यनाथन और अनीता रत्नम जैसी क्लासिकल डांसर्स के साथ कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद भी इसे भरतनाट्यम का अपमान कह रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
11: बाईस मई को रिलीज हुई अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म चांद मेरा दिल करण जौहर के बैनर तले दो जेंजी कलाकारों को लेकर बनी यूनिक जेंजी की कहानी है चांद मेरा दिल, लेकिन दर्शकों को एक रोमांटिक सफर पर ले जाती है ये फिल्म। अचानक विवादों के मोड़ पर आ खड़ी हुई है। विवादों के केंद्र में है फिल्म के लीड एक्ट्रेस और बॉलीवुड की जेंजी पीढ़ी के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक अनन्या पांडे। दरअसल फिल्म रिलीज होने के बाद से ही इसके एक डांस सीन की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अनन्या का किरदार भरतनाट्यम और आधुनिक डांस स्टेप का एक फ्यूजन परफॉर्म करता है। अब इसी परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अनन्या पांडे को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलर्स के बाद कला और राजनीति जगत से भी अनन्या के भरतनाट्यम को लेकर प्रतिक्रियाएं आई। भरतनाट्यम डांसर और पद्म भूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह ने तो ये तक कह दिया कि अनन्या का डांस देख कैलाश पर नटराज भी रो रहे होंगे, आपको डांस नहीं आता तो मत करिए। उन्होंने कहा, अनन्या पांडे को भरतनाट्यम करते देखना ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आर्ट फॉर्म को तोड़ मरोड़ कर किसी प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। भरतनाट्यम कोई ट्रेंड नहीं है, ये 3000 साल पुरानी आर्ट है जिसे गुरुओं ने कड़ी साधना और मेहनत से सीखा है। बिना सही प्रशिक्षण के आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपको अपनी फिल्म में भरतनाट्यम का सीन रखना है तो ऐसी एक्ट्रेस लीजिए जो इसमें ट्रेंड हो। वही भरतनाट्यम गुरु रामा वैद्यनाथन ने कहा, अगर आपने किसी डांस फॉर्म की ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर फिल्म में भरतनाट्यम दिखाना है तो किसी ऐसे एक्ट्रेस को लेना चाहिए जिसे इसकी सही ट्रेनिंग हो। हमारे पास ऐसी कई कलाकार हैं। और क्लासिकल डांसर अनीता रत्नम का तो कहना है कि इस परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे भरतनाट्यम को बंधक बना लिया गया हो। राजनीति जगत से कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद तो अनन्या की परफॉर्मेंस पर भावुक हो गई। उन्होंने तो लिख दिया कि अनन्या पांडे ने मेरे पसंदीदा डांस फॉर्म भरतनाट्यम को खत्म कर दिया है। हालांकि अनन्या पांडे या फिल्म के डायरेक्टर विवेक सोनी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन फिल्म की असिस्टेंट कोरियोग्राफर अनन्या के रूप में अनन्या पांडे बचाव में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने फिल्म के बिहाइंड द सीन वीडियो और क्रेडिट रोल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अनन्या पांडे के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भरतनाट्यम सीखने के लिए कड़ी मेहनत की है और फिल्म चांद मेरा दिल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बेटी पर सवाल उठे तो पिता चंकी पांडे से रहा नहीं गया, वो सीधे बेटी के बचाव में आ गए और कहने लगे कि इसे गलत नजरिए से देखा जा रहा है। बहरहाल अनन्या का भरतनाट्यम विवाद गहराता जा रहा है, साथ ही नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच की खाई को भी दिखाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनरेशन गैप कभी किसी भी युग में कम नहीं होगा? क्या जेंजी पुरानी पीढ़ी की भावनाओं को गंभीरता से लेगा और क्या पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के प्रयोगों को कभी स्वीकार करेगी? वैसे उम्मीद यही है कि ये विवाद एक ऐसे नोट पर ही खत्म हो जहाँ माइंडसेट का फ्लो, विकास की धारा और एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान को जीवंत रखे। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो वहीं आज अधिक मास की पहली एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। ये एकादशी 3 साल के बाद आई है। ज्येष्ठ मास में 27 साल के बाद ऐसी एकादशी तिथि का संयोग बना है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्म पुराण में कमला एकादशी भी बताया गया है,
1: जबकि इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत पड़ता है। ऐसे में साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली है। चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हालात ये हो गए हैं कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में उत्साह बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी बना हुआ है।

0: ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और आकाश को चूमते शिखर, प्रकृति का ये सुंदर नजारा किसी को भी दो पल थाम ले। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा है बाबा बद्री विशाल का ये भव्य मंदिर, जहां इन दिनों भक्तों का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की तादाद रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 6,13,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। असल में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यहाँ भागवत कथा का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बद्री विशाल के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में लगातार आस्था का सैलाब महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ है, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: ये यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। गेट सिस्टम लागू होने के बावजूद गाड़ियों की कतारें 7 से 8 किलोमीटर तक लंबी हो रही हैं। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां चार धाम यात्रा अपने पूरे उत्साह पर है, वहीं तीर्थ यात्रियों की हर छोटी बड़ी परेशानी में उत्तराखंड की SDRF, पुलिस और मंदिर समिति सेवा सहायता के मिसाल बन रही है। बद्रीनाथ धाम का पंडा समाज भी जबरदस्त उत्साह के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों का स्वागत कर रही है। भीषण गर्मी के बावजूद यात्रा को लेकर लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। केदारनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चमोली से कमलनयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मथुरा के नंदगांव में कृष्ण बलराम मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत ब्रज में इन दिनों भक्ति उत्सव और आध्यात्मिक उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव मंदिर में पारंपरिक होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। देखिए,
0: दाऊ भैया को तो बस गुलाल का टीका लगा है, लेकिन रंग खूब चढ़ा है भक्तों पर। मस्ती में सराबोर, जिसे देखिए कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। ढोलक की थाप है, फगुआ का राग है, नृत्य है, संगीत है, सब भाव में डूबे हुए हैं। मथुरा में मानो फिर से होली की रुत आई है, पहले बरसाना और अब नंदगांव।
3: आज राधा रानी के सखी के रूप में यशोदा मैया के पास फगुआ मांगने आए कि तेरे लाला ने आके आज हम पर रंग अभी गुलाल डालो, हमारे हार श्रृंगार वस्त्र बिगाड़ दिए, अब यशोदा जी तुम फगुआ दे और उनसे लड़ झगड़ के, लड़ाई वैसी ना है, प्रेम में, प्रीत में। तो फिर हमारे यहाँ समाज भाई बरसाने गोस्वामी समाज के जो आए, उनको खूब रंग अबीर गुलाल, आप देख रहे हैं कैसे रंग बिरंगे है गए, फिर उनको सब भगवा स्वरूप उनको लड़ुआ दिए हैं। ये हमारी जो परंपरा है।
0: तस्वीरें मथुरा के नंदगांव में कृष्ण बलराम मंदिर की है, जहां पुरुषोत्तम मास के तहत पारंपरिक होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अधिक मास में आयोजित उत्सवों की श्रृंखला के तहत हुए इस विशेष होली महोत्सव में नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी समाज के लोगों ने प्राचीन ब्रज संस्कृति से जुड़े पारंपरिक होली पदों का सामूहिक गायन किया। जैसे ही समाज गायन शुरू हुआ, पूरा मंदिर परिसर रंगन रंगीलो रस भरो और होली रसिया के स्वरों से गूंज उठा। श्रद्धालु भक्तिभाव में झूमने लगे और वातावरण पूर्णता भक्तिमय हो गया।
4: कल तो तुम हाहाकार रहे थे, भाग के बरसाने से आ गए और आज तुमने फिर वही रंग ले लिया। आज तो हम फगुआ लेने आई हैं, तुमसे तुम्हारी मुरली ले लेंगे, फगुआ में तुमसे तुम्हारा पीताम्बर छीन लेंगे। तो इस भाव से सब गोपी आई, बड़ा आनंद हुआ, उनके ऊपर रंग चलाया गया। यशोदा मैया के स्वरूप में आके मुखिया जी ने उनका स्वागत किया।
0: होली गायन पर जहां लोग मस्ती में डूबे दिखे तो वहीं रंगों की बरसात भी हुई। पूरा मंदिर परिसर घंटों तक रंग रस और राधा कृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आया। मंदिर में आयोजित इस उत्सव के दौरान रंग और अबीर की जमकर वर्षा हुई। भीषण गर्मी में मंदिर परिसर में उड़ते रंग गुलाल और बरसते फूलों ने श्रद्धालुओं को ब्रज की दिव्य होली का एहसास करा दिया। अभिनेत्री और सिंगर आरती क्षेत्रपाल भी कान्हा के रंग में रंगी दिखी।
5: मैं अभी बिल्कुल कैन से आई हूँ। कैन में ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन का परचम लहराने का मौका मिला, राधा रानी की कृपा से वो करके सीधा पुरुषोत्तम मास में आए। और इस साल मैंने होली नहीं खेली थी तो बलराम जी और ठाकुर जी ने दोनों ने कहा, लाली जही रुक, तुम्हें तो सबसे पहले मैं प्यार का रंग लगाऊं। तो आज जो रंग लग रहा है बिल्कुल दिल से लग रहा है, जितना बरस रहा है बरसने दो, दिल खुश हो रहा है मेरा। तो
0: करीब दो घंटे तक चले इस महोत्सव में रिक रसिया और होली गीतों ने सभी को ब्रज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया। मान्यता है कि इस माह में राधा कृष्ण की भक्ति और उत्सवों में शामिल होने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
2: गंगा दशहरा के पावन अवसर पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विशेष भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। स्वच्छ गंगा, स्वच्छ काशी, स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण को संकल्पित और समर्पित गंगा दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। विशेष आरती में 11 अर्चकों द्वारा भगवती मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन करवाया गया। इसी क्रम में संस्था के 11 अर्चकों और रिद्धि सिद्धि के रूप में 22 देव कन्याओं की ओर से भव्य भगवती मां गंगा की महाआरती का आयोजन हुआ। 25 क्विंटल फूल मालाओं और 11,000 दीपों से दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया गया। घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश विदेश से आए हजारों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ मां गंगा के अवतरण से लेकर उनके सभी कालों में मां गंगा का दर्शन और उनके आगमन पर देवों के नृत्य की प्रस्तुति यहां पर की गई।
6: देखिए, इसका पर्व को देखने के लिए हजारों के संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो काशी आते हैं, यहाँ की अलौकिक छटा को देखने और भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती का दर्शन करने के लिए काशी आते हैं।
7: पहली बार है तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत पॉजिटिव लग रहा है ये देखकर।
8: मैं हर साल आता हूँ, 2-3 बार, ये मेरा 6th time है, हमेशा आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कलकत्ता से हूँ एंड सही में बहुत अच्छा लगता है इधर आना, पूरा बनारस, गंगा आरती और जैसे काशी विश्वनाथ दर्शन, और ये अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को एकदम मन में रह जाता है कि कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो हर साल जब भी आता हूँ मैं, ये तो मेरा होता ही है, हर साल मैं आता हूँ।
2: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुलमर्ग में केबल कार में फंसे पर्यटकों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: News today. Achhi khabar, sachi khabar.
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: हरियाणा को मिली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन DMU, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी।
3: इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक गुड न्यूज, रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम।
2: देश भर में भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहें देशवासी, एनर्जी ड्रिंक और लगातार पीते रहें पानी।
3: इक्कीस दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा।
2: झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर की कामना, बनस झूला पर झूले लोग।
3: IPL में आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच, चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीम, जीतने वाली टीम खेलेगी सेकंड क्वालिफायर मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: अब बात गुलमर्ग में 7 घंटे चले महाऑपरेशन की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग गोंडोला में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद सैकड़ों पर्यटक हवा में ही फंस गए।
3: इसके बाद मेजर जनरल पुनी डोभाल की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF और भारतीय सेना के जाबाजों ने सभी 300 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और अब पर्यटक सबको शुक्रिया कह रहे हैं।
4: कोई बात नहीं, इसके लिए
1: कश्मीर घाटी की गहरी खाई और हवा में 1 घंटे अटके रहने के बाद अगर सांसें बचा ली जाए तो हर दिल से शुक्रिया निकलता ही है। गुलमर्ग में रेस्क्यू किए गए 300 सैलानियों में से हर कोई भारतीय सेना के जांबाजों को सलाम कर रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है और दिल से दुआएं दे रहा है।
5: बारिश तूफान कुछ भी नहीं होता हमारी आर्मी के सामने, तो मेरी वाइफ भी आ रही है पीछे, उसका भी मतलब एक बंदे के साथ एक जना लगा हुआ है, ऐसे नहीं है कि ग्रुप ग्रुप में लेके आ रहे हैं, सभी को प्रॉपर इंडिविजुअली ध्यान दिया जा रहा है यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इंडियन आर्मी।
1: बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त करीब 65 कैबिन हवा में फंस गए थे, जिनमें कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने आए करीब 300 सैलानी सवार थे। केबल कार रुकते ही इन 65 कैबिन में सवार पर्यटकों की सांसें थम गईं। हवा में फंसे पर्यटकों के लिए उनकी हर सांस भारी पड़ रही थी, सबके चेहरे पर डर था, पर जब उनकी नजर सेना के जवानों पर पड़ी तो उन्हें अपनी सलामती का भरोसा हुआ। नीचे मेजर जनरल पुनीत डोवाल की टीम के साथ NDRF, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मिलकर ऑपरेशन मिशन प्रोटेक्शन शुरू किया था।
6: आपने घबराना नहीं है, इसी आपको लेट करेंगे, वो आपको डाउन करते हैं।
7: हाँ, उसको जो वो नहीं घबरा रही,
6: टाइट करो, चलो लोड दे दो, पूरा लोड दे दो, अभी
7: आराम से,
6: लवली लवली, इजी,
7: धीरे धीरे,
6: वन सेकंड, जरूरत नहीं, सर बचा लेना, बट अपना
1: इनकी रेस वक्त के साथ थी, इसलिए सब कुछ बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। इस ऑपरेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। इसमें नजर आ रहा है कि कैसे सेना के जवान रस्सियों के सहारे केबल कार में फंसे लोगों तक पहुंच रहे हैं और फिर उन्हें सीढ़ी और रस्सियों के जरिए नीचे उतारा जा रहा है। नदन कमांड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक चिनार कोर, इंडियन आर्मी और गंडोला ऑपरेटर्स की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया गया।
8: एसओचओ गुलमर्ग अपनी थाना नफरी और अपने साथ में एसओजी लेके यहाँ पहुंचे। उसके बाद फटाफट एसडीआरएफ की 14 टीम्स मोबिलाइज की, हमारे आर्म्ड पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जो हैं 8 टीम्स वो आई, इसके अलावा हमारे स्नो लेपर्ड्स आए। तो जेएनके पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और एसडीआरएफ तो थी ही, इसके अलावा हमें भारतीय सेना, 9 राजरेफ, हौज के अफसरान और उसके अलावा एनडीआरएफ भी यहाँ पहुँच गई और सबने मिलके आज ये जो टूरिस्ट जो फंसे हुए थे इनको सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया। आप खुद देख रहे हैं आज बहुत यहाँ बारिश का मौसम रहा है। इस बारिश में, इस ठंड में और जिस तरह का ये टेरेन है इसमें ऊपर चढ़ना, फिसलन भी है, इस सब में कामयाबी से ऑपरेशन हमने मुकम्मल किया।
1: बता दें, सेना ने एक चुनौतीपूर्ण इलाके में ऐसे विपरीत मौसम में जब बारिश हो रही थी पर्यटकों का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जमीन से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर हवा में घने बादलों और ऊंचाई की चुनौती के बीच भारतीय सेना के जवान केबल्स पर पहुंचे। उन्होंने बेहद सूझबूझ से केबिन में फंसे डरे सहमे सैलानियों को रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे सुरक्षित नीचे उतारना शुरू किया और उन्हें ढाढ़स भी बंधाते रहे। और जिन लोगों को तत्काल इलाज की जरूरत थी उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। सेना के शौर्य और कौशल को पर्यटक तो सराह ही रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरा देश जवानों के साहस और कौशल को सलाम करता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 7 घंटे तक चले सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सेना, पुलिस प्रशासन और तमाम एजेंसियों की प्रशंसा की। केबल कार में खराबी की एक वजह ओवरलोडिंग को भी माना जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही तकनीकी खराबी की असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल इंजीनियरिंग टीम सिस्टम को बहाल करने में जुटी है। दरअसल गुलमर्ग रोपे दुनिया के सबसे ऊंचे और लंबे केबल कार सिस्टम में से एक है। इसमें कुल 108 कैबिन है और एक कैबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ हर साल गर्मियों के दिनों में भारी संख्या में पर्यटक छुट्टी बिताने के लिए पहुँचते हैं और गुलमर्ग गंडोला सेवा का लाभ उठाते हुए पर्यटक बर्फीली चोटियों के खूबसूरत दृश्यों को देखते हैं। लिहाजा केबल कार सेवा में तकनीकी खराबी चिंता का विषय है क्योंकि ये सीधे तौर पर पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: कामयाबी हासिल करने के लिए जुनून और निरंतर अभ्यास जरूरी है। हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई के इसी जुनून ने उन्हें दुनिया में मशहूर कर दिया। दरअसल कमल ने पानी के भीतर 86 बार पुशअप्स कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया।
10: पुशअप, वो भी पानी में, आसान काम नहीं है, लेकिन हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई ने अपनी लगन और अभ्यास से न सिर्फ इस मुश्किल काम को आसान बना दिया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कमल ने पानी के भीतर 86 पुशअप लगाकर तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड वियतनाम के हनोई में बनाया है। हिसार के आर्यनगर में रहने वाले कमल का ये तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले कमल कलोई ने साल 2020 में एक सांस में पानी के अंदर 21 योगासन कर अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने पानी के भीतर 81 एयर रिंग ब्लोइंग कर दूसरी बार अपना नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अब तीसरी बार पानी के अंदर 86 पुशअप लगाकर उन्होंने अपने गांव और दयानंद महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। कमल की ये सफलता बताती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब बात मौसम के मिजाज की करेंगे। आधा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी की चपेट में है। जम्मू से तेलंगाना तक लू के थपेड़े लग रहे हैं। सबसे बुरा हाल यूपी के बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के विदर्भ का है। यहां पर पारा है 47 डिग्री के पार। यूपी का बांदा इस समय सबसे गर्म स्थान बना हुआ है। ऐसे ही वक्त में देश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी तो कुछ जगह पर बारिश देखने के लिए मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो 29 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में आधे हिंदुस्तान को गर्मी से राहत मिल सकती है।

0: हिंदुस्तान एक, मौसम के मिजाज अनेक। ये देश में मौसम के मिजाज की तस्वीरें। नौतपा शुरू होने के बाद उत्तर और पश्चिम भारत के लोग प्रचंड गर्मी के प्रकोप से त्राहिमाम कर रहे हैं। इन हिस्सों में कहीं कहीं तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। वहीं देश के पहाड़ी हिस्सों पर तो कहीं कहीं जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ चांदी से चमचमा रहे हैं, पारा गिर चुका है। और ऐसे ही वक्त में देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून के पहले ही रिमझिम बारिश भी देखने को मिल रही है। गर्मी के बीच कुछ जगह ये बारिश लोगों को राहत का पैगाम दे रही है। और तो और कुछ हिस्से एक दिन गर्मी, एक दिन ठंडक, तो एक दिन बरसात के दौर से भी गुजर रहे हैं। अब ऐसे गिरमिटिया मौसम के चलते लोगों को अपने रहन सहन का, पहनावे का, खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है। यानी उत्तर भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र में जहां नौतपा के शोले बरस रहे हैं, तो उत्तराखंड और लद्दाख में जमकर बर्फबारी हो रही है। चमोली में हेमकुंड साहिब आने के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ों का दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। यही सीन द्रास का भी है, जहां सड़कों पर चलती गाड़ियों पर बर्फ की परतें जम जा रही हैं। यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर चंडीगढ़ में प्रचंड गर्मी के चलते शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। बस गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं, वो भी धूप से बचाव के लिए छाता, गमछा, स्कार्फ या टोपी लगाए हुए हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक समूचा उत्तर और पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी के बुंदेलखंड का बांदा जिला तो जैसे भट्टी में तब्दील हो गया है। बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का सड़कों पर निकलना चुनौती बन गई। प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए एक बाइक सवार ने तो हरे पत्तों की छतरी बना ली। कोटा में मंगलवार को पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां लोग तो ठीक ही हैं, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद जानवर गर्मी से इतने बेहाल हो गए कि विभाग की टीम उन पर ठंडे पानी का छिड़काव कर रही है। साथ ही जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। भालू आइसक्रीम खा रहे हैं, जबकि दूसरे शाकाहारी वन्य जीवों की डाइट में खीरा, ककड़ी जैसी चीजें शामिल की जा रही है।
1: गर्मी बहुत तेज है कोटा में, तो इनसे गर्मी से बचाने के लिए इनकी हाउसिंग और फीडिंग में कुछ चेंजेस करे हमने। हाउसिंग में जैसे इनको अभी नाइट शेल्टर जो होता है, जहाँ पे रात को आराम करते हैं एनिमल, वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, डक्टिंग चालू करी गई है, और ओपन एरिया जहाँ पे विजिटर्स जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जो फोकर्स लगाए हैं, स्प्रिंकलर चालू है सर। उसी के साथ डाइट में जो है हमने इनके पीने के पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल ऐड कर रहे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। शाकाहारी वन्य जीवों को जो वो खीरा, ककड़ी, इस तरह के मौसमी जो फल सब्जियां हैं वो दे रहे हैं ताकि पानी की कमी ना हो शरीर में, और मांसाहारी वन्य जीवों को फीड्स मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं सर।
0: राजस्थान के दूसरे शहरों में भी गर्मी का तांडव जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए राज्य के ज्यादातर जिलों में भीषण लू और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान और 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। कुछ जिलों में पारा 46-47 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंच सकता है। हालांकि IMD के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर भारत की गर्म हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ की ठंडी नमी आपस में टकराने वाली हैं, और यही टकराव बारिश बनकर बरस सकता है।
2: अनुमान हमारा ये है कि अगले 4-5 दिनों के बाद में जो हीटवेव कंडीशन है उसमें राहत मिल सकती है। 28 तारीख से एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी चल रही है वो 28 तारीख के बाद यानी 4 दिन के बाद से जो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फॉल इसमें उसके बाद के 3 दिनों में देखने को मिल सकता है।
0: मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि केरला में मॉनसून समय से पहले 26 मई को दस्तक दे देगा, लेकिन अब साफ है कि अगले 3-4 दिनों तक यहाँ मानसून के आसार नहीं है। ऐसे में उत्तर भारत में भी मानसून आने में भी काफी वक्त लगेगा, यानी गर्मी अभी और कहर बरपा सकती है। तब गर्मी से बचना और सावधानी रखना ही एकमात्र विकल्प है। चंडीगढ़ से असीम बस्ती और दिल्ली से मनीष अलाटा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ लंच टाइम में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
3: से। मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की बजाय अपने देश को ही एक्सप्लोर करने की अपील की, तो जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगह की तस्वीर हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक बड़े उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियो लगातार भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको डलहौजी के रास्ते में ही पड़ने वाले एक ऐसे पिकनिक स्पॉट में लेकर चलते हैं जिसका नाम है रॉक गार्डन। लेकिन इस जगह की खूबसूरती को स्थानीय लोगों ने नहीं बल्कि पर्यटकों ने शूट कर भेजा है, तो चलिए अब आपको भी दिखाते हैं।

जानते हैं कि रॉक गार्डन सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि डलहौजी में भी है? जी हाँ, यहाँ एक रॉक गार्डन डलहौजी से 13 किलोमीटर दूर डलहौजी चंबा रोड पर स्थित है।

0: हिडन स्पॉट है, लोग काफी कम आते हैं और यहाँ आपको शांति और ट्रैंक्विलिटी में मिलेगी और हम यहाँ खूब मजे कर रहे हैं।
1: हम लोग राजस्थानी है, हम लोग डलहौजी घूमने आए थे, हम जब हमारा आइटनरी बना रहे थे तो हमें बीच में तो हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें ऐसा स्पॉट दिखा जहाँ पर थोड़ी वॉक और थोड़ा वाटर बॉडी और ऐसा था, बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था। तो हमने और हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम हम यहाँ निकालें और मैं सजेस्ट करूँगा कि दो लोगों को यहाँ आते ये नहीं पता चलता कि ये पॉइंट है, तो मैं हाँ ये हिडन पॉइंट मतलब जिसको कई लोग मिस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी जगह है।
0: से परेशान है तो यही मौका है, इस टाइम डलहौजी आए और रॉक गार्डन का मजा लें। यहाँ आपको पहाड़ी मैगी और पहाड़ी पकौड़ों का भी आनंद मिलेगा, तो जरूर आए।
2: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भागीदार बनिए। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग बनाना। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। चलिए इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए।
3: गुड न्यूज़ चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
5: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
4: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
6: By the airport!
5: See dealer for details. Offer ends 6/1/26.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
8: Thank God I get to wake
7: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: The Tailgate Top 20.
10: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
9: The Tailgate Top 20.
11: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
10: Try to keep up.
12: खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: हरियाणा को मिली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, इन सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन डीएमयू, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक और गुड न्यूज, रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम। देश भर में भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहे देशवासी, एनर्जी ड्रिंक और लगातार पीते रहे पानी। एक जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल का दीदार कर सकेंगे पर्यटक।

0: अयोध्या में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: देश के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहें देशवासी, लगातार तरल पेय पीते रहने की अपील। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर की कामना, बनस झूला पर भी झूले लोग। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिंद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन डीएमयू, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में सफलतापूर्वक ट्रैकिंग पूरा कर सुरक्षित लौटा संतोपन ट्रैकिंग सीजन का पहला दल, दल में 4 महिलाएं समेत गुजरात के 13 सदस्य थे शामिल। मई को संतोपद ट्रैक के लिए रवाना हुआ था 13 सदस्यों का दल, 4 दिन की बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर पूरा कर सुरक्षित माणा गांव पहुंचा दल। बद्रीनाथ धाम में आज से दिखेगा आस्था का नया सैलाब।

आस्था का सैलाब, मई खत्म होने से पहले 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिल रही है वाहनों की लंबी कतारें, गेट सिस्टम के बावजूद कई जगह 7 से 8 किलोमीटर तक लग रहा है जाम। पुरुषोत्तम मास और भागवत कथा का चलते बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही है भक्तों की भीड़, जून के महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। भारी भीड़ के बीच SDRF पुलिस और मंदिर समिति यात्रियों की मदद में जुटी, बीमार श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता और खोया सामान वापस लौटाकर पेश की जा रही है मिसाल। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन पूजन। भगवान बांके बिहारी के करोड़ों भक्तों से जुड़ी है गुड न्यूज, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास की जमीनों की रजिस्ट्री। 3 और जमीनों के मालिकों ने मंदिर के लिए की जमीन की रजिस्ट्री, कॉरिडोर के लिए अब तक मंदिर के आसपास की कुल 17 जमीनों की हुई रजिस्ट्री। मथुरा के ADM वित्त पंकज वर्मा ने बताया अब तक 1900 वर्ग मीटर जमीन की हुई रजिस्ट्री, मंदिर कॉरिडोर के लिए अपनी जमीन देने के लिए खुद आगे आ रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के वाशिम में लोगों को गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से गिरा पारा। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई जगह गिरे पेड़ के हिस्से, लोगों को गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पूरे उत्साह श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है बकरीद। ईद उल अजहा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने अलग अलग ईदगाहों में पढ़ी विशेष नमाज। बकरीद की नमाज के लिए बांदीपुरा की मरकजी ईदगाह में जुटे सबसे ज्यादा श्रद्धालु, नमाज में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। नमाजियों ने लोगों में शांति समृद्धि और भलाई के लिए मांगी दुआ, नमाज को देखते हुए प्रशासन ने किए जरूरी इंतजाम। इस मौके पर विद्वान मौलानाओं ने इस्लाम में कुर्बानी, भाईचारे, एकता और करुणा के महत्व पर डाली रोशनी। धर्मशाला में कंपैशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन, 6 जुलाई को है दलाई लामा का जन्मदिन। दलाई लामा के जन्मदिन से पहले हर आयोजित होगा 3 दिवसीय तिब्बतीन सांस्कृतिक का उत्सव, लोगों को तिब्बती संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। देश विदेश से कई गणमान्य अतिथि, अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग होंगे शामिल, धर्मगुरु पर बनी फिल्म भी की जाएगी हिंदी में प्रदर्शित। तमिलनाडु के कुडलूर जिले में श्री कुथंडावर मंदिर उत्सव का भव्य आयोजन, महाभारत के पात्र अरावन को समर्पित है ये सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। उत्सव में सज सवर कर तैयार होती हैं स्थानीय महिलाएं, भगवान कुथंडावर यानी अरावन से करती हैं प्रतीकात्मक रूप से विवाह, भव्य जुलूस, पारंपरिक नृत्य, संगीत प्रतियोगिताएं भी होती हैं। फतेहपुर शेखावटी के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 10 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर की शुरुआत, गर्मी की छुट्टियों में सैकड़ों बच्चे आध्यात्मिक और संस्कार ले रहे हैं यहाँ शिक्षा। नगर आराध्य देव मंदिर में बच्चों को गीता और धार्मिक ग्रंथों का दिया जा रहा है ज्ञान, पीले वस्त्रों में बच्चे अनुशासन और मानवता के सीख रहे हैं संस्कार। फतेहपुर शेखावटी में बाल संस्कार शिविर बना आकर्षण का केंद्र, 5 साल के बच्चे भी गीता के प्रसंग सुनाकर सभी को कर रहे हैं प्रभावित। विकास चैतन्य महाराज के सानिध्य में गीता ज्ञान शिविर का शुभारंभ, शिविर में बच्चों को धर्म संस्कार और जीवन मूल्यों की दी जा रही है शिक्षा। श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज के 496 स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन, स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों को धार्मिक और गीता आधारित शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

0: हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका, जमे पाले की वजह से यात्रा मार्ग पर चलना हुआ मुश्किल। एसडीआरएफ जवान यात्रियों को सहारा देकर सुरक्षित रास्ता उन्होंने पार करवाया। हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते पर बर्फ जमने से श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कत। कड़ाके की ठंड और पाले के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा बनी चुनौतीपूर्ण। रास्तों पर तैनात एसडीआरएफ टीम लगातार संगतों की मदद से मदद में जुटी। मौसम बदलते हेमकुंड साहिब में फिर बर्फबारी देखने को मिली। बर्फ जमे पैदल मार्ग पर फिसलन बढ़ने से खतरा भी बढ़ा। महाराष्ट्र के अमरावती में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बीच आसमान से गिरी फुहारों ने दी लोगों को राहत। तेज हवाओं के साथ जमकर बरसे बादल। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन। 11 अर्चकों, 22 देव कन्याओं और 25 क्विंटल फूल मालाओं और 11,000 दीपों से हुई आरती। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश विदेश से आए हजारों सैलानियों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का होगा संपूर्ण विकास। मुख्यमंत्री योगी ने किया 342 जन कल्याण योजना का लोकार्पण और शिलान्यास। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। परियोजनाओं के माध्यम से शहर में आधुनिक शहरी सुविधाओं का किया जाएगा विस्तार। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ अभियान के तहत बिहार में सरकारी स्तर पर कारपूल और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का आदेश। पदाधिकारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में देश को बड़ी सफलता। रोबोट की मदद से डॉक्टर ने हजारों किलोमीटर दूर मौजूद मरीज की सफल सर्जरी की। चीन के वुहान में मौजूद एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी के सीनियर भारतीय सर्जन ने हैदराबाद में मरीज की सफल सर्जरी की। वुहान में टोंगची अस्पताल और हैदराबाद में AINU अस्पताल के बीच आपसी तालमेल से की गई सर्जरी। रिमोट सर्जरी के भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों और देशों के लिए राहत वाली न्यूज। रूसी वैज्ञानिकों ने वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा किया। दुर्लभ बुंडी बुग्यू स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का दावा। कांगो और युगांडा जैसे देशों के लिए बड़ी राहत की खबर। रूस ने पीड़ित देशों को मदद की पेशकश की। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर। 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म।
1: इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी कुर्सी पे दिमाग।
0: वरुण धवन स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का चुनरी चुनरी गाना रिलीज। 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी डेविड धवन की निर्देशित फिल्म। रितेश देशमुख के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी। 100 करोड़ के क्लब में हुई एंट्री। 24 दिन में 101 करोड़ रहा नेट कलेक्शन। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में की शानदार कमाई। फिल्म ने 67वें दिन में की वर्ल्ड वाइड कमाई और 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म माँ इंटी बंगारम का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में देखेगा उनका धमाकेदार एक्शन अवतार। 19 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन RCB। IPL के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को दी करारी शिकस्त। गुजरात टाइटंस को 92 रनों से बेंगलुरु ने दी मात। आरसीबी के 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेंज करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर ढेर। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने खेली नाबाद 53 रनों की कप्तानी पारी। विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने बनाए 43-43 रन। IPL के इतिहास में कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची बेंगलुरु की टीम। सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में हासिल किया 3rd स्थान। क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद अब क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस। एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से होगा मुकाबला। फाइनल में पहुंचने का मिलेगा दूसरा मौका। IPL में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच। न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीमें। दोनों ही टीमों के लिए आज करो या मरो के मैच। IPL की फाइनल की रेस से बाहर होगी आज आने वाली टीम। जीतने वाली टीम खेलेगी क्वालिफायर मैच। राजस्थान रॉयल्स के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद का को रहना होगा सावधान। इस सीजन में खेले 14 मैचों में से 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी हैं तो हैदराबाद के पास भी है क्लासन जैसा जबरदस्त बल्लेबाज। क्लासन ने मिडल ऑर्डर में किया है शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। आईपीएल में अब तक शानदार रहा दोनों ही टीमों का सफर। हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही, वहीं राजस्थान की टीम ने चौथे स्थान के साथ प्लेऑफ में जगह बनाई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल की दुनिया में, कहीं है प्यार तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: Biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: कामयाबी हासिल करने के लिए जुनून और निरंतर अभ्यास जरूरी है। हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई के इसी जुनून ने उन्हें दुनिया में मशहूर कर दिया। कमल ने पानी के अंदर 86 बार पुशअप्स करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
6: पुशअप वो भी पानी में, आसान काम नहीं है, लेकिन हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई ने अपनी लगन और अभ्यास से न सिर्फ इस मुश्किल काम को आसान बना दिया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कमल ने पानी के भीतर 86 पुशअप लगाकर तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड वियतनाम के हनोई में बनाया है। हिसार के आर्यनगर में रहने वाले कमल का ये तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले कमल कलोई ने साल 2020 में एक सांस में पानी के अंदर 21 योगासन कर अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने पानी के भीतर 81 एयर रिंग ब्लोइंग कर दूसरी बार अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अब तीसरी बार पानी के अंदर 86 पुशअप लगाकर उन्होंने अपने गाँव और दयानंद महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। कमल की ये सफलता बताती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little southern hospitality now.
7: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: हरियाणा को मिली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, जिन सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन DMU, रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए आई एक गुड न्यूज, रूस के वैज्ञानिकों का दावा, वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार, नए स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम। देशभर में भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहे देशवासी, एनर्जी ड्रिंक और लगातार पीते रहे पानी। इक्कीस दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर बाबा, आज से बद्रीनाथ धाम में शुरू हो रही है 5 दिन की सत्यनारायण कथा। एक जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रजाति के रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। IPL में आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच, चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीमें, जीतने वाली टीम खेलेगी सेकेंड क्वालिफायर मैच।
1: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं पारुल चौधरी, लेकर हाजिर है फिर एक बार सास बहू और बेटा का ये फ्रेश एपिसोड। बाउंसी फ्लफी हेयर कम्प्लीटली हमारे लुक को चेंज कर देते हैं और ये काम मैजिकली करते हैं ये हेयर रोलर्स। आज तो इन्हीं के आसपास हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। जी हाँ, आज तो है हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ। मेरी बेचैनियों को
1: जान जाए। सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए बाइक पर होकर सवार, एक साथ आएंगे अपराजिता और रक्षित, शुरू होगी लव स्टोरी। लेडी सिंघम बनेगी जगधात्री, सिखाएगी तपस्या को सबक। आएगा आरंभी का नया रक्षक, दिखेगी ध्रुव और विश्वास में टशनबाजी। एकजुट होंगे स्टार परिवार के सितारे, दिखेगा फैशन का टशन। बनेगी रूही, कहानी में नया ट्विस्ट आएगा।

0: की रूहानी की नई सौतन, शुरू होगा नया बवाल।
1: आज तो पर दोबारा
0: और माँ हैना के लॉन्च पर लगेगा सितारों का मेला, सितारे खेलेंगे अजब गजब खेल, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: कुछ हो रहा है अभी
3: ये, हाँ। ये ना वो है, ये जमीन में उगता है।
4: रूही, सोच रही हूँ क्यों ना आपके लिए भी भिजवा दूँ कुछ रोलर्स, लेकिन आप तो इनका इस्तेमाल तब कर पाएंगे ना जब आपके पास टाइम होगा। लेकिन आपको कहाँ है फुर्सत, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो इतने चैलेंजेस हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो क्या कुछ हो रहा है नाहर और रूही की इस कहानी में, आज चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।

0: अगले ही पल रूही ने दिखाया अपना टशन। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में नाहर ने छिपते छिपाते अपने ही घर में एंट्री कर ली है और देखिए कैसे वो सभी से नजरें छिपाकर रूही के कमरे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ कमरे में रूही दुल्हन सी सजी तो है लेकिन उसका सर दुख रहा है। असल में वो युवराज के वशीकरण में जो है, लेकिन नाहर मौका पाते ही रूही के कमरे में एंट्री कर ही लेता है। भाई नाहर को लगा था कि रूही उसे पहचान नहीं पाएगी, लेकिन रूही ने उसे पहचान कर गले लगा लिया। ऐसे में नाहर बेहद खुश है, लेकिन तभी रूही ने अपने आप को देखा कि वो दुल्हन की तरह सजी सवरी है। ऐसे में वो हैरान तो होती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ जाता है कि आज का दिन उसके और नाहर के लिए बेहद ही खास है। अब नाहर तो बेहद खुश है अपनी रूही को वापस पाकर, इसीलिए वो उस पर प्यार भी जता रहा है, लेकिन वो चाहता है रूही को सच बताना भी कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। इसी बीच नाहर की नज़र रूही के गले पर पड़ जाती है जहां पर एक निशान है। ये देखकर नाहर हैरान है। इससे पहले कि नाहर रूही को कुछ बता पाता, उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी जाती है, जिसके चलते वो जाकर कमरे में छिप जाता है। और तभी रूही का अचानक सर भी दुखता है, और जैसे ही कमरे में रूही अकेली होती है तो नाहर फिर से उसके सामने आता है, और जैसे ही उसके सामने आता है तो रूही उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। भाई डर के मारे तो नाहर कमरे से भाग जाते हैं और रूही उस बहरूपिये से परेशान हो रही है। अब रूही को क्या पता कि उसने गले में जो लॉकेट पहन रखा है उसमें वशीकरण किया हुआ है। खैर ये बात अब नाहर जान चुका है। देखना होगा क्या नाहर रूही के गले से वो लॉकेट वाला मंगलसूत्र उतार पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: वैसे रूहानी आप इतनी सुंदर हैं कि आप पर तो हर हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। क्या आपके भी फेवरेट हैं ये वेलक्रो रोलर्स? एक्चुअली मेरे तो हैं ये ऑल टाइम फेवरेट। मैं अपने बालों को धोती हूँ, ब्लो ड्राई करती हूँ, स्टाइलिंग मूव्स लगाती हूँ, ये रोलर्स लगाकर छोड़ देती हूँ और बस घर से निकलने से पहले इन्हें खोल देती हूँ और हो जाते हैं हॉट फ्लफी बाउंसी हेयर तैयार। वैसे क्या तैयार हैं आप अपनी कहानी की इस नई सिचुएशन के लिए? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनौनी के सेट पर।
0: आई रूहानी की सौतन।
2: हो रखो सारे अपनी कमरिया पे हाथ, ले मांगो फिर अपनी सजनिया का साथ।
0: गुरु की चोट पर रूहानी के प्यार का मरहम।
2: रखो सारे अपनी कमरिया पे हाथ, हुक बार हुक होके बन जाए बात।
0: तेजस्विनी आई ट्विस्ट लाई। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जैसे कि आप सबको पता ही है कि रूहानी नर्स बनकर भेष बदल कर इस घर में रह रही है ताकि वो गुरु के भी पास रहे और साथ ही साथ सच का खुलासा भी कर पाए और सबूत जुटा पाए। ऐसे में यहाँ पर हो गई है एंट्री रूहानी की सौतन की, जिसका नाम है तेजस्विनी। जी हाँ, यह है गौतम की बहन जो फॉरेन रिटर्न है और ऐसे में वो गुरु का साथ चाहती है, लेकिन गुरु तो उससे दूर दूर भाग रहा है। लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई बहाना कर गुरु के करीब आ जाती है और घर में भी उसने कर दिया है बवाल, जहाँ पर वो गुरु की कंप्लेन कर रही है।
3: अंकल, अंकल,
0: करीब आने का तेजस्विनी को तो बस बहाना चाहिए और ये बहाना खुद रूहानी ने दिया है, लेकिन रूहानी को जलन भी हो रही है।

0: तभी तो जब गुरु को चोट लगी तो देखिए कैसे परेशान हो गई रूहानी।
1: वो भाभी ने बताया कि सर्जी को चोट लगी थी, गाड़ी चला रहा था।
2: अरे वो मैं तो पूरा गाड़ी चलाना सीख गई थी, एकदम परफेक्ट हो गई थी। अचानक किसने ऐसे सीढ़ी घुमा ली और मतलब दो मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे खुद ही खुद को चोट पे जाना चाहता है।
0: हालांकि वो भेस बदल कर रह रही है, लेकिन उसकी हरकतें रूहानी जैसी ही हैं और लगता है कि ये गुरु समझ गया है। तभी तो देखिए कैसे वो गुरु की चोट पर प्यार से मरहम पट्टी कर रही है।

0: लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है, क्योंकि रूहानी को साइड कर आ जाती है यहाँ तेजस्विनी, जिससे रूहानी को आ रहा है गुस्सा।
1: आज तो

0: हाँ वो तो देखिए उसको तो बट नेचुरल है उसका उसको जेलस होना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शी लव्स गुरु और गुरु भी उसको प्यार करता है, तो उनकी एक प्रेम कहानी तो शुरू से चली रही है जिसपे सीरियल आधारित है। और बट नेचुरल है कि जब कोई तीसरा बीच में आएगा तो सामने वाले को जेलस तो होगी, लेकिन वो क्योंकि नर्स के भेष में है तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश करती है कि भाई किसी तरह से उसको दूर किया जाए। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं, हम और दादी सोचते हैं कि नहीं यार ये इसको करीब लाने का बड़ा अच्छा मौका है।
1: भाई रूहानी अब तेजस्विनी को देख लेगी, फिलहाल तो उसका फोकस है कि जैसे तैसे वो सबूत ढूंढे। ऐसे में वो कर रही है दादी की सेवा, और सेवा करते करते बातों ही बातों में वो कुछ निकलवाना चाहती है, लेकिन दादी भी चालाक है, उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। देखना होगा कि कैसे रूहानी सच का भी खुलासा करती है और तेजस्विनी को भी गुरु से दूर करती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: राध्या इट्स वेरी सिंपल, देखिए एक बार अपने बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई करके उनमें स्टाइलिंग मूव लगाकर आपने इन रोलर्स को लगा दिया, फिर अपना बाकी का काम निपटा लीजिए, जो भी आपको करना है वो आप खत्म कर लीजिए, और एंड में रेडी होकर इन रोलर्स को घर से निकलने से पहले खोल दीजिए। कभी कभी आप वो छोटी वाली स्टाइलिंग क्लिप्स भी लगा सकती हैं ताकि आपके बाल इवेंट तक रहें बाउंसी और फ्लफी। देखा मैं शेयर करती हूँ ना आपके साथ अमेजिंग टिप्स, वैसे इतनी ही अमेजिंग है आपकी ये कहानी। लेकर चलते हैं आप सबको राध्या और प्रथम के पास।
1: राध्या के लिए रजनी की नफरतें। बहुरानी को मिला घर निकाला। तड़प तड़प कर रोई रजनी, दादी बनी सहारा। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में रजनी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ऐसे में राध्या अपने सासू माँ को बखूबी समझती है, इसलिए देखिए कैसे वो अपने सासू माँ के कमरे में पहुंच गई है उन्हें मनाने और तो और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए। लेकिन रजनी ने खाना खाने से मना कर दिया, उल्टा वो प्रथम की तस्वीर दिखाकर राध्या को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि वो मजबूर है अपने बड़े बेटे के चलते। ऐसे में उन्होंने राध्या को आदेश दे दिया है कि वो उसके बेटे प्रथम की जिंदगी से दूर चली जाए, जिसे सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई है। राध्या को तो पूरा यकीन है कि रजनी जानबूझकर ये सब कर रही है, इसीलिए देखिए कैसे बार बार वो अपनी सासू माँ से सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि आखिर उन्होंने अपना ये फैसला क्यों लिया है। इतना ही नहीं वो तो अपनी सासू माँ को प्रथम की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन रजनी उनका फैसला टस से मस नहीं होता। चली जाओ। भाई आज तो राधिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इतना ही नहीं, आज तो रजनी से धक्का भी दिया। वो तो शुक्र है कि दादी ने राधिया को गिरने से बचा लिया, लेकिन दादी ने भी राधिया को अपना फैसला सुना दिया कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती। राधिया को ये सब सुनकर जोरदार झटका लगा है कि जो सासू माँ माँ की तरह उसे प्यार करती थी, आज वही सासू माँ उससे नफरत करने लगी है। भाई आज तो रजनी ने अपना मन मार कर अपना फैसला सुना दिया है और राधिया उसने भी अपनी सासू माँ की बात मान ली है और वो उल्टे कदम उस कमरे से निकल भी गई है। लेकिन रजनी उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, इसलिए तो वो अपने कमरे का सारा सामान उथल पुथल कर रही है और दादी रजनी को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रजनी अपने आप को ही कोस रही है।
3: तुमने बिल्कुल सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है।
4: तुमने हमारे बड़े बेटे को बचाने के लिए हमारी छोटी बहू की बलि चढ़ा दी, ये कैसे सही है माँ जी? हम उसके मामा के से घर पे लेकर आए थे, हम उसकी माँ नहीं बन पाए। हमने कूट को बचाने के लिए हमने अपना सास पत्नी कर दिया।
1: भाई अहम के चलते रजनी ने अपना फैसला सुना तो दिया है, लेकिन देखना होगा क्या राधिया अपने आप को आगे चलकर सही साबित कर पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: मन्नत, ये वेलक्रो रोलर्स तो होते हैं सुपर कन्वीनियंट, और जब आप इन्हें अपने बालों से निकालते हैं ना, आपके बाल टूटते भी नहीं है और खिंचते भी नहीं है। ये है एक सुपर इन्वेंशन। वैसे आपको एक बात बताऊं, आपको तो कहाँ ही फुर्सत है ये स्टाइलिंग वगैरह करने की, क्योंकि आपकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं कि एक खत्म होती है तो दूसरी रहती है तैयार, एक ट्विस्ट जाता है तो दूसरा रहता है तैयार, एक सिचुएशन खत्म होती है तो दूसरी हो जाती है फुल ऑन रेडी। लेकिन आपको नहीं मिलता है बिल्कुल भी ब्रेक। लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज।
1: खतरे में फंसी दुआ। विक्रांत बना रक्षक।
5: कुछ नहीं होता, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। I promise you on my life।
1: सीरियल में आग वाला ट्विस्ट। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज कहानी में महा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर दुआ तो कर रही है पैकिंग यहां से जाने की, लेकिन अचानक एसी में आग लग जाती है और इस कमरे में दुआ अकेली है जो बुरी तरह से घबरा गई है। तभी वहां से गुजर रहे होते हैं विक्रांत, जिन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वो भी इस कमरे में पहुंच जाते हैं दुआ के रक्षक बनकर। और देखिए कैसे विक्रांत अपनी बेटी दुआ को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, भले ही उन्हें चोट लग जाए लेकिन दुआ के गले से वो लगे हुए हैं ताकि वो सही सलामत इस आग से दुआ को बचा सके।

0: तेरे को
1: नहीं, मुझे डर लग रहा है।
0: यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू ऑन माई लाइफ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
2: असल में इससे पहले हुआ था घर में तमाशा। मेहंदी की रस्म में गड़बड़ हो गई थी, जिसके बाद दुआ ने घर छोड़कर जाने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, उसने तो विक्रांत से ये भी कह दिया था कि वो मन्नत से शादी ना करे, जिस पर नीतू भड़क गई थी।
3: मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ और आप मेरी माँ से शादी नहीं करोगे। और विक्रांत बोलता है कि मतलब ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही होगा। तो बोले मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती हूँ और मुझे कल की कल ही जाना है यहाँ से। और मैं सुन के बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था बैक ऑफ द माइंड कि वो जो एक मदरली इंस्टिंक्ट होती है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे कह रही थी कि ये जो चल रहा है फालतू के टास्क और टेस्ट जो इसके लिए जा रहे हैं विक्रांत के, और कंपैरिजन हो रहा है धैर्य और विक्रांत के बीच में, ये सही नहीं जाएगा कहीं पर। और मैं बहुत सारे सीन कर चुकी हूँ उस तरह के, आप लोगों ने शूट भी किए होंगे कि मैं मन्नत को कह रही हूँ कि ये सही नहीं है, रोनी जी को कह रही हूँ ये सही नहीं है, विक्रांत को कह रही हूँ ये सही नहीं है।
2: भाई लगता है कि किस्मत का भी यही इशारा है कि दुआ मन्नत यही रहे विक्रांत के पास। तो भाई अब देखना होगा इतने बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आज तो हम शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ स्टाइलिंग टिप्स इन रोलर्स को लेकर, और यहाँ आपके साथ एंटरटेनमेंट को शेयर करने हाजिर है हमारी सास बहू और पेटिया की एयरलाइन। यहाँ तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रहे हैं आप सबका इंतजार, क्योंकि खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। तो आप भी कर लीजिए हमारी इस एयरलाइन को बोर्ड, लेकर चलते हैं हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर।
2: टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज राघव अनिकेत सिसोदिया के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा है। इसी बीच वहां पर आ जाती है रीत भी, जो बेहद परेशान है और बार बार राघव को यही कह रही है कि वो कॉल कर रही थी लेकिन राघव फोन नहीं उठाता। ऐसे में अनिकेत रीत को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इतना ही नहीं, वो तो राघव को यहाँ से जाने के लिए भी कहता है ताकि रीत और राघव दोनों आपस में बातचीत कर सके। बस फिर क्या, ऐसे में अनिकेत अपनी बिजनेस मीटिंग पूरी खत्म कर देता है कि तभी वहाँ पर आ जाता है राघव, जो अनिकेत से माफी मांगने की कोशिश तो करता है लेकिन अनिकेत उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है।
5: जैसे भी होगा आज, आज मैं अनिता, am I clear again?
2: भाई अनिकेत इतने बिजी है कि राघव को बिजनेस मीटिंग के बारे में बिना बताए ही वहाँ से चले गए और राघव आज अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। खैर अनिकेत तो आया ही है राघव और रीत के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए। तभी तो देखिए कैसे वो राघव को लेकर जाता है अपने साथ एक पार्टी में, जहाँ पर आए हुए हैं उनके बिजनेस डीलर।

इसी बीच पार्टी में भी राघव को रीत का कॉल आता है, लेकिन अनिकेत उसे कॉल कट करने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, वो तो राघव को जबरदस्ती ड्रिंक करने को भी कहता है, और राघव ना चाहते हुए भी सिर्फ डील के चलते अनिकेत के साथ उस पार्टी में मौजूद है, और साथ ही साथ परेशान भी हो रहा है ये सोचकर कि आखिर रीत उसे कॉल क्यों कर रही है।

0: स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में आज सचिन और साइली पहुंच गए हैं उस चौल में जहां पर रोशनी के वो चाचा रहते हैं जो अचानक दुबई से आए थे रोशनी के घर में। असल में सचिन रोशनी के खिलाफ गवाही देने के लिए उन चाचा को ढूंढते हुए उनके चौल में पहुंच गया है और देखिए कैसे उनके बीच भागम भाग चल रही है। लेकिन आखिरकार सचिन ने उन्हें धर दबोचा और उन्हें जैसे तैसे सचिन और साइली दोनों ने मिलकर मना ही लिया कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए।
1: ठीक है, मैं बकरे की कसम खाती कर सच बताने के लिए तैयार।
2: ये उइनावाद बकरा जीजा एक नंबरी।
1: सचिन ने कहा है गलती सुधारने का मौका बार बार मिला, आखिर इस झूठ में हिस्सेदार तो मैं भी था।
3: बहुत बड़ा वाला,
1: तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार। चलो मैं दूंगा गवाही।
3: देगा पक्का ना, बाद में पलटेगा तो नहीं?
1: अरे मुझे मुझे बता देना कोर्ट का आना है, मैं उस तारीख को आ जाऊंगा। चल
0: सब लेकर आ रहा है नया सीरियल हस्तिनापुर के वीर, जहां पर कौरवों और पांडवों के बचपन से लेकर अंत तक की कहानी दिखाई जाएगी। ऐसे में शुरुआत होगी पांडवों और कौरवों के बचपन की कहानी से और आज हुआ है इसी सीरियल का लॉन्च भी। जरा देखिए कैसे पांडव और कौरव दो अलग अलग टीम बनकर बैठे हुए हैं और इनके साथ की जा रही है प्रतियोगिता कौन है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। ऐसे में सभी ने हर प्रश्न के उत्तर दिए और फिर बारी आई खेल कूद के प्रतियोगिता की, जिसमें कौरवों और पांडवों दोनों के बीच जंग छिड़ गई।
4: मैं 10 की गिनती करूंगी और आपको ये देखना है कि युधिष्ठिर या दुर्योधन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पुशअप्स मारते हैं। या पुशअप्स करें हम? दुर्योधन पुशअप्स करें? ऑल राइट, तो पहले तो आप पोजिशन ले लीजिए।
5: युधिष्ठिर भैया जीतना है।
4: युधिष्ठिर भैया
5: भैया चलिए
4: डन डन डन डन, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुरू होता है अब।
0: भाई बच्चों ने तो जमकर इस प्रतियोगिता का आनंद लिया, लेकिन फिर बारी आई हस्तिनापुर के योद्धाओं और पूरे परिवार के मुलाकात की, जहां पर एक एक कर सभी मंच पर आ गए।
6: हमने बहुत बार भीष्म को देखा ही हुआ है, तो उसमें लेयर्स की जहां तक बात आती है वो भी सबको पता है, वो सेक्रीफाइसेस की बात भी पता है। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसे एक ऐसा रोल मिले, फिर से एक ऐसा रोल मिले, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, तो वो मजा आता है करने में, एक अलग एक एक्सपीरियंस फिर से एक मिलता है आपको।
7: कुंती को समझना मेरे लिए आसान नहीं था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ही उनकी खूबसूरती है। कुंती माँ तो है, पर वो ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चों को हर बार दर्द से बचाती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उन्हें सच में मजबूत बनाना है तो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा। और उनका जो प्यार है बच्चों के प्रति वो गले लगाने से नहीं दिखता, बल्कि वो अनुशासन में है, फैसलों में है और कभी कभी उस चुप्पी में है जो बहुत कुछ कहती है। और मेरे लिए वो चुप्पी जो है वो मेरे दिल को छूती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनकी कमज़ोरी नहीं है पर एक बहुत गहरी समझ है। तो ये जो रिस्ट्रेन इमोशन है उससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ।
8: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: रोलर्स तो बनाते हैं हमारे बालों को बाउंसी एंड फ्लफी। वैसे बाउंस करती हुई आई है हमारे पास ये अगली खबर, जैसे पकड़ लिया है हमने आपके लिए। तो चलिए फटाफट परोस देते हैं इसको राइट हियर राइट नाउ, वो भी गर्मा गर्म।
0: नया शो नया रंग, ढेर सारी मस्ती संग।
10: कुछ हो रहा है अभी, एक मिनट में कुछ फील कर सकती हूँ अब।
11: ये ना वो है ये जमीन में उगता है।
0: बदलेंगे रिश्तों के ढंग, Z5 लेकर आ रहा है नया रियलिटी शो जिसका नाम है माँ है ना, जिसमें दिखेगी माँ और बच्चे की जोड़ी। भाई माँ बनाती है अपने हिसाब से खाना, तो वही आजकल के Gen Z बच्चे खाते हैं अलग स्टाइल का खाना, और यही जगह अब शो में देखने को मिलेगी जहाँ माँ और बच्चा साथ खाना बनाएंगे। तो इनमें कितनी लड़ाई होती है, कितनी सहमति होती है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि मस्ती अनलिमिटेड है। वैसे इस शो को होस्ट कर रही है खुद शिल्पा शेट्टी। इसके अलावा इसमें नजर आएंगे कॉमेडी का तड़का लगाते हुए गौरव अली और चंदन प्रभाकर। बात करें कंटेस्टेंट्स की, तो यहाँ पर कंटेस्टेंट बनकर जोड़ियों में आए हैं सुनीता आहूजा अपनी बेटी टीना आहूजा संग, मनीषा रानी अपने पापा के साथ, उर्वशी ढोलकिया यहाँ नजर आएंगी अपने बेटे क्षितिज के साथ। बिग बॉस फेम तानिया मित्तल अपनी मम्मी के साथ कुकिंग का टैलेंट इस शो में दिखाने वाली है। तो वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शाहिदा अंसारी नजर आएंगी अपने बेटे संग, होगी भाग्यश्री शर्मा और उनकी मम्मी रिंजू शर्मा की जोड़ी, साथ ही गुल्लू यानी कि कुशाल तनवर और मुनेश तनवर। आपको बता दें कि गुल्लू स्प्लिट्सविला 16 के विनर रह चुके हैं, यानी कि ये सभी जोड़ियां इस शो में नजर आएंगी खाने के साथ साथ मस्ती का तड़का लगाते हुए।
12: इस घर में रहती हैं दो अलग अलग प्रजातियां, जो माँ को लगे ठीक उस पर बच्चे बोले
9: मम प्लीज।
12: रील्स देखकर शेफ बनना आसान, चुटकी बजी माँ हैरान, माँ सोचे सिर्फ बेटा, बेटा सोचे कैलोरी डेटा। जब माँ लाए पोहा और चाय, तब माचा रानी तेवर दिखाए। जंक फूड खाकर जब बेटा हो बीमार, दी ओनली इलाज इज माँ का प्यार। क्यों बेटा लगता है माँ का काम आसान, तो आओ किचन में देने असली इम्तिहान। वेलकम टू दी ओजी रसोई, यहाँ शॉर्टकट्स नहीं असली टेस्ट होगा। जेन जी के ट्रेंड

0: कैसे करेंगे कुकिंग, ये जंजेस बेचारे
1: धनिया पुदीना में फक्त ना जाने बेचारे।
2: स्वागत है आप सबका एक ऐसे शो में जहाँ मुश्किलें होंगी अनेक।
3: आई एम गुल्लू फ्रॉम गोरेगांव गोगो।
4: सारे जंगली गोरे। आई डोंट नो हाउ टू कुक।
2: माय सॉल्यूशन सिर्फ एक।
5: दिस इज नॉट ट्रू।

0: ये शाम हुआ माहेना का लॉन्च, जिसमें नजर आए ये सभी कंटेस्टेंट्स पर स्टेज पर हुआ गेम। माँ ने जेंजी स्टाइल में आंसर दिए तो वहीं जेंजीज ने सब्जियां गैस की। सबका इंट्रोडक्शन हुआ और हुआ ढेर सारा फन। ये सभी नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं शो की होस्ट शिल्पा शेट्टी से, जिनका अंदाज है एकदम निराला।
1: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट, एंड आई एम सो हैप्पी ऑल माय सेलिब्रिटीज आर नॉट कुकिंग टुडे, क्योंकि शो देखने के बाद आपको समझ आएगा। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी भगवान को कि मैं आज जिंदा हूं, क्योंकि हमने इनका खाना खाया है। नो बट आई हैव टू जस्ट से आई हैड द बेस्ट टाइम व्हेन आई सेड यस। आई ऑलवेज ट्राई टू सर्व सम इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट to our audiences, and entertainment is not easy, especially when it comes free. Someone in front of a television screen watching something on OTT, to have them still seated and find what you're doing interesting is a really difficult task. But let me tell you, my job was made very, very easy by the channel and Preeti and Neeti, who did an absolute crazy job. Woohoo! These episodes drop, you will understand, but I think it would be very unfair to choose any one jodi, because I fell in love with each and every one of them. I mean, I know Sunita and Tina for much longer, but I loved Gullu and his mom. Unki mummy kya dance karti hai? Yeah, and Shahida ji, amazing. She's an amazing star. Bhagya, I just love her energy and her mom. Urvashi, we've seen her on television. And my God, Kshitij, better cook than his mom. Tina, Sunita, I've seen...
0: भाई आज स्टेज पर पहुंच गए हैं गौरव होस्ट बनकर, जहां ये सभी जोड़ियों का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। तो आइए एक एक कर मिलते हैं इन जोड़ियों से।
2: उर्वशी जी और क्षितिज को स्टेज पे तालियां, और भाग्यश्री और उनकी मम्मी नीजू आंटी को आ जाइए प्लीज स्टेज पे। वेलकम वेलकम मैम, कैसे हो? वेलकम मैम। दो जोड़ियां टोटल, छह सात जोड़ियां हैं, एक एक करके सबको बुलाएंगे। अब वही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर सब अच्छा ही देंगे। तो कैसा लगा आपको ये शो करके?
3: बताओ, तुमने हमारे हाथ का बना हुआ खाना चखा है, तुम्हें कैसा लगा ये शो करके?
2: मेरे को तो वैसा लगा, मेरा तीन दिन पेट खराब था।
3: तो ये कंफर्म हो गई है बात।
2: फर्स्ट टाइम आंटी आप मुंबई आए थे शो के लिए, माहेना के लिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा,
4: मजा लगा।
2: मजा आ रहा है उनको देख के? बताओ ना,
5: उनको मेरे को भी देख। एक्चुअली हिंदी नहीं आता, एक ही वर्ड आता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया।
2: मैं बुलाऊंगा जो जोड़ी थी हमारे शो पे, शाहिदा जी और अफगान, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, आ जाओ तेजी में। और दूसरा तान्या और उनकी मम्मी, पर आंटी तो आज आई नहीं, तो तान्या आप ही आ जाओ फिर आज। तान्या और उनकी पर्सनैलिटी साथ में आएंगे, दोनों साथ में आओ।

0: मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, इसीलिए मुझे शो छोड़ना पड़ा ना।
1: अच्छा,
0: बीच में
1: इसको छोड़ना नहीं कहते मैम, इसको छोड़ना नहीं कहते, आप हमारे साथ हो हमेशा
0: दिल में।
1: हाँ मैम, ईशा रानी एंड हर फादर, अंकल जी आ जाइए प्लीज। पूरा शो
2: बहुत अच्छा रहा।
1: हाँ,
2: और मैं पहला मर्तबा शो किया हूँ।
1: हाँ, अच्छा पहला मर्तबा आपने ये शो, पहला मर्तबा शो करा आपने जी। कैसा लगा आपको, मनीषा की कुकिंग कैसी लगी?
2: बहुत खराब।
3: ऐसे बेइज्जती नहीं करते पापा, थोड़ा अच्छे से करते, ठीक ठाक था, एकदम खराब ऐसे मुंह पे नहीं बोलते, बुरा लगता है। ऐसा शो है जहाँ पे आपको पैसे भी मिल रहे हैं और माँ बाप भी मिल रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जब मैं पहली बार पापा को फोन की थी कि पापा ऐसा शो है आपको आना है, पापा बोले अरे यार स्टाफ नहीं है, बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर मैं बोली पैसा मिल रहा है, पापा बोले कितना, मैं बोली इतना मिल रहा है, पापा बोले मुझे कितना मिलेगा, मैं बोली पापा दूसरे दिन मुंबई पहुंच गए, पापा बोले अगर ऐसा काम है तो बाबू मेरे को मुंबई भी करवा दो, मैं अपना बिहार का स्काई की कोरियर छोड़ देता हूँ। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शो। नीति एंड प्रीति जी आपने बहुत अच्छा शो बनाया है, एंड आई लव दिस शो, एंड आई नो कि जो भी ये शो देखेंगे वो बहुत इंजॉय करेंगे, और जो मेरे बाबूजी के साथ मेरा बॉन्डिंग है, यू गोना लव इट गाइस।
4: बातें तो बहुत हो गई, अब खेला जाए अनोखा खेल। वह यहाँ पर होस्ट बनकर खेल खिलाने पहुँच गए हैं अली और चंदन। तो पहली बारी जेंजीज की, यानी कि बेटे और बेटियों की, जो यहाँ पर आग पर पट्टी बांधकर गैस कर रही हैं फ्रूट्स और सब्जी के नाम।
5: अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आग बंद करके आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? आग बंद करके क्या क्या कर सकते हो मनीषा?
6: मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
3: कर सकते हैं, सब कर सकते हैं।
7: सब तो नहीं कर सकते,
3: सब अरे हो सकता है, दिल में बस चाहत होना चाहिए, सब हो सकता है।
7: तेज़ यार।
3: आप बोलिए, अभी दो चमाट मारने, फटफट मार देंगे, बताइए किसको मारना है।
5: कुकिंग का शो कर चुके हैं एंड पूरी आवाम को पता चल गया है कि क्या खाना बनाते हैं आप लोग, घटिया। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये छोटा सा एक राउंड है जहां आप लोगों को, आप ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको ये वेजिटेबल के सामने होंगे, आपको फील करना और बताना है कि ये कौन सा वेजिटेबल है। ओके, अभी हाथ नहीं लगाना प्लीज।
3: ओके,
5: सबसे पहले तानिया, आपको कुछ दिख रहा है? पक्का ना, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके प्लीज साइलेंट। ओके तानिया,
7: अरे पकड़ो,
5: फील करो, क्या है ये?
7: अरे क्या है
8: ये, कौन है? भुट्टा, भुट्टा, भुट्टा, दिस इज कॉर्न। हाँ,
5: क्या बात है, वाह,
8: तालियां, ये तालियां,
5: करेक्ट।
9: बंदे बंदे,
5: ओके
8: तानिया, आप अपना आई मास्क उतार सकती हैं। नहीं तुम नहीं, तानिया सिर्फ।
7: आ गया ब्रो, बिल्कुल तुम्हारा फेवरेट है ये।
8: कुछ फुटबॉल जैसा, एक सेकेंड
7: इसको तुम सूंग भी सकती हो।
8: ऐसे मतलब वो कर सकती हो क्या?
7: स्मेल भी किया जा सकता है।
8: ये ऐसा क्या चीज, सब मुझे सबसे हार्ड चीज क्यों देते हैं?
7: नहीं नहीं, अंदर
8: शो में भी ऐसा खाना बनाया मैंने, और ये क्या चीज, ऐसा चीज मैंने कभी सूंघा भी नहीं, ये कोई स्मेल भी नहीं आ रहा है।
7: सूंघो, थोड़ा कोशिश करो, नाक पे जोर डालो, नाक पे जोर डालो।
8: कुछ हो ही नहीं रहा है। ये वो है क्या, क्या बोलते हैं, बीटरूट, ऐसा लगा कि बीटरूट, हाइब्रिड बीटरूट है क्या?
5: हाइब्रिड बीटरूट,
7: बीटरूट को तुम सूंघ सकती हो, ये बताओ पहले। अरे नहीं सुना उसको।
8: ये कुछ मेलन वगैरह है क्या, मतलब?
5: You are disqualified. Thanks to उर्वशी. अब बारी है मनीषा
7: रानी की।
5: मनीषा,
3: एक सेकेंड, दिस इज वेरी इजी मैन, दिस इज करेला, माइक में बोलो ना, दिस इज करेला। हार्ड है, समझ हार्ड वाला देते।
5: अब बारी है टीना।
7: टीना थोड़ा ऊपर। हाँ

0: सो इजी यार, दिस इज अ गार्लिक
1: गार्लिक जोरदार तालियां टीना के लिए। वाओ टीना
0: को खाना बनाना आ गया है।
2: ये इधर इधर इधर, अरे इधर
1: बस बेटे ये खा ले। तीन
2: ओवर एक्टिंग मत कर,
1: तीन दिन के बाद तेरा काम हो जाएगा, खा ले ये।
2: ये
1: हाँ
2: ये भी है
3: काला भाई, काला काला सुन रहे हो, ये पान पट्टी पे मिलता है? नहीं ये ना वो है, ये ना वो है, ये ना वो है, ये जमीन में उगता है।
2: फटाफट फटाफट सब कट जाएगा,
3: ये बता।
0: वाओ
2: वहाँ भी तो गंद था, इधर भी गंद है।
1: ए, इसके कपड़े उतारेंगे ना क्षितिज, तो ये बोल दे।
2: अरे प्लेट फिल नहीं करना है, उसके ऊपर जो रखा है वो फिल करना है।
4: बहुत आसान है।
1: क्या पत्ता गोभी?
4: ये ब्रोकली है।
1: ओ, ओ,
2: ये ना प्लेट है,
1: आप प्लेट के ऊपर पकड़ो ना। ए, देखो कितने नोटी है।
2: ये,
1: है?
2: तो ये खीरा, ये खीरा, ये खीरा।
1: जोरदार तालियां गुल्लू के लिए मुंह पर।
2: मुझे खीरा ही क्यों दिया?
1: ये ककड़ी है, देखो ध्यान से।
2: चलिए लगभग लगभग लगभग सभी ने सही सही जवाब दिया है, तो थैंक यू सो मच जेंजीज।
5: तो भाई वाकई ये जेंजीज तो है कमाल, लगता है खाना बना बना कर इन्हें ये सब पता चल चुका है। और अब बारी मम्मीज की। भाई मम्मीज को गैस करना है कि आजकल के बच्चों की लैंग्वेज कैसी है, उन शब्दों का मीनिंग क्या है। भाई इस खेल में भी बड़ा मजा आ रहा है।
2: अच्छा बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा खेल कूद करते हैं, वो भी मम्मीज के साथ। अच्छा कूदेंगे नहीं, बस खेल तो लेते हैं।
1: चलो
2: आओ मम्मीज,

0: देखिए क्या है कि हमेशा ये तो कुदरत है कि बच्चा छोटा होता है, बच्चा रोता है, माँ समझ जाती उसे क्या चाहिए,
1: माँ ही काबिल
0: लगी है, उसे भूख लगी है या उसके पेट में दर्द है या नैपी चेंज करने का वक्त आ गया है, जो भी है माँ समझ जाती है। अब जमाना बदल गया है, ये जो बच्चे हैं लौंडे जो है, बच्चियां जो है ये जिन्जीज हो गए, जिन्जीज, तो इनकी कुछ जुबान हो गई, मतलब लैंग्वेज है। तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या आप वो लैंग्वेज समझते हैं।
1: हाँ, तो ये बताना है आपने कि आप जो है जेंजिस की लैंग्वेज आप समझते हैं कि नहीं समझते, ठीक है? सो व्हाट डज स्ले मीन? अच्छा हिंदी में बोलिए, ठीक है जी।
0: स्ले का मतलब क्या?
1: स्ले का मतलब क्या होता है
0: हिंदी में?
1: ये भी हिंदी में बताऊं?
0: थोड़ा थोड़ा ऊपर लीजिए ना, ऊपर
2: बोलिए बोलिए।
0: हाँ, स्ले का मतलब क्या है?
2: क्या समझ में आएगा बच्चे तो, अरे उसको देखकर ही लगता है पता कि
1: क्या
0: क्या, क्या? जवाब तो देना ही पड़ेगा, सवाल तो पूछा ही जाएगा।
1: दे ले लो, आपने नहीं बताना है, पकड़ लो माइक। मैंने उधर बोला ना मैं कुकिंग करूंगा।
3: चिल्लाओ मत।
1: ओए
3: हेलुलु का मतलब क्या है? मैंने
0: ये भी सवाल है, हेल्प कर रही है।
3: धीरे से पूछो तो समझ जाएंगे।
1: तो आप माइक ले लो, मैं उधर बैठ जाता हूँ।
0: टेलुलू का मतलब
4: नहीं समझ में नहीं आता।
1: हाँ जी, टेलुलू का मतलब
0: इससे और भी स्लो जा सकता।
1: डे
0: का मतलब
4: क्या है?
1: नहीं, माइक ऊपर रखिए, माइक माइक सीधे माइक माइक मेरे को नहीं ना बताना।
4: अपनी दुनिया में,
0: अपनी दुनिया में क्या बोलती जनता?
4: Exactly right answer, guys.
1: हाँ जी उर्वशी जी,
0: मेरे गुल्लू के लिए जरूर।
1: ये मेरे कान में बोल रही है, आसान सा बोलना मेरे कान में।
0: और आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, के पूछ
1: जी अपना उर्वशी जी, लोकी का मीन क्या आता है? What does लोकी मीन?
3: Subtle.
1: नहीं नहीं, लोकी बनाने वाली नहीं। लोकी
3: पता है। हाँ? लोकी मतलब अभी हिंदी में कैसे समझाऊं इसको मैं?
1: अच्छा।
3: Even I don't know. सटल, लोकी, सटल, अब सटल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई?
4: सटल मतलब ज़्यादा शोषण।
3: ज़्यादा शोषण नहीं, एकदम। हाँ।
0: What is the meaning of goat?
1: बोलो, परसों चार।
0: G-O-A-T.
1: इन चार दिन के बाद तो
3: बकरी है। बकरी?
1: नहीं, goat, goat का मतलब, goat का मतलब।
3: My husband.
0: टैलेंट, अरे वो भी ठीक है,
3: टैलेंट भी तो होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टैलेंट,
0: टैलेंट भी होता है।
1: नो कैप,
0: दो कैप,
3: टोपी।
0: हाँ,
1: टोपी,
3: कैप तो टोपी है ना।
0: कैप तो टोपी है।
3: नो
0: कैप मतलब नो टोपी।
1: मेरी टोपी की मतलब तरफ मत देखो, अपनी टोपी के बारे में बताओ।
3: तो ये हिंदी में क्या हुआ? ये तो इंग्लिश ही लग रहा है, नो कैप।
1: हाँ तो बताओ ना इसका मतलब हिंदी।
0: मतलब क्या है शाहिदा जी?
3: अच्छा,
0: जेन जी मतलब आज के जो लौंडे है, अफगान।
3: हाँ, तो
0: शाहिदा जी को कुछ हिंट दो नो कैप का मतलब।
3: वो क्या देगा? मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं उसके भरोसे आई थी कि शो तो जीत ही जाएंगे, उसने नाम तो खराब कर दिया। इसका मतलब यही होगा, नो कैप, मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं है, तो शायद दिमाग नहीं है तेरे पास।
5: तो देखा आपने, स्टेज पर ही इतनी मस्ती हो रही है तो शो में क्या धमाल होने वाला है। तो हो जाइए तैयार Z5 पर माहेरा देखने के लिए, जिसमें कुकिंग के साथ साथ कॉमेडी और मस्ती सभी का तड़का लगने वाला है और ये डिश एंटरटेनमेंट से भरी होने वाली है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: आज तो रोलर्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें और शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ कुछ स्टाइलिंग टिप्स। और यहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटिया शेयर कर रही है आपके साथ एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज, जो जुड़ी है स्टार परिवार से, जिन्होंने किया है एक ग्रैंड फैशन इवेंट, यू नो मेट गाला स्टाइल। यहाँ तो है फैशन का रंग रिश्तों के संग। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ और दिखाते हैं इसकी एक खूबसूरत झलक।

0: पांच चूड़ियां अलग अलग रंगों में।
1: चक तेरे चूड़ियां ते चुम के कट लैनी टोर बल्लिए, सारी रात नची मेरे सामने, जट करती ना बोर बल्लिए।
0: जो दिखा रही है फैशन के रंग।

ये नजारे हैं स्टार प्लस की नई रियलिटी पेशकश फैशन के रंग रिश्तों के संग में, जहाँ पर सीरियल के सितारे फैशन के रंग बिरंगे नजर आए। भाई किसी ने व्हाइट पहना है, किसी ने रेड पहना है, किसी ने ब्लू पहना है, तो किसी ने ब्लैक पहना है। ये दिखा रहे हैं फैशन के अलग अलग, तो आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं फैशन के ये सतरंगी रंग। रंग नंबर वन, पीच रंग। जरा देखिए रूपाली गांगुली को, हमेशा सीरियल में साड़ियों में दिखती हैं, लेकिन आज पीच ड्रेस में परी बनकर आई हैं और इसलिए वो काफी खुश भी हैं। वैसे अनुपमा के साथ उनकी बेटी राही भी है, जो बिल्कुल अपनी फ्रीडा कहलो लुक में है। जी हाँ, राही का ये अंदाज उनके शो में नहीं दिखेगा, क्योंकि आज वो एकदम फैशन के रंग में है। जरा देख लीजिए उनका ये फैशन।

भाई यहाँ पर रूपाली का खास अंदाज देखने को मिला। और देखिए रूपाली के साथ कौन आए हैं ये जनाब। रन नंबर टू है अरमान और अभीरा का सफेद रंग। जी हाँ, शांति का संदेश देते हुए अभीरा और अरमान यानी रोहित और समृद्धि दे रहे हैं शांति का प्रतीक। भाई पर्दे पर तो रिश्ते निभाते ही हैं, लेकिन आज फैशन का रिश्ता बना रहे हैं इस खूबसूरत क्रिएशन में।

अगला रंग लेकर आए हैं ओ हमनबा तुम देना साथ मेरा के रक्षित और अपराजिता यानी श्रुति और शब्बीर भाई। अब तक इनके पुराने शोज में इनका रंग देखा, लेकिन इस नए शोज से इन्हें मिल रहे हैं नए दर्शक और देखिए इनका ये नीला नीला मैचिंग मैचिंग अंदाज काफी आई कैची है।

अगला रंग है काला रंग, और ये काला रंग लेकर आए हैं अंगद और वृंदा, यानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दिखने वाले रोहित सुशांती और तनिषा मेहता। भैया आज ये मैचिंग ब्लैक में आए हैं और फैशन का अलग ही रंग पेश कर रहे हैं।

अगली बारी है लाल रंग की और लाल रंग में नजर आए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम। जहाँ शालिनी और शिव का ये खास अंदाज देखिए, जहाँ शिव बिल्कुल बाजीराव लग रहे हैं, वहाँ शालिनी का महाराष्ट्रीय लुक काफी दिलचस्प है।

फैशन के रंग रिश्तों के संग में अगला रंग लेकर आए हैं सचिन और साहिली। उड़ने की आशा का ये कपल आज पिंक पिंक रंग में है और इनका पिंक रंग देखकर सब शर्मा गए। वैसे मैचिंग भी खास है और स्टाइलिंग भी।

0: पर्दे के पीछे ये सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। भाई आज तक इन दोनों के मर्जर एपिसोड हुए नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे ये सब लोग एक साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो जल्दी आएगी रियलिटी पेशकश, जिसकी खास झलक लेकर आया है सास बहू और बेटियां।
1: अपराजिता, आप भी इन रोलर्स को ट्राई कीजिए ना। वैसे आप तो तब ट्राई करेंगे जब आपको मिलेगी फुर्सत, लेकिन यहाँ तो प्राजिता को बिल्कुल भी नहीं है फुर्सत, क्योंकि एक के बाद एक आ रहे हैं कहानी में ट्विस्ट। लेकिन देखिए, ये जो नया प्रोमो दिखा है ना मैंने शो का, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी में अब होने वाला है काफी कुछ एक्साइटिंग। क्या एक्चुअली रक्षित और अपराजिता आ जाएंगे फॉरएवर एक दूसरे के पास? क्या अपराजिता रक्षित के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर कहानी में आएगा फिर से कोई नया ड्रामा? पर जो भी हो, हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है। लेकर चलते हैं हम सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।

0: अपराजित और रक्षित हुए बाइक पर सवार।
1: मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए।
0: शुरू हुई इनकी मस्ती भरी राइड।
1: चेहरा जब नजर आए, जिक्र तुम्हारा जब जब।
0: फिर जुड़ा दोनों का किस्मत कनेक्शन।

0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनफा तुम देना साथ मेरा में बार बार किस्मत इशारे दे रही है इनके मिलने का, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में अपराजिता मंदिर गई थी जहां पर कुछ मुश्किलें आई, जिसके बाद अब रक्षित और अपराजिता इस जंगल में फंस चुके हैं और अब इन्हें रास्ता ढूंढना है कॉम्पिटिशन तक पहुँचने का। ऐसे में अब अपराजिता काफी परेशान है कि कैसे वो कॉम्पिटिशन तक पहुँचेगी क्योंकि समय निकलता जा रहा है। वैसे इस मुश्किल घड़ी में रक्षित ने ऑर्डर किया है खुद के लिए खाना, जिस बात पर अपराजिता देखिए कैसे चिढ़ रही है।
1: सर आलू रोल आपने ऑर्डर किया?
2: सिचुएशन है, हमें पता नहीं कॉम्पिटिशन में पहुँचेंगे कैसे, कोई कैब नहीं मिल रही है। और आपको खाना आलू रोल खाना है, केले खाना है, मतलब ऐसे मौके पे किसी को भूख कैसे लग सकती है? आप थोड़े ऑफ है क्या?
3: थोड़ा नहीं, पूरा ऑफ है।
0: लेकिन यहाँ पर रक्षित ने अपना दिमाग चलाया, देखिए कैसे डिलीवरी बॉय को उसके हक के पैसे देकर बाइक ले ली ताकि वो इस बाइक पर बैठकर कंपटीशन तक पहुंच पाए।
1: सर यही कोई 2000 रुपये?
3: बात कर रही हो तुम, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या जिसे तुम भगा कर ले गई थी, या फिर तुम मेरे सामने आकर पड़ती हो?
4: बाजू में आकर बैठ जाना, बॉयफ्रेंड पकड़ना।
2: मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं।

और इसी बीच इन्हें मिलती है ये बच्ची जिसके पास है ये गुलाब के फूल। और ऐसे में रक्षित अपराजिता को फूल भी दे देता है। भाई रक्षित को तो प्यार का एहसास हो चुका है, बस वो मौका ढूंढ रहा है अपराजिता को प्रपोज करने का। लेकिन अपराजिता उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे तो बस टेंशन है कि जैसे तैसे वो कॉम्पिटिशन में पहुँचे।

0: तो भाई अब देखना होगा कि इनका प्यार कब परवान चढ़ता है और कैसे कहानी आगे बढ़ती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ईशा, आज तो आपके लिए भी लेकर आनी हूँ मैं ये रोलर्स। जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कहाँ टाइम है सजने संवरने का, क्योंकि आपकी कहानी में है ट्विस्ट की बौछार। अरे ये रोलर्स बहुत ही सिंपल हैं, इन्हें लगाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। लगा लीजिए, फिर निपट लीजिए जो भी उलझन है आपकी जिंदगी में, फिर इन्हें खोल दीजिएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सूरज और ईशा के पास उनके शो पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
2: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
0: ईशा सूरज की नोकझोंक।

0: सूरज की ऑफिस में हुई नारेबाजी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में भाई ईशा ने रिजाइन दे दिया है, जिसके चलते सूरज नाराज है। तभी तो देखिए कैसे ईशा उसे मनाने पहुंची है। साथ ही साथ ताई जी और ताऊ जी के बीच जो कुछ भी चल रहा है, इस बात की खबर भी ईशा सूरज को दे रही है, लेकिन सूरज मानने को तैयार नहीं है।
1: मुझे कुछ सुनना नहीं है और ना ही मुझे कोई बात करनी है, और अब आपको कोई काम भी नहीं है। आइए बैठिए, टाइम पास कीजिए और चले जाइए।
2: सूरज बात हो रही है,
1: तुम चाहते क्या है? आपने रिजाइन दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, अब जाइए, मेरा सर मत खाइए प्लीज। क्या कर रहे हैं? आपको बहुत बड़ी गलत फहमी मिली। कल ताइमा सुजाता आंटी से मिलने गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाती।
2: सूरज मुझे बहुत गलत फहमी नहीं मिली, मैंने अपनी आंखों से देखा है ताइमा को ताऊजी से बात करते हुए। जब तक मैं उनसे मिलने जाती तब तक लोग चले गए।
1: ईशा जी बस बस बहुत। अरे ताइमा भला ताऊ जी से क्यों मिलेंगी?
2: तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, हम जाकर सुजाता आंटी से मिलेंगे। सच बता,
1: ठीक है चल दे। वैसे भी मुझे विजिट के लिए उसी साइड जाना है, चल दे मिलते हैं सुजाता आंटी से।
3: दरअसल बात यह कि ईशा जी को चाहिए था रेजिग्नेशन, जो कि सूरज ने एक्सेप्ट कर लिया और वो दे दिया। उसके बाद ईशा जी की बात तक नहीं सुनना चाहता सूरज, एंड फुल ऑन गुस्से में कि ईशा जी जो भी कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। एंड ईशा जी उसमें से कुछ बात ये सुनाना चाहती हैं कि सूरज मैंने ताइमा को कल मोहल्ले में देखा था, ताऊ जी से चुपके से मिली थी। तो सूरज बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ताइमा ने मुझे पहले ही बताया था, मतलब कि सूरज को बताया था घर में कि वो सुजाता आंटी एक है उनकी बचपन की दोस्त, तो उनको हॉस्पिटल एडमिट कराने गई थी इमरजेंसी में। तो ईशा जी ये बात मानने को तैयार नहीं है, एंड सूरज बोलता है कि आप गलत बोल रही है। तो गुस्से में ईशा जी हाथ बांध देती है कि अब चुपचाप मेरी बात सुनो, जो मैं कह रही हूँ मुझे ऐसा शक है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड ऑल एक्स वाई जेड। तो उसकी वजह से जो ईशा जी हैं मुझसे गुस्सा हैं, एंड कहीं ना कहीं ईशा और सूरज दोनों अग्री होते कि चलो बेटर सुजाता आंटी से ही बात करते हैं।
0: ऐसे में कहानी में आ गया है एक और ट्विस्ट, क्योंकि वायरल हो गया है ईशा और सूरज का वीडियो, जिसके चलते सूरज पर लगे हैं असॉल्ट के एलिगेशंस। ऐसे में एनजीओ की औरतें भी यहां पर ईशा को बचाने आई हैं, लेकिन भाई यहां तो मामला ही कुछ गड़बड़ है।
4: मुझे भी ये पहली बार वीडियो दिखता है, सूरज की न्यूज़ फैलती है कि ईशा सूरज सिंह की सेक्रेटरी ईशा सिंह ने ये केस किया है कि सूरज ने उनका हरेसमेंट किया है, और मैं भी शॉक हो जाती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। और ये न्यूज़ हर जगह फैल रही है, इसलिए एनजीओ की सारी लेडीज़ आती है बचा रहे कि ईशा जी आप घबराइए मत, हम हैं ना, हम वर्क प्लेस पे ये हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सारे नारेबाजी चल रही है। और ईशा वो समझाने की कोशिश करी कि सूरज मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये आकाश ने किया। और सूरज बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि आपने पहले तो मुझे छोड़ा और फिर अब मुझ पर, मैंने थोड़ी ना आपको ये जॉब, आप अपनी मर्ज़ी से ये जॉब करना चाहती थी और सारी चीज़ें, तो आपने ये केस क्यों फाइल किया, ये कभी नहीं मिटेगा, अभी चरित्र पर लगा दाग कभी मिटता नहीं है लाइफ में से। तो वो ईशा बार बार समझा रही कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब आकाश कर रहा है और मैं सब ठीक कर सकती हूँ। और बट सूरज ऑफ कोर्स सुनने को तैयार नहीं है, बिकॉज इतने हर जगह न्यूज फैल गई होती है।
0: जहाँ एक तरफ सूरज और ईशा दोनों ही इतनी मुश्किल में है, वहीं ताऊ जी ने ताई जी के खिलाफ बनाया है प्लान, और देखिए कैसे वो यहाँ उसे बहला फुसला कर लेके आए हैं ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर आत्महत्या करें भाई ताऊ जी का ये कहना है कि वो ताई जी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अगले जन्म उनके ही साथ शादी करना चाहते हैं। तभी तो देखिए कैसे उन्होंने ताई जी के हाथों में थमा दिया है ये पॉइजन। लेकिन इन सब के पीछे आकाश की प्लानिंग है। अब देखना होगा कि आखिर ईशा और सूरज कैसे इसे एक्सपोज करेंगे और ताऊ जी के चंगुल से ताई जी को बचाते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: वैसे छपतात्री, आपकी जिंदगी में चैलेंजेस की कमी नहीं है और पता नहीं कैसे कैसे सिचुएशंस को फेस करती हैं आप, लेकिन फिर भी जब हम बात करें हेयर स्टाइलिंग की और अगर आप ये काम कर रही हैं खुद अपने हाथों से, वो भी एक टोंग मशीन के साथ, तो जरा संभल कर, क्योंकि गलती से जब गरम गरम रॉड आपके कान पर लगती है ना तो बहुत जोर का झटका लगता है। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर जगदात्री की कहानी में? क्या आया है फिर से कोई नया ट्विस्ट जो लेकर आ रहा है यहाँ पर एंटरटेनमेंट का झटका? लेट्स चेक इट आउट।
6: लेडी से घम बनी जगधात्री, पुलिस ऑफिसर वाली वर्दी, हाथों में हथकड़ी लेकर चली है तपस्या को गिरफ्तार करने। बदला जगधात्री का अंदाज, टीवी के सीरियल जगधात्री में आज जगधात्री अपने असली रूप में आ गई है। जी हाँ, हमेशा साड़ी पहनने वाली, सिंपल रहने वाली, अपने परिवार की सेवा करने वाली जगधात्री आज फैशन वाले लुक में है। भाई पुलिस ऑफिसर वाली इस वर्दी में आज वो पहुंच गई है अपनी ही बहन तपस्या को गिरफ्तार करने और साथ है हाथ में हथकड़ी। देख लीजिए जगधात्री का ये स्वैगर।

0: हवा ये जगधात्री और शिवाय से ही जानते हैं उनका मिशन क्या है।
1: जगधात्री बनी ही इस लुक के लिए है, समझो। हाँ, मतलब आई डोंट थिंक कि इनसे बेहतर कोई जगधात्री बन पाएगी। सो बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत परफेक्ट लग रही हैं एकदम। इनका ऑरा ही थोड़ा कॉप वाला है रियल लाइफ में भी। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। वो रियल में इनके अंदर जगधात्री आ जाती है बीच बीच में, तो ये वैसे ही, ये कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करती है भाई, ऐसी ही है।
2: हथकड़ी मिल गई, अब रुद्र के भी सारा मूसा और इन सब के ब्रांच आउट हुए हैं ना।
1: मत जाओ, सिर्फ अपनी बहन पे रहो। रुद्र को मैं लगाऊंगा।
2: हाँ, तो रुद्र और मूसा जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रांच आउट हुए हैं। उनके हाथ इतने लंबे हैं, कभी कभार कानून से ज्यादा लंबे हाथ हो जाते हैं क्रिमिनल्स के, तो जब उन्हें पकड़ना होता है तो कानून को भी उनसे ज्यादा लंबे हाथ करने पड़ते हैं। इसीलिए एक बहुत ही लंबी और अच्छी हथकड़ी आई है उन्हें पकड़ने के लिए। ये इसलिए किया गया है क्योंकि तपस्या जो भी कर रही है वो गलत ही कर रही है, तो और सजा मिलनी चाहिए। अभी वो क्रिमिनल है नहीं, बट वो क्रिमिनल बनने के रास्ते पर चल रही है, उसे शायद पता नहीं है। शिवाय ने जगधात्री को समझाया भी है कि जो भी गलत कर रहा है उसको वो सही तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तपस्या को अरेस्ट भी करना पड़ेगा। इसीलिए जगधात्री अपने कॉप मोड में आई है और तपस्या के सामने जाएगी। शायद उसका, ऑफ कोर्स उसका सच भी रिवील हो जाएगा कि वो एक्चुअली एक अंडरकवर एजेंट है, कॉप है, और वो अरेस्ट कर लेगी।
0: वैसे जगधात्री का ये रूप शिवाय की वजह से ही देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले जगधात्री को शिवाय समझा रहे थे कि कैसे उन्हें सच की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि परिवार की। ऐसे में जब तपस्या ने कुछ गलत किया है तो जगधात्री को उसे गिरफ्तार करना ही चाहिए। हालांकि दोनों में बहसबाजी काफी हुई, लेकिन फिर जगधात्री शिवाय की बात मान ही गई और पहुंच गई है वो तपस्या को गिरफ्तार करने। वैसे इसी के साथ शिवाय भी जगधात्री के रंग में रंग गए हैं और दोनों पुलिस ऑफिसर तैयार हैं सच का खुलासा करने के लिए।

0: तुम जो ये तपस्या को बचाती हो मुझे पता चल जाता है, मैं चला जाता हूँ दराज। बहुत आगे तक पढ़ लेती रही
1: मैं, काफी आगे पहुंच जाती हूँ। हाँ, मनाने की कोशिश चल रही थी, मनाने की और इन्हें समझाने की, अपना पक्ष रख रही थी मैं कि मैंने अगर जो चीजें की हैं वो क्यों की है। ये थोड़े बहुत गुमराह हुए हैं इस बीच तो।
2: मैं या तुम? अपने बारे में बोलो।
1: ठीक है, मैं क्रिमिनल के
2: साथ हम हुए हैं। वाह,
1: ठीक है गुमराह मैं हुई हूँ तो ये मुझे समझा रहे हैं कि अपनी ड्यूटी के प्रति थोड़ा आप ठीक रहिए और ऑनेस्ट रहिए और अपना काम सही से करें। जैसा आप, जैसे जगधात्री बेसिकली सबको समझाती आई हैं, आज वही इमोशनल फूल बन गई हैं व्हेन इट कम्स टू फैमिली। परिवार की जब बात आती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, और आज तपस्या प्रॉब्लम में है तो जगधात्री अपने सारे उसूल और ड्यूटी थोड़े भूल गई है, तो वही याद दिला रहे हैं। शिवाय इज बीइंग अ गुड फ्रेंड एंड अ गुड
3: टीममेट।
4: तो भाई अब देखना होगा परिवार की इस लड़ाई में आखिरकार जगधात्री किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: वैसे जब भी मैं डॉक्टर आरंभी को देखती हूँ ना, मुझे अपने शो की लक्ष्मी ही याद आती है। एक्चुअली काफी सिमिलैरिटी है कैरेक्टर्स में, क्योंकि देखिए इनिशियली लक्ष्मी का कैरेक्टर भी काफी सब्ड्यूड था, उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। फिर आया उनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान, और डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छी भली फैमिली थी, लेकिन देखिए फिर हो गई यहाँ पर अवंतिका की एंट्री और सब कुछ हो गया चौपट। लेकिन फिर निकल पड़ी वो अपने ही सफर पर, कुछ ऐसा ही हुआ था भाग्य लक्ष्मी में भी। फिलहाल लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
4: डॉक्टर विश्वास का आरंभी पर अत्याचार, ध्रुव बना आरंभी का रक्षक, देखी विश्वास और ध्रुव में टशनबाजी। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर विश्वास काफी गुस्से में है क्योंकि आरंभी ने ना ही विहान के किडनैप होने की बात उसे बताई थी और ना ही कुनिका के मिलने की। ऐसे में देखिए कैसे वो अस्पताल में तमाशा कर रहा है, आरंभी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जा रहा है। तभी वहां पर नाचना गाना चल रहा है क्योंकि आ गया है ध्रुव, जिसने हॉस्पिटल के माहौल में चार चांद लगा दिए है, और यहां पर देखिए कैसे वो पेशेंट्स और स्टाफ के साथ डांस कर रहा है। ध्रुव डांस जरूर कर रहा है लेकिन उसका ध्यान हर तरफ है। तभी तो जब आरंभी का जबरदस्ती हाथ पकड़कर विश्वास उसे ले जा रहा होता है, वो टांग अड़ाकर विश्वास को गिरा देता है और आरंभी को संभाल लेता है। विश्वास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।
6: मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अच्छा ही है, देख लेंगे तो लोगों को भी पता चलेगी गलती की क्या सजा होती है।
4: ऐसे में आरंभी और ध्रुव को साथ बात करता देख विश्वास और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है, और देखिए कैसे फिर एक बार वो जबरन आरंभी का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जा रहा है। लेकिन ध्रुव इस बार बन गया है आरंभी का रक्षक। देखिए कैसे एक तरफ आरंभी का जबरदस्ती हाथ विश्वास ने पकड़ा है तो दूसरी तरफ आरंभी को बचाने के लिए ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर विश्वास को सबक सिखाया।
6: हिम्मत कई बार ताकत के आगे ना

0: इसी बात को लेकर दोनों के बीच छिड़ गई है बहसबाजी और बात हाथापाई तक आ गई है। हालांकि ध्रुव बताते हैं कि वो डीसी है, लेकिन विश्वास को तो पता ही नहीं, वो तो बदतमीजी पर बदतमीजी करे जा रहा है।
1: वैसे तो समझदार को इशारा काफी है बट बाद में सॉरी बोलनी पड़ती है।

0: भाई इस तमाशे ने यही थमने का नाम नहीं लिया। यहाँ पर देखिए आ गई विश्वास की माँ और बाकी के घर वाले, और विश्वास की माँ ध्रुव को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन आरम भी रोक लेती है। इसी बात के चलते ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है।
1: सुना तो है कि ये डीसी डीसी है, डीसी कौन है?
2: मैम डीसी तक ठीक है, बीसी नहीं होना चाहिए बस।
1: बस उसी का वही कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। वैसे
2: डीसी ठीक है।
1: वैसे डीसी का हमें भी नहीं पता कि ये डीसी कौन है, और अभी जो ये जो इतना जोर जोर से चिल्लाहट हो रही है और विश्वास और डीसी के बीच में जो यू नो टशन हो रही है, जो मार रहे तोड़ रहे एक दूसरे को, उसमें पता चलता है कि ये डीसी कौन है। ओ गॉड, ये डीसी हमें क्यों करेगा, हमारी जान लेने आएगा। अरे मतलब मालिक का मतलब ये थोड़ा ही शुड बिहेव हिमसेल्फ, नो?
2: करेक्ट।
1: व्हाट डू यू मीन?
2: मतलब कोई हमारे भाई पे हाथ उठाए तो ऐसे बर्दाश्त थोड़ी ना होगा,
1: और वो भी विश्वास पे, मेरे बेटों पर? नेवर।
2: बेटों पे नहीं, बेटे पे। आप ही का, वो आप ही का ही है।
1: वैसे देखो, वैसे तुम मुझे
2: कचरे से उठा के लेकर आए।
1: नहीं यार, तुम छोटे हो, और छोटों की ना मम्मी की बात हमेशा सुननी चाहिए, और ये सुनता नहीं। इसने अभी जो कांड किया है ना मनमीत के साथ में, इसकी वजह से सारा गड़बड़ हुआ है। देखना मैं तुम्हारा क्या करती
2: हूँ। वो पता है।
0: ऐसे में विश्वास के पापा आते हैं जिसने ध्रुव को पहचान लिया है, और वो सबको बताते हैं कि वो यहाँ के ट्रस्टी हैं। इतना ही नहीं, विश्वास के पापा तो विश्वास और अवंतिका को भी डांट लगा रहे हैं।
3: मिस्टर चावला, वेलकम टू योर हॉस्पिटल। सॉरी आपको ये सब झेलना पड़ा था। जरूर कोई समस्या नहीं है। ये मेरा बेटा है। इतनी बड़ी लापरवाही तुम्हारे रहते कैसे हो सकती है? डॉक्टर अवंतिका, तुलिका जी आपके अंदर थी ना, आप ही उस डिपार्टमेंट की हेड है ना, तो क्या जवाब है आपके पास, कैसे हुआ ये सब? डॉक्टर अवंतिका, ये हमारा हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। पहली बार, थैंक यू, मेरी पहली वार्निंग आखिरी होती है।
0: इन सब तमाशों के बाद ध्रुव अपना इंट्रोडक्शन स्टाफ को देता है, और ऐसे में बात करता है सेलिब्रेशन की। इसी के साथ विश्वास भी आ गया है ध्रुव से माफी मांगने के लिए।
3: आप सब लोग इस हॉस्पिटल का हिस्सा हैं, या जो भी कुछ नया हो आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको किसी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल के आधे ओनर मिस्टर ध्रुव चावला।
4: पवाल हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आगे क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। अब देखिए, आप लोग इस हॉस्पिटल के एम्प्लॉई और आप लोगों का जाना बहुत जरूरी है, इसे मैं आप लोगों के सामने ऑल योर्स डीसी।
0: तो भाई आरंभी का रक्षक बनकर ध्रुव तो आ गया है, अब देखना होगा कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हेयर स्टाइलिंग एक एक्सपीरियंस्ड हेयर स्टाइलिस्ट से करवाएं। अगर आप करवाएंगे उसे किसी अनएक्सपीरियंस के साथ, तो डेफिनेटली हो जाएगी कुछ ना कुछ केयरलेसनेस और आ जाएगा आपकी जिंदगी में भी ट्विस्ट. यानी ये तो हो जाएंगे ना वो रॉकिंग एंड शॉकिंग मोमेंट्स. तो चलिए लेकर चलते हैं आपको हमारे ऐसे ही सेगमेंट की ओर जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग. जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
0: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल छनक की, जिसका लास्ट डे शूट हुआ. ऐसे में सामने आई है लास्ट डे शूट की ये तस्वीरें. आप भी डाल लीजिए इन तस्वीरों पर एक नजर.

0: आइए मैम, प्लीज टेक अ सीट।
1: तुम दोनों क्या खाओगे?
2: वेज बिरयानी।
3: नजर डाल लीजिए परशुराम के नए प्रोमो पर, जहां पर परशुराम अपनी फैमिली संग डिनर पर गए हैं, लेकिन वहां गोली को लेकर हुआ बवाल।
4: पीटकर सर ने बहुत अच्छा किया था।
1: एक मिनट, क्या बोल रहा था अभी? तुमने किसे मारा? उस दिन बाजू वाली वहीनी भी चौल में बोल रही थी कि तुम्हें टारगेट करके किसी ने गोली मारी थी, और तुम्हें याद है जिस दिन आराध्या की पहली रसोई थी उस दिन भी एक गोली चली थी और तुम्हें टारगेट किया गया था।
5: Please wear formals. Here I am today, ta-da, serving in formals, guys.
3: भाई खतरों के खिलाड़ी में खतरों से खेल रही हैं फरहाना भट्ट और रुबीना दिलैक। ऐसे में इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है और इस खास मौके पर इन्होंने शेयर किया है ये वीडियो, जहां पर सूट बूट में नजर आ रही हैं फरहाना, तो वहीं देसी अंदाज में नजर आई रुबीना। देख लीजिए इनका ये फन वीडियो।
5: And we are proudly representing our cultures.
6: Yes. However, I look some jadugarni, more of a lawyer. I don't know main kya lag rahi hai.
7: Bahut sundar lag rahi hai. Jo bhi lage bahut sundar lag rahi hai.
6: Thank you so much guys. Take care.
3: जोहर ने मनाया अपना 54th बर्थडे और इस खास मौके पर हुआ सेलिब्रेशन। उन्हें विश करने के लिए पहुंचे कई सारे दोस्त, कियारा सेठ, रानी मुखर्जी, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा और करीना, जानवी कपूर, सारा अली खान, विकी कौशल और काजोल, जिन्होंने शेयर की है ये सारी तस्वीरें करण जोहर संग।

पूजा हेगड़े और दलकीर सलमान की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है DQ41। ऐसे में फिल्म की शूटिंग का रैप अप हो चुका है। पूजा हेगड़े ने शेयर की है ये बिहाइंड द सीन तस्वीरें।

0: तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? मजा आया ना? कैसी लगी आपको हमारी ये स्टाइलिंग टिप्स? आप इन्हें जरूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
3: Gone! Home run!
2: NHL.
3: Scores!
2: College basketball.
4: He shoots it immediately.
5: He makes it in!
2: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
6: One lap to go.
2: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने पूजा अर्चना की। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भारी भीड़। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार। 65 महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। 1 जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी। विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन। डीएमयू रेल मंत्रालय ने मंजूरी। देशभर में भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, डू और गर्मी से सावधान रहें देशवासी। एनर्जी ड्रिल ड्रिक और लगातार पीते रहें पानी। आईपीएल में आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच। चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीम। जीतने वाली टीम खेलेगी सेकेंड क्वालिफायर मैच।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: देश के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहें देशवासी। लगातार पिए तरल पीते रहें। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम। अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर कामना की। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन। डीएमयू रेल मंत्रालय ने मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में सफलतापूर्वक ट्रैकिंग पूरा करके सुरक्षित लौटा संतो पंत ट्रैकिंग सीजन का पहला दल। 23 मई को संतो पंत ट्रैक के लिए रवाना हुआ था 13 सदस्यों का दल। 4 दिन की बहुत चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर पूरा करके सुरक्षित माणा गांव पहुंचा दल। बद्रीनाथ धाम में आज से आस्था का नया रूप। धाम में आज से बाबा बागेश्वर की श्री सत्यनारायण भागवत कथा। पूरे 5 दिनों तक चलेगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सत्यनारायण और हनुमत कथा। बाबा की कथा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज से पहले नारायण पर्वत पर 21 दिनों की गुप्त साधना में लीन थे बाबा बागेश्वर। बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरी की 21 दिवसीय साधना। पहले 11 दिन उन्होंने नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में किया एकांत और कठोर तप। बाकी के 10 दिन प्राचीन खाक्षुक हनुमान मंदिर में दर्शन। 21 दिन की साधना के दौरान बाबा बागेश्वर ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की। श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटे तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर पूरी परिक्रमा की। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मई खत्म होने से पहले 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिल रही है वाहनों की लंबी लंबी कतारें। गेट सिस्टम के बावजूद कई जगहों पर 7 से 8 किलोमीटर तक लगा है जाम। पुरुषोत्तम मास और भागवत कथा के चलते बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही है भीड़। भारी भीड़ के बीच एसडीआरएफ पुलिस और मंदिर समिति यात्रियों की मदद में जुटे हुए हैं। बीमार श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता पहुंचाई जा रही है। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 8 लाख का आंकड़ा पार। कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में 300 साल पुरानी अनूठी परंपरा। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को दी जाती है मेडिकल लीव। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 51 जल कलशों और पंचामृत से किया जाता है विशेष अभिषेक। माना है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आमरस का भोग ग्रहण करने के बाद अस्वस्थ हो जाते हैं भगवान।

0: ये सवा के साथ हुई बारिश की कई जगहों पर गिर गए पेड़ और लोगों को गर्मी से राहत। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है बकरीद। ईद उल अजहा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने ईदगाहों में जाकर नमाज पढ़ी। बकरीद की नमाज के लिए बांदीपुरा के मरकजी ईदगाह में जुटे सबसे ज्यादा श्रद्धालु। नमाजियों ने लोगों में शांति समृद्धि और भलाई के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर विद्वान मौलानाओं ने इस्लाम में कुर्बानी भाईचारे की मिसाल पेश की। जम्मू में भी देखी ईद पर्व की रौनक, मुस्लिम समुदाय जुटे। ईद उल अजहा के मौके पर ताजमहल देखने के लिए इच्छुक पर्यटकों के लिए भी गुड न्यूज। कल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के बीच में किसी शुल्क के बगैर ताजमहल देख सकेंगे सैलानी। कल सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक भारतीय और विदेशी पर्यटकों को नहीं देना होगा कोई शुल्क। बड़ी संख्या में पर्यटकों की ताजमहल पहुंचने की संभावना को देखते हुए कड़ी कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। नागपुर पुलिस होगी हाईटेक। नागपुर पुलिस को मिले बैलेंसिंग स्कूटर। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बाजार झील के पास पेट्रोलिंग के लिए होंगे तैनात। धर्मशाला में कंपैशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन। दलाई लामा के जन्मदिन से पहले आयोजित होंगे 3 दिवसीय तिब्बतियन सांस्कृतिक उत्सव। देश विदेश से कई गणमान्य अतिथि, अधिकारी, विदेश प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग शिरकत करेंगे। तमिलनाडु के कुडोलूर जिले में श्री कुथंडावर मंदिर उत्सव का भव्य आयोजन। उत्सव में सज संवर कर तैयार होती है स्थानीय महिलाएं। भगवान कुथंडावर यानी अरावन से करती है प्रतीकात्मक रूप से व्यवहार। फतेहपुर शेखावटी के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 10 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर शुरू। गर्मी की छुट्टियों में सैकड़ों बच्चे आध्यात्मिक और संस्कार दे रहे शिक्षक। नगर आराध्य देव मंदिर में बच्चों को गीता और धार्मिक ग्रंथों का दिया जा रहा है ज्ञान। पीले वस्त्रों में बच्चे अनुशासन और मानवता की सीख रहे पाठ। फतेहपुर शेखावटी में बाल संस्कार शिविर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। 5 साल के बच्चे भी गीता के प्रसंग सुनाकर प्रभावित। विकास चैतन्य महाराज के सानिध्य में गीता ज्ञान शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में बच्चों में धर्म संस्कार का ज्ञान दिया जा रहा है। श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज के 496 स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन। स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों को धार्मिक और गीता आधारित शिक्षा से जोड़ रहे हैं। हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका। जमे पाली की वजह से यात्रा मार्ग पर चलना दूभर। एसडीआरएफ जवान यात्रियों को सहारा देकर सुरक्षित रास्ता पार करा रहे हैं। हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्तों पर बर्फ जमी हुई। कड़ाके की ठंड और पाली के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा बनी चुनौतीपूर्ण। रास्तों पर तैनात एसडीआरएफ के जवान। मौसम बदलते ही हेमकुंड साहिब में फिर से बर्फबारी देखने को मिली। बर्फ जमने के कारण पैदल मार्गों में हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के अमरावती में बदल गया मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बीच आसमान से गिरी फुहारें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: Apply today at cmefcu.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ। फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
7: Jack, you're killing me.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
13: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने पूजा अर्चना की। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भारी भीड़। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार, 65 महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। 1 जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन, डीएमयू रेल मंत्रालय ने मंजूरी। देशभर में भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, डू और गर्मी से सावधान रहें देशवासी, एनर्जी ड्रिल ड्रिक और लगातार पीते रहें पानी। आईपीएल में आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच, चंडीगढ़ में आमने सामने होंगी हैदराबाद और राजस्थान की टीम, जीतने वाली टीम खेलेगी सेकंड क्वालिफायर मैच।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
14: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, जीवन में खुशियां हो कोई गम ना हो तो कितना अच्छा लगेगा ना, लेकिन हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ परेशानी तो लगी ही रहती है। देखिए, माना जाता है कि कुंडली में अगर शनि की बुरी छाया पड़ जाए तो जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि शनि सिर्फ पीड़ा या फिर कष्ट ही देता है, शनि तो सिर्फ कर्मों का फल देता है, जैसा कर्म वैसा ही उसका फल। आज हम आपको शनिदेव की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शनि की बाधा से पार पाने का ज्योतिषीय समाधान आखिर क्या है।

0: वो हमारा हित करते हैं या अहित, ये हमारे कर्मों में है निहित। वो हमारे शत्रु हैं या मित्र, न्यायप्रिय देव की लीला है विचित्र। वो हैं शनि देव, क्या सिर्फ कष्ट देते हैं शनि या लाभ भी पहुंचाते हैं। शनिदेव को लेकर हमारे समाज में न जाने कितनी ही भ्रांतियां व्याप्त हैं। शनिदेव के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है, उनके बारे में जितनी बातें कही जाती हैं उतने ही शनि के रहस्य हैं। कोई शनि से डरता है, कोई शनि की भक्ति में ही रमता है, लेकिन क्या है शनिदेव की सच्चाई? कौन है शनि? कैसे शनि को प्रसन्न करें? किस तरह से शनि की कुदृष्टि से बचें? ये सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। आज हम आपको शनि से जुड़े वो तीन अद्भुत मंदिरों के बारे में भी बताएंगे, जहां पर शनि शिला के दर्शन करने के बाद दुख संताप खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं शनिदेव के बारे में कुछ रोचक बातें। शनिदेव के बारे में बहुत से पुराणों में जिक्र है। शनि को सूर्यपुत्र माना गया है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनिदेव को मारक और दुख का कारक माना जाता है। मोक्ष अगर कोई दिला सकता है तो वो एकमात्र शनिदेव ही हैं। शनिदेव प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और शनिदेव हर प्राणी के साथ न्याय करते हैं।
1: सूर्य चंद्र हमेशा व्यक्ति को लाभ देते हैं, तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में भी आने पर लाभ ही देते हैं, परंतु शनि सामान्य स्थानों पर भी आने पर कई बार व्यक्ति को पीड़ा ही देता है, क्रूर ग्रह देता है, परंतु वो पीड़ा उस व्यक्ति के कर्मानुसार है, उसके जीवन के कष्टों को दूर करना है और ये बताने आया है कि तेरे अपने कौन है और तेरे पराये कौन है। इस कारण से ही शनि से लोग भयभीत तो होते हैं और यही माना जाता है कि शनि की साढ़े साथी आ गई या शनि की ढैया आ गई, शनि की दशा आ गई या शनि की है ना पनौती लग रही है, तो व्यक्ति पीड़ा में आ जाएगा।
0: शनिदेव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो देव हैं या ग्रह, लेकिन कई पुराणों में शनि को लेकर अलग अलग जिक्र देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जिस पर शनि की कृपा हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है और जिस पर शनि की नजर बकरी हो जाए उसका फलता फूलता राजपाट भी चौपट हो जाता है। पद्म पुराण कहता है कि राजा दशरथ ने शनि प्रकोप से राज्य को बचाया था। राजा दशरथ का पुरुषार्थ देख शनि ने उन्हें वरदान दिया था। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर शनिदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि शनि ने पार्वती जी से कर्म और फल की चर्चा की थी। शनि ने मां पार्वती से कहा था कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल देता हूँ। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी ने शनि से जातकों की धनहानि के बारे में पूछा था। शनि ने तब कहा था कि मातेश्वरी, परमात्मा ने उन्हें तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है।
1: शनि के विषय में कहा गया है कि शनि का स्वरूप बड़ा व्यापक है और शनि एक स्थूल यानी के भारी ग्रह है और धीरे चलने वाले, शनैश्चर नाम उनका तभी है, धीरे धीरे चलने वाले हैं, धीमे चलने वाले और श्याम वर्ण है, उनके नेत्र सदैव नीचे झुके होते हैं क्योंकि नेत्रों से नेत्र मिलाने भी नहीं चाहिए शनिदेव के, और लोगों को न्यायाधीश हैं, उनके कर्मानुसार उनका पुण्य फल देने के लिए आते हैं और शनि की कृपा जब होती है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन पुण्यात्माओं को।
0: तो देखा आपने, धर्म ग्रंथ और पुराण भी शनि की शक्ति का बखान करते हैं। ये तो बात हुई उन आख्यानों की जिनका जिक्र अलग अलग पुराणों में है, लेकिन पुरातन कथाओं में भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें शनिदेव और उनके द्वारा दी गई सजा को भुगतने वालों का भी जिक्र है, जिनमें पहला नाम आता है राजा हरिश्चंद्र और राजा नल और दमयंती का। राजा हरिश्चंद्र को दान देने का अभिमान हो गया था। इस अभिमान के कारण बाजार में उन्हें बिकना पड़ा था, यहां तक कि शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी थी। राजा नल और दमयंती को पापों की सजा के लिए दर दर भटकना पड़ा था।
1: एक किस कथा के बारे में वर्णन आता है कि महाराज नल और दमयंती दोनों विशेष प्रेम करते थे। तो जब एक बार दमयंती के जो स्वयंवर था, स्वयंवर में बाकी देवता भी गए जिसमें इंद्र आदि देवता भी थे, और उन्होंने नल का ही स्वरूप बनाकर इनको देखकर वो पहचान गए कि राजा नल असली कौन है और उनका वरण किया, क्योंकि वो प्रेम भी करते थे उनसे। परंतु जब स्वयंवर समाप्त हुआ तब देवताओं को रास्ते में एक श्याम वर्ण व्यक्ति मिले, तो उनसे पूछने पर पता चला कि वो देवता भी स्वयंवर में जा रहे हैं। स्वयंवर समाप्त होने की सूचना मिलकर उनको क्रोध हुआ और उन्होंने उसको श्राप दिया कि इनको दोनों को विरह देखना पड़ेगा। और वो जो श्याम मूर्ति देवता थे वो साक्षात शनि थे, तो शनि के प्रभाव के कारण से जुआ में सब कुछ राजपाट स्वर्ण अपने वस्त्र आदि तक हार गए। शनिकृत पीड़ा उनको समाप्त हुई। इसी कारण कहते हैं कि जब शनिदेव प्रसन्न हुए तो उनको राज भी वापस लौटा। और शनि ने बताया कि आपके कर्मानुसार पिछले जन्म में आपने पशुओं का बड़ा वो आखेट किया था, इस कारण ही आपको जो है ये इस जीवन में पीड़ा झेलनी पड़ी।
0: तो देखा आपने, ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें शनि ने कर्मों का फल देकर सजा दी है। महान राजाओं को भी उनके पाप कर्मों का फल शनिदेव जरूर देते हैं। जो कोई भी किसी तरह का पाप कर्म करता है, फिर वो चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मत्स्य पुराण में शनिदेव के रूप रंग का जिक्र है। शनिदेव का शरीर इंद्रकांत की नीलमणि जैसा है। वो गिद्ध पर सवार हैं, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में वर मुद्रा भी है। शनिदेव का विकराल रूप भयावह भी है।
1: पुरानी कथाओं में यह माना जाता है शनि सूर्य पुत्र हैं और यमराज के भाई भी हैं। इतना शक्तिशाली हैं कि किसी व्यक्ति को अगर अपनी क्रूर या वक्र दृष्टि से देख लें तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की हानि होनी तो तय ही होती है। इस कारण से ही भगवान से लोग भय उत्पन्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य पुत्र होने के बाद भी अपने पिता की अवज्ञा करने के कारण ही शनि सूर्य की श्राप भी खाए हुए हैं, और इनके प्रभाव से ही व्यक्ति को जीवन में विशेष प्रकार के कष्ट आदि अनुभव करने होते हैं। लेकिन ये आपको कष्ट देने तभी आते हैं जब आपके कर्म खराब होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि सीमा ग्रह कहलाता है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य की सीमा समाप्त होती है वहीं से शनि की सीमा शुरू होती है। जगत में सच्चे और झूठे का भेद समझना शनि का विशेष गुण रहा है। शनिदेव कष्टकारक हैं, लेकिन विपत्ति कष्ट देने के साथ साथ बहुत बड़े गुरु और शिक्षक भी हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब तक शनि की सीमा से प्राणी बाहर नहीं होता है, उसकी उन्नति संभव नहीं है। अच्छे और शुभ कर्मों वाले जातकों की कुंडली में उच्च होकर शनि उनके भाग्य को बढ़ाते हैं। अगर कर्म निंदनीय हो तो शनि उनकी कुंडली में नीच का होकर हानि की तरफ ले जाते हैं। चाहे जातक का भाग्य कितना ही प्रबल क्यों ना हो,
2: शनिदेव की महिमा ही कुछ ऐसी है कि इनके प्रभाव में आने वाले का कल्याण हो जाता है, और अगर शनि नाराज हो तो जीवन में हाहाकार मच जाता है। लेकिन शनिदेव के तीन ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं जहां पूजा उपासना करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मिलने वाली पीड़ा हर लेते हैं। शनिदेव के वो चमत्कारी मंदिर आखिर कहाँ है, आइए आपको बताते हैं।

0: आज हम आपको बता रहे थे धर्म ग्रंथों में शनि की महिमा के बारे में। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शनिदेव के कुछ कल्याणकारी मंदिरों के सफर पर, जहां दुनिया भर के भक्तों का तांता लगता है। शनि शिंगणापुर, ये वो स्थान है जिसकी कीर्ति और महिमा सबसे ज्यादा फैली हुई है। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी अरदास लेकर आते हैं और शनिदेव से तथास्तु का वरदान लेकर, साथ ही चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता का भाव लेकर वापस जाते हैं। माना जाता है कि शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक रहे हैं। विश्व में शनिदेव के बहुत से मंदिर हैं, भारत में भी शनिदेव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन शनि शिंगणापुर की महिमा ही निराली है। शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। मान्यता है कि यहां आज भी घर में ताला नहीं लगाया जाता। इस स्थान को सिद्धपीठ कहा गया है। शनिदेव का यहां दर्शन, पूजा, तेल स्नान करवाने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलने की मान्यता है। शनिदेव का दूसरा सिद्धपीठ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इसको शनिश्चरा मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर को लेकर भी तमाम तरह की मान्यताएं हैं। कहा गया है कि इस मंदिर में शनिदेव से पापों की माफी मांगने पर वो प्रसन्न होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मन से यहाँ आकर निर्मल हो जाता है, उसके संताप शनिदेव हर लेते हैं। मान्यता है कि यहाँ शनिदेव का पिंड हनुमान जी ने लंका से फेंक कर पहुंचाया था। शनिश्चरी अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। जातक शनिदेव पर तेल चढ़ाकर उनसे गले मिलते हैं। पहने हुए कपड़े जूते वहीं छोड़कर शनि पीड़ा से मुक्ति पाते हैं। वहीं गरीबों को दान करने से भी शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिलने की मान्यता है।
1: जो व्यक्ति शनिदेव के मंदिर जाता है, शनि उस पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव के मंदिर में कुछ सामान्य वस्तुएं चढ़ाने का विधान है। जैसे आप काला वस्त्र अर्पण करोगे, काले तिल सरसों का तेल अर्पण करोगे, ये शनि की प्रिय वस्तु मानी जाती है। यदि व्यक्ति ऐसा शनि देव के मंदिर में दीपक जलाए या दीप दान के लिए सरसों का तेल अर्पण करे, गरीबों को भोजन कराए, तो शनि की पीड़ा के दर्शन करने के बाद शनि का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में शनिकृत पीड़ाएं जो चली आ रही वो शांत होने लगती है।
0: शनिदेव की महिमा से जुड़ा हुआ एक मंदिर उत्तर प्रदेश के कोसी कलां से कुछ दूरी पर स्थित कोकिला वन में भी है। नंदगांव से सटा हुआ ये वन वो वन है जिसमें श्री कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए थे और श्री कृष्ण ने वरदान देते हुए कहा था कि जो भी इस वन की परिक्रमा कर शनि की आराधना करेगा, शनि उसको उसके पापों से मुक्त कर देंगे। ये सिद्ध पीठ कोसी से 6 किलोमीटर दूर कोकिला वन में है। इस वन में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए थे। मान्यता है कि जो भी वन की परिक्रमा कर शनि आराधना करता है, उसके दुख दूर होते हैं। सिद्धपीठ के दर्शन पूजा पाठ करने से शनि कष्ट नहीं देते हैं।
1: किसी व्यक्ति को शनि अगर कष्टकारी साबित हो रहा है उसके ज्योतिषीय आधार कुंडली के आधार पे, तो व्यक्ति को शनि की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए, कृष्ण देव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मथुरा वृंदावन इस मामले में बहुत पवित्र स्थान है। वहां जाकर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो व्यक्ति जाप करता है, उसको शनि पीड़ा नहीं देते।
0: शनिदेव से जुड़े इन 3 सिद्ध पीठों के बारे में यही मान्यता है कि जो भी इनके दर्शन करता है वो सदा सुखी रहता है और जो भी शनिदेव के इन सिद्ध पीठों पर जाकर शनिदेव से अपने पापों की क्षमा मांगता है, उन्हें शनिदेव तुरंत माफ कर सुखी रहने का वरदान देते हैं।
2: हम सभी जानते हैं कि शनि न्यायाधीश हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी हैं। माना जाता है कि शनि को प्रसन्न करने का सबसे सटीक, सबसे उत्तम उपाय है मंत्रों का जाप। अगर शनि के मंत्रों का जाप किया जाए तो शनि देव हो जाते हैं प्रसन्न और आपको मिलता है खुशियों का वरदान। तो चलिए जानते हैं शनि के अद्भुत मंत्र आखिर कौन से हैं।

0: शनि के कष्टों से मुक्ति दिलाएगी श्री कृष्ण की साधना। हनुमान जी के पूजन से नहीं होगा शनि की पीड़ा से सामना। शनि के महामंत्रों से मिलेगा समृद्धि का वरदान। महा उपाय और शनि के महामंत्र करेंगे आपका उत्थान। कहते हैं कि जीवन में हर इंसान कभी न कभी कोई ना कोई गलती अवश्य ही करता है, लेकिन जो सच्चे हृदय से शनि से क्षमा प्रार्थना कर लेता है तो भी शनि उसे उसके पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि शनि दयालु भी हैं, लेकिन अमानवीय आचरण पर अहंकार करने वालों के लिए न्याय की लाठी भी हैं शनिदेव। माना गया है कि अगर आप सत्कर्म करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होगा।
1: आपने पूर्व जन्म में किसी को पीड़ा पहुंचाई है, मान लीजिए आप अपने नौकरों को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, आप छोटे गरीब आदमियों का दमन करते हैं, दलितों को आप है ना उनके साथ अन्याय करते हैं, तो शनि आपको अच्छा नहीं करेगा। शनि का निवास भी इन लोगों में पाया जाता है, गरीब लोगों में, मजदूरों में। तो अगर इन व्यक्तियों के साथ व्यक्ति अन्याय करता तो उस व्यक्ति को शनि की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बाकी वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शनि की समय आने पर स्वर्ण मकान वाहन आदि की प्राप्ति होती है, उनका भाग्योदय होता है।
0: तो आप कह सकते हैं कि शनिदेव शत्रु नहीं मित्र हैं, लेकिन मित्र उनके ही हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, और जाने अनजाने बुरे कर्म हो भी जाएं तो तुरंत उन कर्मों के लिए शनिदेव से माफी मांग लेते हैं। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करता है तो शनि उसको कभी दंड नहीं देते हैं।
1: और विशेष तौर पे अगर एक बात ध्यान रखें, हनुमान जी का पूजन करने वाले को भी शनि पीड़ा नहीं देते, तो शनि देव के मंदिर में उनके दर्शन करने के अतिरिक्त मंगलवार को हनुमान जी के भी दर्शन करें और आंवले के तेल का दिया हनुमान जी को अर्पण करें शनिवार के दिन, तो शनि की प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त होने लगता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि से अपने पापों की क्षमा मांगने और उन्हें प्रसन्न करने का एक तरीका है मंत्रों के जरिए उनसे संपर्क साधना, जिसमें कुछ मंत्रों का खास महत्व है। चलिए हम आपको शनि के कुछ आसान मंत्रों के विषय में बताते हैं जिनके जाप से हो सकता है आपका कल्याण। शनि गायत्री मंत्र। ओम कृष्णान गाये विद्यमये रवि पुत्राय धीमहि तन्नः सौरी प्रचोदयात्। वैदिक मंत्र। ओम प्राण प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः।
1: शनि के कई मंत्र हैं। एक जो सामान्यतया शनि का वैदिक मंत्र कहा जाता है, प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः, शम शनिश्चराय नमः, ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम आदि, ये जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जाप करने शनि स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और आपके मन की इच्छा पूर्ण करते, कृत पीड़ा शांत होने लगती है। एक विशेष मंत्र का ध्यान रखें, शनि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो शनि कृत पीड़ा चल रही हो तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन और दर्शन करने से आपको निश्चित शांति मिलती है और उनकी पीड़ाओं को तुरंत से पहले आपके ऊपर से असर खत्म होने लगता है।
0: तो देखा आपने कितने शक्तिशाली हैं शनिदेव। अगर आप भी पाना चाहते हैं शनिदेव से वरदान तो अपने जीवन में सत्कर्म और सदाचार को दीजिए स्थान।
2: तो हम तो यही चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at Quo.com/tune in. That's Quo.com/tune in.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, come on, let it go. Nora Jones, my heart is drained. Daniel Caesar, we both know how, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
11: चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. विश्व प्रसिद्ध केदारधाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम देखने को मिला. स्थिति ये आ गई है कि घंटों तक लाइन में श्रद्धालु लग रहे हैं. ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी देखने को मिल रहा है.

0: ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और आकाश को चूमते शिखर, प्रकृति का ये सुंदर नजारा किसी को भी दो पल थाम ले। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा है बाबा बद्री विशाल का ये भव्य मंदिर, जहां इन दिनों भक्तों का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की तादाद रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 6,13,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। असल में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यहाँ भागवत कथा का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बद्री विशाल के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में लगातार आस्था का सैलाब महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ है, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: ये यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। गेट सिस्टम लागू होने के बावजूद गाड़ियों की कतारें 7 से 8 किलोमीटर तक लंबी हो रही हैं। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां चार धाम यात्रा अपने पूरे उत्साह पर है, वहीं तीर्थ यात्रियों की हर छोटी बड़ी परेशानी में उत्तराखंड की SDRF, पुलिस और मंदिर समिति सेवा सहायता के मिसाल बन रही है। बद्रीनाथ धाम का पंडा समाज भी जबरदस्त उत्साह के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों का स्वागत कर रही है। भीषण गर्मी के बावजूद यात्रा को लेकर लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। केदारनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
6: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7,00,000 लोगों ने पूजा की। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार, 65 महिलाओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। एक कि जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी। विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन। डीएमयू रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के दौरान सैलानियों को नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति। देश भर में भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील। लू और गर्मी से सावधान रहे देशवासी। एनर्जी ड्रिंक और लगातार पीते रहे पानी।

शादी नहीं कॉन्ट्रैक्ट है बराबरी का रिश्ता, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत चंदावा। शादी तलाक और रिश्तों की आज बात होगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है। अदालत ने कहा है कि शादी बराबरी का रिश्ता है, ऐसा नहीं होता है कि पत्नी ही घर के सारे काम करे। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर पत्नी खाना नहीं बनाती है या फिर घर के काम ठीक से नहीं करती है तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं पर सुनाया है एक बड़ा फैसला। क्या घर में महिलाओं को नहीं मिलता जायज हक? शादी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, है बराबरी का रिश्ता। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कानून विशेषज्ञ भी होंगे, साथ ही साथ समाज सेवी भी मौजूद रहेंगे। तो देश में चर्चा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हो रही है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या है तलाक का ये पूरा केस। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तलाक का केस रद्द कर दिया है। पहले बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक मंजूर किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का खाना न बनाना क्रूरता नहीं है, क्योंकि जो दलील उसमें दी गई थी पति की तरफ से वो यही दी गई थी। हाईकोर्ट के मुताबिक शादी बराबरी की साझेदारी है, शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। साथ ही साथ अदालत ने यह भी बताया कि पत्नियों को घर के काम करने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, यानी कि घर के काम का जिम्मा केवल पत्नियों का नहीं है, केवल महिलाओं का नहीं है। वैसे इस मामले में पति ने पत्नी पर माता पिता की बात नहीं सुनने का भी आरोप लगाया था और पत्नी पर घर के काम नहीं करने का भी दावा किया था। पूरा मामला दरअसल साल 2002 का है, जब शादी के कुछ ही दिनों बाद पति और पत्नी में विवाद उभर कर सामने आया था। शादी बताते चले कि 2002 में ही हुई थी। फिर यह कहा जा रहा था कि कुछ महीनों बाद पत्नी अपने मायके चले गए, यानी 2002 में शादी हुई, शादी के कुछ महीनों बाद विवाद बढ़ा जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई। बाद में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साल 2004 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी मंजूर कर ली गई। अब यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि 2002 में शादी होती है, कुछ ही दिनों बाद अनबन होती है, पत्नी वापस अपने मायके चली जाती है और 2004 की बात यानी ठीक 2 साल बाद फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया था। साल 2010 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते की अर्जी खारिज की थी। 2010 में पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, गुजारे भत्ते की अपील की, साथ ही पत्नी ने पति के आरोपों को भी गलत बताया था। अब मई 2026 हाई कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस विवादित शादी की शुरुआत तब हुई थी जब दोनों कपल तालमेल बिठा रहे होते हैं, यानी कि शादी के शुरुआती दिनों में। तो क्या यह फैसला एक नजीर बनेगा, क्योंकि तलाक हर समस्या का हल नहीं होता है बल्कि बातचीत से भी मामले सुलझाए जा सकते हैं। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है मनीषा सिंगल,

0: साल में महिला की शादी हो गई, 25वें साल में यानी कि ठीक 2 साल बाद की अगर हम बात करें तो उनकी तलाक की अर्जी मंजूर हो जाती है और 2010 में ये कहा जाता है कि ठीक है गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए पूरा जो ट्रायल चला है वो 24 साल तक चला है, 2026 में हाईकोर्ट ने फैसला सुना है। अब किस तरीके से इसको देखते हैं, 23 साल की उम्र और वहीं 24 साल उसको लग गए इंसाफ मिलने में।
1: देखिए मैरिज मैरिज है क्या? मैरिज एक ऐसा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो हमारी फैमिली सिस्टम थ्योरी जो होती है वो क्या कहती है, वो भी यही कहती है कि मैरिज एक ऐसी एक ऐसा डिफरेंट बॉन्ड है, एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड है जिसमें जो एक नया मेंबर आ रहा है केवल उसे नहीं बल्कि जो मेंबर्स ऑलरेडी उस फैमिली में मौजूद हैं, जिस घर में वो लड़की जा रही है शादी होके, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस नए मेंबर के लिए वो एक कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसको घर जैसा फील कराएं। अब अगर दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों वर्किंग हैं, या अगर एक वर्किंग है, वाइफ यूजुअली होम मेकर जो हमारे इंडिया में जनरली होता है, बाहर भी कुछ देशों में होता है, अगर ये केस है तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली जो एक यू नो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर होम मेकर है वाइफ तो वो घर में आराम कर रही है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर दोनों वर्किंग है उस केस में भी दोनों की ही बराबर बराबर जिम्मेदारी होती है। और ये बिल्कुल सही अपील की गई कि हाँ अगर वो घर में काम कर रही हैं सो डेफिनेटली उनको एक एक यू नो ऑनेस्ट एक उनके साथ एक उन्हें एक कोर्ट की तरफ से उनके फेवर में ये होना चाहिए था फैसला जो हुआ भी है। और इसमें जो बच्चे ये एक मैसेज है, ये बेसिकली एक इस तरह की डायनेमिक्स है, बहुत ही डिफरेंट डायनेमिक्स है जिसमें जो हमारी हमारी जो फैमिली थ्योरी है उसमें भी एक गॉटमैन थ्योरी आती है जो ये कहती है कि गॉटमैन थ्योरी बेसिकली होती है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप किस तरह से इस सिस्टम को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं, जिसमें एक मैनेजर या हेल्पर ये वाला रिलेशन ना दिख के, या मास्टर एंड मेड ये वाला रिलेशन ना देख के, मास्टर या सर्वेंट ये कह सकते हैं, बराबरी का एक रिलेशन सामने हम प्रेजेंट करें।
0: ठीक है,
1: और जो आगे अगर हमारे बच्चे होने वाले हैं तो उन बच्चों के लिए भी एक साइलेंट एक पॉजिटिव मैसेज जाए, प्लस जो बाकी घर के फैमिली मेंबर्स हैं जिस घर में शादी हुई है सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक प्रैक्टिकल तरीके से जो नया मेंबर है उसके
0: उसका वेलकम करें, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटती हूं एक बार। रेखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेखा जी, किस मामले में आप कैसे इस पूरे मामले को पहली बात तो आप देखती हैं, और कोर्ट के इस फैसले को थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, क्योंकि सवाल बहुत से हैं। 23 की उम्र में शादी हो जाना, कुछ ही महीनों बाद दोनों अलग हो जाते हैं, गुजारे भत्ते की बात होती, अब जाके 24 साल बाद कोर्ट ये कह रहा है कि ये कोई दलील नहीं बनती है तलाक की।
2: देखिए आजकल एक जो कोर्ट्स का जो एटीट्यूड आ गया है वो एक बहुत अलग तरह का प्रोग्रेसिव तरीके का एटीट्यूड आ गया है। और जैसे कि अभी साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा कि शादी को चलाना दोनों की जिम्मेदारी होती है, पति की भी और पत्नी के भी, किसी एक पक्ष को टोटली जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। और कोर्ट ने कोर्ट के सामने क्या तथ्य पेश करे गए थे दोनों साइड्स के अंदर, ये कहना कि जी पति के फेवर के अंदर ये केस को जाना चाहिए था या पत्नी की फेवर के अंदर जाना चाहिए था, दोनों बातें कहना बहुत मुश्किल है जब तक हमारे सामने फाइल नहीं हो और हम सारे फैक्ट्स को ना पढ़े कि कोर्ट ने जो अपने फैसला दिया किस आधार के ऊपर जाके दिया। आफ्टर ऑल इतना लंबा जो समय निकल गया इस शादी को भी, तो उसके अंदर जो एक ह्यूमन एलिमेंट जो है जिसको हम कहते हैं कि जिंदगी निकल गई, पति की भी निकल गई और पत्नी की भी निकल गई, और आखिर के अंदर आज कोर्ट ने एक अपना अपने विवेक के अंदर जो फैसला करा, तो इसके अंदर कोई भी किसी पक्ष के साइड लेना बहुत मुश्किल होगा कि भी पति के हक के अंदर होना चाहिए था, पत्नी के हक के अंदर होना चाहिए था। कोर्ट ने हमारा जो लीगल प्रोसीजर है, अगेन यही बात को बताता है कि हमारा जो लीगल प्रोसीजर लंबा बहुत है, बहुत इसके अंदर टाइम लगता है, और उस लंबे टाइम के अंदर बहुत सारी जो जो डेवलपमेंट्स लाइफ की जो होती हैं वो आपकी लाइफ को मोड़ देती हैं। उस जब तक अगर आपका समय से फैसला नहीं आए, अगर कोर्ट अब समय से फैसला नहीं देती है किसी भी चीज का, तो बहुत

0: ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट जो होता है, लाइफ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, उनको बहुत तकलीफ होती है। परंतु अभी कोई भी इस पक्ष को कहना मुश्किल होगा फॉर मी एज अ लॉयर, अग जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना, जब तक मैं सारी बॉम्बे बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जजमेंट है, पहली बात तो मैं उसको डिटेल में ना पढ़ लूं, और क्या इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कोर्ट के सामने क्या एविडेंस थे, क्या तथ्य थे, उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, परंतु जरूर ये मैं कह सकती हूँ कि दो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो एक बराबरी का रिश्ता है,
1: ठीक है
0: और कोर्ट्स
1: रेखा
0: भी
1: जी।
0: उसको इसी बात से जब को देखती हैं कि इस बराबरी को रिश्ते से कैसे चलाया जाए, और अगर कोई भी पार्टी इसके अंदर उस बराबरी के रिश्ते को इज्जत के साथ पे रिस्पेक्ट और प्यार के साथ अगर नहीं चलाती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम अपने सामने देख ही रहे हैं, कि जो इसके अंदर जिंदगियां जो खराब होती हैं आपके
1: ठीक है,
0: साथ साथ आपके जो परिवार इन्वॉल्व होते हैं उनकी कितनी कितनी प्रॉब्लम सबको आती है।
1: एक बार रेखा जी, मैं चाहूंगी कि जो जो कोर्ट में या फिर इस पूरे केस को जिस तरीके से चला पूरा, एक बार जरा मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देती हूँ। बरखा जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। रेखा जी, साल 2002 में दोनों की शादी होती है, कुछ ही महीनों बाद पत्नी अपने घर चली जाती है। मामला ये होता है कि पति और पत्नी के बीच में अनबन होती है। ये आधार कोर्ट ने बनाया कि देखिए ये वो समय होता है जब पति और पत्नी दोनों सेटल हो रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, लेकिन तब वो पत्नी पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप घर का काम नहीं करते हैं, सीनियर्स या एल्डर्स की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, फिर उसके बाद पत्नी चली जाती है। 2004 में फैमिली कोर्ट एक्सेप्ट करती है, इस तलाक की अर्जी को मंजूरी देती है। 2010 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसको लेकर 2010 में ही महिला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। 2026 हाई कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते के पक्ष में फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि विवाद शादी की शुरुआत में हुआ और जब दोनों तालमेल बिठा रहे थे। ये पूरा एक तरीके से, इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं?
0: देखिए, जो फॉर्मेटिव इयर्स शादी के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब जो बुनियाद शादी की जो रखनी होती है, बिकॉज दोनों अपने अपने अपने अपने जो जिन परिवारों से आए हैं उनकी क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या सोशल बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और क्या इमोशनली और जो इमोशनल क्वोशेंट जो हर शादी के अंदर इन्वॉल्व होता है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है पति पत्नी के रिश्ते को बना के रखने के अंदर, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज करा, और जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं या हम बचपन में देखते थे कि गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि शादी हुई और उसके बाद दोनों हमेशा के लिए हैप्पी एंड दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर।
1: ठीक
0: ये
1: है,
0: शादी के अंदर एंड दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर की थ्योरी जो थी वो सिर्फ बचपन के अंदर सुनते हुए अच्छी लगती थी कि शादी और उसके अंदर ना जो थे वो लव वर्ड्स की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी। हकीकत जो होती है वो बहुत बहुत डिफरेंट होती है। फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ मैरिज होते हैं, उसी के अंदर रिश्ता जो है बनता है या बिगड़ता है। और
1: बिल्कुल
0: अगर कोर्ट ने ये कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ मैरिज के अंदर थी, शुरू शुरू के अंदर आई थी, तो मैं उसका एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, ये बहुत बहुत करेक्ट फैसला है
1: ठीक
0: टू
1: है,
0: दैट एक्सटेंड कि यस, बिगनिंग ऑफ मैरिड लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और
1: बिल्कुल
0: उसी से आगे दोनों के रिश्ते की जो जो बुनियाद है जो और कहाँ पे उनका रिश्ता उनका लिया जाएगा, ये उसी के फॉर्मेटिव इयर्स
1: आधार
0: के ऊपर
1: पर,
0: ही डिपेंड
1: बिल्कुल
0: करता
1: उसी
0: है।
1: आधार। अब बरखा जी, आपको इंक्लूड करती हूँ। देखिए, 2026 में ये फैसला आता है, 2010, 2004 में जब मामला फैमिली कोर्ट में जाता है। देखिए, फैमिली कोर्ट में बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, मनीषा जी भी यहां पर बैठी हैं, फैमिली काउंसलर रही हैं, बरखा जी आप भी ऐसे मामलों से जुड़ी हुई हैं। आज कोर्ट ये कह रहा है कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, क्या फैमिली कोर्ट को ये बात समझ में नहीं आई थी कि फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं? अगर तब दोनों की काउंसलिंग कर दी जाती तो आज जो 24 साल कोर्ट के चक्कर लगाते झगड़े में बीत गए दोनों के, तो हो सकता है कि शुरू में दोनों की अनबन होती, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते, लेकिन बाद में हो सकता है दोनों सेटल होते। आज कोर्ट का फैसला देखिए कितना बढ़िया है कि आधार नहीं है, और ये वाजिब भी है, ये हर कोई इस बात को जानता है कि शुरुआत में चाहे वो दो दोस्त हो, चाहे वो दोनों पति पत्नी ही क्यों ना हो, वक्त लगता है, समय लगता है किसी रिश्ते को बनाने में, दोनों को समझने में, और कुछ ही महीनों बाद अगर पत्नी चली जाती है, फैमिली कोर्ट में मामला जाता है, क्या वहीं पर काउंसलिंग करके दोनों को समझाया नहीं जा सकता था? 24 साल
0: मैंने
1: लगते ही नहीं।
0: अनगिनत, नवज्योति मेरी आवाज आ रही है
1: बिल्कुल
0: जी, मैंने अनगिनत बार एक बात कही है आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले शादी वो दो लोग करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है। अपनी मेच्योरिटी जब आपको आ जाए तब आप शादी के बंधन में बंधिए, कोई जल्दी नहीं है। इंडिपेंडेंट वुमेन, मॉडर्न वुमेन बहुत अच्छा कर रही है, वो चांद तारों तक पहुंच चुकी है। दूसरी बात, 6 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, तो
2: तो कोर्ट में तो सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो कम से कम अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बैठना चाहते, उनकी कोई राय नहीं सुनना चाहते, उनके साथ अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते, जो भी आपकी लाइफ में इनिशियल डेज में प्रॉब्लम आती है मैरिज में, तो आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आप इस पूरे मुद्दे पर आपस में बैठ करके बात करें। और अगर बात ना बने, आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं चल सकते, कोई जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग लोग एक जगह शादी के बंधन में बनने के बाद भी अच्छा करें, आपको लगे तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाएं, जिससे कि आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड, जो कि आप हम सब यहाँ बैठे हैं इस बात को बहस करने के लिए, लेकिन गोल्डन पीरियड तो निकल गया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों का गोल्डन पीरियड निकल गया लिटिगेशन में। तो हम इससे बेहतर हैं म्यूचुअल डाइवोर्स में जाए, उसमें आप जल्द से जल्द आपको डाइवोर्स मिल जाता है, आप सेकंड मैरिज करना चाहें या ना करना चाहें ये आपकी इच्छा है। अगर मैं इसके लिए भी बोलूं तो अगर पत्नी घर की मेड नहीं है तो पति भी कोई लाइफ टाइम एटीएम या कोई पेचेक नहीं है। शादी एक पार्टनरशिप है और दोनों को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी कि बहुत ज्यादा है कि एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। कानून जब एक तरफा चश्मा पहन लेता है तो पुरुषों को मानसिक क्रूरता के बारे में कहते हैं और ये बातें बहुत उठती हैं, लेकिन त्रिशा जैसे भी केसेस हैं जहां पे लड़की आज मर चुकी है जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनिशियल डेज में हमने काउंसलिंग क्यों नहीं करी, और अगर नहीं रह पा रही तो हमने अलग अलग क्यों नहीं कर दिया, हम म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ क्यों नहीं पढ़ते। डाइवोर्स को टैबू ना बनाएं, और ऑलरेडी डाइवोर्स केसेस बहुत हैं, कोर्ट के लाखों कोर्ट के अंदर है, लाखों कोर्ट के बाहर है। मैं ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो जबरदस्ती मजबूरी में रह रहे हैं क्योंकि उनको समाज का डर है या कोई और डर है या अपनी उनकी जॉब चली जाएगी, कई ऐसे डर है जिसकी वजह से वो एक साथ रह रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को तूल दिया जा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाए। जब हम कोई भी लड़की या लड़का बॉस के साथ काम करता है ऑफिस में, तभी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि वहां पर हमको लगता है कि हमने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। तो ऐसे ही विवाह के नाम की संस्था में भी दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए, टाइम देना चाहिए और गिव एंड टेक नहीं करना चाहिए। गिव करो पहले गिव सम टाइम टू द रिलेशनशिप, उसके बाद एक्सपेक्ट करना शुरू करना चाहिए, जबकि हमारा डे वन से एक्सपेक्टेशन मोड में होते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, तो ये चीजों को हमें बदलना होगा।
1: इसीलिए देखिए, इसीलिए आप देखिए बरखा जी, 2002 में शादी हुई जब इस तरह का कंसेप्ट नहीं था कि आप बच्चों की काउंसलिंग कर सके, तब ये वो समय था जब देख लिया या फिर अगर आपस में भी आपने पसंद कर लिया तो नॉर्मल शादी हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में, इतने सालों बाद आज की तारीख में आप जैसे तमाम काउंसलर्स मौजूद हैं, हम बार बार इसको लेकर चर्चा करते हैं कि जब भी शादी दो परिवारों का भी बंधन होता है, पहले दोनों परिवारों की काउंसलिंग हो, लड़के लड़की की काउंसलिंग हो, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप जा रहे हैं, आप शादी कर सकते नहीं कर सकते। कोर्ट का ये फैसला बहुत सही है, जिस तरीके से कहा कि कोई आधार ही नहीं बनता है। एक बार रुक्मिणी सिंह, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? 16 साल बाद तलाक का फैसला रद्द, अब वापस से पति पत्नी के तौर पर रहना, आप ये सोचिए कि मुश्किल से 2002 में शादी हुई, शायद 2-3 महीने भी साथ नहीं रहे होंगे, इतनी उम्र 24 साल बीत गए, कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। आज कोर्ट कह रहा है कि जिस आधार पर आप कोर्ट में आए थे तलाक लेने के लिए, वो तो कोई आधार ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आज की डेट में हम चारों भी यहां पर बैठकर हम सब बात कर रहे हैं तो वाकई आधार नहीं बन रहा है। क्यों नहीं परिवार ने इसमें इंटरफेयर किया? क्यों नहीं फैमिली कोर्ट ने, शुरू में ही जब वो फैमिली कोर्ट में गए थे, क्यों नहीं वहीं पर काउंसलिंग हो गई?
0: देखिए, मैं माया सिंह हूँ, मैं रुक्मिणी सिंह नहीं, मैं माया सिंह हूँ। ये बात सही बात है। देखिए, जिस तरह से मैंने बरखा जी को भी सुना, काफी हद तक मैं देखिए बहुत सारे, क्योंकि हम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं और चूंकि ये एक अलग तरह का मसला है, मैं हमेशा जैसे कुछ हद तक मैं बरखा जी से भी सहमत होती हूँ कई इतने मसलों पे, क्योंकि आप ये समझिए, शादी एक बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसे दो महिला और पुरुष मिलकर एक सक्सेसफुल रिश्ते की बुनियाद रख के उसको चलाते हैं, घर परिवार को चलाते हैं। अगर लेकिन हमारे समाज में यही टैबू क्यों बना हुआ है कि अगर महिला की शादी हो गई तो वो जाके सास ससुर का खाना ही क्यों नहीं बनाएगी, उसी की यही ड्यूटी रह गई है। वो नौकरी भी करे, आप देखिए नौकरी भी करती है और उसको शाम को वेट करती है सास बैठ के कि बहू आएगी और मेरे लिए खाना बनाएगी और सर्व करेगी। तो ये टैबू अब हट जाना चाहिए। देखिए जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर महिला पुरुष एक समान है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल सुप्रीम जो कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया बिल्कुल सही ही दिया है कि आप जिस तरह से अब बात बात देखिए मसला बहुत 20-22 साल 24 साल पुराना है और इस मसले से अगर वो एक अच्छी तरीके से साथ रहती तो इतना मसले से उसको इतने लंबा पीरियड नहीं निकलना पड़ता। तो बेहतर है वो एक सक्सेसफुल शादी करती, इंजॉय भी करती, घर परिवार बनाती, सब कुछ करती, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए बराबर है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि देखिए हर व्यक्ति अपना अपना अधिकार की मांग करता है चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लेकिन अपने कर्तव्यों से हमेशा इति शर्ले कर लेता है। अरे भाई तुम अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटी प्रॉपर कीजिए, तो जब आप ड्यूटी और प्रॉपर करेंगी तो आपको अधिकार मिल जाएंगे चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ये दोनों के लिए मायने रखती है बातें। अब चूंकि ये मसला बात कर अब बरखा जी ने तो पुरुष वर्ग की रख दी, मैं महिला की वर्ग की बात रखने पर बढ़ती हूँ कि यही टैबू क्यों हमारे समाज में कि नहीं रसोई संभालना सिर्फ एक महिला का ही हक है, रसोई में खाना बनाना ये है, पुरुष अपनी तोहिन क्यों मानता है रसोई में बराबर में हाथ बटाने, बहुत सारे पुरुष हाथ नहीं लगाते रसोई में, बहुत सारे पुरुष बराबर बात करते हैं। आप अगर चाइना में जाइए देखिए वहां पे इतना अच्छा सिस्टम है, वहां महिलाएं पुरुषों के बराबर इतने भारी भारी काम करती हैं, पुरुष दिन में रात में एक दोनों अलग अलग शिफ्ट बांटी हुई, अगर महिला काम कर रही है दिन में तो पुरुष रात में बच्चे संभालता है, ऐसे ऐसा कि दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं कि महिला अगर बाहर है तो पुरुष घर संभालता है क्योंकि छोटा परिवार है एक बच्चा। तो ये भारतीय समाज की जो सोच है कि महिला अगर रहेगी और महिला के लिए रसोई एक निर्धारित कर दी गई है, ये गलत बात है कि वो सास ससुर को भी पाले करे, नौकरी भी करके लाए, पैसे भी कमाए, बच्चे भी पाले और घर के बाहर के काम करे।
1: नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही, आज आप ये जो तमाम बातें कह रहे हैं ये आज की तारीख में बहुत अच्छी हैं, बहुत सही भी हैं, जिसको लेकर चर्चा हम करे हैं। लेकिन मनीषा जी बड़ी बात यह है कि आप देखिए शादी कब हुई थी, क्या 2002 में हमारे समाज में या फिर फैमिलीज में इस तरह की सोच आई थी कि काउंसलिंग जैसा भी कोई शब्द होता है, साइकोलॉजिस्ट भी कोई होता है जिसके पास जाके हम अपनी बात करें? क्योंकि उस दौर में अगर हम 2002 वाले पूरे एरा की बात करें, वहां तो यही होता था कि ठीक है शादी हो गई तो महिला की जिम्मेदारी प्रायोरिटी महिला की घर होनी चाहिए भले ही वो वर्किंग है। यहां पर क्योंकि समय बदला, जमाना बदला, इतने साल बाद ये फैसला है, आज की तारीख में दोनों मियां बीवी दोनों बराबर ही घर का सारा काम करते हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसीलिए कोर्ट ने आधार बनाया फैसले का।
3: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2002 तक काउंसलिंग वगैरह तो सब कुछ चल रहा था, पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा अवेयरनेस देखिए नहीं थी और लोग भी इतने ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे कि अगर शादी हुई है और तभी घर का मसला है तो बाहर किसी और अनजान व्यक्ति के साथ में डिस्कस करना कितना हद तक सही है कितना नहीं, पब्लिक हो जाएंगी चीजें, बातें बनेंगी और इस तरह के जो सोशल टैबूज होते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत स्ट्रांगली रहते हैं, बहुत डीपली रहते हैं और आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि अब ये चीजें खत्म हो गई हैं, खत्म नहीं हुई हैं, हाँ कम हो गई हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है जो एक ऑफिशियल जो डिवोर्स है उनका इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के डेमोग्राफिक्स आप चेक करिएगा तो इंडिया में 1% भी शायद ऑफिशियल डिवोर्स 1% भी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल सेपरेशन बहुत है और ये केवल इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर है और लोग चाहते नहीं है कि हाँ ये सब चीजें लोग बातें बनाएं और ये सब हो। और 2002 से लेके अब 2026 है तो इतने सालों में काफी परिवर्तन आया है, लेकिन स्टिल जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक वैसे ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, करना चाहते भी हैं क्योंकि एक ये बहुत ही पवित्र एक ये रिश्ता है, लेकिन इसमें कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वो उस तरह के रूल्स में थोड़े से चेंजेस आने चाहिए।
1: नहीं लेकिन उसमें काफी बदलाव आया भी है। चलिए आगे माया जी और बरखा जी से बात करेंगे, लेकिन एक बार रेखा जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। 16 साल बाद तलाक का फैसला रद्द हो गया है, अब ये कहा जा रहा है कि 25 साल बाद पति पत्नी दोनों एक साथ रहें, कितना प्रैक्टिकल होगा ये दोनों के लिए? क्या हम ये माने, हालांकि कोर्ट ने फैसला तो सही सुना है, क्या हम ये माने कि अब दोनों में मैच्योरिटी आ गई होगी? और एक सबसे बड़ी बात ये कि कोर्ट ने इस आधार को ही कैंसिल कर दिया है कि शुरुआती दिनों में अगर आप में अनबन हुई है तो आप उसको आधार बनाकर तलाक ले लीजिए, ये एक क्या ये फैसला एक तरीके से नजीर बनेगा? रेखा जी
0: देखिए मैं यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि एक पुराना एक लीगल कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू बी डन, मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय लगना भी चाहिए कि हुआ है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर एक और कानूनी बात जो कहूंगी, जो हम कोर्ट में जुमला कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आपको बहुत समय के बाद के अंदर आपको कोई न्याय मिला तो क्या वो न्याय वाकई में अब आपके लिए कुछ मायने रखता है? तो अब अभी मैं बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं इसके ऊपर, तो कोर्ट का जो फैसला है वो सर आंखों पर है, कोर्ट की बात को रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु जो समय जो निकल गया, जो सिर्फ मुझे इस फैसले से थोड़ा सा जो मेरे मन के अंदर जो खटक रही है बात, मैं इस बात को मानती हूँ कि शुरू के सिर्फ फैसले जो शुरू की अनबन होती है वो एक आधार नहीं बनना चाहिए किसी शादी को तोड़ने के लिए या किसी भी साइड को, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, कि उस बात के ऊपर तलाक ले ले, वो बहुत बचपने की और बहुत जल्दबाजी की बात होगी।
1: ठीक है।
0: और हर एक रिश्ते के अंदर टीयरिंग प्रॉब्लम्स आती है, दोनों को कोशिश करनी चाहिए। पर जितना जो समय निकल चुका है, आपने मुझे पूछा कि क्या कितना प्रैक्टिकल होगा उनके लिए रहने के लिए, मैच्योर तो जरूर हो गए होंगे। कहते हैं कि एक अगेन इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस लीड्स टू एंचांटमेंट, दूर दूर रहते शायद प्यार बढ़ा होगा, पर कई बार जब दूर दूर रहते तो बहुत दूरियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोनों को इतने सालों के अंदर अपना अपना जीवन, मतलब उस समय वो बहुत यंग थे, आज इतने सालों के बाद जो है अपनी अपनी सोच और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
1: लड़की की उम्र 23 साल थी उस वक्त, 2002 में लड़की की उम्र 23 साल थी,
0: तो अब वो इतने, अब वो मिडिल एज के हो गए हैं, दे आर नो लॉन्गर यंग, सो नाउ विल इट बी प्रैक्टिकली इजी फॉर देम टू लिव टुगेदर? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर बहुत बड़ी एडजस्टमेंट चाहिए होगी दोनों को।
1: रेखा जी एक चीज और
0: यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, माफ करिए बस इतना सा कंप्लीट करना चाहूंगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो पावर है आर्टिकल 142 के अंदर, जो पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, वो हाई कोर्ट को नहीं है, और वो है कि जहां पर जब तलाक की बात होती है, कि इस केस के अंदर जरूर जो तलाक का जो केस फाइल किया था पति ने, वो ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूएल्टी किया होगा कि वो मेरी माँ बाप को ध्यान नहीं रखती, खाना नहीं बनाती वगैरह वगैरह,
1: ये भी था बीच में,
0: तो है ना, तो इस तरह की चीजें कि जिसको कहते हैं कि मेंटल क्रूएल्टी, तो मेंटल क्रूएल्टी के आधार के ऊपर करी, जो एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक ग्राउंड है जिसके ऊपर आप डाइवोर्स को क्लेम कर सकते हो।
1: ठीक है।
0: परंतु एक ग्राउंड ऐसा भी है जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, हमारे किसी भी कानून में नहीं है, वो है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। वो अभी तक हमारे कानून में नहीं है, वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जहां पर अमेरिका के अंदर शादियों को इस बात पे खत्म रद्द कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं नो फॉल्ट, किसी की गलती नहीं है, ना तुम्हारी गलती है, ना पति की गलती है, ना पत्नी की गलती है। अब इतने सालों के बाद क्योंकि समय इतना निकल चुका है, तो इस शादी को ये कह के खत्म कर दिया जाता है कि इसमें कुछ बचाने लायक नहीं बचा है, और ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और इसीलिए कई सारे केसेस मेरे सामने मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे आए हैं जहां पे इसी जैसे अब मुझे लगता है कि फर्ज करिए कि पति इस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये तो अभी सिर्फ हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: अभी सुप्रीम कोर्ट बची है, अगर पति सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जी इतना लंबा समय निकल गया और आज इतने लंबे समय के बाद में मेरी डाइवोर्स का जो रिलीफ था वो रद्द कर दिया गया, तो क्या प्रैक्टिकली अब मेरे को इसी पत्नी के साथ में रहना मेरे लिए शायद और भी ज्यादा मेंटल क्रूएल्टी मेरे ऊपर होगी?
1: ठीक है।
0: तो कोर्ट ऐसे केसेस के अंदर और दोनों तरह के फैसले हुए हैं।
1: हाँ।
0: कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 के अंदर पावर को एक्सरसाइज करते हुए शादियों को सेटिसाइड भी किया हुआ है, ये कह के कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है। हम ना तो कह रहे कि लोअर कोर्ट का फैसला सही था, ना हम कह रहे कि गलत था, हम इसको इस नई जो आधार है डाइवोर्स का, उस आधार के ऊपर हम डाइवोर्स ग्रांट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले भी आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया है और कहा है कि नहीं, इस केस में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज नहीं है और मेंटल क्रूएल्टी नहीं है, पत्नी ने मेंटल क्रूएल्टी कितना भी समय निकाल।
1: हाँ, रेखा जी एक ब्रेक लेना है, ये बहुत अहम सवाल है कि इतने साल बाद कितना प्रैक्टिकल होगा कि दोनों साथ रह पाए, और आप अभी कह रहे हैं कि ऑप्शन अभी सुप्रीम कोर्ट का भी रहता है, तो ऐसे में एक और चीज जो आप सभी से समझना चाहेंगे, इसमें गुजारे भत्ते का प्रावधान कहाँ आता है, कितना आता है, यही से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये फैसला किस तरीके से बाकी दूसरे मामलों में नजीर बनेगा इसी को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि 25 साल बाद कोर्ट ने कहा है कि तलाक के जिस ग्राउंड को लेकर तलाक फाइल किया गया था वो आधार ही नहीं बनता, इसलिए दोनों को साथ रहने का फरमान सुनाया गया है। चर्चा हो रही है इस पर। हालांकि 16 साल तक तलाक का ये पूरा फैसला चला है, पूरा मामला कोर्ट में चला है, पहले फैमिली कोर्ट में फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में। एक बार बरखा जी आपके पास आना चाहूंगी। अब कोर्ट ये कहती, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले रेखा जी ने इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि हालांकि ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा, लेकिन अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इसी फैसले को देखें, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो पाएगा कि 25 साल बाद 24 साल दोनों एक दूसरे के सामने कोर्ट रूम में खड़े रहे और अब कोर्ट कहता है कि नहीं, ये आधार ही नहीं है तलाक का, इसलिए आप दोनों को साथ रहना है। अगर कोर्ट के इस फैसले को ये दोनों मानते हैं, पहले तो प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है कि ये दोनों साथ रह पाएंगे?
1: नो, मेरे पास ऐसे तमाम केसेस हैं, हजारों की संख्या में, जहां पर जब दूरियां बन जाती है नहीं रह पाते। लड़का सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अगर नहीं जा पाएगा तो भी ये रह नहीं पाएंगे। उसके पास लीगल रेमेडीज हैं बहुत, लेकिन रह नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत दूरियां बढ़ चुकी होती हैं। और मैं एक बात यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगी जो कि मैंने हजारों बार कही है, टू मच ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लॉज इज ब्रेकिंग द होल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, कुछ नहीं मिलता। मेरे पास इतने केसेस हैं जहां पर वो एक लॉयर से दूसरे लॉयर से तीसरे चौथे पांचवे हॉप करते रहते हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, कई तो मर जाते हैं। और तभी एनसीआरबी का डेटा जो है बहुत भयावह है, लेकिन वो डिस्कशन कभी और करेंगे। लेकिन थक हार करके जब उन्हें पता चलता है कि हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक समाज में हमारे को बैड नेम भी मिल गया, तो वो अपने आप को बड़ा अनसक्सेसफुल समझते हैं और ये समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कई तो अपने कई माँ बाप भी कोसना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि भाई बहन भी अलग हो जाते हैं जब इस तरीके का कोई मसला आता है। और जो छोटी बहनें होती हैं उनकी शादियों बहुत मुश्किल आ जाती है, चाहे वो लड़की वापस आ जाए घर में चाहे लड़के का डिवोर्स हो। दोनों केसेस में जो छोटी लड़की होती है घर में उसके लिए रिश्ते नहीं आते हैं, उस खानदान को बोला जाता है कि इसमें लड़की डाइवोर्सी है, इसमें शादी नहीं करेंगे हम, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
0: माया जी आपसे इसका एक आपसे जवाब चाहूंगी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए सोसाइटी में सबको पता होता है कि दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद कोर्ट ये फैसला दे दे, पहले तो क्या आपस की बात चलो एक है कि पत्नी और पत्नी क्या वाकई दोनों रहेंगे, दूसरा फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, कितना प्रैक्टिकल होगा ये?
2: देखिए प्रैक्टिकल डिसीजन पे अगर हम बात करें, मैं जैसे बरखा जी का केस बहुत होते हैं और हम लोग ये आए दिन केसेस देखते हैं, बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि जो कोर्ट से बाहर जाके सेटलमेंट हो जाता है और दोनों लोग साथ में भी रह जाते हैं, कोर्ट के बाद में एग्रीड कर देता है दोनों का साथ रहना भी। ये बहुत सारे केसेस में हुआ है बिकॉज उनका मेच्योरिटी लेवल या सारी चीजें या सामाजिक दबाव या परिवारों का दबाव इसमें बहुत बड़ा काम करता है, बहुत मायने रखता है परिवार को चलाने के लिए। लेकिन चूंकि अब 24-25 साल से अब ये लोग अलग रह रहे हैं तो ये दोनों, कोर्ट कुछ भी कहे लेकिन दोनों की मानसिक जो पीड़ा है या मानसिक स्थिति है वो दोनों खुद समझ सकते हैं और दोनों खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनके लिए रहना साथ बेहतर है या फिर आगे जब 24 साल से लड़ाई लड़ रहे आगे 10 साल और लड़नी है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये दोनों को साथ में ये फैसला इन दोनों के ऊपर छोड़ना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि इन दोनों की मानसिक पीड़ा को झेलते हुए लोग साथ रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। देखिए सोचो रहना होता तो अब तक रह लिए होते, हाई कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ही नहीं जाता मसला, और अब नहीं रहना तो चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए कहीं चला जाए, दोनों मसले देखने वाली बात है। हम इस कपल की बात कर रहे हैं। और रही दूसरे मसले, मैंने कहा ना बहुत सारे मसले शुरू के, जब देखिए एक लड़का लड़की की शादी होती है क्योंकि लड़का अपने परिवार में रहता है, लड़की वहां जाके एडजस्ट करती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लमों में एडजस्टमेंट होती है। ये दोनों का मेच्योरिटी लेवल होता है कि उस सिचुएशन से कैसे निकले, ये सबकी शादियों में होता है। इवन मैं अपना भी एक्सपीरियंस रखूँ शादी के, इसलिए हर लड़की को नए परिवार में जाके सामंजस्य से बिठाना पड़ता है और वो उसके लिए थोड़ी स्थिति अलग होती है। और वो 2 साल अगर वो शादी निप जाती है तो वो ताम उम्र शादी निपती है और बहुत खुशहाल पूर्वक निपती है, लेकिन वो 2 साल का पीरियड जो होता है जिसके लिए फैमिली कोर्ट बने हैं, फैमिली काउंसिलिंग बनी है, जिसके लिए दोनों तरफ से बात होती है बैठ के, अगर वो वहीं से बेटर चीजें समझ जाए तो समझ जाती है, वरना 24 साल सुप्रीम कोर्ट बोल दे, 10-34 साल बाद हाई कोर्ट भी जो भी बोले, कोई कुछ नहीं कर सकता इस मसले में। लेकिन अब इस टैबू से हमें बाहर आना चाहिएगा। हाँ। कि नहीं,
0: नहीं अब तो समय
2: रसोई घर
0: काफी
2: सिर्फ
0: बदल गया
2: महिलाओं के लिए।
0: माया जी, अब देखिए आज की
2: जी
0: तारीख में, पहली बात तो लड़का लड़की, आज की तारीख
2: नहीं,
0: में
2: अभी भी है,
0: साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की बहुत बड़ी
2: अभी
0: भूमिका
2: भी
0: हो गई है।
2: नहीं, अभी भी है। देखिए मैं अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे परिवारों को जानती हूँ, बहू वर्किंग है, सास बैठती है, सुबह का मैं करूंगी, शाम का तुम आगे करना, ये आज भी है। मैं बहुत
0: बरका
2: सारे
0: जी एक
2: परिवारों को
0: सेकंड,
2: दिखा दूंगी, हाँ ये अभी भी है। आज की डेट, करंट आज की डेट तो बताती हूँ कि अगर बहू वर्क करने जा रही है तो
0: ठीक
2: सुबह
0: है,
2: कहती है शायद सुबह का मैं संभाल
0: एक्सेप्टेंस
2: लूं बच्चे
0: रहती
2: को,
0: है
2: शाम का
0: कि
2: तुम करना।
0: एक्सपेक्टेशंस रहती
2: यस
0: हैं कि वो आके करे। जी बरखा
2: यस
0: जी, जल्दी से फिर मैं मनीषा
1: जी,
0: जी के पास
1: बस
0: जाऊंगी।
1: मैं बस नवजोत जी मैं एक सोल्यूशन बताना चाह रही थी, तब तक आपने बदल दिया। मैं ये कह रही हूँ कि एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि जो जजेस है ना, जो इतना जो अंतराल आ गया समय का, तो जजेस जो है वो ट्रेन्ड होने चाहिए मैरिजेस को डील करने के लिए। ऐसे स्पेसिफाइड जजेस होते हैं। अब जजेस कभी तो मैरिज वाले ये केसेस देख रहे होते, कभी क्रिमिनल, कभी सिविल। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रेन्ड जजेस जो
0: चलिए
1: हो,
0: इसको
1: जो
0: लेकर मैं रेखा जी से बात करूंगी, बिल्कुल। और उन्होंने शुरू में रेखा जी ने कहा भी था कि आजकल ऐसे बहुत से फैसले आ रहे हैं जो वाकई एक नजीर बन रहे। जी जल्दी से माया जी बताइए।
2: मैं ही कहती, अरे आप जज की बात करें, बेचारे एक दिल्ली के एक जज बेचारे चले गए फैमिली कोर्ट से, परिवार से परेशान हो गए, तो आप ये मत कीजिए। जज और वकील और सब रहते हैं, होते तो इंसान ही है हम, हमारी स्थितियां हमें पता है। जज अमन शर्मा
1: ही नहीं करेंगे,
2: अभी
1: अमन शर्मा जी पत्नी की प्रताड़ना से, मेंटल ट्रॉमा से मर गए। कल भी उनके पिताजी का फोन आया था मुझे कि मेरे बेटे के केस में कुछ नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं ले रहा, प्रिशा शर्मा वाले केस में सुओ मोटो ले लिया, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे वाला बेटा उतना ही इम्पोर्टेंट था, उतना ही प्यारा था, मेरा बेटा 30 साल का था, वो बेचारा मर गया।
0: ठीक है,
1: लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो चाहूंगी
0: मनीषा जी, मैं आती हूँ, एक मिनट वापस से इसी मामले पर रहते हैं। मनीषा जी देखिए, सबकी राय यहाँ पर यही है कि अगर शुरू में काउंसलिंग कर दी जाती, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो शायद मामला 24 साल तक ना चलता। शायद ये भी होता कि बिल्कुल टोटली दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर देते और म्यूचुअली दोनों का ब्रेकअप हो जाता या तलाक हो जाता, या ये भी होता कि दोनों समझ जाते और आज की तारीख में दोनों साथ रहते। जो एक फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, कि एक बार अगर लड़की घर आ गई तो उसके बाद सोसाइटी में पता चलता है, परिवार में, और फिर उसके बाद मामला अगर कोर्ट पहुंच गया, अच्छा डिवोर्स का केस शुरू हो चुका है या फैमिली कोर्ट में चला गया, ये कितना ज्यादा प्रेशराइज करता है परिवार को?
3: काफी ज्यादा प्रेशराइज करता है डेफिनेटली। और यहाँ पे जो पॉइंट आपने बोला है कि इतने साल बाद अब आगे क्या होना चाहिए, जो सवाल आपने पूछा था, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि पर्सनालिटीज का कुछ पता नहीं होता है। सो वो जो दो पर्सनालिटीज हैं और जो उनकी फैमिलीज हैं, सो सबसे पहले हम उन दो लोगों की अगर बात करें, तो वो ये डेफिनेटली डिसीजन उनका है। और इतने साल के बाद भी अगर ये ऐसा हो रहा है, तो वो दोनों आफ्टर ऑल चाहते क्यों हैं, वापस से इस शादी में आना क्यों चाहते हैं, तो यू नेवर नो कि वो उनका पर्पस क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। तो कई बार ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों का डिसीजन बेटर होगा, और परिवारों का जहां तक एक जो जनरल साइकोलॉजी होती है, वो परिवार मैक्सिमम परिवार ऐसे होते हैं जो लड़का और लड़की जो चाहते हैं उसको फेवर करते हैं, अनलेस कोई कुछ इस तरह का केस ना हो कि भाई जो आजकल डिफरेंट रिलीजन में शादी हो जाती है या कुछ और वजह ना हो। तो अगर इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं है, अगर कुछ और रीजन नहीं है, सो डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट करती है। और वही जो मैंने पहली बात

0: करी थी, फैमिली सिस्टम थ्योरी जो होती है उसमें अगर एक मेंबर फैमिली का किसी भी तरह के डिस्ट्रेस से गुजर रहा है या किसी भी तरह की चैलेंजेस उसको आ रहे हैं, यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बाकी फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको एडजस्ट कराने की। और उसको कुछ जो काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग हमारी घर में ही होनी चाहिए अगर फैमिली एक दूसरे के क्लोज है। और डेफिनेटली अब अगर ऐसा लग रहा है उन दोनों ही लड़का और लड़की को कि वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो एक अगर अनबायस्ड ओपिनियन वो ले लेते हैं दैट विल बी द बेस्ट बेस्ट थिंग। एंड उनको क्यों वो वापस आना चाहते हैं और क्या वो आगे आने वाले 10 सालों में एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये
1: ठीक
0: बहुत
1: है, ये
0: जरूरी
1: बहुत
0: है
1: इंपॉर्टेंट
0: जानना।
1: है। अब रेखा जी आपके पास आऊंगी, देखिए दो चीजें। अब मान लीजिए कोर्ट ने तो कहा कि वो आधार नहीं बनता इसलिए आप साथ रहिए, और जाहिर सी बात है कि दोनों का आपसी बातचीत होगी, ये दोनों आपस में तय करेंगे और हो सकता है कि इसके बाद म्यूचुअली दोनों डिसाइड करें कि ठीक है हम नहीं रहते। अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोर्ट ने यहां पर, क्योंकि देखिए गुजारा भत्ता नहीं फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था इसलिए हाई कोर्ट में गए थे, बात गुजारा भत्ते की हो रही थी, तो इसमें उसका क्या प्रावधान फिर ऐसे में रहता है?
2: देखिए, जो अगर लड़की ने 125 धारा 125 सीआरपीसी के अंदर भी अगर वो मेंटेनेंस का केस उसने फाइल किया है, तो मुझे ये आपकी जो आपने जो बताए हैं फैक्ट्स, उसे ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो गुजारा भत्ता उसने कौन से केस के अंदर मांगा था। उसने इसी तलाक के मुद्दे के अंदर मांगा था कि क्या उसने कोई सेपरेट केस फाइल किया था? तो जो गुजारा भत्ता, जो अगर डाइवोर्स का केस खत्म हो गया है, जैसे अब सेट असाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो पुराने जो ऑर्डर्स है वो भी सारे खत्म हो जाते हैं, तो जो गुजारा भत्ता है उसको, वो तो पति की जिम्मेदारी बनती ही है कि गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस, जो तीन बेसिक राइट्स है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो पति की जिम्मेदारी है। जो गुजारा भत्ता, क्या अगर पत्नी ने कोई सेपरेट केस के अंदर किया था,
1: उसी के लिए पत्नी ने कहा था कि जब वो फैमिली कोर्ट का फैसला आया तो पत्नी ने कहा था कि गुजारा भत्ता मिले, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं मिल सकता है। उसके बाद जब वो हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने उसमें फिर गुजारे भत्ते को एड ऑन किया था,
2: एड ऑन करती। तो जो गुजारा भत्ता अगर कोर्ट ने मेंटेन किया है कि उसको देना है पति को, तो अगर जब उनका डाइवोर्स भी सेट असाइड हो गया, तो जो मेंटेनेंस का प्रावधान है वो तो बरकरार रहेगा, वो ऑर्डर सेट असाइड नहीं हुआ है। जब तक मेंटेनेंस का ऑर्डर सेट असाइड नहीं होता तो वो ऑर्डर बरकरार रहेगा और पति को उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, उसको अपने, चाहे वो पत्नी उसके साथ रहे या ना रहे। पर यहाँ पर मैं नवजोत जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो बाकी पैनलिस्ट को भी सुना और उन्हीं बात को आगे रखते हुए, जो अब मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि ये जो आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हर शादी के अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, समय देना चाहिए, और इसीलिए शायद हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये प्रावधान है सेक्शन 14 के अंदर कि आप शादी के एक साल के अंदर अंदर आप केस डाइवोर्स का फाइल भी नहीं कर सकते, आपको एक साल रुकना ही पड़ेगा जिससे आप देख सके कि क्या आप दोनों की एडजस्टमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। परंतु जो इस पर्टिकुलर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जरूर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, कोर्ट का फैसला है सर माथे के ऊपर जब तक वो सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाइड ना हो जाए, परंतु जो काउंसलिंग की आपने अभी बात करी थी, काउंसलिंग तो हर स्टेज के ऊपर होती है, लोअर कोर्ट के अंदर हुई या ना हुई 2002 के अंदर, आज हाईकोर्ट के अंदर भी है। मुझे सिर्फ अपने एक मुझे बहुत कौतूहल है, बहुत क्यूरियोसिटी है इस बात के यहाँ पर कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पार्टीज की, अब भी आज 2026 के अंदर जब ये फैसला आया है, क्या कोर्ट ने एक एकेडमिक एक्सरसाइज तो जरूर कर दी कि डाइवोर्स के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि भाई शुरू शुरू के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये डाइवोर्स लेने का कोई आधार नहीं बनता? पर क्या कोर्ट ने, और मुझे लगता है जरूर किया होगा विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू बॉम्बे हाईकोर्ट, कोर्ट ने ये जरूर पूछा होगा कि भाई चलो अगर हम आज इस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर देते हैं, फर्ज करिए, तो आज दोनों पार्टी से बचा क्या है रिश्ते के अंदर? कोई भी कोर्ट दिलों को नहीं जोड़ सकती है। आज हुआ क्या है, डाइवोर्स का ऑर्डर सेट असाइड हो गया, यानी कि कानूनी तौर के ऊपर वो दोनों पति पत्नी हैं। पर क्या पति पत्नी और कोई कोर्ट ये भी नहीं बोल सकती कि
1: एक दूसरे का सम्मान उस तरीके से कर पाएंगे? लेकिन एक आखिरी सवाल, जल्दी से, वक्त बहुत कम है, कोर्ट के इस फैसले के बाद बरखा जी आप ही से शुरू करूंगी, क्या समान साझेदारी की सोच बढ़ेगी पति पत्नी में और परिवारों में?
3: देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इस केस में भी मेंटेनेंस मिली थी लड़की को, वाइफ को 20,000। अब इस फैसला हो या दूसरे कोई भी फैसले हो, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं और बताती भी हूं सबको कि पहले तो शादी सोच समझ के करिए, अगर कर ली है आपने तो एडजस्ट करिए, हर हालत में एडजस्ट करने की शुरुआत में दिक्कत आती है, और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखेंगे तो सब कुछ सही है,
1: ठीक है माया जी,
3: अच्छा खूबसूरत रिश्ता है। और अगर नहीं हो
1: तो म्यूचुअल, वक्त की कमी है, सबसे एक एक रिएक्शन लेना है माया जी। जमान साझेदारी की सोच बढ़ेगी क्या?
4: या बिल्कुल, मैं कहती हूँ शादी एक बहुत खूबसूरत बंधन है, हर व्यक्ति को शादी करना चाहिए। बरखा जी से डिफर इस बात पे, हर व्यक्ति को शादी करना चाहिए और आपसी समन्वय और प्यार के साथ इसे आगे ले जाना चाहिए। हम सब इसका एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बात अधिकारों की अगर करते हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए, चाहे वो पति के प्रति हो, उसके परिवार के प्रति हो।
1: मनीषा जी
4: की हो तो कहने का मतलब अगर आप
1: मनीषा जी का एक रिएक्शन जल्दी से
0: जी। सो मैं ये कहूंगी शादी तब करनी चाहिए जब आप फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, मैच्योर,
1: ठीक,
0: वरना आप शादी के लिए प्लीज।
1: चलिए इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
7: After multiple assassination attempts, they can't even get.
8: They're reliable.
9: Always when I need them.
6: To live sports action.
10: One hand jam by LeBron on the break.
11: That's another three, Steph Curry.
6: And your favorite music.
12: Well, the dawn begins to crack. It's
6: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: Today.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कामयाबी हासिल करने के लिए जुनून और निरंतर अभ्यास जरूरी है। हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई के इसी जुनून ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। कमल ने पानी के भीतर 86 बार पुशअप्स करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
19: पुशअप वो भी पानी में, आसान काम नहीं है, लेकिन हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई ने अपनी लगन और अभ्यास से न सिर्फ इस मुश्किल काम को आसान बना दिया, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।

0: कमल ने पानी के भीतर 86 पुशअप लगाकर तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड वियतनाम के हनोई में बनाया है। हिसार के आर्यनगर में रहने वाले कमल का ये तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले कमल कलोई ने साल 2020 में एक सांस में पानी के अंदर 21 योगासन कर अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने पानी के भीतर 81 एयर रिंग ब्लोइंग कर दूसरी बार अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अब तीसरी बार पानी के अंदर 86 पुशअप लगाकर उन्होंने अपने गांव और दयानंद महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। कमल की ये सफलता बताती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे।
1: गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर की मशहूर चेरी को सुरक्षित बाजार तक पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तरी रेलवे ने विशेष रेलवे कैरिज के जरिए चेरी की खेप को तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना शुरू कर दिया है।

0: गर्मी के सीजन में मौसमी फलों की मिठास लोगों को खूब लुभाती है और उन्हीं फलों में से एक है जम्मू कश्मीर की रसीली और स्वादिष्ट चेरी। पेड़ों पर लटकती लाल लाल चेरी ना सिर्फ देखने में स्वादिष्ट लगती है बल्कि अपने मीठे स्वाद से लोगों का दिल भी जीत लेती है। गर्मियों की शुरुआत होते ही बाजारों में इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ समेत कई बड़े शहरों में लोग बेसब्री से कश्मीरी चेरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार बढ़ती गर्मी ने चेरी उत्पादकों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि ज्यादा तापमान में चेरी जैसे नाजुक फल के जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। ऐसे में रेलवे ने पहल की और किसानों और व्यापारियों के लिए मददगार बनकर सामने आया है। रेलवे ने विशेष रेलवे कैरिज के जरिए चेरी के खेप को तेजी से मंडियों तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया है ताकि फल की ताजगी और मिठास बनी रहे।
1: चेरी को जो रेलवे से भेजने की जो शुरुआत है वो रेलवे ने लास्ट ईयर करी थी, जिसमें लगभग हमने 14 वीपीज जो हैं बाय रेलवे चेरी की ट्रांसपोर्ट करी थी बांद्रा मुंबई के लिए, और इस वाले सीजन में हम ऑलरेडी 28 जो हैं वीपी के इंडेंट्स वो अब तक रजिस्टर हो चुके हैं रेलवे से चेरी लेके जाने के लिए।
0: बागवानी विभाग ने रेलवे के सहयोग की सराहना की है, क्योंकि समय पर की गई व्यवस्था किसानों के हित में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
2: जैसे लास्ट ईयर ही आपने देखा जो जैसे ड्यू टू हैवी रेन्स जो रहा तो काफ़ी प्रोड्यूस एप्पल का ज़्यादा लॉस हुआ, काफ़ी फायदा होगा इसमें। इस बार जो भी रेलवे का इनिशिएटिव है, लास्ट ईयर भी हुआ तो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इस बार जल्दी, क्योंकि जो कमी पेशियाँ पिछले साल थी वो इस बार दूर की गई हैं।
0: विशेष रेल लॉजिस्टिक्स के जरिए न केवल चेरी की ताजगी बरकरार रखी जा रही है बल्कि जम्मू कश्मीर के फल उद्योग को भी मजबूती मिल रही है। किसानों का हौसला बढ़ रहा है क्योंकि अब उन्हें गर्मी की वजह से उनकी फसल खराब होने का डर नहीं है।
1: हमारे निरंतर प्रयास हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और जो कश्मीर के जो व्यापारी हैं, जो फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन हैं, उनके साथ में निरंतर टच में हैं कि कैसे हम जो चेरी की जो ट्रांसपोर्ट है बाय रेल वो हम ना केवल मुंबई और बांद्रा बल्कि अन्य भागों में भी हम कैसे कर पाएं, और उसमें हमने जो ट्रेन सर्विस के जो SLRs जो रहते हैं उसके अंदर भी हम जो है चेरी की लोडिंग कर रहे हैं और उसमें भी हम आज तक जो है 18 टन चेरी जो है ऑलरेडी भेज चुके हैं।
0: वैसे केवल चेरी ही नहीं, आने वाले समय में इस विशेष रेल सेवा का विस्तार दूसरे फलों तक भी किया जाएगा। योजना है कि सेब, प्लम और अन्य मौसमी फलों को भी इसी तरह तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधा दी जाएगी ताकि किसानों को मौसम की मार का सामना ना करना पड़े।
1: अभी चेरी सीजन है तो हम चेरी पे मेन फोकस है, इसके बाद में जो भी फ्रूट सीजन होगा पीच, पियर, प्लम का होगा, फिर एप्पल का आएगा, तो उसमें हमारे निरंतर जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो जारी है ताकि जो रेलवे है उसको व्यापारी लोग जो है उसका भरपूर फायदा उठा सके।
0: दरअसल गर्मी, बारिश या लंबे परिवहन समय की वजह से फल अक्सर खराब हो जाते हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन विशेष रेलवे कैरिज और तेज लॉजिस्टिक्स व्यवस्था किसानों की इस चिंता को कम करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। बात मौसम की करेंगे क्योंकि नौतपा चल रहा है और हर दिन गर्मी लगातार अपने नए नए रंग दिखा रही, तो मौसम भाग की क्या है प्रेडिक्शन आने वाले दिनों के लिए और साथ ही साथ किस दिन राहत के बादल बरसेंगे, आज बात इसी को लेकर करेंगे।
5: नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आलिया भट्ट की आने वाली है फिल्म अल्फा, जिसको लेकर पहले खबरें तो ये थी कि वो फिल्म में जासूस का रोल निभाएंगी, लेकिन अब खबरें ये हैं कि वो एक खतरनाक असैसिन के रोल में नजर आ सकते हैं। क्या है अल्फा की डार्क ओरिजिन स्टोरी, इस पर बात करेंगे।
6: बिल्कुल, देखिए बात तापमान की होगी, बात एंटरटेनमेंट की होगी और साथ ही तस्वीर गुलमर्ग में भारतीय सेना के 7 घंटे चलाए गए उस रेस्क्यू ऑपरेशन की भी हम आपको दिखाएंगे, जब केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने पर हवा में फंस गए सैकड़ों सैलानी। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम की यात्रा, केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा, यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भक्तों की भीड़। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार, 65 महिलाओं ने विधि विधान के साथ की पूजा। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान भी। 1 जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल सबको नजर आएंगे। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन डीएमयू, रेल मंत्रालय ने दी इसको मंजूरी। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बारिश के दौरान सैलानियों को नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: चलिए शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की, जिसकी शुरुआत हम सुबह से कर देते हैं। गर्मी के बारे में लगातार बातें हम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये गर्मी अपने चरम पर बढ़ती जा रही है, 47 डिग्रीज कहीं पर, मतलब कैन यू बीट द टॉर्चर,
6: भट्टी की तरह तप रहे हैं। टू मच टू हैंडल।
5: अच्छा, अगर इनकेस बाहर जाना भी पड़े तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे?
4: ऑब्वियसली पूरा चेहरा हम कवर करके जाएंगे, छाता लेके जा सकते हैं। वैसे तो कोशिश करेंगे कि शिखर दोपहर ना ही जाइए,
5: शिखर दोपहर
4: थोड़े शिखर दोपहर
6: What is it? मतलब भरी दोपहरी में देखा, even though I cannot speak in Punjabi, but समझ आ गया.
4: नहीं नहीं वो आप जब से मैं और शगुफ्ता जब बैठते हैं ना पंजाबी के वर्ड्स आते हैं बीच में तो आधी जनता जान गई है कि इसका मतलब क्या है.
6: इसका मतलब
4: हमारे काम चाय पे चर्चा में लोगों को पंजाबी सिखाना है.
5: आधे लोग तो हमसे वार्तालाप भी पंजाबी में ही करते हैं, है ना. अब देखिये गर्मी बे इंतहा है तो ऊपर से हीट वेव का कहर पूछिए ही मत. देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे मौसम की दुश्वारियां भी बढ़ती जा रही हैं.
6: बिल्कुल देखिए भट्टी की तरह उत्तर भारत तप रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि इस गर्मी के मौसम में खुद का ध्यान रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखा जाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने क्या हिदायत दी है, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं.

0: देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ नजर आ रहा है। फिलहाल तो मौजूदा समय में गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मॉनसून को अभी देश के अंदर छाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन इस बीच देश के कई राज्यों में हीट वेव का असर, उससे होने वाले नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरती गई तो बेतहाशा गर्मी वाला ये मौसम सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से गर्मी के इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसी और सावधानियां गर्मी के इस मौसम में बरतने की जरूरत पर जोर दिया है। मसलन, जब भी घर से बाहर निकले तो अपने साथ पानी जरूर रखें। यही नहीं, इस मौसम में किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर दें। ऐसे में अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में पानी रखने वाले राह चलते लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बने हुए हैं, जो कि सराहनीय है। ज्यादा गर्मी में चक्कर आना, मतली महसूस होना या ज्यादा थकान लगना जैसे लक्षणों को भी बिल्कुल नजरअंदाज न करें। पानी, ORS या दूसरे तरल पदार्थों को अपने डेली रूटीन में शामिल करें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। इस भीषण गर्मी में खासकर धूप में काम करने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में अगर आसपास कोई व्यक्ति अचानक बेहोश होता दिखे, कमजोरी महसूस करे या अस्वस्थ नजर आए तो उसे तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाकर उसे हाइड्रेट करें। इस गर्मी के मौसम में घर में बच्चे और बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि वो गर्मी की तपिश का ज्यादा शिकार होते हैं। ऐसे में पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर ना निकलने और ज्यादा से ज्यादा आराम करना ही गर्मी में सुरक्षित कदम है। इस बेतहाशा गर्मी में इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हलकान हो रहे हैं। ऐसे में घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें, क्योंकि यही एक छोटी सी कोशिश किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान साबित हो सकती है। फिलहाल तो देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण लोगों की डेली लाइफ में परेशानियां भी बढ़ रही हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहते हुए खुद को हाइड्रेटेड रखना ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, सीजन्स के साथ कैसी हमारी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाती है ना।
3: बिल्कुल सही।
2: हम बार बार यहाँ लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा खाना, तरल पदार्थ ज्यादा लीजिए, ऐसा खाना खाइए जो आपको ठंडा रखे। आपने कुछ चेंज किया अपनी ईटिंग हैबिट्स?
3: आप ये देखिए, यहाँ पर चाय पे चर्चा हम लगातार चाय के साथ कर रहे हैं, तो ईटिंग हैबिट्स पर कैसे कमेंट
2: नहीं। देखिए, ये तो भाई हमारे हिंदुस्तानियों की खासियत भी है और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है कि हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि गर्मी को गर्मी मारती है, इसीलिए हम चाय नहीं छोड़ सकते,
3: गर्मी को गर्मी काटती है।
2: ये चाय पे चर्चा हम शाम में कर रहे हैं, हम तो सुबह पहली चाय के साथ ही चर्चाएं शुरू हो जाती हैं।
3: मुझे ऐसा लगता है शगुफ्ता, आप बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखती हैं। आपने मुझे कल सजेस्ट किया कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट में गर्मी है, जो कि अमूमन लोगों के साथ होता है इस मौसम में, तो सब्जा सीजा ले सकते हैं। ऐसे कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं जिसके बारे में उनको ना मालूम हो?

0: यूज कर सकते हैं, इट विल कीप यू हाइड्रेटेड।
1: और इस बीच मॉनसून का इंतजार है, कहा यह जा रहा था कि केरलम के तट पर 26 मई को मॉनसून पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल मेट डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 1 तारीख तक केरलम के तट पर मॉनसून पहुंच जाए। साथ ही साथ उसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की तरफ फिर धीरे धीरे मॉनसून बढ़ेगा।

0: उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में नौतपा का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूपी के बांदा समेत उत्तर मध्य और पश्चिमी भारत के 21 शहरों में 26 मई को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। बांदा में तो 26 मई को अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरी दोपहरी में बांदा के लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भट्टी में बैठे हों। जाहिर है नौतपा के प्रचंड ताप से बचने के लिए लोगों को इंतजार है मॉनसून की रिमझिम फुहारों का। गर्मी से हलकान हर आदमी ये जानना चाहता है कि उनके इलाके में मॉनसून की सुहावनी दस्तक कब होगी। मौसम विभाग ने पहले ये अनुमान लगाया था कि केरला में इस बार मॉनसून समय से 6 दिन पहले यानी 26 मई को ही दस्तक दे देगा, लेकिन 26 मई तो निकल चुका और अगले 3-4 दिन तक केरला में मॉनसून की कोई सूरत नजर भी नहीं आ रही।
1: For monsoon onset to happen, one important criteria is like for two continuous days. This monitor, there are 14 rainfall monitoring stations in Lakshadweep, Kerala, and one station from Karnataka, that is Mangalore. So consecutively for 2 days, at least 60% of stations should report 2.5 millimeters of rainfall, and then the second day is declared as the onset of monsoon. So yesterday, the North Kerala did not receive much rain, so this rainfall criteria is not meeting today. So we'll have to wait for that rainfall to improve.
0: साफ है कि 26 मई बीत जाने के बाद भी मौसम विभाग केरलम में अभी मॉनसून की दस्तक का इंतजार ही कर रहा है। हालांकि आईएमडी ने अपनी प्रेस रिलीज में केरलम में 1 जून तक मॉनसून के आने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की प्रेस रिलीज के मुताबिक 1 जून तक केरलम में मॉनसून दस्तक दे सकता है, उसके बाद 5 जून तक उसके कर्नाटक और तमिलनाडु पहुँचने की उम्मीद है। 10 जून तक मॉनसून तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र का रुख कर सकता है। 15 जून तक इसके गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। 30 जून तक मॉनसून के दिल्ली एनसीआर में पहुंचने के आसार हैं। 5 से 8 जुलाई के बीच इसके पंजाब और हरियाणा पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ताजा प्रेस रिलीज से साफ हो गया कि इस साल मॉनसून अपने निर्धारित टाइम टेबल के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने पहले जो अनुमान व्यक्त किया था कि इस बार मॉनसून समय से पहले दस्तक दे सकता है, वो अब गलत साबित हो चुका है। हालांकि मॉनसून आने से पहले उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून की बारिश हो सकती है, जिससे तपती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, 45-47 डिग्री तापमान हुआ पड़ा है, हमारा हाल इतना बुरा है, बेजुबानों का क्या हाल हो रहा होगा। तो देखिए, तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में देश भर के चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं।
0: वहीं अगर हाथियों की बात करें तो बार बार उन्हें नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून, लखनऊ के चिड़ियाघरों में ठंडे पानी, शेड, फवारे और फलों के जरिए उन्हें ठंडा रखने की कोशिश हो रही है।
3: तपती धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं।

0: कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
1: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4000 के आसपास है।
0: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म है अल्फा, जिसको लेकर सुर्खियां भी बन रही हैं हेडलाइंस में। ये एक्चुअली फिल्म में वो एक साधारण जासूस नहीं बल्कि एक खतरनाक असैसिन के रोल में आप सबको नजर आ सकते हैं, जो ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज के तौर पर होगा। अब कहा यह जा रहा है कि फिल्म एक डार्क ओरिजिन स्टोरी दिखाएगी, जहां एक लड़की को बचपन से ही किलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वजह शायद यही है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स आलिया के इस किरदार की तुलना ब्लैक विडो के साथ कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने देखी होगी ये।
3: बिल्कुल, और आलिया की ये फिल्म 10 जुलाई को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। फिल्म सिर्फ एक स्पाई फिल्म नहीं होगी बल्कि ये यशराज की स्पाई यूनिवर्स की सबसे डार्क और इंटेंस चैप्टर बन सकती। कुछ कहना चाह रही थी?
4: देखिए, यशराज फिल्म्स के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एज इंडियंस हमें इतनी आदत नहीं होती कि जो लीड कैरेक्टर है उसको हम इतने ग्रे टोन में दिखाएं। यूजुअली हमारे यहाँ पे हीरोइज्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फीमेल लीड है। और आलिया के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि असैसिन का रोल किस तरीके से वो निभाती है और लोग उन्हें कितना एक्सेप्ट करते हैं।
2: आई थिंक दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट फॉर आलिया ऑल्सो, कि इतने इंटेंस लुक में नजर आएंगी, लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं।

0: किरदार नया, अंदाज नया और हर किरदार में अपने अभिनय की छाप छोड़ती आई हैं आलिया। और ऐसे ही एक नए किरदार और अंदाज में छाने को एक बार फिर से तैयार हैं आलिया।
1: ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर। और हमारी
0: रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अपकमिंग फिल्म अल्फा में आलिया किसी साधारण रॉ एजेंट या सीक्रेट स्पाई का रोल नहीं निभाएंगी, बल्कि एक ऐसी खतरनाक असेसिन के किरदार में नजर आएंगी जिसका अतीत दर्द, ट्रेनिंग और हिंसा से भरा हुआ है।
1: राज करेगा।
0: कहा जा रहा है कि फिल्म एक युवा लड़की की ओरिजिनल स्टोरी दिखाएगी जिसे बचपन से ही दुश्मनों को मारने के लिए ट्रेंड किया गया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस किरदार की तुलना ब्लैक विडो से कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि आलिया का ये अवतार बॉलीवुड का अपना ब्लैक विडो मोमेंट साबित हो सकता है। वायरफ स्पाई यूनिवर्स के तहत बन रही अल्फा अब तक की सबसे डार्क, इंटेंस और अलग चैप्टर बन सकती है। हालांकि वायरफ की पिछली फिल्में जैसे पठान, वॉर और टाइगर 3 में हीरो साफ तौर पर देश के लिए लड़ते दिखे थे, लेकिन अल्फा में पहली बार एक ग्रे शेड वाला किरदार देखने को मिल सकता है जो सही और गलत के बीच की लाइन को धुंधला कर देगा। फिल्म को शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें शर्वरी वाघ भी अहम भूमिका में दिखेंगी। वहीं बॉबी देओल को फिल्म का खतरनाक विलेन बताया जा रहा है, जबकि अनिल कपूर भी एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार अदा करेंगे। सबसे खास बात, अल्फा वायरफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म होगी और अगर रिपोर्ट सही साबित हुई तो ये फिल्म पूरे स्पाई यूनिवर्स का गेम बदल सकती है। फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और अभी से फैंस के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए अब बात रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण की कर लेते हैं। 4,000 करोड़ रुपए के बड़े बजट में ये फिल्म बन रही है। रामायण के टीजर ने इस फिल्म की भव्यता से दर्शकों को परिचित करवा दिया है और अब दर्शक इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि रामायण का ट्रेलर अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट में रिलीज किया जाएगा।
3: बिल्कुल, देखिए इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए मेकर्स की योजनाएं से जून जुलाई के महीने में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दिखाने की है। देखिए क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में।

0: 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में बन रही मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण, जिसके टीजर ने इस फिल्म के बिग स्केल का अनुभव करा दिया है। और अब इंतजार है इसके ट्रेलर का, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण का ट्रेलर इंटरनेशनल इवेंट सैन डिएगो कॉमिक कॉन पर रिलीज किया जाएगा। अमेरिकी शहर सैन डिएगो में होने वाले इस ऐतिहासिक पॉप कल्चर इवेंट में रामायण का ट्रेलर एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 जैसी फिल्मों के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान फिल्म का अपग्रेडेड VFX भी देखने को मिलेगा। ये रणबीर कपूर वाले फर्स्ट लुक टीजर से काफी अलग होगा। दावा किया जा रहा है कि मेकर्स इस ट्रेलर को अमेरिकी थिएटर्स में क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी के साथ अटैच करेंगे। सैन डिएगो में ये आयोजन 23 से 26 जुलाई के बीच होगा। सुनने में ये बात आम लग सकती है, लेकिन है नहीं। खासतौर पर रामायण जैसी भारी भरकम बजट में बन रही फिल्म के लिए तो ऐसे प्लेटफॉर्म की बेहद जरूरत है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन को कॉमिक कॉन इंटरनेशनल के रूप में भी जाना जाता है। कॉमिक्स, पॉप, संस्कृति और मनोरंजन के लिए ये एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो हर साल कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में आयोजित किया जाता है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मंच पर जो भी फिल्में आती हैं, उन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है। दुनिया के तमाम ऐसे फिल्म प्रोजेक्ट जो साइंस फिक्शन, एनिमेशन या फैंटेसी पर बेस्ड हैं, वो इस मंच पर आना चाहते हैं। मार्वल की सुपर हीरो फिल्में या टॉम क्रूज के सुपर एक्शन प्रोजेक्ट्स, सबका मकसद सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में दर्शकों को इम्प्रेस करना होता है। क्योंकि इस इवेंट में अगर किसी फिल्म को तवज्जो मिल गई, तो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी तगड़ी कवरेज हो जाती है, जिससे वर्ल्ड वाइड फिल्म की अच्छी कमाई की संभावना बढ़ जाती है। रामायण से पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक इंडियन फिल्म कल्कि 2898 AD का टाइटल लॉन्च किया गया था, जिसकी कॉमिक कॉन में खूब चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, रामायण के मेकर्स का प्लान कहीं बड़ा है। इसी साल होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े सपोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी रामायण की झलक दिखाई जा सकती है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई के बीच कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित होगा। इस दौरान मिडिल ईस्ट के बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पर फिल्म से जुड़े 15 से 30 सेकंड के फुटेज दिखाए जाएंगे। ये ज्यादातर ईरान, मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों के मैच के दौरान आएंगे। मेकर्स का मानना है कि इससे रामायण को मिडिल ईस्ट के दर्शकों का भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। इसलिए फुटबॉल के इस महाकुंभ में रामायण की झलक दिखाए जाने से इसका प्रमोशन घर घर तक हो सकेगा। रामायण पार्ट 1 इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी। इस साल दिवाली 6 नवंबर को है, लेकिन रामायण इससे चंद दिन पहले 30 अक्टूबर को रिलीज की जा सकती है। जिससे दीपावली की लंबी छुट्टी का फायदा रामायण को हफ्ते भर पहले से मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आज के जमाने में फिल्म अच्छी या बहुत अच्छी बनाना काफी नहीं है, प्रमोशन भी काफी मायने रखता है, और वो भी फिल्म का प्रमोशन कब, कैसे, कहां किया जाए, ये आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। रामायण के मेकर्स ने इस फलसफे को भलीभांति समझा है, और शायद इसीलिए रामायण के मेकर्स ने फिल्म का ग्लोबल प्रमोशन काफी पहले से शुरू कर दिया। ग्लोबल कैंपेन की शुरुआत अप्रैल 2026 में लास वेगास में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े फिल्म कन्वेंशन सिनेमाकॉन 2026 से फिल्म का आधिकारिक ग्लोबल प्रमोशन शुरू हुआ था। सिनेमाकॉन के इतिहास में रामायण पहली ऐसी भारतीय फिल्म बनी है जिसका सबसे बड़ा स्टैंडी पोस्टर वहां प्रदर्शित किया गया। फिल्म के को प्रोड्यूसर और रावण का किरदार निभा रहे हैं सुपरस्टार यश और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा खुद इस इवेंट में मौजूद रहे। अप्रैल 2026 की शुरुआत में ही लॉस एंजलिस में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्क्रीनिंग इवेंट रखा गया था। यहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने रामायण की पहली एक्सक्लूसिव झलक भी दिखाई गई थी जिसे बाद में भारत में भी जारी किया गया। भारत में फिल्म का पहला डिजिटल प्रमोशन बड़े स्तर पर 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर हुआ जब फिल्म के विजुअल्स आधिकारिक तौर पर देश के सामने पेश किए गए।
2: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म गवर्नर की कर लेते हैं जिसका ट्रेलर देखिए रिलीज हो गया है। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने गवर्नर का रोल निभाया है जो देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए पूरा जोर लगा देता है।
3: बिल्कुल देखिए, ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। भारत के इतिहास के उस कठिन दौर की कहानी दिखाई गई है जब देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था।
4: सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं।
5: ओके।
4: और 1 बिलियन से नीचे मतलब।
6: भारत के अतीत की वो तस्वीर है जब 1990 में देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था।
7: मक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा, देश दूसरा कहां से लाएगा। सर,
6: विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी और सड़कों पर दंगों जैसे हालात थे। ऐसी मुश्किल घड़ी में सिस्टम में एंट्री होती है एक ऐसे अर्थशास्त्री की जो इस डूबती नैया को पार लगाने का बेड़ा उठाता है।
8: असली धन वही है जो अपने हाथ में हो।
6: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। फिल्म गवर्नर का ट्रेलर इसी तनाव, डर और देश को बचाने की सीक्रेट प्लानिंग की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली झलक दिखाता है जिसमें मनोज बाजपेयी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के किरदार में है।
9: 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे।
6: रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में मनोज बाजपेयी का किरदार पूर्व आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रमनन से प्रेरित होता है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। वेंकट रमनन 1991 के आर्थिक संकट के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे और उस समय देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है।
9: 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे।
10: इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है।
11: ऑपरेशन रोकना होगा,
12: हमारी सरकार गिर गई है।
6: ट्रेलर में दिखाया गया है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनता में गुस्सा और बेचैनी है। लोग सरकार और आर्थिक हालात को लेकर चिंतित हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देश को आर्थिक रूप से टूटने से कैसे बचाया जाए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार और बड़े अधिकारियों को कुछ कड़ी फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म में मनोज बाजपेयी का किरदार देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने और भारत को संकट से बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई देगा। ट्रेलर में मनोज बाजपेयी का अभिनय हमेशा की तरह बेहद संजीदा और प्रभावशाली नजर आ रहा है। दर्शकों को उनका शांत और गंभीर अंदाज काफी पसंद आ रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, फैमिली मैन के बाद आखिरकार मनोज बाजपेयी को वो भूमिका मिल ही गई जिसके वो हकदार थे। किसी ने कहा, तो मनोज बाजपेयी एस वेंकट रमनन की भूमिका निभा रहे हैं जो एलपीजी सुधारों के दौरान आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर थे। तो किसी दूसरे यूजर ने कहा, मनोज बाजपेयी गंभीर भूमिकाओं में हमेशा एक अलग ही लेवल पर होते हैं।
9: आप फेल हो चुके हैं।
13: I will not let India fail.
14: मैडम, खबर पक्की है।
6: मनोज वाजपेयी के साथ फिल्म में अदा शर्मा भी मुख्य भूमिका में है जो तीखे तेवरों के साथ स्क्रीन पर खूब जम रही हैं।
13: बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।
6: तो तैयार हो जाइए देश के इतिहास के सबसे बड़े और गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। गवर्नर अगले महीने की 12 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे?
1: बॉलीवुड के एक और विवाद की बात कर लेते हैं, जो कि बॉलीवुड की जेंजी अनन्या पांडे और पुरानी पीढ़ी की नामचीन हस्तियों के बीच गहरा गया है। 22 मई को रिलीज हुई चांद मेरा दिल फिल्म में अनन्या पांडे ने एक सीन में भरतनाट्यम और आधुनिक डांस स्टेप्स का एक फ्यूजन परफॉर्म किया था, लेकिन ये सीन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
2: बिल्कुल, देखिए अगर आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने भी अपने फीड में ये वीडियो देखा होगा। देखिए कला और राजनीति जगत पर विचारों का नृत्य हो रहा है। सोनल मानसिंह, रमा वैद्यनाथन और अनीता रत्नम जैसी क्लासिकल डांसर्स के साथ कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद भी इसे भरतनाट्यम का अपमान बता रही है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट।
5: मई को रिलीज हुई अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म चांद मेरा दिल करण जौहर के बैनर तले दो जेंजी कलाकारों को लेकर बनी यूनिक जेंजी की कहानी है चांद मेरा दिल। लेकिन दर्शकों को एक रोमांटिक सफर पर ले जाती है ये फिल्म, अचानक विवादों के मोड़ पर आ खड़ी हुई है। विवादों के केंद्र में है फिल्म के लीड एक्ट्रेस और बॉलीवुड की जेंजी पीढ़ी के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक अनन्या पांडे। दरअसल फिल्म रिलीज होने के बाद से ही इसके एक डांस सीन की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अनन्या का किरदार भरतनाट्यम और आधुनिक डांस स्टेप का एक फ्यूजन परफॉर्म करता है। अब इसी परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अनन्या पांडे को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलर्स के बाद कला और राजनीति जगत से भी अनन्या के भरतनाट्यम को लेकर प्रतिक्रिया आई। भरतनाट्यम डांसर और पद्म भूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह ने तो ये तक कह दिया कि अनन्या का डांस देख कैलाश पर नटराज भी रो रहे होंगे, आपको डांस नहीं आता तो मत करिए। उन्होंने कहा, अनन्या पांडे को भरतनाट्यम करते देखना ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आर्ट फॉर्म को तोड़ मरोड़ कर किसी प्रॉप की तरह देख कैलाश पर नटराज भी रो रहे होंगे, आपको डांस नहीं आता तो मत करिए। उन्होंने कहा, अनन्या पांडे को भरतनाट्यम करते देखना ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आर्ट फॉर्म को तोड़ मरोड़ कर किसी प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। भरतनाट्यम कोई ट्रेंड नहीं है, ये 3000 साल पुरानी आर्ट है जिसे गुरुओं ने कड़ी साधना और मेहनत से सीखा है। बिना सही प्रशिक्षण के आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपको अपनी फिल्म में भरतनाट्यम का सीन रखना है तो ऐसी एक्ट्रेस लीजिए जो इसमें ट्रेंड हो। वही भरतनाट्यम गुरु रामा वैद्यनाथन ने कहा, अगर आपने किसी डांस फॉर्म की ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर फिल्म में भरतनाट्यम दिखाना है तो किसी ऐसे एक्ट्रेस को लेना चाहिए जिसे इसकी सही ट्रेनिंग हो। हमारे पास ऐसे कई कलाकार हैं। और क्लासिकल डांसर अनीता रत्नम का तो कहना है कि इस परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे भरतनाट्यम को बंधक बना लिया गया हो। हालांकि अनन्या पांडे या फिल्म के डायरेक्टर विवेक सोनी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन फिल्म की असिस्टेंट कोरियोग्राफर अनन्या ग्रुप ने अनन्या पांडे बचाव में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। उन्होंने फिल्म के बिहाइंड द सीन वीडियो और क्रेडिट रोल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अनन्या पांडे के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भरतनाट्यम सीखने के लिए कड़ी मेहनत की है और फिल्म चांद मेरा दिल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बेटी पर सवाल उठे तो पिता चंकी पांडे से रहा नहीं गया, वो सीधे बेटी के बचाव में आ गए और कहने लगे कि इसे गलत नजरिए से देखा जा रहा है। वैसे उम्मीद यही है कि ये विवाद एक ऐसे नोट पर ही खत्म हो जहां माइंडसेट का फ्लो, विकास की धारा और एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान को जीवंत रखे। रिपोर्ट न्यूज टुडे।
2: चलिए इसी के साथ चाय पर चर्चा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुलमर्ग के रोपवे में सेना के जांबाजों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
15: It's your boy,
14: just
15: Jay-Z.
14: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
16: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
17: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
16: Big 12 Radio.
18: Today is Big 12 Insider's game day. We're breaking
16: and
18: down.
16: Talk sports.
19: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
16: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
11: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
21: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने पूजा अर्चना की। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार। 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार। 65 महिलाओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: देखिए ये खबर ना सोशल मीडिया पर भी कई दिनों से वायरल है, बहुत सारे चैनल्स पर आपने देखी होगी। गुलमर्ग की ये कहानी है जहां पर 7 घंटे तक ये महाऑपरेशन चला। ट्रस्ट मी, इस न्यूज को देखने के बाद ना आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। बट उसके बाद जो सेना ने किया है वो काबिले तारीफ।
1: NDRF SDRF के जवान जब वहां पहुंचे, लेकिन वही बात है कि जब आप इस तरह के, देखिए गुलमर्ग की खबर है, 7 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला था, रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के जो मशहूर पर्यटन स्थल है गुलमर्ग, जहां पर आपको याद होगा कि केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी और बहुत सारे पर्यटक वहां पर फंस गए थे। ये सही है, लेकिन आप ये बताइए, हर किसी का मन होता है कि आप जब जाते हैं ऐसी जगहों पर थोड़ा सा एडवेंचर किया जाए, और शायद तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की एडवेंचर्स वहां पर करवाए जाते हैं।
2: देखिए ये तो केबल कार की बात है, मुझे, मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ। मैंने जिप लाइन भी किया है और मैंने बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग भी की है। और जब आप इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज करना चाहते हो ना, तो आप सोचते नहीं हो कि कुछ सेकंड्स में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना उपकरणों का जो एक कहते हैं ना कॉन्स्टेंटली चेकअप उनका होना चाहिए कि क्या उपकरण ठीक है, मेंटेन उन्हें किया जाना चाहिए, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हमारे देश में हो जाती है। तो एडवेंचरस एक्टिविटीज अगर आप हमारे देश में करने चाह रहे हैं, करने वाले हैं, तो मुझे लगता है सोच लेना चाहिए।
1: हालांकि बहुत जगह शुरू हो चुकी है इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज, लेकिन हाँ ये है कि आज हर कोई वहां पर जो NDRF SDRF या फिर लोकल सपोर्ट जिन्होंने इन पर्यटकों को बचाया उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं।
22: कोई बात नहीं, इसके लिए
23: कश्मीर घाटी की गहरी खाई और हवा में एक घंटे अटके रहने के बाद अगर सांसें बचा ली जाए तो हर दिल से शुक्रिया निकलता ही है। गुलमर्ग में रेस्क्यू किए गए 300 सैलानियों में से हर कोई भारतीय सेना के जांबाजों को सलाम कर रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है और दिल से दुआएं दे रहा है।
0: सब ठीक है, जय हिंद, सब ठीक है। वो भी आ गया,
4: देखो वो
0: आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, ये
4: कोई टेंशन नहीं,
0: अक्सर है आगे, बस
4: मुझे नहीं पता
0: है सर, आप कचर भी आ
4: गया, टेंशन नहीं, कोई
0: सर सर आप ठीक हो, ठीक हो, धरती के ऊपर बैठे हैं, क्या डर है, भारत माँ की डॉटर हो, क्या डर है,
7: आजा आजा आजा, कोई
0: ना, जय हिंद।
23: बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त करीब 65 कैबिन हवा में फंस गए थे, जिनमें कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने आए करीब 300 सैलानी सवार थे। केबल कार रुकते ही इन 65 कैबिन में सवार पर्यटकों की सांसें थम गईं। हवा में फंसे पर्यटकों के लिए उनकी हर सांस भारी पड़ रही थी, सबके चेहरे पर डर था, पर जब उनकी नजर सेना के जवानों पर पड़ी तो उन्हें अपनी सलामती का भरोसा हुआ। नीचे मेजर जनरल पुनीत डोवाल की टीम के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मिलकर ऑपरेशन मिशन प्रोटेक्शन शुरू किया था।
15: आपने घबराना नहीं है, इसी आप आपको लेट करेंगे, वो आपको डाउन करते
24: हैं। हाँ, उसको जो वो नहीं घबरा रही
15: है। टाइट करो, चलो लोड दे दो, पूरा लोड दे दो अभी।
24: आराम से,
15: लवली लवली, इजी। वन सेकंड। जरूरत नहीं, नहीं सर, सर बचा लेना बट अपना।
23: इनकी रेस वक्त के साथ थी, इसलिए सब कुछ बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। यहां जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। इस ऑपरेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। इसमें नजर आ रहा है कि कैसे सेना के जवान रस्सियों के सहारे केबल कार में फंसे लोगों तक पहुंच रहे हैं और फिर उन्हें सीढ़ी और रस्सियों के जरिए नीचे उतारा जा रहा है। नदन कमांड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक चिनार कोर, इंडियन आर्मी और गंडोला ऑपरेटर्स की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया गया।
25: एसओचओ गुलमर्ग अपनी थाना नफरी और अपने साथ में एसओजी लेके यहां पहुंचे, उसके बाद फटाफट एसडीआरएफ की 14 टीम्स मोबिलाइज की, हमारे आर्म्ड पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जो हैं 8 टीम्स वो आई, इसके अलावा हमारे स्नो लेपर्ड्स आए, तो जेएनके पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और एसडीआरएफ तो थी ही, इसके अलावा हमें भारतीय सेना, 9 राजरिफ, हौज के अफसरान और उसके अलावा एनडीआरएफ भी यहाँ पहुँच गई और सबने मिलके आज ये जो टूरिस्ट जो फंसे हुए थे इनको सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया। आप खुद देख रहे हैं आज बहुत यहाँ बारिश का मौसम रहा है, इस बारिश में, इस ठंड में और जिस तरह का यह टेरेन है इसमें ऊपर चढ़ना, फिसलन भी है, इस सब में कामयाबी से ऑपरेशन हमने मुकम्मल किया।
23: बता दें, सेना ने एक चुनौतीपूर्ण इलाके में ऐसे विपरीत मौसम में जब बारिश हो रही थी पर्यटकों का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत झोंकी। जमीन से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर हवा में घने बादलों और ऊंचाई की चुनौती के बीच भारतीय सेना के जवान केबल्स पर पहुंचे। उन्होंने बेहद सूझबूझ से केबिन में फंसे डरे सहमे सैलानियों को रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे सुरक्षित नीचे उतारना शुरू किया और उन्हें ढाढ़स भी बंधाते रहे, और जिन लोगों को तत्काल इलाज की जरूरत थी उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। सेना के शौर्य और कौशल को पर्यटक तो सराह ही रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरा देश जवानों के साहस और कौशल को सलाम करता है। केबल कार में खराबी की एक वजह ओवरलोडिंग को भी माना जा रहा है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही तकनीकी खराबी की असली वजह साफ हो पाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चार धाम यात्रा में उमड़ी आस्था।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए अब बात चार धाम यात्रा की कर लेते हैं, जिसमें भक्तों की भीड़ अब बढ़ती ही जा रही है। विश्व प्रसिद्ध केदार धाम में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए स्थिति ये हो गई है कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे ही उत्साह बद्रीनाथ धाम और बाकी धामों में भी दिखाई दे रहा है।

0: ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और आकाश को चूमते शिखर। प्रकृति का ये सुंदर नजारा किसी को भी दो पल थाम ले। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा है बाबा बद्री विशाल का ये भव्य मंदिर, जहां इन दिनों भक्तों का तांता लगा है। बद्रीनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की तादाद रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 6,13,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। असल में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यहाँ भागवत कथा का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बद्री विशाल के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में लगातार आस्था का सैलाब महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ है, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: ये यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। गेट सिस्टम लागू होने के बावजूद गाड़ियों की कतारें 7 से 8 किलोमीटर तक लंबी हो रही है। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी कतारें नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम में जहाँ चार धाम यात्रा अपने पूरे उत्साह पर है, वहीं तीर्थ यात्रियों की हर छोटी बड़ी परेशानी में उत्तराखंड की SDRF, पुलिस और मंदिर समिति सेवा सहायता के मिसाल बन रही है। बद्रीनाथ धाम का पंडा समाज भी जबरदस्त उत्साह के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों का स्वागत कर रही है। भीषण गर्मी के बावजूद यात्रा को लेकर लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। केदारनाथ धाम में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चमोली से कमलनयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, चाय पर चर्चा जारी है, रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की बजाय अपने देश में ही सैर सपाटा करने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखा पाए।
11: बिल्कुल, तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लेकर चलते हैं, जहां पर बाखली पिकनिक रिजॉर्ट आपका इंतजार कर रहा है। और क्या है यहां पर खास, इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे एक दर्शक।
12: ये है माता बगलामुखी मंदिर का भव्य नजारा। और यहीं से आप नेचर पार्क के भी दर्शन कर सकते हैं।

इस स्थान को बाकली के नाम से जाना जाता है। माता बगलामुखी का यह मंदिर पहले नीचे हुआ करता था, जहां नेचर पार्क बनाया गया है। स्नो डैम के बनने के समय माँ बगलामुखी की इच्छा अनुसार मंदिर ऊपर बनाया गया। जिस स्थान पर अभी मैं मौजूद हूँ, हजारों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर भी आपको माता के दर्शन करवाते हैं।

अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे नेचर पार्क की ओर। नेचर पार्क की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो चलो मिलते हैं अब नेचर पार्क में। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ नेचर पार्क में। ये नेचर पार्क वन विभाग के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर सुंदर हट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं और सुंदर वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जिस कारण इस भरी तपती गर्मी में आपकी इच्छा भी ना करे यहाँ से जाने की।

0: वाटर पार्क में घूमने के अलावा आप यहाँ पे पंडो डैम में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं।
1: बात रही इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने की, तो आप कई रास्तों से इस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चंडीगढ़ की ओर से आ रहे हैं, तो जिस रोपवे की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, वह रोपवे हाईवे से महज कुछ ही मीटर दूर है और चंडीगढ़ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि भुंतर में स्थित है। अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूँ, तो भुंतर एयरपोर्ट पे दिल्ली, अमृतसर, देहरादून और जयपुर से रेगुलर फ़्लाइट्स आती हैं। और फ़्लाइट्स के अलावा अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से जोगिंद्रनगर का है, जो कि यहाँ से महज 70 किलोमीटर दूर है।
2: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए व्लॉगिंग। हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे जेएनटी पर जरूर दिखाएंगे। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: आस्था उत्साह के साथ जारी चार धाम की यात्रा। केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा अर्चना। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़ लगी। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार। 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार। 65 महिलाओं ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक भी श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान भी। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के दौरान सैलानियों को नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 3 हफ्तों से बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर साधना और कथा वाचन के लिए भगवान बद्री विशाल के दर पर पहुंचे थे। बाबा ने पहले नारायण पर्वत पर एकांतवास और साधना की, फिर उन्होंने बद्री धाम में मौजूद हनुमान मंदिर में आराधना की। अब 21 दिनों की साधना और एकांतवास का संकल्प पूरा हो गया है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और एकांतवास के अपने अनुभवों को वो साझा भी कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से बाबा के अनुयायी उनकी साधना पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तप, जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित रखा। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बाबा बागेश्वर भी यहाँ पर तप और साधना के बाद बेहद खुश और आनंदित नजर आए। चलिए आपको बताते हैं बद्री धाम में कैसी रही बाबा बागेश्वर की ये तपस्या।

0: शास्त्रों में कहा गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कई तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। ये धरती का वही अनुपम स्थान माना जाता है जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने तपस्या के लिए चुना था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। इसी महात्म्य के चलते अनंत काल से सनातन परंपरा के कई साधु संत इस दिव्य स्थान पर तप और साधना के लिए आते रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी एकात्म्य साधना के लिए धरती का बैकुंठ कहलाने वाले इसी दिव्य स्थान को चुना। बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर साधना में लीन रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो भी -2 डिग्री से कम के तापमान पर।
1: ये जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहाँ पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहाँ पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहाँ ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहाँ ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों, और नारायण भगवान जो है जब नर नारायण के रूप में आए थे तो नारायण भगवान ने श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई।
0: अपनी 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। पहले 11 दिन उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले पहाड़ों के बीच नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में एकांतवास और कठोर तप किया। शेष 10 दिन धीरेंद्र शास्त्री ने प्राचीन खाक चौक हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विशेष आराधना की। 21 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में न किसी से मिले और न ही दर्शन दिए। अब 21 दिन बाद यहाँ आज से उनकी सत्य नारायण और हनुमान कथा का शुभारम्भ हो गया है। 21 दिनों की एकात्म साधना के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटों तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की। इस मुश्किल यात्रा के दौरान उन्हें कई अनोखे अनुभव हुए। नारायण पर्वत के साथ ही उन्होंने देवताल का भी दर्शन पूजन किया।
2: इन साधना के मध्य में बहुत अभूत अनुभव हुए। कुछ

0: 21 दिनों की कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वापस लौटे तो वे अपने भक्तों के बीच पहुँचे, जिन्हें देखकर उनका मन भी उत्साह से भर गया। बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा भक्तों के बीच पहुँचे तो उन्होंने शीश झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने उन्हें धन, भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। गुफा से आकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि 21 दिनों की इस तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई। अपने इस भाव को बाबा बागेश्वर ने बड़े खास अंदाज में बताया।
1: बागेश्वर धाम की और पागलों की खूब याद आई। वो फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें।
0: हंसी मजाक के बीच भक्तों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम बताया।
1: जब तब के प्रभाव के कारण, साधना के प्रभाव के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ भगवान की कृपा के कारण यहाँ का यह 21 दिन का साधना का क्रम एकांतिक समय बहुत अभूतपूर्व रहा। 11 दिन की साधना एक यहाँ 300 मीटर की दूरी पर गुफा में पूर्ण हुई। उसके बाद में फिर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस दिन खूब संतों का आना हुआ। फिर लगभग 10 दिन की साधना खाक चौक में हनुमान जी की सन्निधि में बैठ कर के की, वो भी अभूतपूर्व रही और अद्भुत अनुभव रहे। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और सभी बागेश्वर धाम के जितने लोग जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जुड़े, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उनके लिए यह साधना की भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी मंगलमय हुई। और बीच में तो ऐसा लगा भाई जैसे संसार में हम ही भर अकेले बचे हों, पर अब सब भरा भरा लग रहा। बड़ा आनंद आ रहा, बहुत प्रसन्नता है और अच्छे से सब हो गया। उसके लिए हम आप सबको साधुवाद दे रहे हैं। और जो तप का फल, साधना का फल मिला है, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा से राष्ट्र के काम आवे, इस देश के काम आवे, ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं।
0: आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुंचते हैं। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां बाबा बागेश्वर ने साधना की। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आते हैं, यहीं पर रुकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, लेकिन साधना पूरी होने के बाद आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की सत्यनारायण कथा का शुभारंभ हुआ है। बाबा बागेश्वर के दर्शन और कथा सुनने के लिए बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अपनी 21 दिनों की साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो अगले 5 दिनों तक चलने वाली कथा में भक्तों के साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कल बाबा बागेश्वर की ये साधना समाप्त हुई थी और नारायण पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद से ही वो लगातार कह रहे थे कि इस दौरान उन्हें कई ऐसे अनुभव हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे और वो 5 दिन की कथा के दौरान उन अनुभवों को श्रद्धालुओं के साथ साझा जरूर करेंगे। आज जब कथा का श्री गणेश हुआ तो बद्रीनाथ धाम में गुजरे पिछले 3 हफ्तों के अनुभव बाबा ने बेहद भावपूर्ण अंदाज में बांटे। पहले दिन की कथा के दौरान बाबा के भजनों और प्रवचन के बीच में भक्त भाव विभोर होकर नाचते झूमते हुए नजर आए।

देवेंद्र शास्त्री की कथा के चलते आज सुबह से ही यहाँ भक्तों का सैलाब सा उमड़ा हुआ था। बद्री विशाल के दर्शन की कामना लेकर पावन धाम पहुँचे भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर पर बाबा बागेश्वर से मुलाकात सुखद आश्चर्य की तरह था। यही वजह रही कि बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने और उनकी कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा की शुरुआत से पहले बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गई। धाम में मौजूद श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर कथा स्थल पर पहुँचे। व्यास गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर का अलग ही रूप नजर आया। अपनी कथाओं से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद नारायण की इस पावन भूमि पर आकर बेहद खुश दिखे। आखिरकार दोपहर 2 बजे के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही सारा प्रांगण भगवान बद्री विशाल के भजनों से गूंज उठा।

बद्री विशाल के द्वार बालाजी की जयकार हो रही है। 21 दिन की साधना और ध्यान लगाने के बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की कथा का श्री गणेश हो चुका है। यूं तो साल के कई महीने बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं से यूं ही गुलजार रहता है, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित

0: हिमालय की गोद में 3 हफ्तों तक साधना कर लौटे पंडित धीरेंद्र शास्त्री का अलग ही रंग भक्तों को नजर आया।
1: एक माह लगभग यहाँ गुजारने के बाद हमें एक बात याद आई, पूछो तो बोलूं। तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी अकड़ ऐसी है कि सम्राटों को भी ठुकराए।
0: बताया जाता है कि बद्रीनाथ धाम की कथा श्री हरि विष्णु के कठोर तप और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के त्याग से जुड़ी है, वही कहानी जिसके फलस्वरूप हिमालय का ये भाग बद्रीनाथ कहलाया। बाबा बागेश्वर ने कथा की शुरुआत बद्रीनाथ धाम की उसी कहानी के साथ की।
1: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपो भूमि पर हम लोग बैठे हैं।
0: कलयुग में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओद्री, यानी जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भी यहाँ आकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ।
1: तो यहाँ उड़ान का आनंद लेना, तो उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो, जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला ना चेली, न ठेला ना ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पो न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद, गुफा पत्थर हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़ आहा, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो, ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब, बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहाँ पर कब मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ।
0: बाबा बागेश्वर 21 दिनों की साधना पूरी करने के बाद कथा कर रहे हैं। उन्होंने साधना के बाद कहा था कि वो अपनी इन 21 दिनों के अनुभवों को कथा के दौरान भक्तों के साथ साझा करेंगे, सो उन्होंने साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा से जुड़ी कई घटनाएं कथा के दौरान श्रद्धालुओं को सुनाई।
1: जो 21 दिन गुजरे बड़े प्यारे गुजरे, हमने और महाराज जी ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की, पूरे नारायण पर्वत की। वो दिन भी अलग थे, नारायण पर्वत की परिक्रमा की। एक दिन हम और महाराज जी 18,500 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गए। देवताल, देवताल में जहां आज भी देवता स्नान करने आते हैं, वहां पंचताल है, देवताल, नागताल, प्रेतताल, परीताल।
0: बाबा बागेश्वर की कथा में भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का भी रंग नजर आया। दरअसल बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में प्रवास और परिक्रमा के दौरान बाबा की मुलाकात भारतीय सेना और आईटीबीपी समेत सुरक्षा बलों के कई जवानों से हुई। बाबा ने बताया कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा का फर्ज निभाते हुए भी जाबाजों ने उनका बेहद सत्कार किया। इस बात से बाबा बागेश्वर गदगद नजर आए।
1: हमारे देश की आर्मी उस भयंकर माइनस डिग्री में, जहां थोड़ी देर बाहर खड़े हो तो नाक से खून गिरने लगता, इतनी ठंडी, वहां भारत की आर्मी को जब पता लगा इस रास्ते से हम जा रहे, सब ने इतना स्वागत किया। अपनी अपनी बटालियन में आईटीबीपी वाले, असम बटालियन वाले, हाथ पकड़ पकड़, चाय पी के जाओ, चाय पियो, चाय पियो, जब आने लगे जबरदस्ती जूस लो। उनको देखकर, उनके भारत, भारत के प्रति समर्पण तो हमने बहुत आर्मी वालों में देखा, पहली बार हमने भारतीयों के प्रति समर्पण आर्मी में देखा। और हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी तो आर्मी के प्रति बड़े समर्पित हैं, शहीदों को, उनको देखकर मन इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, पूछो मत। और कैसे 21 दिन बीत गए पता नहीं लगा।
0: कथा के दौरान हिमालय की वादियों के बीच गूंजते भजन एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास दे रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में लोग नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए।

0: पवित्र देव भूमि में बद्रीनाथ के दर्शन करना भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। चारों धामों में से एक इस पावन धाम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि चाहे आम भक्त हों, साधु संत हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर, जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
10: अयोध्या एक बार फिर भक्ति और सनातन संस्कृति के रंग में रंगने जा रही है। 28 मई से 3 जून तक श्री झालरिया मठ में भव्य पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन होगा। विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जन कल्याण को समर्पित इस 7 दिवसीय महोत्सव में 225 कुंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और कई धार्मिक आयोजन होंगे। महोत्सव के दौरान भक्तों को प्रतिदिन 3 बजे से शाम 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया जाएगा। देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की पूरी उम्मीद है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या धार्मिक आयोजनों का बड़ा केंद्र बनकर उभरी है। इसी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए 4,000 कमरों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ में अब तक सबसे अधिक करीब 9 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा, यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सिख श्रद्धालु, 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका मत्था। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार, 65 महिलाओं ने विधि विधान से की पूजा। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बारिश के दौरान सैलानियों को नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: 21 दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, बद्रीनाथ में शुरू की सत्यायन और हनुमत कथा। सत्यनारायण कथा के पहले दिन भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, कथा सुनने आए श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह, 5 दिनों तक चलेगी कथा। पुरुषोत्तम मास में भागवत जप तप का विशेष महत्व, बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं। कथा के लिए तैयार किया गया है बड़ा पंडाल, 1,000 लोगों के बैठने का इंतजाम, पंडाल के बाहर श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया है बड़ा टीवी। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर अपनी साधना के अनुभव भी श्रद्धालुओं से करेंगे साझा, नर नारायण पर्वत पर 21 दिनों तक की थी साधना। सत्यनारायण कथा के पहले दिन निकाली गई कलश यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।

0: रामनगरी अयोध्या में फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। श्री झालरिया मठ में 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन। विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जनकल्याण की कामना की जाएगी। महोत्सव में 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद्भागवत कथा, श्रीमद्भागवत पाठ, सहस्त्र कलश अभिषेक जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। महोत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से आए साधु संत भक्तों की सुविधा के लिए करीब 4,000 कमरों का किया गया है इंतजाम। गुजरात के पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार। अधिक मास के मौके पर मंदिर में हर रोज सुबह 9 बजे कथा का आयोजन, शाम को हो रही है भव्य महाआरती। आज पूजा में महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया हिस्सा। 15 जून को मंदिर में अन्नकूट दर्शन का किया जाएगा आयोजन। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिखों का पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब श्रद्धालुओं से गुजार, इस साल अब तक 18,000 से अधिक भक्त पहुंचे। 13 मई को खुले थे हेमकुंड साहिब के कपाट, 19 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर मत्था टेकने पहुंच रहे श्रद्धालु। कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में 3 साल पुरानी अनूठी परंपरा, हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को दी जाती है मेडिकल लीव। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 51 जल कलशों और पंचामृत से किया जाता है विशेष अभिषेक, इसके बाद अर्पित किया जाता है करीब 200 किलो आमरस का विशेष भोग। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आमरस का भोग ग्रहण करने के बाद अस्वस्थ हो जाते हैं भगवान, इस दौरान 14 दिन बंद रहते हैं मंदिर के कपाट। भगवान के विश्राम और स्वास्थ्य लाभ के लिए बंद किया जाता है मंदिर, अनुष्ठानों के बाद रात 9 बजे बंद किए जाते हैं मंदिर के कपाट। भगवान के स्वास्थ्य लाभ अवकाश के दौरान बरती जाती है विशेष सावधानियां, इस दौरान दूध, काली मिर्च और विशेष काढ़ा किया जाता है अर्पित। कल से गर्मी मिल सकती है थोड़ी राहत, पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। पूरे उत्तर भारत में तापमान सामान्य से कम रहने के अनुमान, मैदानी और पहाड़ी राज्यों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी और का जताया अनुमान, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं। केरल में कुछ दिनों में मॉनसून दे सकता है दस्तक, दक्षिण में और पूर्वोत्तर में शुरू हुई प्री मॉनसून बारिश। उत्तराखंड के चमोली में 1 जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी, 23 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। देश के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर पीएम की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहें देशवासी, लगातार तरल पेय पदार्थ पीते रहने की अपील। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर कामना की, बनस झूला पर भी झूले लोग। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन डीएमयू, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में सफलतापूर्वक ट्रैकिंग पूरा कर सुरक्षित लौटा सत्तोपंथ ट्रैकिंग सीजन का पहला दल, दल में 4 महिलाओं समेत गुजरात के 13 सदस्य शामिल। 23 मई को सत्तोपंथ ट्रैक के लिए रवाना हुआ था 13 सदस्यों का दल, 4 दिन की चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर पूरा कर सुरक्षित माणा गांव पहुंचा दल। भगवान बांके बिहारी के भक्तों के लिए गुड न्यूज, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास की जमीनों की रजिस्ट्री। 3 और जमीनों के मालिकों ने मंदिर के लिए जमीन की रजिस्ट्री, कॉरिडोर के लिए अब तक मंदिर के आसपास की कुल 17 जमीनों की हुई रजिस्ट्री। मथुरा के एडीएम वित्त पंकज वर्मा ने बताया अब तक 1900 वर्ग मीटर जमीन की हुई रजिस्ट्री, मंदिर कॉरिडोर के लिए अपनी जमीन देने के लिए खुद आगे आ रहे लोग। महाराष्ट्र के वाशिम में लोगों को गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से गिरा पारा। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई जगह गिरे पेड़ के हिस्से, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही बकरीद। ईद उल अजहा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने अलग अलग ईदगाहों में पढ़ी विशेष नमाज। बकरीद की नमाज के लिए बांदीपोरा की मरगजी ईदगाह में जुटे सबसे ज्यादा श्रद्धालु, नमाज में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। नमाजियों ने लोगों में शांति, समृद्धि और भलाई के लिए मांगी दुआ, नमाज को देखते प्रशासन ने किए जरूरी इंतजाम। इस मौके पर विद्वान मौलानाओं ने इस्लाम में कुर्बानी, भाईचारे, एकता और करुणा के महत्व पर डाली रोशनी। जम्मू में भी देखी ईद पर्व की रौनक, मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े उत्साह के साथ पढ़ी ईद उल अजहा की नमाज, शांति, समृद्धि और सामुदायिक सौहार्द की मांग की दुआ। ईद उल अजहा के मौके पर ताजमहल देखने इच्छुक पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, कल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिना किसी शुल्क के ताजमहल देख सकेंगे सैलानी। कल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भारतीय और विदेशी पर्यटकों को नहीं देना होगा कोई शुल्क, स्थानीय लोगों से 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों को 1100 रुपये लगता है टिकट। बड़ी संख्या में पर्यटकों के ताजमहल पहुंचने की संभावना को देखते हुए कड़ी व्यवस्था की गई है, भीड़ नियंत्रण के लिए किए गए विशेष इंतजाम। नागपुर पुलिस होगी हाईटेक, नागपुर पुलिस को मिले बैलेंसिंग स्कूटर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजार और झील के पास पेट्रोलिंग के लिए होगा इस्तेमाल। धर्मशाला में कंपटीशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन, 6 जुलाई को है दलाई लामा का जन्मदिन। दलाई लामा के जन्मदिन से पहले आयोजित होगा 3 दिवसीय तिब्बतीयन सांस्कृतिक उत्सव, लोगों को तिब्बती संस्कृति के बारे में जानने का मिलेगा मौका। देश विदेश से कई गणमान्य अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग भी होंगे शामिल। धर्म गुरु पर बनी फिल्म भी की जाएगी हिंदी प्रदर्शित। तमिलनाडु के कुडलूर में श्री कुंथामडावर मंदिर उत्सव का भव्य आयोजन, महाभारत के पात्र अरावन को समर्पित है सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। उत्सव में सज संवर कर तैयार होती हैं स्थानीय महिलाएं, भगवान कुंथडावर यानी अरावन से करती हैं प्रतीकात्मक रूप से विवाह, भव्य जुलूस, पारंपरिक नृत्य, संगीत प्रतियोगिताओं का भी आयोजन। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन, 11 अर्चकों, 22 देव कन्याओं और 25 क्विंटल फूल मालाओं और 11,000 दीपों से हुई आरती। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन, घाटों पर फैले दीपों की रोशनी, देश विदेश से आए हजारों सैलानियों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का होगा संपूर्ण विकास, मुख्यमंत्री योगी ने किया 342 जनकल्याण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम, परियोजनाओं के माध्यम से शहर में आधुनिक शहरी सुविधाओं का किया जाएगा विस्तार। पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत बिहार में सरकारी स्तर पर कारपूल और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का आदेश, पदाधिकारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में देश को बड़ी सफलता, रोबोट की मदद से डॉक्टर ने हजारों किलोमीटर दूर मौजूद मरीज की सफल सर्जरी की। चीन के वुहान में मौजूद एविशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी के सीनियर भारतीय सर्जन ने हैदराबाद में मरीज की सफल सर्जरी की। वुहान में टोंगजी अस्पताल और हैदराबाद में AINU अस्पताल के बीच आपसी तालमेल से की गई सर्जरी, रिमोट सर्जरी के भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों और देशों के लिए राहत वाली न्यूज, रूसी वैज्ञानिकों ने वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा किया। दुर्लभ बूंदी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का दावा, कांगो और युगांडा जैसे देशों के लिए राहत की खबर, रूस ने पीड़ित देशों को मदद की पेशकश की। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर, 12 जून को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। वरुण धवन स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का चुनरी चुनरी गाना रिलीज, 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी डेविड धवन निर्देशित फिल्म। रितेश देशमुख के करियर के बड़े फिल्मों में से एक बनी राजा शिवाजी, 100 करोड़ क्लब में एंट्री, 24 दिन में 101.4 करोड़ रहा नेट कलेक्शन। धुरंधर 2 ने दुनिया भर में की शानदार कमाई, फिल्म ने 67 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से ज्यादा किया कारोबार। समंथा रुत प्रभु की फिल्म माँ इंटी बंगारम का ट्रेलर जारी, फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन, अवतार 19 जून को होगी रिलीज। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची डिफेंडिंग चैंपियन RCB, IPL के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को दी करारी शिकस्त। गुजरात टाइटंस को 92 रनों से बेंगलुरु ने दी मात, RCB के 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेज करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर ढेर। बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने खेली 93 रनों की कप्तानी पारी, विराट कोहली और कुणाल पांड्या ने बनाए 43-43 रन। IPL के इतिहास में कुल 5वीं बार फाइनल में पहुंची बेंगलुरु की टीम, सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में हासिल किया 3rd स्थान। क्वालिफायर 1 में मिली हार के बाद अब क्वालिफायर 2 में पहुंची गुजरात टाइटंस, एलिमिनेटर मुकाबला जीतने वाली टीम से होगा मुकाबला, फाइनल में पहुंचने का मिलेगा दूसरा मौका। IPL में आज खेला जाएगा अहम एलिमिनेटर मैच, न्यू चंडीगढ़ में आमने सामने होंगे हैदराबाद और राजस्थान की टीमें। दोनों ही टीमों के लिए आज करो या मरो के मैच, IPL की फाइनल की रेस से बाहर होगी आज हारने वाली टीम, जीतने वाली टीम खेलेगी क्वालिफायर मैच। राजस्थान रॉयल्स के धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से सनराइजर्स हैदराबाद को रहना होगा सावधान। इस सीजन में खेले गए 14 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी हैं तो हैदराबाद के पास हैं क्लॉसन जैसा जबरदस्त बल्लेबाज। क्लॉसन ने मिडिल ऑर्डर में किया है शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। आईपीएल में अब तक शानदार रहा है दोनों ही टीमों का सफर। हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही, राजस्थान की टीम ने चौथे स्थान के साथ प्लेऑफ में बनाई जगह। उत्तरी इराक के हमदानिया में प्राइवेट म्यूजियम बना आकर्षण का केंद्र, अल असल्फ है इस म्यूजियम का नाम अरबी में जिसका मतलब है पूर्वज। 2020 में खोला गया अल असल्फ म्यूजियम जहां मौजूद है इराक की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कई अनोखी चीजें। गादा फंसी है इस प्राइवेट म्यूजियम के ओनर का नाम म्यूजियम में कई दुर्लभ और यादगार चीजें म्यूजियम में सहेज कर रखी है चीजों में पारंपरिक ग्रामोफोन से लेकर परिधान तक शामिल इराक की सांस्कृतिक से जुड़ी कई तस्वीरें और शिल्पकला के नमूने बढ़ रहे हैं म्यूजियम की शोभा। दूर दूर से प्राइवेट म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं विजिटर्स। इस इराक चीजों के अलावा कलेक्शन में कई ईसाई कलाकृतियां भी शामिल। इटली में साल की पहली बड़ी हीट वेव, कई शहरों में तापमान 35 डिग्री के करीब पहुंचा। गर्मी ने समय से पहले लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, टस्कनी और उम्ब्रिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान। इटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने 27 शहरों के लिए हीट वेव मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव किया, बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह। इटली के 12 शहर ऑरेंज अलर्ट पर, बुधवार तक संख्या हो सकती है 15। गुरुवार से नॉर्दर्न यूरोप की ठंडी हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद, कुछ इलाकों में बारिश और तूफान की भी आशंका। जर्मनी में तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंचा, लोग झीलों और खुले कैफे में बिता रहे हैं समय। जर्मनी के हुराद झील पर इन्फ्लेटेबल वाटर स्लाइड बना आकर्षण का केंद्र, हर उम्र के लोगों ने इतने की मस्ती। ऑटोमाइग्लर झील में दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोगों का कहना, लंबे समय बाद मिला अच्छा मौसम। जर्मनी की झीलों और पार्कों में लोग गर्मी का आनंद लेते हुए कर रहे हैं पिकनिक और तैराकी, पानी के फुहारों के बीच बच्चों की मस्ती। मौसम विभाग के आने वाले दिनों में तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद, फिलहाल लोग गर्मी से बचने का कर रहे हैं इंतजाम। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेटिस्लावा में मंगलवार को तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, मई के औसत से करीब 8 डिग्री ज्यादा गर्मी दर्ज। भीषण धूप के कारण शहर में लोग छांव ढूंढते नजर आए, पर्यटक और स्थानीय लोग गर्मी से बचने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर। पानी की बोतलें और आइसक्रीम की मांग अचानक बढ़ी, लोग लगातार खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते दिखे। गर्मी के बावजूद ट्राम नेटवर्क का निर्माण कार्य जारी रहा, मजदूर धूप में काम करते नजर आए। तेज धूप ने शहर के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित किया, लोगों की दिनचर्या भी गर्मी की वजह से प्रभावित हुई। लंदन में मई की भीषण गर्मी के बीच लोग दोपहर में बाहर निकलकर पार्कों और सड़कों पर आए नजर, तेज धूप और बढ़ते तापमान के बावजूद शहर में सामान्य जीवन जारी। लंदन की सड़कों पर आइसक्रीम वैन के बाहर लंबी कतारें लगी, लोग ठंडे पेय और आइसक्रीम से राहत लेते नजर आए। कई लोग छतरियों, टोपियों और हल्के कपड़ों का सहारा लेकर गर्मी से खुद को बचाने की कोशिश करते देखे। ब्रिटेन में मई का अब तक का सबसे गर्म दिन किया गया दर्ज। विक्टोरिया पार्क की झील में लोग नावों पर छतरियां लगाकर धूप से बचते नजर आए, पार्क में परिवार और पर्यटक पानी, छाया और ठंडे पेयों की मदद से गर्मी का सामना करते दिखे। लंदन का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की संभावना पहले से कई गुना बढ़ गई है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Or favorite country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything
3: up
2: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। ऐसे में देश भर के चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की कोशिश की जा रही है।
7: धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
8: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
7: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सकें। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब आपको मिलवाते हैं एक नन्हे हाथी से जिसकी अटखेलियां आपका दिल चुरा लेंगी। जमशेदपुर के दलमा के जंगलों में रहने वाले इस हाथी का नाम बादल है। बादल करीब 6 महीने का है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल से इसका गहरा लगाव हो गया है। बादल को यूं फुटबॉल खेलते देख सैलानी भी बहुत खुश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बादल अब इस जंगल का नया आकर्षण बन चुका है।
7: कभी सूखी जमीन पर फुटबॉल से खेल, तो कभी पानी में फुटबॉल से मस्ती, मतलब ये कि जगह कोई भी हो, फुटबॉल से इस नन्हे गजराज का लगाव कम नहीं हो रहा। जमशेदपुर से सटे दलमा वन अभयारण्य में आकर्षण का नया केंद्र है बादल। दलमा के जंगलों में खेलता कूदता 6 महीने का नन्हा गजराज सबका चहेता बन गया है। पर्यटकों के लिए भी बादल को यूं खेलते देखना काफी लुभा रहा है।
9: ऐसे सर मतलब दो दफा खेलते हैं सर, सुबह और शाम। इसमें जो पिला करके जो हम खिलाते हैं ना सर, तो फुटबॉल अच्छा 10 से 15 मिनट तक मैंने खेल लेता है सर प्रतिदिन, और देखते हैं कोशिश करके मैंने और खिलाने का। अभी तो मैंने मूड में है नहीं, एक बार खेल चुके हैं सर।
10: मजा आता है?
9: बहुत बहुत मजा आता है सर, मुंह में लेकर के ऊपर में जैसे आदमी लोग खेलता है उसी प्रकार मैंने खेल लेता है बादल। दो गो बॉल लाए हैं और इसको खेल सिखा रहे हैं। बैठाने का भी मैंने खेल सिखा, दो पैर में एक ठो मैंने वहाँ नल है, वहाँ छोटा सा मैंने जगह है, उसमें सरकस जैसे खिलाता है उस प्रकार भी खड़ा हो जाता है।
7: करीब 6 महीने पहले बादल को घायल और बेहद गंभीर स्थिति में यहाँ लाया गया था। वनकर्मी रवि ने बादल को भरपूर प्यार दिया, दिन रात सेवा की, एक नया जीवन दिया। अब ये नन्हा हाथी न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है, बल्कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य की शान बन चुका है। इसकी अटखेलियां लोगों को लुभाती हैं, तो इसे फुटबॉल खेलता देख सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने पूजा की। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। पटना में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार। 65 महिलाओं ने विधि विधान से की पूजा। राम नगरी अयोध्या में एक बार फिर से दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बारिश के दौरान सैलानियों को नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
14: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावल। शाम के 7 बज चुके हैं, 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। आपको आज की 7 अच्छी खबरें बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, हाइड्रोजन ट्रेन का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे दी है। हमारी आज की पहली गुड न्यूज यही है, स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ने को तैयार। हरित और टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा को मिली है और ये जिंद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी। इस ग्रीन ट्रेन में कुल 10 डिब्बे होंगे। ये ट्रेन सेवा जल्दी ही शुरू होने वाली और 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित होकर ये अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक हाइड्रोजन का उपयोग करके केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है, जिसमें केवल जल वाष्प उत्सर्जित होता है। इस प्रकार ये पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित सिस्टम का एक स्वच्छ विकल्प है। इस पहल के साथ ही भारत, जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। हिमाचल तिब्बती संस्कृति के रंगों में सराबोर है। धर्मशाला और शिमला में अगले 3 दिनों तक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, जहां हर तरफ बौद्ध मंत्र गूंजेंगे और पारंपरिक लोक नृत्य करने वाले कलाकार थिरकेंगे। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज यही है, तिब्बती संस्कृति उत्सव में तिब्बत को जानने का मौका। हिमाचल में एक और शिमला का स्वेच्छू महोत्सव अपनी आध्यात्मिक छटा बिखेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मशाला का पुलिस ग्राउंड कल से तिब्बती संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव का गवाह बनेगा।

हिमाचल की वादियाँ इन दिनों तिब्बती संस्कृति के रंग में रंग गई है। शिमला से लेकर धर्मशाला तक पारंपरिक लोक संगीत, आध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और नाच गाने के साथ भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। तिब्बती संस्कृति के रंग समेटती है तस्वीरें शिमला की हैं, जहां तिब्बती समुदाय के प्रसिद्ध तिशेचू महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जब रंग बिरंगे परिधानों और विशाल मुखौटों में सजे भिक्षु मंच पर उतरे तो वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखते रह गए। इनके हर कदम, हर मुद्रा और हर घूमते हुए चक्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास छिपा है।

0: दरअसल ये छम नृत्य कला है जो तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पवित्र और मुखोटा नृत्य कला है जिसे मुख्य रूप से भिक्षुओं यानी लामाओं द्वारा मठों में पारंपरिक संगीत की धुन पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बुरी शक्तियों को नष्ट करना। मान्यता है कि ये पवित्र छम नृत्य बुरी शक्तियों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का संदेश देता है। लेकिन इस बार तशेचू महोत्सव सिर्फ संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में बढ़ते तनाव और खासकर वेस्ट एशिया की स्थिति को देखते हुए तिब्बती समुदाय ने विशेष शांति प्रार्थनाएं की। भिक्षुओं ने मानवता, भाईचारे और वैश्विक शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना कर पूरी दुनिया को एकता का संदेश दिया है। तशेचू महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने की ताकत भी है। वैसे तिब्बती संस्कृति के रंग धर्मशाला में दिखने वाले हैं, जहां 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 28 से 30 मई तक धर्मशाला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें तिब्बती संस्कृति, परंपरा, लोक संगीत, नृत्य और खानपान का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।
1: एक तो खास बात यह है कि इस साल जो है परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन 90 साल के जन्मदिन मना रहा है। इसी अनुसार जो है यहाँ पे परम पावन जी धर्मशाला में बैठ के निवास में बैठ के तकरीबन 6-7 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इसकी तरह से हमारा भारतीय लोगों के साथ मिलजुल कर दोस्ती निभाने के लिए ये जो उत्सव रखा है।
0: धर्मशाला में तिब्बती संस्कृति उत्सव में आने वाले 3 दिन मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। किताबों की प्रदर्शनी लगेगी और तिब्बती इतिहास और संघर्ष से जुड़ी जानकारियां भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। दरअसल शिमला तशेचू उत्सव और धर्मशाला का तिब्बती संस्कृति उत्सव लोगों को तिब्बती आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगा। ये उत्सव केवल मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा बल्कि इस महोत्सव में तिब्बती जीवन शैली और समाज को करीब से समझने का भी मौका मिलेगा। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पंजाब के मोहाली में एक फुटबॉल एकेडमी है मिनर्वा नाम की। ये एकेडमी ने जिसने पूरी दुनिया में उस समय ये चर्चा में आई जब इस क्लब ने लड़कों ने लिवरपूल जैसे क्लब को 6-0 से शिकस्त दे दी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यहां के लड़कों ने कमाल किया हो। इससे पहले भी वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा चुके हैं। हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज यही है, मोहाली के मिनर्वा एकेडमी में फुटबॉल के धुरंधर। मिनर्वा एकेडमी में 500 ऐसे युवा खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं जिन पर देश में फुटबॉल की उम्मीदें कायम हैं। देखिए इस एकेडमी से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।

0: तब थोड़ा सा तो घबराहट था अंदर भी, पर फिर जब गोल मारने लगे तब और थोड़ा मतलब वो उत्साह आया कि और मार सकते हैं हम लोग।
1: इस जीत से ना सिर्फ लिवरपूल को 6-0 से पराजय हासिल हुई, बल्कि यह भी साबित हो गया कि पंजाब की इस एकेडमी के फुटबॉलरों में दुनिया की किसी भी टीम को हराने का जुनून और प्रतिभा है।
2: एक्चुअली उनका गेम है हाई प्रेस, दे इन्वेंटेड दैट हाई प्रेस थिंग, और हमने उनको उन्हीं के इन्वेंटेड थिंग में हराया। लाइक हमने उनको वो चीज करके दिखाई जो उन्हें इन्वेंट की थी, तो यस वी डोमिनेट द गेम।
1: मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी और तब से ये एकेडमी प्रतिभाओं को निखारने में जुटी है। मिनर्वा एकेडमी अब तक 250 से ज्यादा खिलाड़ियों को तराश चुकी है और यहाँ से निकले बच्चे अलग अलग कैटेगरी में देश और अपने क्लबों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
3: मोहाली की इस फुटबॉल एकेडमी ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी जो कि मोहाली की आउटस्कर्ट्स पे मौजूद है, उसने पिछले महीने स्पेन में जाकर लिवरपूल को हरा दिया। जी हां, लिवरपूल एक जायंट क्लब है जिसने दुनिया को बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं, और किसने सोचा होगा कि पंजाब में स्थित एक फुटबॉल एकेडमी की टीम जाकर अंडर 15 कैटेगरी में लिवरपूल को हरा देगी। सो एक देश जो कि क्रिकेट के पीछे दीवाना है, वहां इस तरह की जो अचीवमेंट है फुटबॉल के अरीना में, वो डेफिनेटली फुटबॉल के लिए भी एक बड़े दरवाजे खोलती है।
1: अभी एकेडमी में करीब 500 खिलाड़ी हैं और उनमें से करीब 250 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्लब चला रहे लोगों का मानना है कि लिवरपूल के लिए मिली जीत बेहद महत्वपूर्ण है और इससे क्लब के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है, लेकिन क्लब को अभी लंबी दूरी तय करनी है।
4: तो मुझे इस टूर्नामेंट से पहले ही पता था कि हमारी ट्रेनिंग इन लड़कों पे इतनी अच्छी हुई है एंड इनकी परफॉर्मेंस, उनको एक्सपोजर प्लस डाइट न्यूट्रिशन सारा इतना अच्छा मिला है। वी न्यू कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी बिकॉज हमारे प्रोसेसेस ठीक हैं। सो अगर प्रोसेसेस ठीक हुए तो आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आएंगे। तो इससे हमारे को सिर्फ यही प्रूफ मिला है कि हमारे प्रोसेसेस ठीक हैं, वी आर ऑन द राइट वे।
1: लिवरपूल के खिलाफ मिली जीत से पता चल गया है कि क्लब की प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है और वो लोग सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल पहले फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इस एकेडमी की शुरुआत हुई थी और तब से अब तक मिनर्वा ने काफी लंबा सफर तय किया है।
4: इनको अब चाहिए, इनको अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ट्रेनिंग, खाना पीना रहना इनका करें, एक्सपोजर करें, तो ये दुनिया में बेस्ट इन द वर्ल्ड बड़े जाके भी बन सकते हैं। प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि हम पैसे दुनिया में, इंडिया में पैसे तब खर्च करते हैं एथलीट पे जब वो वहां पे पहुंच सकता है, जब मतलब कि अपने वर्ल्ड टॉप में पहुंच जाता है। जब वो वर्ल्ड टॉप में पहुंच जाता है तब उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है आपकी, वो दुनिया सपोर्ट करेगी बिकॉज ही इज इन द वर्ल्ड टॉप 8, जैसे वो कहते हैं टॉप्स की स्कीम है वर्ल्ड टॉप 8 में। फुटबॉल में टॉप 8 में आने के लिए पहले आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी, और बड़ों की नहीं, बच्चों की।
1: इस एकेडमी के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लिवरपूल जैसी मजबूत यूरोपीय टीम को पटखनी देकर दिखा दिया है कि ना तो उनके पास हुनर की कमी है और ना ही हौसले की। ऐसे में इस एकेडमी को जरूरत है तो केवल सपोर्ट की। असीम बस्सी, मोहाली, गुड न्यूज टुडे।
5: बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही इस साल के संतुपंत ट्रैकिंग सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है और इस रूट पर ट्रैकिंग करने वाला पहला दल अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सुरक्षित वापस लौटा है। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है, संतुपंत ट्रैकिंग से सुरक्षित लौटा पहला जत्था। संतुपंत ट्रैकिंग रूट पर यात्रा शुरू हो चुकी है और पहला जत्था कठिन ट्रैकिंग रूट पर से वापस लौट आया है। इस वर्ष के पहले आधिकारिक दल में गुजरात के 13 सदस्य शामिल थे, जिनमें 4 महिलाएं 9 पुरुष शामिल थे। ये टीम 23 मई को संतुपंत ट्रैक के लिए रवाना हुई थी। 4 दिनों के इस बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर को तय कर मंगलवार को सभी यात्री और उनके साथ गए 12 पोर्टर भारत के प्रथम गांव माणा सुरक्षित लौटा है। 15,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस बेहद कठिन ट्रैक पर मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। यात्रा के दौरान 24 और 25 मई को ट्रैकिंग रूट पर जमकर बर्फबारी भी देखने को मिली। हालांकि हाड़ कपा देने वाली ठंड और कड़े मौसम के बावजूद तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। गुजरात से आए इस दल ने प्राकृतिक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार अनुभव बताया।
6: बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, वहीं अब एक महीने बाद संतुपंत जो ट्रैकिंग रूट है इसे भी पर्यटकों के लिए खोला गया है। अब पहला जो ट्रैकिंग दल था, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर है बद्रीनाथ धाम से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर संतुपंत जो सरोवर है वो मौजूद है। यहाँ तक हर वर्ष पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग का रास्ता इसे कहा जाता है। 5 भाई पांडव भी यहीं से स्वर्ग के लिए निकले थे। ऐसे में हर श्रद्धालु यहां तक पहुंचता है जो सतोपंत सरोवर

0: पर है, इसके तीन कोने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से इसे हिंदू धर्म में कहा जाता है। ऐसे में पहला दल ये लौट पहुंचा है। 23 मई को बद्रीनाथ धाम से निकला था और 26 मई को बद्रीनाथ धाम के माणा में जो वापस पहुंचा है, सकुशल पहुंचा है। ट्रैकिंग दल ने कहा बहुत अच्छी उनकी जो ट्रैकिंग यात्रा रही है, उन्हें बर्फबारी भी देखने को मिली, कड़ाके की ठंड भी देखने को मिली, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें इस ट्रैकिंग रूट पर देखने को मिला है। ऐसे में बहुत उत्साहित टूरिस्ट है, पहला दल लौट आया है, अब आगे भी यहाँ पे ट्रैक जो टूरिस्ट है वो जाते रहेंगे।
1: देश में खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर ने विकास का नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी केवीआईसी ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए पहली बार 1,87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हासिल कर लिया। ऐसे में हमारी आज की पांचवी गुड न्यूज यही है, खादी ग्रामोद्योग का रिकॉर्ड तोड़ कारोबार। खादी अब सिर्फ परंपरा पहचान नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। उत्पादन, बिक्री, रोजगार तीनों क्षेत्रों में खादी ने ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है। केवीआईसी द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के औसाई आंकड़ों के मुताबिक खादी और ग्राम उद्योग उत्पादन की बिक्री पहली बार 1,87,105 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। साल 2013-14 की तुलना में ये बिक्री 501% और उत्पादन में 380% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रोजगार के अवसरों में 56% का इजाफा हुआ है। जहां 2013-14 में खादी उत्पादन 811 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये बढ़कर करीब 3,974 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। खादी की बिक्री भी 1,081 करोड़ से बढ़कर 7,859 करोड़ रुपए तक हो गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में 66,000 से ज्यादा नई इकाइयों की स्थापना की गई है।
2: इस साल खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रिकॉर्ड 1,87 करोड़ का कारोबार किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े दे रहे हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार जी, मेरे साथ में भी हैं। सर, ये तो रिकॉर्ड ही बना दिया आपने, कैसे संभव हुआ ये?
3: ये संभव हुआ है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत और उनके नेतृत्व में। आपने देखा होगा कि आज ही के दिन 12 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी और तब से लेके आज तक खादी का ये पुनर्निर्माण यात्रा जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में खादी ने नई ऊंचाइयों को पार किया है। आज से ठीक 12 साल पहले खादी ग्रामोद्योग का कारोबार करीब 30-32 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के परिश्रम और मेहनत और उनके नेतृत्व में 6 गुना की वृद्धि करके आज हम लोग 1,87,000 करोड़ रुपए के कारोबार को पार कर गए हैं।
1: हिसार के बेटे कमल ने कमाल कर दिया है। कमल ने पानी के अंदर 86 पुशअप्स लगाए, इससे कमल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है, पानी के अंदर 86 पुशअप्स के साथ कमल का रिकॉर्ड। कामयाबी हासिल करने के लिए जुनून और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल के इसी जुनून ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कमल ने पानी के भीतर 86 बार पुशअप्स करके रिकॉर्ड कायम किया है।
4: वो भी पानी में आसान काम नहीं है, लेकिन हरियाणा के हिसार के रहने वाले कमल कलोई ने अपनी लगन और अभ्यास से न सिर्फ इस मुश्किल काम को आसान बना दिया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कमल ने पानी के भीतर 86 पुशअप लगाकर तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड वियतनाम के हनोई में बनाया है। हिसार के आर्यनगर में रहने वाले कमल का ये तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले कमल कलोई ने साल 2020 में एक सांस में पानी के अंदर 21 योगासन कर अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने पानी के भीतर 81 एयर रिंग ब्लोइंग कर दूसरी बार अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अब तीसरी बार पानी के अंदर 86 पुशअप लगाकर उन्होंने अपना, अपने गांव और दयानंद महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। कमल की ये सफलता बताती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे।
1: अब वेल्डिंग के लिए न गैस सिलेंडर उठाने की जरूरत पड़ेगी, न ही बार बार एलपीजी भरवाने का खर्च होगा, क्योंकि बाजार में आ चुकी ऐसी मशीन जो पानी से हाइड्रोजन बनाकर वेल्डिंग और कटिंग करती है। दावा यह है कि वो तकनीक न सिर्फ सस्ती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। हमारी आज की सातवीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, पानी से चलने वाली प्रदूषण रहित वेल्डिंग मशीन। ये मशीन डिस्टिल्ड वाटर को प्रोसेस करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, जिसका इस्तेमाल वेल्डिंग और कटिंग के काम में किया जाता है। हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित ये नई वेल्डिंग मशीन ज्वेलरी बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती है।

ये दिखने में भले ही एक सामान्य मशीन लग रही हो, लेकिन इसकी तकनीक भविष्य में काफी किफायती और मददगार साबित हो सकती है। दरअसल ये एक अत्याधुनिक हाइड्रोजन बेस्ड वेल्डिंग और कटिंग मशीन है, जो बिना पारंपरिक ईंधन के बेहद प्रभावी तरीके से धातुओं की कटिंग और वेल्डिंग करने में सक्षम है।

0: इस मशीन में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे न केवल काम तेज और सटीक होता है बल्कि प्रदूषण भी बेहद कम होता है।
1: क्लीन एनर्जी में हमारी कंपनी काम करती है, तो लगातार हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में इनोवेट कर रहे हैं जो क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल पे काम करती हो। उसी का एक ये एप्लीकेशन है जो हाइड्रोजन बेस्ड जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे काम करती है, वेल्डिंग मशीन, इससे वेल्डिंग कटिंग मशीन जो भी बोलो आप, ये करती है काम।
0: इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे चलाने के लिए LPG या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। इस मशीन में सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है और फिर मशीन डिस्टिल्ड वाटर से हाइड्रोजन गैस तैयार करती है। इसी गैस की मदद से वेल्डिंग और कटिंग का काम होता है।
2: 3 लीटर इसकी टैंक है, लेकिन आप अपने काम के अकॉर्डिंग जो है इसमें पानी डाल सकते हैं और 3 घंटे तक ये मशीन जो है वो चल सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए पानी डालने का जो है वो ऑप्शन इसके अंदर, अच्छा पानी कोई भी पानी डाल सकता है?
1: हम लोग अभी मेनली डिस्टिल वाटर यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा प्योर होता है मैम, क्योंकि अगर आप टैप वाटर या फिर अदर वाटर डालते हैं तो बाद में कंटामिनेशन होने का चांसेस ज्यादा बढ़ता है, तो इसका लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग डिस्टिल वाटर प्रिफर करते हैं।
0: अब तक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली गैस वेल्डिंग मशीनों में LPG और ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरी होते थे, लेकिन इस नई तकनीक में सिलेंडर का पूरा झंझट खत्म हो जाता है, यानी ना गैस स्टोरेज की परेशानी और ना बार बार रिफिलिंग का खर्च होगा।
1: क्लीन फ्यूल इस्तेमाल होता है, इसमें कोई भी तरह का इमिशन नहीं हो रहा है, इको फ्रेंडली सिस्टम है हमारा और डिपेंडेंसी नहीं है कहीं से गैस लाने की, कहीं से किसी से ये करने की। अब हमेशा देख रहे हो कि गैस का प्राइसेस बढ़ रहा है, अप डाउन हो रहा है, इनमें इन सब चीज़ों का आपको परेशानी लेना नहीं है। डायरेक्टली आप यूज़ करो, फ्यूल करो, फ्यूल के नाम पे पानी और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है।
0: इस मशीन को खास तौर पर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि ज्वेलरी निर्माण में बेहद बारीक वेल्डिंग की जरूरत होती है और अगर वेल्डिंग की लागत कम होगी तो ज्वेलरी बनाने की कुल लागत भी घट सकती है।
1: और बेसिकली जहाँ भी गैस वेल्डिंग हो सकता था, जैसे ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेशन जहाँ पर भी होता है, जो भी मेटल नॉन मेटल थिंग्स वेल्ड करना हो, ब्रेजिंग करना हो, इन सब जगह में हमारा मशीन काम आता है। इवन जो कटिंग के लिए यूज होता है SS मटेरियल, वो सब भी कटिंग के लिए ये पर्याप्त है।
0: दावा ये भी है कि ये मशीन 0 कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है, यानी इसके इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता। यही वजह है कि इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 1 लाख रुपए से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए तक जाती है। हालांकि कंपनी का दावा है कि ये एक बार का निवेश है, क्योंकि इसके बाद गैस सिलेंडर पर होने वाला लगातार खर्च काफी हद तक कम हो जाता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
4: के साथ अच्छी खबरें, देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
7: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
6: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
11: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि, राहु, केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ में अब तक सबसे अधिक करीब 9 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भक्तों की भीड़।

0: सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 रुपए के नोटों से सजा भगवान का दरबार, 65 महिलाओं ने विधि विधान से की पूजा। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के दौरान सैलानियों को नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरें ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई है। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: पश्चिम बंगाल का बताकर एक रोते बिलखते आदमी का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिला और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान का है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद से अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। इस वीडियो को भी इसी संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब वन विभाग और सरकारी जमीन पर बसे थे। वीडियो में पीछे देखिए, एक व्यक्ति तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जर्सी में खड़ा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते हुए और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो यह हमें बांग्ला लगा। इससे स्पष्ट रूप से बांग्ला सुनाई पड़ रहा है, मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद हमें वीडियो के एक फ्रेम में खान वस्त्र नाम की एक दुकान नजर आती है। बांग्ला में दुकान का पता लिखा है बांग्लादेश। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर दुकानें बांग्लादेश की कैसी हो सकती है? ये थोड़ा अटपटा लगा। बंगाल का वीडियो होने पर यहाँ दुकानों के पते पर पश्चिम बंगाल का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन पूरे वीडियो में हमें पश्चिम बंगाल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हमने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे बंगाल से जुड़ते हुए कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसका फैक्ट चेक लगातार किया गया है। हमारी जांच में सारे दावे झूठे साबित हुए, लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि ये वायरल वीडियो आखिर कब का और कहां का है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है। और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही? ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो के पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के माइक को साफ साफ देखा जा सकता है। सर्च के दौरान बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के फेसबुक पेज पर इस घटना का पूरा लाइव वीडियो मिला। 20 मई के इस लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के मीरपुर की है, जहां प्रशासन ने बोनियाबाद स्लम इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई थी। इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल वीडियो में दिख रहे लोग भी नजर आते हैं। करीब 10 मिनट की इस रिपोर्ट में 6 मिनट के बाद वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है, जहां वही रोता हुआ आदमी और बच्चे दिखाई देते हैं। 20 मई को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए ये कार्रवाई की थी। इस दौरान स्थानीय लोगों के हमले में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। ये बांग्लादेश के मीरपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सड़क पर नारे लगाते मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया? देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। किसी सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगाते मुस्लिमों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इसे केरलम का बताकर दावा कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद इन मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा,
2: केरलम में मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनने की घोषणा के बाद भड़काऊ बयानबाजी तेज, हिंदुओं के नाम लेकर काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले दावे की सच्चाई के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो केरलम का है और वहां एक बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ है दिख रहा है तो कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट और केरलम के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी सर्च किया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती हुई कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ और हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सही है तो वायरल हो रहा वीडियो केरलम के किस हिस्से का है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं किसी और घटना से संबंधित, किसी दूसरी जगह से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 28 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर पर संपर्क करने पर हमारी बात सैयद सिफात अली से हुई। उन्होंने बताया कि ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का है और उन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये भीड़ जायरीन के एक जत्थे की है जो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शन करने और चादर चढ़ाने आए थे। जायरीन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों, खासतौर पर सूफी संतों की दरगाहों या मजारों की यात्रा करने जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो केरल का नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर का है। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में लगते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
6: Thank God I get to wake.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin,
9: Kiss. I wanna rock and roll all night. AC/DC. Lynyrd Skynyrd. And so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
10: आजम के जंगलों से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर भूरे रंग में दिखने वाला हॉग डियर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग में घूमता नजर आया। इस बेहद दुर्लभ नजारे का वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काजीरंगा के हरे भरे घास के मैदान के बीच एक सफेद रंग का हिरण दूर से ही चमक रहा है। ये कोई नई प्रजाति नहीं बल्कि ये सामान्य हॉग हिरण है। जाहिर है कि अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सफेद क्यों है। दरअसल ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। इसमें शरीर के रंग तय करने वाला पिगमेंट यानी कि मेलानिन नहीं होता, जिससे त्वचा और बाल पूरी तरह से सफेद या फिर हल्के हो जाते हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर और मोर का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो किसी घर के आंगन का नजर आ रहा है। एक चारपाई पर बंदर आराम से बैठा नजर आता है, वहीं पास में एक सुंदर मोर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन तभी बंदर को अचानक से शरारत सूझ जाती है। फिर फ्रेम में गजब का सीन कैद हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर अचानक चारपाई से छलांग लगाता है और सीधे मोर की पीठ पर चढ़ जाता है। खुद पर अचानक बंदर को बैठा देख मोर घबरा जाता है और फिर तेजी से फड़फड़ाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन बंदर बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। कुछ सेकंड तक ये मजेदार नजारा चलता रहता है। बंदर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है मानो वो किसी सवारी का मजा ले रहा हो। वहीं मोर लगातार इधर उधर भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
11: अरे बीमार है बुजुर्ग है तब तो थोड़ा सा दिल पसीजना चाहिए कि हर जगह पुलिस ही आएगा। इस काम के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए तो आप सभी लोग मिलके इसको कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करोगे तो पक्का सबको जगह मिल जाएगा।
10: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को ट्रेन के अंदर सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद पुलिस वाले ने जो किया उससे लोगों को बड़ी सीख मिली। दरअसल ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग काफी देर से भीड़ में खड़े थे लेकिन कुछ तंदुरुस्त युवक सीट पर आराम से फैले बैठे थे। तभी वहाँ मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी संतोष की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने बिना किसी बहस के युवक को प्यार से थोड़ा खिसकाया और बुजुर्ग को इज्जत के साथ बैठने के लिए जगह दिलाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीका के हरजावे कबीले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तरी तंजानिया के जंगलों में रहने वाले इस कबीले के लोगों को जब पहली बार शीशे में अपना चेहरा दिखाई दिया तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हंस पड़ा। कुछ लोग तो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे दुश्मन समझ लिया और पत्थर फेंक कर हमला कर दिया। दरअसल हरजावे अफ्रीका का सबसे पुराना और अंतिम शिकारी समुदायों में से एक है। ये लोग आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में तीर कमान और पत्थरों के सहारे शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत ही कम रहा है, इसीलिए शीशे जैसी आम वस्तु भी उनके लिए अनजानी थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब एक व्यक्ति को शीशा दिखाया गया तो वो पहले तो घबरा गया, फिर उसने अपना चेहरा देखा और हैरानी से पीछे हट गया। कुछ लोगों ने इसे किसी दूसरे इंसान की छवि समझा और हमला करने की कोशिश की। एक व्यक्ति तो पत्थर उठाकर शीशे पर फेंकने ही वाला था। बाद में जब समझ में आया कि ये उसका अपना ही चेहरा है तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में शादी का खूबसूरत माहौल नजर आता है। मंडप पूरी तरह से सजा हुआ और दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप पर वरमाला पहने साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, जैसी वीडियो में लग रही थी वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही।
12: आपने फोन में जो फोटो भेजाई थी वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती।
10: दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन भी मुस्कुरा पड़ी और जवाब देते हुए दूल्हे से पूछती है, तो अब क्या करोगे आप?
13: तो अब क्या करेंगे आप?
12: मैं केस करूंगा कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है।
10: इस पर दूल्हा हंसते हुए कहता है, केस करूंगा। इतना सुनते ही मंडप में मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं। दूल्हा दुल्हन की ये प्यारी सी नोकझोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग भी इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए आप घर से बाहर निकले और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाए और कपड़े खराब होने का डर सताने लगे। ऐसे में ज्यादातर लोग छाता या फिर रबड़ की चप्पल का सहारा ही लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा अनोखा जुगाड़ निकाला कि लोग देखते ही रह गए। रबड़ की चप्पलों की जगह उसने पैरों में ईंट जैसी ऊंची चप्पल पहन ली। अब ये देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बेहद अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में एक शख्स चलती गाड़ियों के बीच एक बेड चलाता हुआ नजर आता है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि उस बेड पर गद्दा और तकिया भी रखा हुआ है और शख्स आराम से उस पर लेटा हुआ है। आसपास कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन सड़क के बीच चलता ये बेड हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जो भी इस नजारे को देख रहा है वो कुछ पल के लिए रुककर इसे जरूर निहारता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑटो रिक्शा ने सबको हैरान कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है या फिर चलता फिरता घर। इस ऑटो में वॉश बेसिन, नल, आईना, शीशा और घरेलू सामान तक लगा हुआ है। वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक सवार सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने ये खास ऑटो आया। ऑटो के अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ था, जिसमें नल से पानी भी निकलता है। बेसिन के ऊपर आईना लगा है ताकि यात्री बैठे बैठे अपना चेहरा भी देख सके और हाथ मुंह धो सके। गर्मी के मौसम में यात्री अक्सर पसीने से तरबतर होते हैं, ऐसे में ये सुविधा उन्हें तरोताजा रखती है। ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को खास तरीके से मॉडिफाई करवाया है। उन्होंने बताया कि पहले वो सामान्य ऑटो चलाते थे, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बदलाव कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये डांस खूब तेजी से वायरल हो रहा और तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट की पब्लिक अपनी नजरें नहीं हटा पा रही। वायरल क्लिप में पीले सूट वाली एक लड़की ने हरियाणवी गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। लड़की के गजब के एक्सप्रेशन, कमाल की एनर्जी और मूव्स ने नेटिजंस का दिल जीत लिया।

0: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है? गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं? और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? कैसे करें गाय की सेवा, दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
6: It's your boy,
3: just
6: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: Good news today.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
8: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएं, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। व्यवस्था के नाम पर परंपरा से खिलवाड़ नहीं, श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी में गोस्वामियों के चयन में मनमानी पर सुप्रीम रोक। गुड न्यूज टुडे पर स्पेन में कमाल करने वाले भारतीय फुटबॉलर से मिलिए, लिवरपूल को शिकस्त देने वाले मिनर्वा पंजाब के जादूगरों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और पानी से चलने वाली वेल्डिंग मशीन 200 ml पानी से 3 घंटे तक करेगी काम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: के साथ जारी चारधाम यात्रा, केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने पूजा की, यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़। सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। अकोला के श्यामधाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। पटना में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 500 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार, 65 महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बारिश के दौरान सैलानियों को नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति। शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की, जिससे जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी में प्रतिनिधियों के चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्ट ने शयनभोग सेवायत परंपरा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी, जबकि राजभोग सेवायत परंपरा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी को समिति का सदस्य नियुक्त किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद वृंदावन का गोस्वामी समाज बहुत खुश है।

0: देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी में बड़ा बदलाव किया तो गोस्वामी समाज से जुड़े इन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मंदिर की हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन में अब प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस समिति में समाज की आवाज होंगे।
1: जी बात है, उच्चतम न्यायालय ने आज ठाकुर जी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिससे गोस्वामियों के हृदय में एक बहुत उल्लास और हर्ष की स्थिति है। विगत जब से उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, निरंतर मनमानी और निरंकुश मनमानी अपनी सब आदतें मंदिर के ऊपर थोपे जा रही थी जो गोस्वामियों के और बिहारी जी के मर्यादा की प्रतिकूल थी। निरंतर ऐसी अवहेलना गोस्वामी समाज और भक्तगण निरंतर सहते चले आ रहे थे। आज इसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, इससे बड़ी हर्ष की और बड़ी उल्लास की लहर गोस्वामी समाज में और भक्त समाज में।
2: गोस्वामियों को अपने ठाकुर पे विश्वास था क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन है और बिहारी जी को चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है और गोस्वामियों की तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिहारी जी है। उन्होंने अपने श्री बिहारी जी को नहीं छोड़ा और उनके भजन में लीन रहे क्योंकि जितना भी इन लोगों ने कर सकते थे इन्होंने किया। आज ठाकुर जी ने उसी की लाज रखी है।
3: ये ठाकुर जी की जीत है, समस्त ब्रजवासियों की जीत है, हमारी क्या जीत है।
0: दरअसल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के चार प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस समिति का मकसद मंदिर में दर्शन व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना था, लेकिन आरोप है कि समिति के अधिकारियों ने अपनी पसंद से गोस्वामी प्रतिनिधियों का चयन कर लिया था जिसका गोस्वामी समाज ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
4: रिट पिटीशन थी जो हमने फाइल करी थी क्योंकि जिस कमिटी का गठन हुआ था उस कमिटी के द्वारा कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करे गए थे जो कि डायरेक्टली रिचुअल्स को अफेक्ट कर रहे थे टेंपल के, और जो कमिटी ने जिन चार लोगों को चुना था, गोस्वामियों को चुना था कमिटी में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हमारा ये कहना था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बड़े जो गोस्वामी समूह ने, जो गोस्वामी में दो ग्रुप्स हैं, एक शयन भोग एक राजभोग, जो उन लोगों ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव्स वो नहीं है। तो इसकी मेन मांग थी हमारी रिट पिटीशन।
0: गोस्वामी समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने तीन पुराने सेवायत सदस्यों को हटाकर उनकी जगह पर नए सदस्य शामिल किए। राजभोग सेवा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी जबकि शयनभोग सेवा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के विकास के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाजनक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए विकास जरूरी है, लेकिन गोस्वामी समाज के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
4: 208 लोगों ने और जो 280 लोगों का ग्रुप है शयन भोग से और कुछ 67 लोगों का ग्रुप है राजभोग से, उसमें से 280 में से 208 उसमें शामिल हुए थे और उसमें से जो 67 उसमें से भी कुछ 50 लोग थे जिन लोगों ने कमिटी में चार लोगों का चयन करा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और जो पहले गोस्वामी थे उस कमिटी के उनको रिप्लेस करके इन चारों को उस कमिटी में आने का आदेश दिया है। दूसरी चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करी है कि कोई भी इंटरनल रिचुअल्स को ना टच करा जाए कमिटी के द्वारा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल्ड हमने अप्रोच आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि कई रिचुअल हैं जैसे कि टाइम चेंज टेम्पल का नहीं हो सकता। ये हमने ये भी रिक्वेस्ट करी कि ये एक अनऑल्टर्ड एक ट्रेडिशन है जो सालों से चला आ रहा है, और अगर आप 6 बजे की जगह आप बोलते हो कि 5:30 बजे मंदिर खोल दो तो उसमें जो 6 से 5:30 के बीच में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो भी उनका टाइम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो ऑर्डर पास हुआ है इससे एक राहत है कि गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो कमिटी में है और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि एसेंशियल रिचुअल्स को अफेक्ट करेगा उस पर कमिटी की फिर से मीटिंग होगी इंक्लूडिंग द न्यू गोस्वामीज एंड देन दे विल डिसाइड अगेन अफ्रेश। इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये भी रखा गया कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये कमेटी बनी थी, जो मेन रीजन था वो था क्राउड मैनेजमेंट, पर अभी जो हो रहा है वो ये है कि बैरिकेड्स तो बन गए मंदिर के अंदर, पर हमने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स प्रेजेंट की थी कि मंदिर के बाहर का रश बहुत बुरी तरह से बढ़ ही रहा है,
5: बहुत बढ़ रहा
4: है, वो कम नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कमिटी को कि उनको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीजें गौर में रखना चाहिए, कुछ डिजिटल और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए टेम्पल और टेम्पल के जो आसपास के एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है।
0: हाई पावर कमेटी ये डेवलपमेंट प्लान गोस्वामी समाज और स्थानीय लोगों के सुझाव को सुनकर तैयार करेगी और इसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा।
6: सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसके साथ ही ये भी कि अब तक गोस्वामी समाज का ये आरोप था, ये कहना था कि जो कमेटी है कमेटी को बाहरी इंतजाम के लिए नियुक्त किया है, जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कमेटी की दिलचस्पी और उनका इंटरेस्ट आंतरिक मामलों को लेकर ज्यादा है, पूजा प्रक्रिया और सेवा की प्रक्रिया को लेकर ज्यादा है, ना कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके इंतजाम करने के लिए। आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी जिम्मेदारी बाहर की चीजों के पर ध्यान देने की है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कैमरामैन रविकांत होतावार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
7: अगली अच्छी खबर पंजाब से, जहां की एक फुटबॉल अकेडमी से खिलाड़ियों ने अपने हालिया शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि मिनर्वा एकेडमी को भी सुर्खियों में ला दिया। इस एकेडमी के खिलाड़ियों ने मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप में प्री क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को 6-0 से हरा दिया है और यह जीत भारतीय फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये बात फुटबॉल के मैदान में पसीना बहा रहे इन युवा खिलाड़ियों ने सच साबित कर दिखाई है। ये खिलाड़ी पंजाब की एक फुटबॉल एकेडमी से जुड़े हैं, जिसका नाम मिनर्वा एकेडमी है। यहाँ इन बच्चों ने खेल से जुड़ी बारीकियाँ सीखी और अपने हुनर को निखारा। इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल मंच पर वो कर दिखाया जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है।

0: कि अच्छा खेले तुम लोग सबने, इंडिया बहुत से लोगों ने मैच देखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है इससे।
1: आप तो गोल स्कोरर थे लिवरपूल में, जो 6-0 से हराया मिनर्वा ने, आपने गोल मारा था उसमें, तो वो कितने नंबर पे गोल था? पहला था, दूसरा था, कौन सा था?
0: सेकेंड वाला,
1: सेकेंड गोल मारा था।
2: MIC यानी मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप विश्व फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित यूथ टूर्नामेंट्स में से एक है, जो हर साल स्पेन में होता है। इस टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल जैसी दिग्गज एकेडमी हिस्सा लेती हैं। ऐसे में मिनर्वा के लिए टूर्नामेंट में खेलना और फिर लिवरपूल को हराना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीत इतनी बड़ी है कि इसका शोर स्पेन से लेकर भारत तक सुनाई दे रहा है।
1: अप्रैल 2026 में मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी, जो कि पंजाब में है फुटबॉल एकेडमी, उसने इतिहास रचा। वहां के लड़कों ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने लिवरपूल को हरा दिया। जी हाँ, लिवरपूल वो है जो कि फुटबॉल जायंट है, जिन्हें बड़े बड़े जिसने जो है प्लेयर्स जो है पैदा किए हैं वर्ल्ड ओवर, तो उस टीम को मोहाली की एकेडमी ने हरा दिया 6-0 से। हमारे साथ वो प्लेयर्स भी हैं जो उस मैच को भी खेल रहे थे और उस पूरे टूर्नामेंट को, जिसको मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप कहते हैं, MIC, जो कि बड़ा प्रेस्टीजियस कप है, जहां वर्ल्ड ओवर से जो है फुटबॉल क्लब से जो है लड़के खेलने आते हैं, तो टीम्स खेलने आती हैं।
2: आज से 10 साल पहले मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत हुई थी और तब से ये एकेडमी प्रतिभाओं को निखारने में जुटी है। मिनर्वा एकेडमी अब तक 250 से ज्यादा खिलाड़ियों को तराश चुकी है और यहाँ से निकले बच्चे अलग अलग कैटेगरी में देश और अपने क्लब्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1: 3 अप्रैल को हिस्ट्री लिखी गई जब आपकी एकेडमी के अंडर 15 टीम ने स्पेन जाके लिवरपूल को हरा दिया, तो वो ऐसा लग रहा था आपको कि हो जाएगा, और उसके बाद चीजें कैसी बदली हैं?
3: फॉल्स कॉन्फिडेंस या ब्रावाडो नहीं था, क्योंकि इससे 6 महीने पहले हम 3 दुनिया के सबसे बड़े जो यूथ टूर्नामेंट होते हैं, एक हुआ स्वीडन में जिसको कहते हैं वर्ल्ड यूथ कप, गोथिया कप, और फिर डेनमार्क में दाना कप, और फिर उसके बाद नॉर्वे में नॉर्वे कप, ये तीनों जीत के आए और वहां पे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो फाइनल में हमने एक टीम को 14-0, एक को 21-0 और एक को 8-2 हराया, वो अर्जेंटीना की टीम थी, जो कभी किसी दुनिया में किसी टीम ने नहीं किया था। तो मुझे इस टूर्नामेंट से पहले ही पता था कि हमारी ट्रेनिंग इन लड़कों पे इतनी अच्छी हुई है एंड इनकी परफॉर्मेंस, उनको एक्सपोजर प्लस डाइट न्यूट्रिशन सारा इतना अच्छा मिला है, वी न्यू कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी बिकॉज हमारे प्रोसेसेस ठीक हैं।
2: मौजूदा समय में मिनर्वा एकेडमी में करीब 500 खिलाड़ी हैं और उनमें करीब 250 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्लब चला रहे रंजीत बजाज का मानना है कि लिवरपूल के खिलाफ मिली जीत बेहद महत्वपूर्ण है और इसे क्लब के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है।
1: वर्ल्ड ओवर से वहाँ आए जो प्लेयर्स थे, क्लब्स के आए थे, लेकिन अगर इस एकेडमी की बात करें तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं और किस एज ग्रुप के, और भारत में कहाँ कहाँ से आते हैं?
3: सी, हमने जो 250 इंटरनेशनल प्रोड्यूस किए हैं, हम अपने आप को नेशनल एकेडमी मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम पंजाब की एकेडमी है, हम बेस्ड पंजाब में है। बट एकेडमी अगर आप जाके देखो, जितने हमारे लड़के गए थे, देवर फ्रॉम 9 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनफैक्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम मणिपुर, फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इस सारे स्टेट्स का, उत्तराखंड, सारे स्टेट्स कवर्ड थे। ये इसीलिए क्योंकि हमारा स्काउटिंग प्रोग्राम ऐसा है, हमने 250 बच्चे यहाँ पे इस टाइम पे स्कॉलरशिप पे रखे हुए हैं, 100% स्कॉलरशिप, खाना पीना रहना और एजुकेशन हम देखते हैं उनका।
2: आपको बता दें कि लिवरपूल के खिलाफ मिनर्वा एकेडमी की ये जीत कोई इकलौता पल नहीं है। मिनर्वा की यूथ टीमें लगातार यूरोप की टॉप अकादमियों को चुनौती दे रही हैं और हरा रही हैं। अंडर 14 लेवल पर बड़े यूथ टूर्नामेंट्स जीतने से लेकर अब MIC कप के अंडर 15 में उन्होंने दिखा दिया है कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों को अगर बेहतर ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो वो दुनिया में अपने खेल का लोहा मनवा सकते हैं। चंडीगढ़ से असीम वसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: और एसिटिलीन गैसों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से गैस वेल्डिंग मशीन के साथ भारी भरकम सिलेंडर भी लेकर चलना पड़ता है। हालांकि इस वेल्डिंग मशीन को बनाने वाली कंपनी का दावा यह है कि इसके जलने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पानी, खासकर डिस्टिल्ड वाटर और बिजली ही काफी है, जो कि इसको काफी किफायती भी बनाता है। हाइड्रोजन तकनीक पर चलने वाली इस नई वेल्डिंग मशीन में 3 लीटर का वाटर टैंक दिया गया है, जिसमें सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर भरने भर से जरूरत पूरी हो जाती है, जिसके बाद बिजली से चलने वाली मशीन इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देती है, जिसका इस्तेमाल वेल्डिंग और कटिंग के काम में किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि लगभग 200 मिलीलीटर पानी से ये मशीन करीब 3 घंटे तक काम करेगी।
1: ये बेसिकली गैस वेल्डिंग मशीन है। जहाँ पर भी गैस वेल्डिंग होती थी, जो ट्रेडिशनल वे में होता था, उसको हम लोगों ने नए तरीके से इसे इनोवेट करके अब गैस पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये मशीन बनाया। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे काम करता है, जो पानी को 2 भागों में विभाजित करके वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके इसे हम गैस के रूप में यूज करते हैं। इसको
2: मतलब फ्लेम पानी से हाइड्रोजन बनाता है।
1: यस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
2: हम देखिए इसमें पानी डालते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मशीन के अंदर पानी डाला जा रहा है। 3 लीटर इसकी टैंक है, लेकिन आप अपने काम के अकॉर्डिंग जो है इसमें पानी डाल सकते हैं और 3 घंटे तक ये मशीन जो है वो चल सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए पानी डालने का जो है वो ऑप्शन इसके अंदर। अच्छा, पानी कोई भी पानी डाल सकता है?
1: हम लोग अभी मेनली डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्योर होता है मैम। क्योंकि अगर आप टैप वाटर या फिर अदर वाटर डालते हैं तो बाद में कंटामिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है, तो इसका लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग डिस्टिल वाटर प्रिफर करते हैं इसमें।
2: अच्छा, इसको बंद करना है आपको इस तरीके से?
1: बेसिकली 2 गैसेस सेपरेट होकर के बनते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें डेडिकेटेड 2 नोब है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है। हम लोग हाइड्रोजन बेसिकली इनविजुअल गैस होती है, तो हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं इसको विजुअलाइजेशन के लिए और भी, और इसका इंटेंसिटी भी बढ़ाने के लिए। अभी मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है और
2: ऑन करने के बाद इसको किसी तरीके से थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, ये काम के लिए रेडी
1: विद इन 30 सेकेंड हम इसे फ्लेम कर सकते हैं मैम। 30 सेकेंड का इसको टाइम पीरियड चाहिए होता है। आप यहाँ पे ऑन करके देख सकती हो कि यहाँ पे फ्लो हो रहा है कि नहीं गैस, तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको फ्लेम करते हैं।

0: अब तक आपने बाजारों में वेल्डिंग मशीन का जो इस्तेमाल देखा होगा उसके अंदर एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बाजार में एक ऐसी मशीन आ गई है जिसमें किसी तरीके का आपको एलपीजी या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ पानी की और बिजली की।
1: आम गैस वेल्डिंग मशीन में ऑक्सीजन

0: तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ इसको एक सॉकेट में प्लग किया गया, उसके बाद इसमें पानी डाला गया और फिर ये मशीन पानी से हाइड्रोजन गैस तैयार करती है और इसे इसी गैस की मदद से जो है वेल्डिंग और कटिंग का काम जो है वो किया जाता है।
1: तो पारंपरिक गैस वेल्डिंग मशीन में महंगे ऑक्सीजन या फिर एलपीजी सिलेंडर्स की भी जरूरत पड़ती है। इस मशीन में सिर्फ बिजली और पानी की जरूरत होती है। सिलेंडरों का झंझट पूरी तरह से खत्म होने के कारण इसकी रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट दूसरों के मुकाबले लगभग ना के बराबर रह जाती है। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस से चलने वाली वेल्डिंग मशीन धातुओं को जोड़ने, काटने, पिघलाने के काम में आती है और ये मशीन खासतौर पर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी काफी उपयोगी मानी जाती है। अब धातुओं को जोड़ने या फिर डिजाइन करने में वेल्डिंग का खर्च कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ज्वेलरी बनाने की कुल लागत भी घट जाएगी और यही कारण है कि कुछ ज्वेलर्स इस मशीन का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का दावा यह है कि इस्तेमाल पर जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कि इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, जिसकी वजह से पर्यावरण के लिए ये बेहद सुरक्षित है। साथ ही वेल्डिंग मशीन के साथ गैस सिलेंडर स्टोर करने की समस्या भी खत्म हो जाती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो हाइड्रोजन वेल्डिंग मशीन की कीमत उसकी क्षमता के हिसाब से ही तय होती है। 80,000 से लेकर 2,00,000 तक इस वेल्डिंग मशीन की कीमत है, जिसे एक बार का निवेश माना जा सकता है, जिसके बाद बार बार गैस सिलेंडर भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: इसकी कीमत की बात करें तो क्या कीमत है
2: इस पे? कैपेसिटी वाइड डिपेंड करती है। हमारे पास बेसिकली ये 80,000 रुपीज से लेकर के और 2,00,000 रुपए तक का ये आता है मैम। डिपेंड करता है कितने कैपेसिटी, कितने टॉर्चेस लगेंगे और कितना कैपेसिटी आपको हीट चाहिए, वो सब चीजों पे टेक्निकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है।
0: 1.5 से 2,00,000 रुपए की, 1.5 लाख के करीब जो है इसकी कॉस्टिंग की जो है वो शुरुआत हो जाती है। और जिस तरीके से बताया कि कैसे काम कर रही है, किस तरीके से जो है, अच्छा अभी ये ऑपरेशनल है, मतलब लोगों के पास जा रही है ये?
2: यस मैम, अभी रिसेंटली हम लोगों ने ज्वेलरी शॉप वाले को दिया है तो वो बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अभी उनके तरफ से और भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। तो वेरियस इंडस्ट्री में भी बेसिकली अवेयरनेस नहीं है, तो अब जैसे जैसे जाएंगे लोगों के पास तो वो एडॉप्ट करना शुरू करेंगे। एक तो ये क्लीन फ्यूल इस्तेमाल होता है, इसमें कोई भी तरह का इमिशन नहीं हो रहा है, इको फ्रेंडली सिस्टम है हमारा और डिपेंडेंसी नहीं है कहीं से गैस लाने की, कहीं से किसी से ये करने की। अब हमेशा देख रहे हो कि गैस का प्राइसेस बढ़ रहा है, अप डाउन हो रहा है, इनमें इन सब चीज़ों का आपको परेशानी लेना नहीं है। डायरेक्टली आप यूज़ करो, फ्यूल करो, फ्यूल के नाम पे पानी और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है।
1: हिमाचल तिब्बती संस्कृति के रंगों से सराबोर है। धर्मशाला और शिमला में अगले 3 दिनों तक ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जहां हर तरफ बौद्ध मंत्र गूंजेंगे और पारंपरिक लोक नृत्य करने वाले कलाकार थिरकेंगे।
3: हिमाचल की वादियां इन दिनों तिब्बती संस्कृति के रंग में रंग गई है। शिमला से लेकर धर्मशाला तक पारंपरिक लोक संगीत, आध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और नाच गाने के साथ भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। तिब्बती संस्कृति के रंग समेटती है तस्वीरें शिमला की हैं, जहां तिब्बती समुदाय के प्रसिद्ध तिशेचू महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जब रंग बिरंगे परिधानों और विशाल मुखौटों में सजे भिक्षु मंच पर उतरे तो वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखते रह गए। इनके हर कदम, हर मुद्रा और हर घूमते हुए चक्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास छिपा है।

0: दरअसल ये छम नृत्य कला है जो तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पवित्र और मुखोटा नृत्य कला है जिसे मुख्य रूप से भिक्षुओं यानी लामाओं द्वारा मठों में पारंपरिक संगीत की धुन पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बुरी शक्तियों को नष्ट करना। मान्यता है कि ये पवित्र छम नृत्य बुरी शक्तियों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का संदेश देता है। लेकिन इस बार तशेचु महोत्सव सिर्फ संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में बढ़ते तनाव और खासकर वेस्ट एशिया की स्थिति को देखते हुए तिब्बती समुदाय ने विशेष शांति प्रार्थनाएं की। भिक्षुओं ने मानवता, भाईचारे और वैश्विक शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना कर पूरी दुनिया को एकता का संदेश दिया है। तशेचु महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने की ताकत भी है। वैसे तिब्बती संस्कृति के रंग धर्मशाला में दिखने वाले हैं, जहां 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 28 से 30 मई तक धर्मशाला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें तिब्बती संस्कृति, परंपरा, लोक संगीत, नृत्य और खानपान का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।
1: एक तो खास बात यह है कि इस साल जो है परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन, 90 साल के जन्मदिन मना रहा है। इसी अनुसार जो है यहाँ पे परम पावन जी धर्मशाला में बैठ के, निवास में बैठ के तकरीबन 6-7 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, और इसकी तरह से हमारा भारतीय लोगों के साथ मिलजुल कर दोस्ती निभाने के लिए ये जो उत्सव रखा है।
0: धर्मशाला में तिब्बती संस्कृति उत्सव में आने वाले 3 दिन मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। किताबों की प्रदर्शनी लगेगी और तिब्बती इतिहास और संघर्ष से जुड़ी जानकारियां भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। दरअसल शिमला तशेचु उत्सव और धर्मशाला का तिब्बती संस्कृति उत्सव लोगों को तिब्बती आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगा। यह उत्सव केवल मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा, बल्कि इस महोत्सव में तिब्बती जीवन शैली और समाज को करीब से समझने का भी मौका मिलेगा। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: गाय को क्या खिलाने से फंसा हुआ धन मिल जाता है, गाय को क्या खिलाने से शनि राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं, और गाय की कैसे सेवा करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, कैसे करें गाय की सेवा दूर हो जाएं जीवन के कष्ट, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank
8: thank God I get to.
7: Tune in's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के बहुत सारे उपायों में ऐसा कहा जाता है कि गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए। गाय को क्या खिलाएं और गाय की कैसे सेवा करें जिससे आपका भाग्य बेहतर हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, गाय को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों मानते हैं, कारण क्या है? देखिए, प्राचीन काल से अगर आप देखें तो भारत की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और गाय पर, गोवंश पर पूरी व्यवस्था आधारित रही है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है। गाय के इतना मूल्यवान होने के कारण इसको धर्म से जोड़ा गया है। ऐसा देखा गया है कि गाय के शरीर की जो तरंगे हैं वो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। जब हम गाय के संपर्क में आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि गाय की सेवा करने से, गोपालन करने से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गाय की देखभाल करने से, गाय की सेवा करने से, गाय के संपर्क में रहने से व्यक्ति का भाग्य सुधरने लगता है।
गाय की तरंगें, गाय का संपर्क, गाय की सेवा, गाय का दूध, ये सब बड़े मूल्यवान हैं और इनके अंदर आपके जीवन को बदलने की क्षमता पाई जाती है। गाय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की रुकावट दूर होगी, चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप गाय की सेवा करते हैं, गाय के संपर्क में आते हैं, तो उससे किस प्रकार आपके ग्रह नियंत्रित हो सकते हैं। गाय को अगर आप नियमित रूप से गुड़ खिलाएं, खास तौर से मंगलवार और रविवार को अगर गाय को गुड़ खिलाएं तो मंगल और सूर्य दोनों नियंत्रित होते हैं। गाय को आटे का पेड़ा यानी आटे की लोई खिलाने से और गाय को स्नान कराने से, नहलाने से चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं। गाय को अगर आप हरा चारा खिलाएं या गाय को नियमित रूप से पालक खिलाएं तो बुध मजबूत होता है और धन का अभाव नहीं होता। स्नान करते समय जल में अगर आप गोमूत्र डालें, जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें तो राहु केतु की और शनि की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय की सेवा करता है, गाय की देखभाल करता है, तो उसको जीवन में नाम, यश और धन मिलता है। संतान संबंधी जो कष्ट हैं, संतान संबंधी जो पीड़ा है, वो पीड़ा समाप्त होती है।
जो कोई गाय को कष्ट देता है या उसको पीड़ा पहुंचाता है उसके वंश का विस्तार नहीं होता। आपके ग्रह ज्यादा खराब हैं, जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, केवल नियमित रूप से गौशाला में जा करके गाय की सेवा करना शुरू करिए, आपके खराब ग्रह, आपकी बिगड़ी हुई किस्मत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। गाय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

0: लोग बन रहे हैं, रिश्तों में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, समस्याओं में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो गाय की सेवा करने से आपके ग्रह बेहतर हो सकते हैं। गाय की सेवा करने से आपको विशेष लाभ भी हो सकता है। कैसे होगा? अगर कहीं पर आपका धन फंस गया है, अगर बड़ा धन आपका रुक गया है, नहीं आ पा रहा है, तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तमाम प्रयास के बावजूद आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है या संतान होने में कोई दिक्कत है, तो बृहस्पतिवार को गाय को पीला फल जैसे केला या आम खिलाइए। और संतान प्राप्ति के लिए घर में गाय और बछड़े का चित्र या गाय और बछड़े की मूर्ति लगाइए। अगर किसी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो नियमित रूप से गौशाला जाइए। अगर गाय की सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नियमित रूप से गौशाला में धन का दान करिए, जिससे गाय को चारा मिले, गाय की सेवा हो सके। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रिश्तों में सुधार होगा, करियर में लापरवाही ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की कि गाय की कैसे सेवा करें जिससे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। अब जान लेते हैं क्या है आज का लकी टिप। रात को सोने के पहले मंदिर की लाइट बुझा दीजिए और भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करिए, इसके बाद सोने जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करें, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
2: मैं हूं नवजोत संधवा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, इसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: आस्था और उत्साह के साथ जारी चार धाम यात्रा, केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने पूजा की, यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भीड़। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। अकोला के श्यामधाम में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल की वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों का महारिकॉर्ड तोड़ा। शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा झारखंड के रामगढ़ के मंडा पर्व की भी हो रही है। झारखंड के रामगढ़ जिले में धूमधाम के साथ मंडा पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें आस्था के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। मंडा पूजा के दौरान झारखंड की संस्कृति, आस्था और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। इस पर्व के दौरान मांदर, ढोल, नगाड़े की थाप पर पारंपरिक लोकगीत और छऊ नृत्य झारखंड की समृद्ध संस्कृति को जीवंत कर रहे हैं। इसमें भक्त बनस झूले पर झूलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो खुले बदन जमीन पर लुढ़कते भी उन्हें देखा जा सकता है। ये पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है, जो भक्ति, तपस्या और साहस का अद्भुत संदेश देता है। इस पर्व में भक्त कई दिनों तक व्रत रखते हैं और भगवान शिव से अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, सुख शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। मंडा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का एक बड़ा माध्यम भी है। ये लोक पर्व झारखंड की आन बान और शान की पूजा है। ये तस्वीरें बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की हैं, जहां दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती का भव्य आयोजन हुआ। स्वच्छ गंगा, स्वच्छ काशी, स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण को संकल्पित और समर्पित गंगा दशहरा महोत्सव के पावन अवसर पर वाराणसी में आस्था के दिव्य रंग बिखरे। इस विशेष आरती में 11 अर्चकों और रिद्धि सिद्धि के रूप में 22 देव कन्याओं की ओर से ये महा आरती की गई, जिसके लिए 25 क्विंटल फूल मालाओं और 11,000 दीपों से दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया गया था। और सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में माँ गंगा के अवतरण से लेकर उनके सभी कालों में दर्शन और उनके आगमन पर देवों के नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस दौरान पुरुषोत्तम मास की नौतपा की प्रचंड संताप से संपूर्ण प्राणी जगत को शांति और शीतलता प्रदान करने की प्रार्थना भी माँ गंगा से की गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में धूमधाम के साथ शेचू त्योहार मनाया गया। यहाँ तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और तिब्बती निर्वासित समुदाय के सदस्यों ने हिमालयी क्षेत्रों के बौद्धों के साथ मिलकर वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थनाओं के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाया। इस त्योहार के दौरान पारंपरिक रंग बिरंगे परिधान और मुखौटे पहनकर चाम नृत्य की छटा भी बिखेरी गई। मुखौटा और चाम नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया जाता है। ये त्योहार तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र अनुष्ठानों में से एक है, जो गुरु पद्मसंभव को समर्पित है, जिन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार के दौरान विशेष रूप से पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रार्थना की गई। झारखंड के जमशेदपुर से सटे दलमा के जंगल में 6 महीने पहले लाया गया हाथी का एक बच्चा यहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 6 महीने का हाथी का ये बच्चा बादल फुटबॉल खेलने में खूब दिलचस्पी दिखाता है। ट्रेनर रवि इसे फुटबॉल सिखाने में इनकी मदद कर रहे हैं। मैदान से लेकर पानी तक में बादल फुटबॉल के साथ खेलने में मशगूल नजर आ रहा है। हाथी के इस बच्चे को घायल हालत में दलमा वन्य जीव अभ्यारण में लाया गया था, जहां रवि ने इसकी खूब देखभाल की, जिसके बाद ये स्वस्थ होकर अब रवि से ही फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती के रिहायशी इलाके रामपुरी कैंप से एक तेंदुए का वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। ये तेंदुआ सबसे पहले एक कंपनी के बंद पड़े गोदाम में दिखाई दिया था, फिर वहां से इधर उधर भटकता रहा। वन विभाग की टीम ने करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद इसे सुरक्षित पिंजरे में कैद करने में कामयाबी हासिल की, जो करीब 9 से 10 महीने का शावक बताया जा रहा है।
4: बात करते हैं देश के मौसम के मिजाज की। देश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार मॉनसून का आगमन तय समय से देरी से हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मॉनसून को केरल पहुंचने में 5 से 6 दिन का समय लग सकता है, यानी मॉनसून 1 जून के आसपास ही केरल में दस्तक देगा। वहीं उत्तर भारत में कई शहर नौतपा के दौरान भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी के बांदा में 47.4 डिग्री तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 47 डिग्री के करीब पारा दर्ज किया गया। लिहाजा अगर घर से बाहर निकलना है तो सावधानी बहुत जरूरी है।

0: नौतपा चल रहा है और इसकी तपिश से पूरा उत्तर भारत जल रहा है। देश के कई राज्यों में मंगलवार को भी भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बांदा में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जाहिर है नौतपा के प्रचंड ताप से बचने के लिए लोगों को मानसून के रिमझिम फुहारों का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले यह अनुमान लगाया था कि केरलम में इस बार मानसून समय से 6 दिन पहले यानी 26 मई को ही दस्तक दे देगा और अगले 3 से 4 दिनों तक केरलम में मानसून की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। इससे साफ है कि केरलम में अभी भी मानसून की दस्तक का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने अपनी प्रेस रिलीज में केरलम में 1 जून तक मानसून आने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की प्रेस रिलीज के मुताबिक केरलम में 1 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है, उसके बाद 5 जून तक उसके कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंचने की उम्मीद है। 10 जून तक मानसून तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र का रुख कर सकता है, जबकि 15 जून तक गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुँचने की संभावना है और 30 जून तक मानसून के दिल्ली NCR पहुंचने के आसार हैं। वहीं 5 से 8 जुलाई के बीच इसके पंजाब और हरियाणा पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग की प्रेस रिलीज से साफ हो गया है कि इस साल भी मानसून अपने निर्धारित समय के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। हालांकि मानसून आने से पहले उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में प्री मानसून की बारिश हो सकती है, जिससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
1: देखिए 26 तारीख का जो मैं डेट था उसमें प्लस माइनस 4 दिन का एक मॉडल फोरकास्ट एरर भी होता, वो भी हमने मेंशन किया हुआ था। लगातार हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे कोई अपडेट होगा वो देंगे। हमारा अनुमान यही है कि आज भी और अगले 1 से 2 दिनों दौरान थोड़ा सा अरब सागर का क्षेत्र, बंगाल खाड़ी का और अंडमान सी का भी क्षेत्र में थोड़ी सी बढ़ोतरी मानसून की हो सकती है। जहां तक गर्मी की बात है तो उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्मी की स्थिति लगातार चल रही थी, इसमें हम देखेंगे कि जो हीटवेव कंडीशंस हैं वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में देखी जा रही थी। अभी हमारा अनुमान यह है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।
0: वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी इतनी कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हजरतगंज चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है।
2: पूरा प्रदेश जब हीट वेव से जूझ रहा है तो आप मेरे चेहरे पर भी धूप देख रहे होंगे, लेकिन 2 कदम जब मैं आगे लूंगा तो मेरे चेहरे की ये धूप भी छट जाएगी और मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा और इतना ही नहीं इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इसमें स्प्रिंकल करेगा। लेकिन अगर आप बात करें प्रदेश की गर्मी की तो इस वक्त करा रहा है, बांदा का टेम्परेचर 47.5 रिकॉर्ड किया गया है जो अपने आप में डराने वाला है। तो वहीं लखनऊ 45 डिग्री के पार इस वक्त जा चुका है। तो ऐसे में इस तरह की जो एफर्ट्स हैं उनके जरिए जरूर पब्लिक को थोड़ी राहत मिल रही है।
0: जम्मू में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, यहाँ पारा 41 डिग्री को पार कर गया है, जिससे दिन में बाहर निकलना दूभर हो गया है। लेकिन जिन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है उनका सामना सूर्य के ताप से हो रहा है, लिहाजा कुछ लोगों ने गर्मी से राहत दिलाने के लिए पानी और शरबत के स्टॉल लगाई हैं, जहां लोग गर्मी से बचने के लिए पानी और शरबत पी रहे हैं।
3: जम्मू शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इस भीषण गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, खासतौर पर जो कामकाजी लोग हैं जिनको दोपहर के समय घर से बाहर रहना पड़ता है उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में जो लोग दुपहिया वाहनों पर घूम रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लू भी काफी ज्यादा चल रही है। और इसी बीच कई लोग सामने आए हैं, कई संस्थाएं सामने आई हैं जो कि इस प्रकार के पानी के स्टॉल लगा रहे हैं जहां पर जो लोग हैं उनको ठंडा पानी पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाई जा रही है ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। गर्मी इस वर्ष ज्यादा,
4: बहुत ज्यादा गर्मी है इस टाइम पे पानी के देखो हम पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी गर्मी है, इतना रश है पानी के लिए, हमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसलिए हम हर साल लगाते हैं लेकिन इस टाइम पे अभी हमने अगले महीने फिर से लगाएंगे, बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि इतनी गर्मी है कि पानी के लिए आदमी जैसे तरस रहा है।
0: इंसान तो इंसान, इस भीषण गर्मी से बेजुबान भी परेशान है, लिहाजा

0: जूलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर, एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। झारखंड के जमशेदपुर के टाटा जू में पारे के तल्ख तेवर को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई हैं। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन देश के कई राज्यों में हीट वेव का असर और उससे होने वाले नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो गर्मी वाला यह मौसम सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा गर्मी से बचाव के लिए कुछ छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। सुबह घर से निकलते समय पानी जरूर पिएं, खाली पेट धूप में जाने से बचें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और ज्यादा ऑयली खाना खाने से बचें।
1: हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं। लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है।
0: अगर किसी को तेज चक्कर, उल्टी, बहुत ज्यादा पसीना या शरीर गर्म महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी भीषण गर्मी से बचने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिप्स की। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव का दौर लगातार जारी, जिससे देश के कई जिलों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यह हम सभी जानते हैं कि गर्मी का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और इसकी वजह से कई समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा भीषण गर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गर्मी के इस मौसम में पर्याप्त पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें। प्रधानमंत्री ने दादा दादी और नाना नानी जैसे बुजुर्गों की देखभाल करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके आवश्यक बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेट रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। देश भर में बेहद गर्म मौसम की वजह से जीना दुभर हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी में शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि तेज धूप और पसीने के कारण शरीर से पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से कम होने लगते हैं। अगर समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी न पिया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, थकान और यहां तक कि हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर हमारी संवाददाता रुदन जैन ने जयपुर में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
3: राजस्थान इस समय भट्टी की तरह तपता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर्स पहुँच चुके हैं 47 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है राजस्थान के श्रीगंगानगर का, और वहीं मैं रात के टेम्परेचर की बात करूँ तो रात को भी ये तपता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि रात का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा है, जो कि अब 32 से 33 डिग्री चल रहा है। और ऐसे में राहत बिल्कुल नहीं मिल रही है। नौतपा चल रहा है, 25 तारीख से शुरू हुआ हुआ नौतपा, जिसका आज तीसरा दिन है, और ऐसे में आगे के दिन कैसे निकलेंगे हर कोई ये उम्मीद कर रहा है थोड़ी सी राहत मिले। हालांकि मौसम विभाग ने ये बताया है कि कुछ वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस एक्टिवेट होने की वजह से आने वाले 1 से 2 दिनों में आंधी और बारिश आ सकती है जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, पर ये मानसून नहीं है क्योंकि मानसून अभी तक केरल टच नहीं किया है, पर ये प्री मानसून हो सकता है। ऐसे में राजस्थान में जगह जगह पे पानी की सेवाओं का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जहाँ पे भी निकलो या तो खुद की वाटर बॉटल्स लेके निकलो, खुद को

0: हाइड्रेटेड रखो, खाना अगर खा रहे हो तो ऐसा खाओ जो शरीर को ठंडक दे, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं किसी भी ज़रूरी काम से तो खुद को कवर करके चलें, कपड़े अगर पहन रहे हैं तो कॉटन या सूती कपड़ा पहने, तो वो चीज़ें सब फॉलो कर रहे हैं। जिनकी मीटिंग्स हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो मीटिंग्स जो है वो वर्चुअली की जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जाए।
1: एक तो पानी बहुत पीना चाहिए, ORS का घोल अपने साथ में रखना चाहिए, इनकेस आप ज़्यादा देर तक अगर मार्केट में है तो ORS घोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल डेट्रा पैक में भी आते हैं, तो आपको अपने साथ में रखना चाहिए। और धूप से बचाव तो रखना ही चाहिए, अपने सर को ढक के रखना करना, ज़्यादा से ज़्यादा सर ढक के रखना चाहिए।
2: पानी का
1: तो बहुत पानी पीना चाहिए, नींबू पानी मिले तो नींबू पानी, अदरवाइज आजकल ORS वाला जो घोल आता है सबसे बेस्ट आते हैं, वो लेना चाहिए।
3: बहुत बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, हम लोग बेसिकली जयपुर के हैं नहीं, बाहर से यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं, बहुत गर्मी यहाँ पर फील हो रही है, तो उसके लिए तो हम लोगों ने जैसे कि हैट यूज़ किया है, कॉटन के कपड़े, क्लॉथ, सनग्लासेस, और सबसे मेन पॉइंट है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ पर इतना ख्याल रख रहे हैं, और उसी के साथ हम लोग जयपुर सिटी इंजॉय कर रहे हैं।
2: गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा, और इतनी ज़्यादा है गर्मी कि जिसका कोई तोलमोल नहीं किया जा सकता। वह इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जो जनसेवा हो सकती है वो की जा रही है व्यापार मंडल के द्वारा और अन्य संगठनों द्वारा, तो हम ये चाहते हैं भाई सब लोग आराम से और शीतल पेय लें और स्वस्थ रहें, बचते रहें इससे, धूप से, लू से, गर्म हवा से, छाया में ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहें, यही उद्देश्य है हमारा। बस
4: हम प्रॉपर महाराष्ट्र से हैं, नासिक से आए हैं, रामनगरी से आए हैं, जयपुर की आपकी जो हॉटेस्ट है वो 43 डिग्री बहुत ही ज़्यादा है।
5: मैनेज कैसे कर रहे हैं?
4: हम ठंडा पियो, एसी में घूमो या एसी भी रूम्स करो, ऐसे करके मैनेज कर रहे हैं दोपहर में थोड़ा सा, पर सिटी बहुत ही अच्छी है, देखने लायक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं।
6: श्रीलंका में सागर बंधु अभियान के बाद वापस लौटे जवान, चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
7: श्रीलंका में 6 महीने तक चले राहत अभियान सागर बंधु के बाद भारतीय सेना का टास्क फोर्स वापस भारत लौट आया है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के कारण भीषण आपदा आई थी, जिसके बाद भारत की ओर से चलाए गए मानवीय सहायता और राहत अभियान ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर भारतीय सेना की 48 सदस्यीय इंजीनियर टास्क फोर्स स्वदेश लौटी है। भारतीय सेना के जाबाजों ने श्रीलंका सेना और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ और चक्रवात से टूटे हुए संपर्क मार्गों को बहाल करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर 7 बेली ब्रिज बनाए। इस अभियान के दौरान भारत ने 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई और भारतीय सेना के मेडिकल दल द्वारा 5000 से ज्यादा प्रभावित लोगों का इलाज भी किया। देश में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। आलम ये है कि मनपसंद कार के लिए लोगों को 2-2 महीने इंतजार करना पड़ रहा है। सूरत में पिछले 3 महीने में ईवी की बिक्री में 33% का उछाल देखा गया, खासतौर से 2-व्हीलर्स की मासिक बिक्री जो पहले 700 से 750 थी वो अब बढ़कर 1500 के पार पहुंच गई है। मांग इतनी ज्यादा है कि ओला और एथर जैसी प्रमुख कंपनियों के चुनिंदा मॉडल्स पर 1 से 3 महीने की वेटिंग चल रही है। राज्य सरकार ईवी पर सिर्फ 1% टैक्स ही वसूल रही है। खादी अब सिर्फ परंपरा की पहचान नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है, और अब देश में खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर ने विकास का नया इतिहास भी रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए पहली बार 1,87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हासिल किया। उत्पादन, बिक्री और रोजगार तीनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि जेन ज़ी को खादी से जोड़ने के लिए वो एक बड़ा ई मार्केट प्लेस लेकर आ रहे हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के संचालन के लिए गठित कमेटी को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं जिनसे पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया जा सके और भीड़ प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामियों के 2 समूहों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मंदिर के रोजाना के कामकाज में सुधार पर जोर दिया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने की। बेंच गोस्वामियों की उन अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिनमें मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके सुझावों पर विचार करने की मांग की गई।
6: और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, जबकि ऐसा ही उत्साह बद्रीनाथ और बाकी धामों में भी बना हुआ है। वहीं श्री हेमकुंड साहिब में भी सोमवार को हुई बर्फबारी के बाद रास्तों में फिसलन की वजह से एसडीआरएफ के जवान यात्रियों को रास्ता पार कराते नजर आए। और संतोष पर ट्रैकिंग सीजन का पहला दल अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सुरक्षित वापस लौट आया।

0: देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का मेला लगा है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब तक श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। कहीं बर्फबारी, कहीं पल पल बदलता मौसम का मिजाज भी भक्तों की राह को डिगा नहीं पा रहे। अब सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहाड़ों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, यूं कहें हर तरफ बर्फ ही बर्फ। हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते पर जबरदस्त बर्फबारी जमने से राह फिसलन भरा हो गया, लिहाजा आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल भरे राह को पार कराने के लिए SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है, ताकि हर श्रद्धालु आसानी से हेमकुंड साहिब पहुंच पाए। महिला से लेकर बुजुर्ग यात्रियों को सहारा देकर फिसलन भरे रास्तों को पार कराया जा रहा है, तो वहीं सड़क पर जमी बर्फ को भी तेजी से हटाया जा रहा है, ताकि भक्त आसानी से हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाए। SDRF के जवान मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल कायम कर रहे हैं। 23 मई को ही हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले थे, तब से हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वहीं संतों पथ ट्रैकिंग सीजन 2026 का पहला दल अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को सफलता पूर्वक पूरा कर सुरक्षित लौट आया है।
1: नमस्ते, नमस्ते।
0: 23 मई को संतों पथ ट्रैक के लिए एक टीम रवाना हुई थी। 4 दिनों के बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर को तय कर मंगलवार को सभी यात्री और उसके साथ गए सभी लोग भारत के प्रथम गांव माणा सुरक्षित पहुंच चुके हैं। यात्रा के दौरान 24 और 25 मई को ट्रैकिंग रूट पर जमकर बर्फबारी भी देखने को मिली। हालांकि खून जमाने वाली ठंड और कड़े मौसम के बावजूद तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। गुजरात से आए दल ने इस प्राकृतिक बर्फबारी का जमकर मजा लिया और इसे अपने जीवन का सबसे यादगार अनुभव बताया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक संतों पथ वही अलौकिक स्थान है जहां से पांचों पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए गए थे। इस साल के पहले आधिकारिक दल में गुजरात के 13 सदस्य शामिल थे, जिनमें 4 महिलाएं और 9 पुरुष थे। वहीं बद्रीनाथ में भी श्रद्धा का महासैलाब उमड़ा है। इस साल श्रद्धालुओं की तादाद रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 6,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। असल में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यहां भागवत कथा का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बद्री विशाल के दरबार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं।
2: बद्रीनाथ धाम में लगातार आस्था का सैलाब महाकुंभ देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ है, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6,00,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: बद्रीनाथ धाम में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। गेट सिस्टम लागू होने के बावजूद गाड़ियों की कतारें 7 से 8 किलोमीटर तक लंबी हो रही हैं। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां 4 धाम यात्रा अपने पूरे उत्साह पर है, तो वहीं तीर्थ यात्रियों की हर छोटी बड़ी परेशानी में उत्तराखंड की SDRF, पुलिस और मंदिर समिति सेवा और सहायता की मिसाल बन रही है।
3: हम लोग जब अंदर एंटर होते हैं ना, जब हमारी पूरी लाइन खत्म होके वो वाली लेन स्टार्ट होती है जहाँ से मंदिर के लिए एंटर करते हैं, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो वजह से ना किसी ने पुश करा था।
4: तो पर्स में क्या क्या था आपका?
3: पर्स में मोबाइल फोन था, कुछ कैश था, कुछ
5: कजन को ठंड लगी और वो चक्कर खा के वहीं गिर गए, तो उसका प्राथमिक वहाँ जो उपचार होता है वहाँ इलाज किया गया। तुरंत पुलिस ने SDRF की टीम को बुलाया और SDRF विदिन 2 मिनट वहाँ पहुँच गई और उनको प्राथमिक उपचार में ले जाया गया। वहाँ उन्होंने एक हॉस्पिटल में रेफर किया, तो SDRF ने वहाँ तुरंत बिना किसी देरी के वहाँ हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, अभी वो कुशल है।
0: केदारनाथ धाम यात्रा ने भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जिससे यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। चमोली से कमल 9 सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और न्यूज पद पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर लेकर।
7: उतार चढ़ाव भरे कारोबार में BSE सेंसेक्स बुधवार को लगातार दूसरे दिन 141 अंक यानी 0.19% टूटकर 75,867 अंक पर बंद हुआ। जबकि एनएसई निफ्टी 6 अंक यानी 0.03% की मामूली गिरावट के साथ 23,907 अंक पर रहा। सोना चांदी के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है। आज भी गोल्ड सिल्वर रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1100 रुपए गिरकर 1,61,300 रुपए हो गए। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में 3,300 रुपए की गिरावट आई, जिससे चांदी की कीमत 2,69,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के कारण निवेशकों के सतर्क रुख के चलते डॉलर की मांग बढ़ी, जिसके कारण डॉलर मजबूत हुआ और रुपए में गिरावट दर्ज की गई। रुपये में 3 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले 95.73 के स्तर पर पहुंच गया।
6: और न्यूज पद पर आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Join SRMISC Ghaziabad campus. Visit srmup.in.
6: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भक्तों की भीड़। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। अकोला के श्यामधाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल की वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव ने इस सीजन में अब तक लगाए 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों का महारिकॉर्ड तोड़ा। तो आइए वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले।
4: गर्मी के मौसम में पानी में छपाक छपाक करने का मौका भला कौन छोड़ना चाहेगा। बंदरों का झुंड भी शायद समझ चुका है कि हीट को बीट करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। फिर क्या था, पूरी की पूरी मंडली पानी पर छपाक छपाक करने लगी। कोई पानी में गोता लगाता दिखा तो कोई अपने साथी के साथ मौज मस्ती करता नजर आया। माँ क्या होती है, इस तस्वीर को देखकर सहज अनुभव लगाया जा सकता है। हालात जैसे हो, काम का बोझ जितना भी हो, लेकिन माँ अपने जिगर के लाल को खुद से दूर नहीं करती। ये महिला खाना बना रही है और साथ में अपने लाल को सीने से लगाए हुए है। न चेहरे पर कोई शिकन, न थकान, माँ इसी को कहते हैं। नन्हे हाथों में किताब और ऊपर से फल और फूलों की तस्वीर। ये नन्ही बच्ची मानो किताब से फल फूल को निकाल कर ही मानेगी। बालपन इसी को तो कहते हैं। सारी दुनिया की टेंशन से दूर अपने में मस्त इस क्यूट वीडियो को देखकर इसे बनाने वाले ने ये जरूर लिख दिया कि ये LKG के एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। तू यहाँ मैं वहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, इस फॉर्मूले पर ये बतख अपने बच्चों को खतरों से निपटने की ट्रेनिंग दे रही है। पानी में अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, खुद को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसी हुनर को सिखाती नजर आ रही है ये बतख। खेल खेल में तैराकी का गुर, बच्चों के साथ मस्ती और खतरों से निपटने की ट्रेनिंग, सब साथ साथ। सोशल मीडिया पर भालू और इंसान की दोस्ती की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सामने खूंखार और उसे प्रेम से खाना खिला रहा ये बुजुर्ग जोड़ा। ना डर ना ही हमले का खौफ, बेजुबान को भी पता है कि ये निश्चल प्यार है। यहाँ प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। वीडियो इस बात को भी सच साबित कर रहा है कि इंसान और बेजुबानों की भाषा भले ही अलग हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति संवेदना और प्यार एक है।
6: चले रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज बात उन बच्चों की जो अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकते, लेकिन उनमें खुद के साथ ही देश को, देश के भविष्य को संवारने का जज्बा दिखता है। इसीलिए इन बच्चों को मुंबई में स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है स्केटिंग में, तो ये बच्चे खासकर गजब का संतुलन बनाते नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट।

0: ये सुरीली आवाज है 8 साल की बच्ची की। ये बच्ची अपनी आँखों से दुनिया को भले ही न देख पाए, लेकिन इसका जज्बा दुनिया को अपने हुनर दिखाने का है, जिसके लिए खुद को तैयार कर रही है। सिर्फ आलिया नाम की ये बच्ची नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद सभी बच्चे उसी की तरह दिव्यांग हैं। यानी ये सभी अपनी आँखों से देख पाने में समर्थ नहीं है, लेकिन इन सभी में अपने दम पर मजबूती से कुछ कर गुजरने का जोश भरा हुआ है। इसीलिए बच्चे हर दिन स्केटिंग की जमकर प्रैक्टिस करते हैं। इन बच्चों में सीखने की ललक है, तो इन्हें सिखाने वाले भी पूरी शिद्दत के साथ इन्हें स्केटिंग का अभ्यास कराते हैं।
1: निशी एंड सुशांत जो हमारे कोच हैं, ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं और ये लोग पूरा ख्याल रखते हैं कि बच्चों को अगर हाथ में ना लगे तो हैंड ग्लव्स होना चाहिए, सर पे ना चोट लगे तो हेलमेट पहन के तभी स्केटिंग पे उतरते हैं सर। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो भी मानक है वो पूरा ध्यान दे रहे हैं हम लोग।
0: स्केटिंग एक रोमांचक और लोकप्रिय स्पोर्ट्स है, जिसमें संतुलन के साथ गति और कला के संगम की अहम भूमिका होती है। नहीं देख पाने के बावजूद ये बच्चे उन सभी का ध्यान रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करते हैं और इनका बैलेंस देखने लायक है। खास बात यह है कि इन बच्चों को स्केटिंग की प्रैक्टिस कराने वाली कोच निशी भी इन्हीं की तरह दिव्यांग है। ये भी अपनी आंखों से महज 20% ही देख पाती है, लेकिन अपने हौसले के दम पर ये स्केटिंग में देश का नाम रोशन कर रही है। हाल ही में नेपाल में हुए स्केटिंग टूर्नामेंट में इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उसमें जीत हासिल की और खुद आगे की ट्रेनिंग लेते हुए इन बच्चों को स्केटिंग का अभ्यास कराती हैं।
2: मैंने सीखा है मुकेश पाटिल सर से, MKS क्लब है एक कांदिवली में, तो उन्होंने मुझे सिखाया एंड उसके बाद हम लोगों ने खुद का एसोसिएशन स्टार्ट किया, टर्निंग पॉइंट स्पेशली एबल्ड स्केटिंग एसोसिएशन। उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ एंड जो वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लाइंड स्केटिंग टीम है उसकी असिस्टेंट कोच हूँ। तो उसके थ्रू हम NMB में मयंक सर को मिले एंड मयंक सर ने बोला कि यहाँ के बच्चों को भी हमने समर कैंप में सिखाना चाहिए क्योंकि ये कुछ न्यू एक्टिविटी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए एंड थैंक्स टू NMB कि हम लोग अभी और रीच आउट कर रहे हैं लोगों को।
0: मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित MNB इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड आश्रम में इन बच्चों का न केवल स्केटिंग बल्कि स्विमिंग, मलखम, क्रिकेट और मोबाइल से ओला उबर बुक करने तक की इनको ट्रेनिंग दी जाती है।
1: इसमें निशी एक जब ब्लाइंड बच्ची कर सकती तो अच्छा सिखा भी सकती है, तो मैंने ये सोचा कि समर कैंप में हम लोग क्या क्या रखते हैं। तो हमें एक मन में आया, पिछले साल भी हम लोगों ने स्केटिंग किया जिसमें बच्चे लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए बाहर भी जा रहे हैं सर। सो हम लोगों ने स्केटिंग रखा, फिर रोप मलखम रखा क्योंकि थोड़ा सा उसे स्ट्रेंथ पड़ता है बच्चों में और कुछ उनका मेंटली रूप से भी वो थोड़ा स्वस्थ होते हैं सर। फिर हम लोग अभी स्विमिंग के लिए भी हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से स्विमिंग भी बच्चों को सिखा रहे हैं सर, एंड क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है सर।
0: आश्रम के CEO मयंक शेखर के मुताबिक यहाँ 50 से ज्यादा बच्चे हैं जो स्पेशल हैं और उनमें खुद के साथ ही देश का भविष्य संवारने का जज्बा भी है और इसके लिए उन्हें यहाँ तराशने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दीपक तिजोरी को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इसके साथ ही कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर।
4: बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उन्हें यह पुरस्कार इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला है, जिसका निर्देशन जो राजन ने किया है। इस फिल्म में यूलिया बंतूर भी मुख्य भूमिका में है। अंग्रेजी भाषा की शॉर्ट फिल्म के लिए मिला यह दीपक तिजोरी का 21वां बेस्ट एक्टर का अवार्ड है। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर के टीजर के बाद मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। ट्रेलर की शुरुआत 1990 में भारत के आर्थिक संकट से जूझने वाले दौर से होती है। मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर इस फिल्म की पहली झलक सामने आई थी और अब ट्रेलर से फिल्म की कहानी के बारे में कुछ ज्यादा साफ जानकारी मिल रही है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी का किरदार RBI के पूर्व गवर्नर S. वेंकटरमन से इंस्पायर। चिन्मय मांडलेकर के निर्देशन में बनी फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर 12 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
5: अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइसन पीना ही पड़ेगा।
4: देश का एकमात्र एमी नॉमिनेटेड एनिमेशन स्टूडियो वैभव स्टूडियोज ने अपनी एनिमेटेड फीचर फिल्म रिटर्न ऑफ द जंगल का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। जो पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरा हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑफ द जंगल पंचतंत्र से प्रेरित आज के जमाने की एक कहानी है, जिसकी जड़ें मजबूती से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं। आईटीओजे को कान फिल्म मार्केट में दिखाए जाने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां मिल चुकी है। 29 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म का निर्देशन वैभव कुमारेश ने किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर एनिमेशन फिल्म मेकर है। उन्हें सिंपू और लंपुट जैसे मशहूर किरदार और शो बनाने के लिए जाना जाता है।
3: न्यूज पथ पर थोड़ी देर ब्रेक प्लाजा पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खेल की खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Order for Jennifer C.
9: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
8: Yeah. Can you handle that much caffeine?
9: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Oh, really? That's great.
9: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
8: Yeah, you just said that.
9: Did you say I just said that?
8: Yeah, I'm cutting you off.
9: I can't have any more? Why not?
10: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
11: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं
3: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
3: 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
18: IPL 2026 के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला है। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में टॉस जीतकर SRH ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। इस एलिमिनेटर मुकाबले में जीतने वाली टीम 29 मई को क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस से मैच खेलेगी, जिससे फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा। क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि दहिया दिल्ली में IDCA T20 चैंपियंस ट्रॉफी के लॉन्च में शामिल हुए। इस लॉन्च इवेंट में उन्होंने बधिर क्रिकेटरों के समर्पण और दृढ़ता की तारीफ करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। दहिया की मौजूदगी में IDCA T20 चैंपियंस ट्रॉफी का अनावरण हुआ। बेंगलुरु में 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रही है। 26 मई को इस चैंपियनशिप का आगाज हुआ और इसमें पैरा एथलीट्स अपने इवेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 मई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 300 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ की रहने वाली अक्षा दत्ता ने भारत की अंडर 18 हॉकी टीम में बनाई अपनी जगह। इसको लेकर पुंछ में जश्न का माहौल है। अक्षा के भारत की अंडर 18 हॉकी टीम में चुने जाने पर कोच नवजोत सिंह ने भी अपनी खुशी जाहिर की और इसे एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लड़कियों के जोनल लेवल अंडर 17 खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें युवा एथलीट्स ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। युवा सेवा और खेल विभाग ने इस चैंपियनशिप का आयोजन किया। इसमें 5 अलग अलग खेल आयोजित किए गए, जिसमें लड़कियों की बहुत अच्छी भागीदारी देखने को मिली।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की है, तो GNT भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए, ताकि हम आपके उन वीडियोस को GNT पर दिखाएं। तो चलिए आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लेकर चलते हैं, जहां पर बाखली पिकनिक रिजॉर्ट आपका इंतजार कर रहा है। और क्या कुछ खास है यहाँ, देखिए इस रिपोर्ट में।
19: ये है माता बगलामुखी मंदिर का भव्य नजारा। और यहीं से आप नेचर पार्क के भी दर्शन कर सकते हैं।

इस स्थान को बाकली के नाम से जाना जाता है। माता बगलामुखी का यह मंदिर पहले नीचे हुआ करता था, जहां नेचर पार्क बनाया गया है। स्नो डैम के बनने के समय माँ बगलामुखी की इच्छा अनुसार मंदिर ऊपर बनाया गया। जिस स्थान पर अभी मैं मौजूद हूँ, हजारों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। तो चलिए मंदिर के अंदर भी आपको माता के दर्शन करवाते हैं।

अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे नेचर पार्क की ओर। नेचर पार्क की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो चलो मिलते हैं अब नेचर पार्क में। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ नेचर पार्क में। ये नेचर पार्क वन विभाग के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर सुंदर हट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं और सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर सुबह शाम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जिस कारण इस भरी तपती गर्मी में आपकी इच्छा भी ना करे यहाँ से जाने की।

0: नेचर पार्क में घूमने के अलावा आप यहाँ पे पंडो डैम में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बात रही इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने की, तो आप कई रास्तों से इस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चंडीगढ़ की ओर से आ रहे हैं तो जिस रोपवे की बात हमने स्टार्टिंग में की थी वह रोपवे हाईवे से महज कुछ ही मीटर दूर है और चंडीगढ़ से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि भुंतर में स्थित है। अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूँ तो भुंतर एयरपोर्ट पे दिल्ली, अमृतसर, देहरादून और जयपुर से रेगुलर फ़्लाइट्स आती हैं। और फ़्लाइट्स के अलावा अगर आप ट्रेन से भी आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से जोगिंद्रनगर का है, जो कि यहाँ से महज 70 किलोमीटर दूर है।
1: आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस संकल्प के भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाएं कैमरा, बनाए वीडियो, हमें भेज दें 7303409922 पर। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका वीडियो गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
3: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में। जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
5: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
4: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
6: By the airport!
5: See dealer for details. Offer ends 6/1/26.
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay.
8: Come on, let it go.
7: Nora Jones, Daniel Caesar, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: आस्था और उत्साह के साथ जारी चार धाम यात्रा, केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख भक्तों ने किए दर्शन, बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा, यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भारी भीड़। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु, 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से ज्यादा भक्तों ने टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड, वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खेल के मैदान में दम दिखाने वाले ऐसे युवाओं और बच्चों की जो देश के लिए प्रेरणा बन गए। किसने सोचा होगा कि देसी लड़कों की टीम किसी दिन यूरोप की दिग्गज टीम को फुटबॉल में हरा देगी। ये कारनामा मोहाली की एक एकेडमी ने कर दिखाया है। ये इतिहास कैसे रचा गया, आपको विस्तार से बताएंगे। मुंबई के ऐसे बच्चों से आपका परिचय कराएंगे जो देख नहीं सकते फिर भी स्केटिंग का हुनर सीख रहे हैं। आखिर में बात होगी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके से हॉकी के अंडर 18 नेशनल टीम में जगह बनाने वाली अक्षा दत्ता की। हिसार के कमल का कारनामा भी आपको दिखाएंगे, जिन्होंने पानी के अंदर 86 पुशअप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शुरुआत करते हैं फुटबॉल के मैदान में देसी लड़कों के दम से। यूरोप की दिग्गज माने जाने वाली लिवरपूल एकेडमी को मोहाली के मिनर्वा एकेडमी के लड़कों ने शिकस्त दे दी है। एक दो नहीं बल्कि 6 गोल दागे और इस तरह दुनिया को चौंका दिया। स्पेन में आयोजित मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप में हालांकि मिनर्वा की टीम आगे नहीं जा पाई, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में जिस तरह लिवरपूल पर हराया है वो भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की आबो हवा ही फुटबॉल के लिए मुफीद नहीं, जो मानते हैं कि स्टेमिना और स्ट्रेंथ में देसी खिलाड़ी दुनिया के सामने टिकेंगे नहीं, और जो समझते हैं कि इंडिया में फुटबॉल का कोई भविष्य नहीं, उन्हें जवाब मिल गया है। 15 से कम उम्र के हिंदुस्तानी लड़कों ने यूरोप के सबसे शानदार फुटबॉल अकेडमी को शिकस्त देकर न सिर्फ दुनिया में अपना डंका बजाया है, बल्कि ऐलान भी किया है कि हारेंगे वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।

0: मोहाली में मौजूद मिनर्वा एकेडमी किसी परिचय की मोहताज नहीं। अरसे से ये संस्थान युवा खिलाड़ियों को तराशने में जुटा है। यहाँ से निकले खिलाड़ी अलग अलग मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो कारनामा यहाँ के लड़कों ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे स्वीडन की क्रिकेट टीम भारत में आकर मैच जीत ले। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि इन खिलाड़ियों ने क्या कर दिखाया है। मिनर्वा एकेडमी के इन खिलाड़ियों ने कुछ दिन पहले मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप के प्री क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को 6-0 से हरा दिया। आपको बता दें कि लिवरपूल यूरोप की दिग्गज फुटबॉल एकेडमी है। इस मुकाबले में राज सिंह मैच के हीरो बनकर उभरे। उन्होंने विरोधी खेमे की डिफेंस कमियों का फायदा उठाते हुए शानदार हैट्रिक लगाई। मोहम्मद आजम खान ने 2 गोल दागे और लिशम अमरसन सिंह ने 1 गोल किया।
1: मोहाली की इस फुटबॉल एकेडमी ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी जो कि मोहाली की आउटस्कर्ट्स पे मौजूद है, उसने पिछले महीने स्पेन में जाकर लिवरपूल को हरा दिया। जी हां, लिवरपूल एक जायंट क्लब है जिसने दुनिया को बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं, और किसने सोचा होगा कि पंजाब में स्थित एक फुटबॉल एकेडमी की टीम जाकर अंडर 15 कैटेगरी में लिवरपूल को हरा देगी। सो एक देश जो कि क्रिकेट के पीछे दीवाना है, वहां इस तरह की जो अचीवमेंट है फुटबॉल के अरीना में, वो डेफिनेटली फुटबॉल के लिए भी एक बड़े दरवाजे खोलती है।
0: जिस मुकाबले में हमारे लड़कों ने अपनी जीत का परचम लहराया है वो कोई मामूली मुकाबला नहीं। MIC यानी मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप दुनिया भर में फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित यूथ टूर्नामेंट्स में से एक है, जो हर साल स्पेन में होता है। इस टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल जैसी एकेडमीज हिस्सा लेती हैं। इसे अंडर 12 से अंडर 19 एज ग्रुप के लिए एक तरह से मिनी वर्ल्ड कप माना जाता है, और मेसी, नेमार, कैसेमेरो जैसे बड़े फुटबॉल दिग्गज इस टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं। ऐसे में मिनर्वा के लिए टूर्नामेंट में खेलना और फिर लिवरपूल को हराना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीत इतनी बड़ी है कि इसका शोर स्पेन से लेकर भारत तक सुनाई दे रहा है।
1: ये बताइए कि लिवरपूल को 6-0 से हरा देना, और जिस दिन खेलने गए थे लग रहा था आपको कि 6-0 से हरा देंगे?
2: एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बहुत ज्यादा थी कि हम लोग शायद बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा, लाइक हम लोग बहुत ज्यादा ज्यादा गोल नहीं मार पाएंगे, उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैच होगा। लेकिन जब हम ड्रेसिंग रूम में थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रंजीत व्यासर्स दैट स्पीच, फिर उसके बाद मोटिवेशन बहुत ज्यादा आ गई, और व्हेन वी स्टेप इनटू द फील्ड फिर वो अलग ही लेवल पे हम लोग खेलने स्टार्ट हो गए, एंड दैट वाज द बेस्ट मैच आई हैव एवर प्लेड।
1: मिनर्वा से ही काफी सैकड़ों प्लेयर्स जो हैं इंडिया खेले हैं डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है इतना बड़े मैच जीतने के बाद?
3: बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, मतलब बहुत सारे बंदों ने कांग्रेस भी किया कि अच्छा खेले तुम लोग, सब ने इंडिया, बहुत से लोगों ने मैच देखा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है इससे।
1: आप तो गोल स्कोरर थे लिवरपूल में जो 6-0 से हराया मिनर्वा ने, आपने गोल मारा था उसमें, तो वो कितने नंबर पे गोल था? पहला था, दूसरा था, कौन सा था?
2: सेकंड वाला,
1: सेकंड गोल मारा था।
0: चलिए अब मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी के बारे में भी जान लीजिए। आज से करीब 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और तब से ये एकेडमी प्रतिभाओं को निखारने में जुटी है। मिनर्वा एकेडमी अब तक 250 से ज्यादा खिलाड़ियों को तराश चुकी है, और यहाँ से निकले बच्चे अलग अलग कैटेगरी में देश और अपने क्लब्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1: अप्रैल को हिस्ट्री लिखी गई जब आपकी एकेडमी के अंडर 15 टीम ने स्पेन जाके लिवरपूल को हरा दिया, तो वो ऐसा लग रहा था आपको कि हो जाएगा, और उसके बाद चीजें कैसी बदली हैं?
4: फॉल्स कॉन्फिडेंस या ब्रावाडो नहीं था, क्योंकि इससे 6 महीने पहले हम 3 दुनिया के सबसे बड़े जो यूथ टूर्नामेंट होते हैं, एक हुआ स्वीडन में जिसको कहते हैं वर्ल्ड यूथ कप, गोथिया कप, और फिर डेनमार्क में दाना कप, और फिर उसके बाद नॉर्वे में नॉर्वे कप, ये तीनों जीत के आए, और वहां पे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो फाइनल में हमने एक टीम को 14-0, एक को 21-0 और एक को 8-2 हराया, वो अर्जेंटीना की टीम थी, जो कभी किसी दुनिया में किसी टीम ने नहीं किया था। तो मुझे इस टूर्नामेंट से पहले ही पता था कि हमारी ट्रेनिंग इन लड़कों पे इतनी अच्छी हुई है, एंड इनकी परफॉर्मेंस, उनको एक्सपोजर प्लस डाइट न्यूट्रिशन सारा इतना अच्छा मिला है, वी न्यू कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी बिकॉज हमारे प्रोसेसेस ठीक हैं।
0: मौजूदा वक्त में मिनर्वा एकेडमी में करीब 500 खिलाड़ी हैं, और उनमें करीब 250 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्लब चला रहे रंजीत बजाज का मानना है कि लिवरपूल के खिलाफ मिली जीत भारत में फुटबॉल की दिशा बदल सकती है।
1: वर्ल्ड ओवर से वहां आए जो प्लेयर्स थे, क्लब्स के आए थे, लेकिन अगर इस एकेडमी की बात करें तो यहां पर कितने बच्चे हैं और किस एज ग्रुप के हैं और भारत में कहां कहां से आते हैं?
4: सी, हमने जो 250 इंटरनेशनल प्रोड्यूस किए हैं, हम अपने आप को नेशनल एकेडमी मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम पंजाब की एकेडमी है, हम बेस्ड पंजाब में है। बट एकेडमी अगर आप जाके देखो, जितने हमारे लड़के गए थे, देवर फ्रॉम 9 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इनफैक्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम मणिपुर, फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इस सारे स्टेट्स का, उत्तराखंड, सारे स्टेट्स कवर्ड थे। ये इसीलिए क्योंकि हमारा स्काउटिंग प्रोग्राम ऐसा है, हमने 250 बच्चे यहाँ पे इस टाइम पे स्कॉलरशिप पे रखे हुए हैं, 100% स्कॉलरशिप, खाना पीना रहना और एजुकेशन हम देते हैं उनका।
0: एमआईसी कप में भाग लेने वाला पहला

0: कदम से कदम मिलाऊंगी, साथ साथ चलूंगी, सुनो सखी हार नहीं मानूंगी। इन मासूम आवाजों में सिर्फ गीत नहीं भरोसा छिपा है, ऐसा भरोसा जो हर परेशानी से लड़ना जानता है। ये बच्चे आंखों से दुनिया नहीं देख सकते, मगर इनके भीतर का उजाला किसी रोशनी से कम नहीं। चेहरे पर मुस्कान, दिल में उमंग और कुछ कर दिखाने की चाह, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद MNB औद्योगिक दृष्टिहीन गृह आश्रम में रहने वाले ये बच्चे साबित कर रहे हैं कि जिंदगी देखने से नहीं महसूस करने से चलती है। यहाँ हुनर को पंख दिए जाते हैं, यहाँ डर नहीं आत्मविश्वास सिखाया जाता है, यहाँ कमजोरी नहीं काबिलियत पहचानी जाती है। स्केट्स के छोटे छोटे पहियों पर सवार होकर ये बच्चे हर दिन नई उम्मीद लिख रहे हैं। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके हौसले यूं ही बने रहते हैं। 8 साल की आलिया भी उन्हीं बच्चों में शामिल है। आलिया जन्म से देख नहीं सकती, मगर उनकी सोच बेहद ऊंची है। जब वो स्केटिंग ट्रैक पर उतरती हैं, तो उनके कदमों में डर नहीं आत्मविश्वास झलकता है। छोटी उम्र में ही आलिया ने समझ लिया कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए रास्ते जरूर बनते हैं। रोजाना घंटों अभ्यास, बार बार संतुलन बनाने की कोशिश और हर बार गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत, यही आलिया की पहचान है।
1: मैं MNB इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड में एज अ CEO वर्क कर रहा हूँ 11 सालों से सर, और जहाँ पे आप खड़े हैं ये जोगेश्वरी में स्थित है। ये हमारी संस्था 1956 से कर रहे थे सर। सर सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह हमारे देश में खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दिव्यांगों को हमें लगा कि ऐसा कुछ नया प्रोजेक्ट है कि जिसमें निसी एक जब ब्लाइंड बच्ची कर सकती तो अच्छा सिखा भी सकती है। तो मैंने ये सोचा कि समर कैंप में हम लोग क्या क्या रखते हैं, तो हमें एक मन में आया, पिछले साल भी हम लोगों ने स्केटिंग किया जिसमें बच्चे लोग काफी अच्छा कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए बाहर भी जा रहे हैं सर। सो हम लोगों ने स्केटिंग रखा, फिर रोप मलखम रखा, क्योंकि थोड़ा सा उसे स्ट्रेंथ पड़ता है बच्चों में और कुछ उनका मेंटली रूप से भी वो थोड़ा स्वस्थ होते हैं सर। फिर हम लोग अभी स्विमिंग के लिए भी हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से स्विमिंग भी बच्चों को सिखा रहे हैं सर, एंड क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है सर।
0: सिर्फ आलिया ही नहीं, आश्रम में रहने वाला हर बच्चा किसी प्रेरणा से कम नहीं। कोई स्केटिंग सीख रहा है, कोई स्विमिंग में मेहनत कर रहा है, किसी को मलखम्ब पसंद है तो कोई क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहा है।
1: सबसे पहले तो सर, जो निशी एंड सुशांत जो हमारे कोच हैं, ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं और ये लोग पूरा ख्याल रखते हैं कि बच्चों को अगर हाथ में ना लगे तो हैंड ग्लव्स होना चाहिए, सर पे ना चोट लगे तो हेलमेट पहन के तभी स्केटिंग पे उतरते हैं सर। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो भी मानक है वो पूरा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। सर फैमिली जब पहले बार जब हम लोगों ने एडमिशन ले रहे थे तो वो काफ़ी डर रही थी फैमिली, जब उनके बच्चे करने लगे स्केटिंग तो इतने अभी क्या होता, कभी कभी झगड़ा होता कि हमारे बच्चों को आपने अभी तक चांस नहीं दिया या कुछ ऐसा, तो अभी तो वो काफ़ी सपोर्टिव है, इतना फैमिली सपोर्ट कर रही है कि अभी बच्चे कहीं बाहर भी जाना होता है तुरंत उनके पेरेंट्स उनको लेके बाहर भी जा रहे हैं सर।
0: सबसे खास बात ये कि यहाँ बच्चों को सिर्फ खेल नहीं सिखाए जाते बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी दिखाई जाती है। मोबाइल फोन से ओला और उबर बुक करना, जरूरी काम खुद करना, दैनिक जीवन को आसान बनाना, ये सारी बातें यहाँ की ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। इस समय यहाँ 50 से ज्यादा स्पेशल चाइल्ड मौजूद हैं। हर बच्चे की कहानी अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, अपने सपनों को पूरा करना।
2: आते रहो, आ जाओ प्रियंका यहाँ पे, आते रहो, बड़ा कोई सामने

0: इन बच्चों का आत्मविश्वास देख कोई भी हैरान हो सकता है। स्केटिंग जैसे कठिन खेल में संतुलन बनाए रखना आसान बात नहीं, लेकिन ये बच्चे अपनी मेहनत से हर चुनौती को छोटा साबित कर देते हैं। इन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली कोच निशि भी देख नहीं सकती हैं। निशि ने कभी अपनी कमी को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार मेहनत की, मुश्किल हालात से मुकाबला किया और अब दूसरे बच्चों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। हाल ही में नेपाल में आयोजित स्केटिंग प्रतियोगिता में निशि ने शानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन किया। जीत हासिल करने के बाद भी उनका सफर नहीं थमा। अब वो खुद आगे की तैयारी करने के साथ साथ इन बच्चों को भी मजबूत बना रही हैं।
1: म्यूजिक सुनना, डांस करना और स्केटिंग करना, ये मेरे को पहले से ही बहुत पसंद है। मैं घर पे प्रैक्टिस स्केट्स करती थी, तो फिगर स्केटिंग करना एक मेरा ड्रीम करियर बन चुका है अभी। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया स्केटिंग करना एंड मुकेश पाटिल सर मुझे मिले एंड मुकेश पाटिल सर ने मुझे स्पीड स्केटिंग में उतारा। फर्स्ट टाइम एवर जो मेरा स्केटिंग मैराथन हुआ उसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। मैं वर्ल्ड्स फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड लेडी टू डू स्केटिंग है, मेरा टाइटल है ये। मुझे मिला है इंटरनेशनल ब्रावो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और अब मैं जा रही हूँ देखने के लिए फिगर स्केटिंग की तरफ एंड आर्टिस्टिक स्केटर भी हूँ मैं।
0: निशि जब बच्चों का हौसला बढ़ाती हैं तो उनकी आवाज में अनुभव झलकता है। वो जानती हैं कि बगैर देखे दुनिया में आगे बढ़ना कितना कठिन होता है। शायद यही वजह है कि बच्चे भी उन पर पूरा भरोसा करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान जब छोटे छोटे कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सपनों को रफ्तार मिल गई हो। कोई हंसते हुए गिरता है, कोई साथी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ता है, तो कोई जीत की कल्पना में खो जाता है। यहाँ हार का मतलब रुक जाना नहीं बल्कि दोबारा कोशिश करना है। इन बच्चों ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है, अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें रास्ता रोक नहीं सकती। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देश के अलग अलग हिस्सों से युवा खिलाड़ियों की प्रेरणादायक कामयाबियां सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ की अक्षा दत्ता भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम में चुनी गई हैं। सीमावर्ती इलाके से निकलकर अक्षा ने मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई है। वहीं हिसार के कमल कलोई ने वियतनाम में पानी के अंदर 86 पुशअप लगाकर तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इन दिनों चर्चा कोटा के मुक्केबाजों की भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट।

0: भर ले, 10-12 बार कर ले, है ना ना यार, पीछे कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी। इंडिया के लिए मैदान पर लड़ने, जूझने और जीतने की ये जिद ही है जो अक्षा दत्ता को इस मकाम तक ले आई है। आगे बस चक दे इंडिया है। जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है? पुंछ जिले की युवा हॉकी खिलाड़ी अक्षा दत्ता भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम में चुन ली गई हैं। लगन, प्रतिभा और अपनों का साथ अक्षा को आगे बढ़ाते रहे और सीमा से करीब एक इलाके से निकलकर अक्षा आज नेशनल लेवल की खिलाड़ी बन चुकी है।
1: रिसेंटली मेरा इंडिया कैंप में ज्वाइनिंग हुआ, ड्यू टू सम इंजरीज में इंडिया टीम में नहीं आई, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अगले स्टेप, जब मैं भी अगला स्टेप लूँ तो मैं इंडिया कैंप के लिए और इंडिया टीम में खेलूँ। तो मेरी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। मैं 7 ईयर्स की थी जब मैंने हॉकी खेलना शुरू की। मेरे पापा ने मेरे को हाथ में एक हॉकी स्टिक दी और मुझे कहा कि जा ग्राउंड में, और मेरे को अपनी घर की तरफ से पूरी सपोर्ट है।
0: अक्षा की कामयाबी से परिवार, कोच और इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। अक्षा की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने उन्हें सफलता और शोहरत के नए आसमान तक जो पहुंचा दिया है।
2: और सर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी ने एक बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश की है, और वो यहाँ से निकल के, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से निकल के, जो एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ से निकल के वो साई एकेडमी में वो वहाँ पहुँची, और वहाँ से फिर उसने अंडर 18 इंडिया कैंप भी ज्वाइन किया। तो इसका पूरा श्रेय जो है वो जाता है हमारे पुंछ में जो श्याम लाल हॉकी क्लब है, इनके कोचिज को, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत मोटिवेट किया और बहुत सपोर्ट भी किया।
0: खेल के मैदान पर कामयाबी का परचम हिसार के कमल कलोई ने भी लहराया है, लेकिन ये मैदान नहीं, स्विमिंग पूल है। यहीं पर कमल ने पानी के भीतर 86 पुशअप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने वियतनाम की राजधानी हनोई में पानी के भीतर पुशअप लगाए और तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये उपलब्धि बेजोड़ है, क्योंकि पानी के अंदर संतुलन, सांस नियंत्रण और मानसिक मजबूती की विशेष जरूरत होती है। कमल इससे पहले भी 2 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। साल 2020 में उन्होंने एक सांस में पानी के भीतर 21 योगासन किए थे, जबकि 2021 में 81 एयर रिंग ब्लोइंग का रिकॉर्ड बनाया था। अब तीसरी उपलब्धि ने उन्हें देश के ऐसे युवाओं की सूची में शामिल कर दिया है जो हजारों, लाखों को प्रेरणा देते हैं। अब अलवर की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ 5वीं सब जूनियर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोटा के युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान खींचा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। गर्ल्स टीम ने रनर अप स्थान हासिल कर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, तकनीक और जोश दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा।
3: मैं भाई क्रिकेट खेलता था, तो उधर बॉक्सिंग एकेडमी चलती थी प्रीतम सर की, तो मैं वहाँ जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं नेशनल पहुँचा। एक बार मैं 2 टाइम स्टेट चैंपियन और 2 बार नेशनल। अब 21 जून को नेशनल है, वहाँ पर जाना है खेलना। उधर
4: मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं गोल्ड मेडल लाई हूँ, और मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया है गोल्ड मेडल लाने का, क्योंकि जब वो छोटे थे तो वो आर्मी स्कूल में थे, और उनका भी था कि वो भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, किसी भी स्पोर्ट्स में जाके अपना, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर ही अपना करियर बनाए, क्योंकि स्पोर्ट्स में उस टाइमिंग पे कुछ भी नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं था स्पोर्ट्स का। और फिर पापा ने अपना सपना मेरे थ्रू किया, मतलब उनका सपना।
5: मेरे पापा पहली बात तो खुद बॉक्सर है, और मेरे सर जो थे उन्होंने, उनकी अकेडमी थी, तो पहले मेरी दीदी को बुलाया, फिर उसके बाद मैं आई, तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करे और रिजल्ट अच्छा आया, तो फिर खुद से इंटरेस्ट बढ़ गया। और मैं अभी पिछले साल नेशनल, सब जूनियर नेशनल में सिल्वर भी मार के आई हूँ, और CBSE में गोल्ड है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करा, कुछ में हारे कुछ में जीते।
0: देश भर से सामने आई ये उपलब्धियाँ बताती हैं कि भारत का खेल भविष्य अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा है, गांव, कस्बे और सीमावर्ती इलाके भी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं। हिसार से परवीन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।

0: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
1: So they were disallowed from speaking their language.
0: In-depth conversations with A-list celebrities.
2: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
0: True crime podcasts you just can't stop listening to.
3: Others escape justice to live and die in infamy. These
0: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
4: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
0: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
5: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
6: What you got for me, Jack?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
0: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
7: It's your boy,
0: just
7: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: आस्था और उत्साह के साथ जारी चारधाम यात्रा। केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा करीब 9 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में करीब 7 लाख लोगों ने की पूजा। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भारी भीड़। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार। भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। IPL में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का उत्साह चरम पर। यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं से गुलजार। केदारनाथ धाम में अब तक 9 लाख से अधिक भक्त पहुंचे। बाबा केदार के दर्शन के लगी भक्तों की लंबी कतार। बद्रीनाथ धाम में आज आए 25,488 तीर्थयात्री। इस साल धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर हुई 6,68,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र के अकोला में श्याम धाम मंदिर में बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के संगम से सराबोर हुआ मंदिर परिसर। एफएसएसएआई टीम ने गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए अयोध्या में रामलला के भोग और सीता रसोई का निरीक्षण किया, सत्यापन के बाद शुद्धता का प्रमाण पत्र जारी किया गया। 21 दिन के एकांतवास से बाहर आए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ में शुरू की सत्यनारायण और हनुमत कथा। सत्यनारायण कथा के पहले दिन भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, कथा सुनने आए श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह, 5 दिनों तक चलेगी कथा। पुरुषोत्तम मास में भागवत जप तप का विशेष महत्व, बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं। कथा के लिए तैयार किया गया है बड़ा पंडाल, 1,000 लोगों के बैठने का इंतजाम, पंडाल के बाहर श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया है बड़ा टीवी। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर अपनी साधना के अनुभव भी श्रद्धालुओं के साथ साझा करेंगे। नर नारायण पर्वत पर 21 दिनों तक की थी साधना। सत्यनारायण कथा के पहले दिन निकाली गई कलश यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन। श्री झालरिया सेठ मठ में 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का आयोजन, विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जन कल्याण की कामना की जाएगी। महोत्सव में 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद भागवत कथा और श्रीमद भागवत पाठ, सहस्त्र कलश अभिषेक जैसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। महोत्सव में शामिल होने के लिए देशभर से आए साधु संत भक्तों की सुविधा के लिए करीब 4,000 कमरों का किया गया इंतजाम। गुजरात के पाटन में पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में अद्भुत श्रृंगार, 5 से लेकर 500 के नोटों से सजा भगवान का दरबार। अधिक मास के मौके पर मंदिर में हर रोज सुबह 9 बजे कथा का आयोजन, शाम को हो रही है भव्य महाआरती। आज पूजा में महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया हिस्सा, 15 जून को मंदिर में अन्नकूट दर्शन का किया जाएगा आयोजन। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिखों का पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब श्रद्धालुओं से गुलजार, इस साल अब तक 19,500 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। 23 मई को खुले थे हेमकुंड साहिब के कपाट, 19 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर मत्था टेकने पहुंच रहे श्रद्धालु। कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में 300 साल पुरानी अनूठी परंपरा, हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को दी जाती है मेडिकल लीव। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 51 जल कलशों और पंचामृत से किया जाता है विशेष अभिषेक, इसके बाद अर्पित किया जाता है करीब 200 किलो आमरस का विशेष भोग। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आमरस का भोग ग्रहण करने के बाद अस्वस्थ हो जाते हैं भगवान, इस दौरान 14 दिन बंद रहते हैं मंदिर के कपाट। भगवान के विश्राम और स्वास्थ्य लाभ के लिए बंद किया जाता है मंदिर, अनुष्ठानों के बाद रात 9 बजे बंद किए जाते हैं मंदिर के कपाट। भगवान के स्वास्थ्य लाभ अवकाश के दौरान बरती जाती है विशेष सावधानियां, इस दौरान दूध, काली मिर्च और विशेष काढ़ा किया जाता है अर्पित। राजस्थान में आज रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा तापमान, श्रीगंगानगर में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। गर्मियों और हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए अयोध्या में नगर निगम की विशेष पहल, शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं अस्थायी शेड और ग्रीन नेट। राम मंदिर के पास और निषाद राज चौराहे पर ग्रीन नेट लगाई गई, रामपथ, राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के पास अस्थायी शेड लगाने का काम जारी। भारतीय वायुसेना हिमाचल प्रदेश के कसौली में आग बुझाने के काम में जुटी, जंगल में लगी है भीषण आग। वायुसेना के हेलीकॉप्टर सुखना झील से पानी भरकर प्रभावित इलाकों में डाल रहे हैं, अब तक 40,000 लीटर से ज्यादा पानी गिराया जा चुका है। कल से गर्मी मिल सकती है थोड़ी राहत, पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। पूर्वोत्तर भारत में तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान, मैदानी और पहाड़ी राज्यों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी का जताया अनुमान, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। केरल में कुछ दिनों में मानसून दे सकता है दस्तक, दक्षिण में और पूर्वोत्तर में शुरू हुई प्री मानसून बारिश। उत्तराखंड के चमोली में 1 जून से सैलानियों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी, 23 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। देश के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर प्रधानमंत्री की अपील, लू और गर्मी से सावधान रहे देशवासी, लगातार तरल पेय पीते रहने की अपील। झारखंड के रामगढ़ में मंडा पूजा की धूम, अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए भक्तों ने नंगे पांव अंगारों पर चलकर की कामना, बनस झूला पर भी झूले लोग। हरियाणा को मिलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी 10 कोच वाली हाईटेक हाइड्रोजन, डीएमयू रेल मंत्रालय दी मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में सफलतापूर्वक ट्रैकिंग पूरा कर सुरक्षित लौटा सतोपंथ ट्रैकिंग सीजन का पहला दल, दल में 4 महिलाओं समेत गुजरात के 13 सदस्य थे शामिल। 23 मई को सतोपंथ ट्रैक के लिए रवाना हुआ था 13 सदस्यों का दल, 4 दिन की चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर पूरा कर सुरक्षित माड़ा गांव पहुंचा दल। केंद्र सरकार ने बढ़ाई सार्थक पीडीएस योजना, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी सरकार। योजना मार्च 2031 तक लागू रहेगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बनाना है मकसद। अनाज उत्पादन से जुड़ी गुड न्यूज, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में गेहूं उत्पादन 2.29% बढ़कर 120 मिलियन टन होने का अनुमान। तेलुगु देशम पार्टी ने 2029 के चुनावों में महिलाओं को 33% टिकट देने का किया ऐलान, कहा महिलाएं भविष्य तय करने वाली नेता। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर होगी चर्चा, अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक दिल्ली का करेगा दौरा। एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों में करीब 10% की कटौती की, इंडिगो ने भी अपने डोमेस्टिक फ्लाइट में कटौती की। इबोला को लेकर गुजरात सरकार अलर्ट, कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से अहमदाबाद पहुंचे 11 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया। राजस्थान में अलवर जंक्शन पर ट्रेन से उतरते समय महिला का फिसला पैर, आरपीएफ जवान ने दौड़कर बचाई जान, कैमरे में कैद हुई घटना। धर्मशाला से चलने वाली निर्वासित तिब्बत सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया, धर्मगुरु दलाई लामा भी हुए शामिल। दलाई लामा की मौजूदगी में नए राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग ने शपथ ग्रहण कर पदभार संभाला, भारत अमेरिका और तिब्बत समर्थक देशों का जताया आभार। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन को सजाया गया, इमारत लाल रोशनी से जगमगाई दिखी। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में रचा इतिहास, एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का धमाका, आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने। सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, 29 गेंदों में खेली 97 रन की धमाकेदार पारी, 5 चौके और 12 छक्के लगाए। सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, 60 छक्के का आंकड़ा पार किया, क्रिस गेल ने 2014 में 59 छक्के लगाए थे। भगवान बांके बिहारी की करोड़ों भक्तों से जुड़ी गुड न्यूज, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास की जमीनों की रजिस्ट्री, 3 और जमीनों के मालिकों ने मंदिर के लिए की जमीन की रजिस्ट्री, कॉरिडोर के लिए अब तक मंदिर के आसपास कुल 17 जमीनों की हुई रजिस्ट्री। मथुरा के एडीएम वित्त पंकज वर्मा ने बताया, अब तक 1900 वर्ग मीटर जमीन की हुई रजिस्ट्री, मंदिर कॉरिडोर के लिए अपनी जमीन देने के लिए खुद आगे आ रहे लोग। महाराष्ट्र के वाशिम में लोगों को गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से गिरा पारा। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई जगह गिरे पेड़ के हिस्से, लोगों को गर्मी से मिली राहत। धर्मशाला में कंपेशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन, 6 जुलाई को है दलाई लामा का जन्मदिन। दलाई लामा के जन्मदिन से पहले आयोजित होगा 3 दिवसीय तिब्बतियन सांस्कृतिक उत्सव, लोगों को तिब्बत संस्कृति के बारे में जानने का मिलेगा मौका। देश विदेश से कई गणमान्य अतिथि, अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग होंगे शामिल, धर्मगुरुओं पर बनी फिल्म भी की जाएगी हिंदी में प्रदर्शित। तमिलनाडु के कुडलूर जिले में श्री कुथम डावर मंदिर उत्सव का भव्य आयोजन, महाभारत के पात्र अरावन को समर्पित है सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। उत्सव में सज संवर कर तैयार होती है स्थानीय महिलाएं, भगवान कुंथ डावर यानी अरावन से करती है प्रतीकात्मक रूप से विवाह, भव्य जुलूस, पारंपरिक नृत्य, संगीत प्रतियोगिताएं भी होती आयोजित। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में देश को बड़ी सफलता, रोबोट की मदद से डॉक्टर ने हजारों किलोमीटर दूर मौजूद मरीज की सफल सर्जरी की। चीन के वुहान में मौजूद एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी के सीनियर भारतीय सर्जन ने हैदराबाद में मरीज की सफल सर्जरी की। वुहान में टोंगजी अस्पताल और हैदराबाद में AINU अस्पताल के बीच आपसी तालमेल से की गई सर्जरी, रिमोट सर्जरी की भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। इबोला वायरस से पीड़ित लोगों और देशों के लिए राहत वाली न्यूज, रूसी वैज्ञानिकों ने वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन बनाने का किया दावा। दुर्लभ बुंडीबिग्यो स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का दावा, कांगो और युगांडा जैसे देशों के लिए राहत की खबर, रूस ने पीड़ित देशों को मदद की पेशकश की। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन, 11 अर्चकों, 22 देव कन्याओं और 25 क्विंटल फूल मालाओं और 11,000 दीपों से हुई आरती। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन, घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश विदेश से आए हजारों सैलानियों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा संपूर्ण विकास, मुख्यमंत्री योगी ने किया 342 जनकल्याण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ अभियान के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम, परियोजनाओं के माध्यम से शहर में आधुनिक शहरी सुविधाओं का किया जाएगा विस्तार। पीएम के ईंधन बचाओ अभियान के तहत बिहार में सरकारी स्तर पर कारपूल और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का आदेश, पदाधिकारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही बकरीद, ईद उल अजहा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने अलग अलग ईदगाहों में पढ़ी विशेष नमाज। बकरीद की नमाज के लिए बांदीपोरा की मरकजी ईदगाह में जुटे सबसे अधिक श्रद्धालु, नमाज में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। नमाजियों ने लोगों में शांति समृद्धि और भलाई के लिए मांगी दुआ, नमाज को देखते प्रशासन ने किए जरूरी इंतजाम। इस मौके पर विद्वान मौलानाओं ने इस्लाम में कुर्बानी, भाईचारे, एकता और करुणा के महत्व पर डाली रोशनी। जम्मू में भी दिखी ईद पर्व की रौनक, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ पढ़ी ईद उल अजहा की नमाज, शांति समृद्धि और सामुदायिक सौहार्द की मांगी गई दुआ। ईद उल अजहा के मौके पर ताजमहल देखने के इच्छुक पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, कल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिना किसी शुल्क के ताजमहल देख सकेंगे सैलानी। कल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भारतीय और विदेशी पर्यटकों को नहीं देना होगा कोई शुल्क, स्थानीय लोगों से 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1100 रुपए लगता है टिकट। बड़ी संख्या में पर्यटकों के ताजमहल पहुंचने की संभावना को देखते हुए कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण के लिए किए गए विशेष इंतजाम। नागपुर पुलिस होगी आईटेक, नागपुर पुलिस को मिले बैलेंसिंग स्कूटर, भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार और झील के पास पेट्रोलिंग के लिए होगा इस्तेमाल। रिलीज हुआ मनोज वाजपेयी की फिल्म गवर्नर का दमदार ट्रेलर, 12 जून को सिनेमाघर में होगी रिलीज। वरुण धवन स्टारर फिल्म है जवानी है तो इश्क होना है का चुनरी चुनरी गाना रिलीज, 5 जून को सिनेमाघर में रिलीज होगी डेविड धवन की फिल्म। रितेश देशमुख के करियर के बड़े फिल्मों में से एक है राजा शिवाजी, 100 करोड़ क्लब में एंट्री, 24 दिन में 101.4 करोड़ का रहा नेट कलेक्शन। धुरंधर 2 ने दुनिया भर में की शानदार कमाई, फिल्म ने 67 दिनों में वर्ल्ड वाइड की 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई। समंथा रुत प्रभु की फिल्म माँ इंटी बंगारम का ट्रेलर जारी, फिल्म में दिखेगा उनका धमाकेदार एक्शन अवतार, 19 जून को रिलीज होगी फिल्म। उत्तरी इराक के हमदानिया में प्राइवेट म्यूजियम बना आकर्षण का केंद्र, अल असल्फ है इस म्यूजियम का नाम अरबी में जिसका मतलब है पूर्वज। 2020 में खोला गया ये अल असल्फ म्यूजियम, यहां मौजूद है इराक की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई अनोखी चीजें। ज्यादा फंसी है इस प्राइवेट म्यूजियम की ओवर का नाम, म्यूजियम में कई दुर्लभ और यादगार चीजें शामिल। म्यूजियम में सहेज कर रखी चीजों में पारंपरिक ग्रामोफोन से लेकर परिधान तक शामिल, इराक की संस्कृति से जुड़ी कई तस्वीरें और शिल्पकला के नमूने भी बढ़ा रहे म्यूजियम की शोभा। दूर दूर से प्राइवेट म्यूजियम को देखने आते हैं विजिटर्स, इराक की चीजों के अलावा कलेक्शन में कई ईसाई कलाकृतियों भी शामिल। इटली में साल की पहली बड़ी हीटवेव, कई शहरों में तापमान 35 डिग्री के करीब पहुंचा। गर्मी ने समय से पहले लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, टस्कैनी और उम्ब्रिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान। इटली हेल्थ मिनिस्ट्री में 27 शहरों के लिए हीट वेव मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव किया, बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह। इटली के 12 शहर ऑरेंज अलर्ट पर, आने वाले दिनों में ऐसे शहरों की संख्या 15 हो सकती है। गुरुवार से नॉर्दर्न यूरोप की ठंडी हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद, कुछ इलाकों में बारिश और तूफान की भी आशंका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdown, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture, hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a pain. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: साथ ही एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। अकोला के श्यामधाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। कल से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। कल देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक। त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आज के इस शो की चर्चा का विषय क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, पंडित जी से जानने वाले हैं कि बुध की राशियां कौन कौन सी होती हैं, इन राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, आपके जीवन पर इसका प्रभाव क्या होता है। विस्तार से तमाम जानकारियां पंडित जी आप सबके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपके हर काम में रुकावट आती हो, हर काम में बाधा पैदा होती हो, हर काम में दिक्कत होती हो, तो रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर ऐसा नित्य प्रातः आप करना शुरू कर दें, आपके हर काम में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 28 मई 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 28 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि बुध की राशियों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बुध की राशियों की खास बातें क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि बुध की राशियां हैं?
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बुध की राशियों के बारे में। बुध की राशियां कौन सी हैं और इन राशियों की महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, बुध मुख्यतः पृथ्वी तत्व का ग्रह है, अर्थियल एलिमेंट का प्लेनेट है। इसके पास दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। हालांकि दोनों राशियों के स्वामी एक ही हैं, बुध, लेकिन दोनों का स्वभाव और दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। और आप देखेंगे कि मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के जीवन के रास्ते भी आम तौर पर अलग होते हैं। कन्या राशि बुध के ज्यादा निकट होती है। कन्या को बुध की पॉजिटिव राशि माना जाता है और मिथुन राशि शनि के ज्यादा निकट होती है। मिथुन राशि को बुध की निगेटिव राशि माना जाता है। तो मुख्यतः कन्या और मिथुन दोनों बुध की राशियां हैं, लेकिन दोनों के गुण, दोनों की खासियत और दोनों की सफलता की स्थितियां अलग अलग होती हैं।
0: चलिए बुध की राशियों के बारे में और भी तमाम जानकारियां पंडित जी आपको बताएंगे। अब बारी आती है राशि फल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष वृष और मिथुन वालों की।
1: मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आप ऑन कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की रुकावट दूर होगी, चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बुध की राशि से ही जुड़ा हुआ है। बुध की पहली राशि होती है मिथुन, तो इस राशि की विशेषता क्या है, कैसे पता चलता है कि ये राशि वाले किस तरह से जीवन में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके साथ जुड़ी रहती हैं, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, अब ये जानते हैं कि बुध की जो पहली राशि है यानी मिथुन राशि, उसकी विशिष्टताएं क्या हैं। देखिए, बुध की जो पहली राशि है मिथुन, इस राशि के स्वामी हैं बुध। शनि यहां पर भाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है, यानी मिथुन राशि वालों के जीवन में भाग्य के बेटरमेंट के लिए शनि की भूमिका ज्यादा होती है। ये राशि आकर्षण की और बुद्धिमता की राशि मानी जाती है। मिथुन वाले अट्रैक्टिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। मिथुन राशि के लोग हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर देने वाले, चपल, थोड़े चंचल होते हैं और आकर्षक होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मिथुन वालों का आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति, अगर पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति और अगर स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति ज्यादा होता है। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है दुविधा और लापरवाही। ये बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते और अक्सर इनके लापरवाही और आलस्य की वजह से इनके बड़े मौके छूट जाते हैं। मिथुन वालों को जीवन की बाधाओं से बचने के लिए और जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपके जीवन में बाधाएं ज्यादा हैं तो हनुमान जी की उपासना करने से लाभ होगा और हर शनिवार की शाम को मिथुन वालों को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ और अब बारी आ जाती है कर्क सिंह और कन्या वालों की। जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको बताएंगे।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। धन खर्च बढ़ा रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना।

0: लोग बन रहे हैं, रिश्तों में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी के जरिए आप अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पंडित जी बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ।
0: जी आज का पहला प्रश्न हर्षिता जी ने हमें लिखा है और हर्षिता जी अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल सन 2001, जन्म का समय सुबह के 10 बजे, जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये कह रही हैं कि मैं भी ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया है, आगे मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे मेरा करियर बहुत अच्छा बन सके।

0: अगला प्रश्न निशा ने हमें लिखा है और निशा हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1984। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है मुंबई और मेल लिखती हैं बेंगलोर से। निशा कह रही हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहती हूं और बदल के मुंबई या मुंबई के आसपास जाना चाहती हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल सकती है और क्या मुंबई में जा करके नौकरी करना मेरे लिए बेहतर होगा? निशा, आपकी कुंडली के हिसाब से जन्म स्थान के निकट जाकर काम करना बेहतर नहीं होगा। हाँ, पुणे जाना चाहें, नासिक जाना चाहें, महाराष्ट्र में कहीं और जाकर नौकरी करना चाहें तो अच्छा है, लेकिन मुंबई जाकर मुंबई में रह करके अगर आप करियर बनाने की कोशिश करेंगी तो वो आपके लिए कठिन होगा। अक्टूबर 2026 के बाद आप नौकरी बदलने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाले समय में आप करियर में तरक्की भी कर पाएंगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, बुध की दूसरी राशि होती है कन्या। इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, इन तमाम जानकारियों को पंडित जी अब आपके साथ साझा करेंगे।
0: देखिए, बुध की दूसरी राशि है कन्या। क्या है इसकी विशेषताएं? कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं। कन्या राशि पर बुध का ही अधिकार है। ये राशि पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। उसमें पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी जो राशि है वो है कन्या। इस राशि में चालाकी बहुत होती है, वाक पटुता, बोलते अच्छा हैं और प्रबंधन, मैनेजमेंट करने के गुण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि कन्या राशि के लोग धन के मामले में भाग्यवान होते हैं, पैसे रुपए के मामले में किस्मत वाले होते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थ, सेल्फिशनेस होना। इनके अंदर स्वार्थ बहुत ज्यादा होता है। अपना फायदा उठाने के चक्कर में कोई भी कदम उठा लेते हैं। इस राशि के लोगों को सलाह लेकर एक ओपल या एक हीरा ये जरूर पहनना चाहिए। और इस राशि के लोग अगर नियमित रूप से प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़ें और बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से अभी पूछने हैं, बारी आती है राशिफल पर वापस आने की। तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है, विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, समस्याओं में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

0: शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, करियर में कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल ये है कि अगर आपकी राशि मिथुन है और जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो कौन से उपाय हैं जो आप सुझाएंगे?
0: देखिए, हो सकता है कि आपकी मिथुन राशि हो और मिथुन राशि आपकी है और जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से श्री हरि यानी भगवान विष्णु की उपासना करिए। हल्की सुगंध नियमित रूप से लगाते रहिए। गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा। जब भी मौका मिले गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइए और कोई ना कोई मंत्र जप अवश्य करिए। राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, नमः शिवाय, किसी न किसी नाम का जप निरंतर करते रहिएगा। और मिथुन राशि वाले याद रखें कि मंगलवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे।
1: चलिए पंडित जी से ये समझते हैं कि अगर किसी की राशि है कन्या और जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन से अचूक उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं? पंडित जी से जानते हैं।
0: अब हो सकता है कि आपकी राशि कन्या हो और कन्या राशि है और जीवन में समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा, एक साथ पूजा करिएगा। रोज स्नान करिएगा। स्नान करने पर और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। घर में गमले में या जमीन में थोड़ी सी दूर्वा लगा देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक कांसे का ब्रास का छल्ला सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनिएगा, आपको लाभ होगा।
1: चलिए और भी प्रश्न लेते हैं पंडित जी से आगे, लेकिन अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रिश्तों में आपके सुधार होगा। करियर में लापरवाही ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। करियर में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। और अब बारी आती है वापस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाने की। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है उसको आप इस शो में भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। तो पंडित जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
0: जी, अगला प्रश्न राम अवतार जी ने हमें लिखा है। राम अवतार जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1992। जन्म का समय दोपहर के 3:55। जन्म स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। राम अवतार जी पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राम अवतार जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह होने का समय शुरू हो रहा है। साल 2026 के अंत तक आते आते उनके विवाह की संभावना बन रही है। चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति है। तुरंत विवाह तय होगा और तुरंत विवाह हो जाएगा। जब भी इनका विवाह करें, कुंडली मिला लें, संतान वाले पक्ष पे ज्यादा विचार कर लें, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दें। 10 बार

0: को एक ओपल पहना बनवा करके इनको पहनाइए, और दूसरे नंबर पर इनको बोलिए कि ये रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए अब बारी आ गई है आज के इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल लेने की, तो पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान पंडित जी करने जा रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न सीमा जी ने हमें लिखा है, और सीमा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1978, सुबह के 10:05, जन्म स्थान है नासिक महाराष्ट्र। सीमा जी कह रही हैं कि मैं अपने घर से खाने पीने की चीज का काम करती हूं, लेकिन मेरा काम आजकल अच्छा नहीं चल रहा है पिछले 6 महीने से, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा काम बेहतर हो और भविष्य में मुझे सफलता मिले। सीमा जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए खाने पीने की चीज का व्यापार करना बिल्कुल अच्छा है और आप इसमें सफलता पाएंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से ज्यादा परेशान मत होइए। आने वाले समय में आपका काम काफी बढ़ेगा और घर से निकल करके मार्केट तक पहुंच जाएगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः। अगर ये उपाय आप निरंतर करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी एक और सवाल है आपसे, आपने जैसे बताया कि बुध की राशियों का शनि देव के साथ, शनि ग्रह के साथ संबंध होता है, तो किसी और ग्रह के साथ भी इसका संबंध हो सकता है, ऐसा कुछ हम देख पा रहे हैं?
0: जी देखिए, बुध की दो राशियां हैं ना, मिथुन और कन्या। शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथुन के लिए ज्यादा, कन्या के लिए कम, लेकिन बुध के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो शनि है मिथुन और कन्या वालों के जीवन में। एक और ग्रह है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे कहते हैं वीनस, यानी शुक्र। शुक्र जो है वो मिथुन राशि वालों को आर्टिस्टिकल बना देता है, कलाकार बना देता है, खूबसूरत ग्लैमराइज्ड कर देता है। लेकिन कन्या राशि में जब शुक्र बैठता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। कन्या राशि में शुक्र की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, तो अगर मिथुन में शुक्र बैठे तो कला, संगीत, सौंदर्य, ग्लैमर देगा, लेकिन अगर कन्या से शुक्र का कनेक्शन हो जाए तो वो वैवाहिक जीवन के लिए, लव रिलेशन के लिए, प्रेम के लिए अच्छा नहीं होता। यानी शुक्र भी यहां एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए जब आप मिथुन राशि के किसी व्यक्ति को देखें तो शुक्र कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी देखें, कन्या राशि वाले के जीवन में शुक्र कैसा बैठा हुआ है ये भी देखें, क्योंकि जरा भी शुक्र का संपर्क कन्या राशि से हुआ तो वो मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 28 मई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका गुड डे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिनका जन्मदिन 28 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में स्थिरता आती जाएगी, धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। इस साल में विवाह और संतान के मामले हल होंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह के समय कुंडली मिलाने में गुड़ मिलाना जरूरी है या कुंडली मिलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल गुड़ मिला के शादी कर देते हैं। देखिए, सामान्यतः लोग गुड़ मिला करके विवाह का निर्णय करते हैं, लेते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली साथ में रख करके दोनों का मिलान देखना चाहिए और कुंडली के साथ कुंडली मिल जाए, साथ में कम से कम 18 गुण भी मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन गुण मिले या ना मिले उसके लिए परेशान मत होइए, कुंडली का मिलान, कुंडली मिलना ज्यादा जरूरी है।
1: पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे 28 मई 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 28 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में, तो आज की गुडलक राशि कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, वो जानते हैं पंडित जी से।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुडलक राशि है कर्क। जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी की उपासना करना सबसे बेहतर होगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: चलिए, तमाम उपायों के बारे में और तमाम जानकारियां इस शो से जुड़ी ही पंडित जी ने आपको बता दी हैं। बारी आती है जिसका इंतजार आपको रहता है, वो है महा उपाय, यानी आज का खास उपाय। तो पंडित जी से ही जानते हैं, पंडित जी आज का खास उपाय क्या है।
0: जी, देखिए, आज के महा उपाय में आपको ये बताते हैं कि बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि मेरा छोटा बच्चा है, रात में चौंक करके उठ जाता है, रात में उठ के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, फिर देर तक सोता नहीं है, नींद में बार बार चौंक कर उठता है, क्या करना चाहिए। जिस तकिए पे सर रख कर बच्चा सोता है उस तकिए के कवर के अंदर 2 लौंग डाल दीजिए और इसको हर महीने में पुराने 2 लौंग को फेंक दीजिए और नया 2 लौंग डाल के रख दीजिए। बच्चे के गले में मंगलवार को सवेरे लाल धागे में एक छेद वाला तांबे का सिक्का पहना दीजिए। ये उपाय करने से काफी फर्क जल्दी पड़ेगा।
1: तो पंडित जी, ये महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
3: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
2: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
4: By the airport!
3: See dealer for details. Offer ends 6/126.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover...
6: tells me I just want to be big rock stars.
5: Interested in what's going on around the world?
7: I have no idea how this election is going to play out.
5: Or want to catch up on your team's live play-by-plays?
8: It's the Flyers!
5: It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: Good news today.

आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 3 हफ्तों से बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर साधना और कथावाचन के लिए भगवान बद्री विशाल के दर पर पहुंचे थे। बाबा ने पहले नारायण पर्वत पर एकांतवास और साधना की, फिर उन्होंने बद्री धाम में मौजूद हनुमान मंदिर में आराधना की। अब 21 दिनों की साधना और एकांतवास का संकल्प पूरा हो गया है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और एकांतवास के अपने अनुभवों को वो साझा भी कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से बाबा के अनुयायी उनकी साधना पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तप, जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित रखा। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बाबा बागेश्वर भी यहाँ पर तप और साधना के बाद बेहद खुश और आनंदित नजर आए। चलिए आपको बताते हैं बद्री धाम में कैसी रही बाबा बागेश्वर की ये तपस्या।

0: शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में कई तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। ये धरती का वही अनुपम स्थान माना जाता है जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने तपस्या के लिए चुना था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। इसी महात्म्य के चलते अनंत काल से सनातन परंपरा के कई साधु संत इस दिव्य स्थान पर तप और साधना के लिए आते रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी एकात्म्य साधना के लिए धरती का बैकुंठ कहलाने वाले इसी दिव्य स्थान को चुना। बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर साधना में लीन रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो भी -2 डिग्री से कम के तापमान पर।
1: ये जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहाँ पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहाँ पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहाँ ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहाँ ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों, और नारायण भगवान जो है जब नर नारायण के रूप में आए थे तो नारायण भगवान ने श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई।
0: अपनी 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। पहले 11 दिन उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले पहाड़ों के बीच नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में एकांतवास और कठोर तप किया। शेष 10 दिन धीरेंद्र शास्त्री ने प्राचीन खाप चौक हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विशेष आराधना की। 21 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में न किसी से मिले और न ही दर्शन दिए। अब 21 दिन बाद यहाँ आज से उनकी सत्य नारायण और हनुमान कथा का शुभारम्भ हो गया है। 21 दिनों की एकात्म साधना के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटों तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की। इस मुश्किल यात्रा के दौरान उन्हें कई अनोखे अनुभव हुए। नारायण पर्वत के साथ ही उन्होंने देवताल का भी दर्शन पूजन किया।
2: इन साधना के मध्य में बहुत अभूत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो हम कथा में सुनाएंगे, रोज एक एक दो दो अनुभव सुनाएंगे। हमने और महाराज जी ने मिलकर लगभग 13 घंटा पैदल चलकर नीलकंठ के किनारे से पूरे नारायण पर्वत की परिक्रमा की। ये भगवान की कृपा थी, बड़े अनुभव आए, मौत के मुंह से बच के आए। बड़ा कठिन था वो, लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, वो एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहां भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 शायद मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है चाइना बॉर्डर के किनारे, वहां पर भी देव तालाब में। तो रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे।
0: 21 दिनों की कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री वापस लौटे तो वे अपने भक्तों के बीच पहुँचे, जिन्हें देखकर उनका मन भी उत्साह से भर गया। बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा भक्तों के बीच पहुँचे तो उन्होंने शीश झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने उन्हें धन भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। गुफा से आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि 21 दिनों की इस तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई अपने इस भाव को बाबा बागेश्वर ने बड़े खास अंदाज में बताया।
2: बागेश्वर धाम की और पागलों की खूब याद आई, वो फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें।
0: हंसी मजाक के बीच भक्तों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम बताया।
2: जब तप के प्रभाव के कारण, साधना के प्रभाव के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ भगवान की कृपा के कारण यहाँ का यह 21 दिन का साधना का क्रम एकांतिक समय बहुत अभूतपूर्व रहा। 11 दिन की साधना एक यहाँ 300 मीटर की दूरी पर गुफा में पूर्ण हुई। उसके बाद में फिर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उस दिन खूब संतों का आना हुआ। फिर लगभग 10 दिन की साधना खाक चौक में हनुमान जी की सन्निधि में बैठ कर के की, वो भी अभूतपूर्व रही और अद्भुत अनुभव रहे। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और सभी बागेश्वर धाम के जितने लोग जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जुड़े, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उनके लिए यह साधना की भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी मंगलमयी हुई। और बीच में तो ऐसा लगा भाई जैसे संसार में हम ही भर अकेले बचे हों, पर अब सब भरा भरा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा, बहुत प्रसन्नता है और अच्छे से सब हो गया। उसके लिए हम आप सबको साधुवाद दे रहे हैं और जो तप का फल, साधना का फल मिला है, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा से राष्ट्र के काम आवे, इस देश के काम आवे, ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं।
0: आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुंचते हैं। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां बाबा बागेश्वर ने साधना की। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आते हैं, यहीं पर रुकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, लेकिन साधना पूरी होने के बाद आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की सत्यनारायण कथा का शुभारंभ हुआ है। बाबा बागेश्वर के दर्शन और कथा सुनने के लिए बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अपनी 21 दिनों की साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो अगले 5 दिनों तक चलने वाली कथा में भक्तों के साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कल बाबा बागेश्वर की ये साधना समाप्त हुई थी और नारायण पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद से ही वो लगातार कह रहे थे कि इस दौरान उन्हें कई ऐसे अनुभव हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे और वो 5 दिन की कथा के दौरान उन अनुभवों को श्रद्धालुओं के साथ साझा जरूर करेंगे। आज जब कथा का श्री गणेश हुआ तो बद्रीनाथ धाम में गुजरे पिछले 3 हफ्तों के अनुभव बाबा ने बेहद भावपूर्ण अंदाज में बांटे। पहले दिन की कथा के दौरान बाबा के भजनों और प्रवचन के बीच में भक्त भाव विभोर होकर नाचते झूमते हुए नजर आए।

0: हिमालय की गोद में 3 हफ्तों तक साधना कर लौटे पंडित धीरेंद्र शास्त्री का अलग ही रंग भक्तों को नजर आया।
1: एक माह लगभग यहाँ गुजारने के बाद हमें एक बात याद आई, पूछो तो बोलूं। तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी अकड़ ऐसी है कि सम्राटों को भी ठुकराया।
0: बताया जाता है कि बद्रीनाथ धाम की कथा श्री हरि विष्णु के कठोर तप और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के त्याग से जुड़ी है, वही कहानी जिसके फलस्वरूप हिमालय का ये भाग बद्रीनाथ कहलाया। बाबा बागेश्वर ने कथा की शुरुआत बद्रीनाथ धाम की उसी कहानी के साथ की।
1: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपोभूमि पर हम लोग बैठे।
0: कलयुग में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओद्री, यानी जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भी यहाँ आकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ।
1: तो यहाँ उड़ान का आनंद लेना, उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो, जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला ना चेली, न ठेला ना ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पो न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद, गुफा पत्थर हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़ आहा, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए, बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो, ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब, बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहाँ पर कम मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ।
0: बाबा बागेश्वर 21 दिनों की साधना पूरी करने के बाद कथा कर रहे हैं। उन्होंने साधना के बाद कहा था कि वो अपनी इन 21 दिनों के अनुभवों को कथा के दौरान भक्तों के साथ साझा करेंगे, सो उन्होंने साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा से

0: जुड़ी कई घटनाएं कथा के दौरान श्रद्धालुओं को सुनाई।
1: जो 21 दिन गुजरे बड़े प्यारे गुजरे, हमने और महाराज जी ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की, पूरे नारायण पर्वत की। वो दिन भी अलग थे, नारायण पर्वत की परिक्रमा की। एक दिन हम और महाराज जी 18,500 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गए, देवताल। देवताल में जहां आज भी देवता स्नान करने आते हैं, वहां पंचताल है, देवताल, नागताल, प्रेतताल, परीताल।
0: बाबा बागेश्वर की कथा में भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का भी रंग नजर आया। दरअसल बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में प्रवास और परिक्रमा के दौरान बाबा की मुलाकात भारतीय सेना और आईटीबीपी समेत सुरक्षा बलों के कई जवानों से हुई। बाबा ने बताया कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा का फर्ज निभाते हुए भी जाबाजों ने उनका बेहद सत्कार किया। इस बात से बाबा बागेश्वर गदगद नजर आए।
1: हमारे देश की आर्मी उस भयंकर माइनस डिग्री में, जहां थोड़ी देर बाहर खड़े हो तो नाक से खून गिरने लगता, इतनी ठंडी। वहां भारत की आर्मी को जब पता लगा इस रास्ते से हम जा रहे हैं, सबने इतना स्वागत किया। अपनी अपनी बटालियन में आईटीबीपी वाले, असम बटालियन वाले, हाथ पकड़ पकड़, चाय पी के जाओ, चाय पियो, चाय पियो, जब आने लगे जबरदस्ती जूस लो। उनको देखकर, उनके भारत के प्रति समर्पण तो हमने बहुत आर्मी वालों में देखा, पहली बार हमने भारतीयों के प्रति समर्पण आर्मी में देखा। और हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी तो आर्मी के प्रति बड़े समर्पित हैं, शहीदों को। उनको देखकर मन इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, पूछो मत। और कैसे 21 दिन बीत गए पता नहीं लगा।
0: कथा के दौरान हिमालय की वादियों के बीच गूंजते भजन एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास दे रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में लोग नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए।

0: पवित्र देव भूमि में बद्रीनाथ के दर्शन करना भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। चारों धामों में से एक इस पावन धाम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि चाहे आम भक्त हों, साधु संत हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर, जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जी एंटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और आइए आपको मिलवाते एक नन्हे हाथी से जिसकी अटखेलियां आपका दिल चुरा लेंगी। जमशेदपुर के दलमा के जंगलों में रहने वाले इस हाथी का नाम बादल है। बादल करीब 6 महीने का है और इस छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल से इसका गहरा लगाव हो गया है। बादल को यूं फुटबॉल खेलते देख सैलानी भी काफी खुश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बादल अब इस जंगल का नया आकर्षण बन चुका है।
3: कभी सूखी जमीन पर फुटबॉल से खेल तो कभी पानी में फुटबॉल से मस्ती, मतलब ये कि जगह कोई भी हो, फुटबॉल से इस नन्हे गजराज का लगाव कम नहीं हो रहा। जमशेदपुर से सटे दलमा वन अभयारण्य में आकर्षण का नया केंद्र है बादल। दलमा के जंगलों में खेलता कूदता 6 महीने का नन्हा गजराज सबका चहेता बन गया है। पर्यटकों के लिए भी बादल को यूं खेलते देखना काफी लुभा रहा है।
4: ऐसे सर मतलब दो दफा खेलते हैं सर, सुबह और शाम। इसमें जब पिला करके जब हम खिलाते हैं ना सर, तो फुटबॉल अच्छा 10 से 15 मिनट तक मन खेल लेता है सर प्रतिदिन, और देखते हैं कोशिश करके मन और खिलाने का है। अभी तो मैंने मूड में है नहीं, एक बार खेल चुके हैं सर।
5: मजा आता है,
4: बहुत बहुत मजा आता है सर। मुंह में लेकर के ऊपर में जैसे आदमी लोग खेलता है उसी प्रकार मैंने खेल लेता है बादल। दो गो बॉल लाए हैं और इसको खेल सिखा रहे हैं। बैठाने का भी मैंने खेल सिखाए, दो पैर में एक ठो मैंने वहाँ नल है, वहाँ छोटा सा मैंने जगह है, उसमें सरकस जैसे खिलाता है उस प्रकार भी खड़ा हो जाता है।
3: करीब 6 महीने पहले बादल को घायल और बेहद गंभीर स्थिति में यहां लाया गया था। वनकर्मी रवि ने बादल को भरपूर प्यार दिया, दिन रात सेवा की, एक नया जीवन दिया। अब ये नन्हा हाथी न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य की शान बन चुका है। इसकी अटखेलियां लोगों को लुभाती हैं, तो इसे फुटबॉल खेलता देख सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। ऐसे में देश भर के चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की कोशिश की जा रही है।
3: धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
6: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
3: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
6: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4000 के आसपास है।
3: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान

0: पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका पत्थर। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड, वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक, त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
3: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरें ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई है। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: पश्चिम बंगाल का बताकर एक रोते बिलखते आदमी का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिला और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान का है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद से अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। इस वीडियो को भी इसी संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब वन विभाग और सरकारी जमीन पर बसे थे। वीडियो में पीछे देखिए, एक व्यक्ति तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जर्सी में खड़ा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते हुए और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये हमें बांग्ला लगा। इससे स्पष्ट रूप से बांग्ला सुनाई पड़ रहा है, मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद हमें वीडियो के एक फ्रेम में खान वस्त्र नाम की एक दुकान नजर आती है। बांग्ला में दुकान का पता लिखा है बांग्लादेश। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर दुकानें बांग्लादेश की कैसी हो सकती है? ये थोड़ा अटपटा लगा। बंगाल का वीडियो होने पर यहाँ दुकानों के पते पर पश्चिम बंगाल का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन पूरे वीडियो में हमें पश्चिम बंगाल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हमने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे बंगाल से जुड़ते हुए कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसका फैक्ट चेक लगातार किया गया है। हमारी जांच में सारे दावे झूठे साबित हुए, लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि ये वायरल वीडियो आखिर कब का और कहां का है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो के पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के माइक को साफ साफ देखा जा सकता है। सर्च के दौरान बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के फेसबुक पेज पर इस घटना का पूरा लाइव वीडियो मिला। 20 मई के इस लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के मीरपुर की है, जहां प्रशासन ने बोनियाबाद स्लम इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई थी। इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल वीडियो में दिख रहे लोग भी नजर आते हैं। करीब 10 मिनट की इस रिपोर्ट में 6 मिनट के बाद वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है, जहां वही रोता हुआ आदमी और बच्चे दिखाई देते हैं। 20 मई को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए ये कार्रवाई की थी। इस दौरान स्थानीय लोगों के हमले में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। ये बांग्लादेश के मीरपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सड़क पर नारे लगाते मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: किसी सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगाते मुस्लिमों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इसे केरलम का बताकर दावा कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद इन मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, केरलम में मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनने की घोषणा के बाद भड़काऊ बयानबाजी तेज। हिंदुओं के नाम लेकर काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले दावे की सच्चाई के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो केरलम का है और वहां एक बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ है दिख रहा है तो कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट और केरलम के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी सर्च किया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती हुई कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ और हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सही है तो वायरल हो रहा वीडियो केरलम के किस हिस्से का है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं किसी और घटना से संबंधित किसी दूसरी जगह से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 28 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर पर संपर्क करने पर हमारी बात सैयद सिफात अली से हुई। उन्होंने बताया कि ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का है और उन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये भीड़ जायरीन के एक जत्थे की है जो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शन करने और चादर चढ़ाने आए थे। जायरीन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों खासतौर पर सूफी संतों की दरगाहों या मजारों की यात्रा करने जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो केरल का नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर का है। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में लगते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
5: आजम के जंगलों से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर भूरे रंग में दिखने वाला हॉग डियर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग में घूमता नजर आया। इस बेहद दुर्लभ नजारे का वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काजीरंगा के हरे भरे घास के मैदान के बीच एक सफेद रंग का हिरण दूर से ही चमक रहा है। ये कोई नई प्रजाति नहीं बल्कि ये सामान्य हॉग हिरण है। जाहिर है कि अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सफेद क्यों है। दरअसल ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। इसमें शरीर के रंग तय करने वाला पिगमेंट यानी कि मेलानिन नहीं होता जिससे त्वचा और बाल पूरी तरह से सफेद या फिर हल्के हो जाते हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर और मोर का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो किसी घर के आंगन का नजर आ रहा है। एक चारपाई पर बंदर आराम से बैठा नजर आता है। वहीं पास में एक सुंदर मोर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी बंदर को अचानक से शरारत सूझ जाती है। फिर फ्रेम में गजब का सीन कैद हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर अचानक चारपाई से छलांग लगाता है और सीधे मोर की पीठ पर चढ़ जाता है। खुद पर अचानक बंदर को बैठा देख मोर घबरा जाता है और फिर तेजी से फड़फड़ाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। कुछ सेकंड तक ये मजेदार नजारा चलता रहता है। बंदर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है मानो वो किसी सवारी का मजा ले रहा हो। वहीं मोर लगातार इधर उधर भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
6: अरे बीमार है, बुजुर्ग है, तब तो थोड़ा सा दिल पसीजना चाहिए कि हर जगह पुलिस ही आएगा। इस काम के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए तो आप सभी लोग मिलकर इसको कर सकते हो, और थोड़ा थोड़ा करोगे तो पक्का सबको जगह मिल जाएगा।
5: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को ट्रेन के अंदर सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद पुलिस वाले ने जो किया उससे लोगों को बड़ी सीख मिली। दरअसल ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग काफी देर से भीड़ में खड़े थे, लेकिन कुछ तंदुरुस्त युवक सीट पर आराम से फैले बैठे थे। तभी वहाँ मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी संतोष की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने बिना किसी बहस के युवक को प्यार से थोड़ा खिसकाया और बुजुर्ग को इज्जत के साथ बैठने के लिए जगह दिलाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीका के हरजावे कबीले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तरी तंजानिया के जंगलों में रहने वाले इस कबीले के लोगों को जब पहली बार शीशे में अपना चेहरा दिखाई दिया तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हंस पड़ा। कुछ लोग तो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे दुश्मन समझ लिया और पत्थर फेंक कर हमला कर दिया। दरअसल हरजावे अफ्रीका का सबसे पुराना और अंतिम शिकारी समुदायों में से एक है। ये लोग आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में तीर कमान और पत्थरों के सहारे शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत ही कम रहा है, इसीलिए शीशे जैसी आम वस्तु भी उनके लिए अनजानी थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब एक व्यक्ति को शीशा दिखाया गया तो वो पहले तो घबरा गया, फिर उसने अपना चेहरा देखा और हैरानी से पीछे हट गया। कुछ लोगों ने इसे किसी दूसरे इंसान की छवि समझा और हमला करने की कोशिश की। एक व्यक्ति तो पत्थर उठाकर शीशे पर फेंकने ही वाला था। बाद में जब समझ में आया कि ये उसका अपना ही चेहरा है, तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में शादी का खूबसूरत माहौल नजर आता है। मंडप पूरी तरह से सजा हुआ और दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप पर वरमाला पहने साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, जैसी वीडियो में लग रही थी वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही।
7: आपने फोन में जो फोटो भेजाई थी वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती।
5: दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन भी मुस्कुरा पड़ी और जवाब देते हुए दूल्हे से पूछती है, तो अब क्या करोगे आप?
8: तो अब क्या करेंगे आप?
7: मैं केस करूंगा कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है।
5: इस पर दूल्हा हंसते हुए कहता है, केस करूंगा। इतना सुनते ही मंडप में मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं। दूल्हा दुल्हन की प्यारी सी नोकझोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग भी इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए आप घर से बाहर निकले और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाए और कपड़े खराब होने का डर सताने लगे। ऐसे में ज्यादातर लोग छाता या फिर रबड़ की चप्पल का सहारा ही लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा अनोखा जुगाड़ निकाला कि लोग देखते ही रह गए। रबड़ की चप्पलों की जगह उसने पैरों में ईंट जैसी ऊंची चप्पल पहन ली। अब ये देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बेहद अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में एक शख्स चलती गाड़ियों के बीच एक बेड चलाता हुआ नजर आता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस बेड पर गद्दा और तकिया भी रखा हुआ है और शख्स आराम से उस पर लेटा हुआ है। आसपास कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन सड़क के बीच चलता ये बेड हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जो भी इस नजारे को देख रहा है वो कुछ पल के लिए रुककर इसे जरूर निहारता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑटो रिक्शा ने सबको हैरान कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है या फिर चलता फिरता घर। इस ऑटो में वॉश बेसिन, नल, आईना, शीशा और घरेलू सामान तक लगा हुआ है। वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक सवार सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने ये खास ऑटो आया। ऑटो के अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ था जिसमें नल से पानी भी निकलता है। बेसिन के ऊपर आईना लगा है ताकि यात्री बैठे बैठे अपना चेहरा भी देख सके और हाथ मुंह धो सके। गर्मी के मौसम में यात्री अक्सर पसीने से तरबतर होते हैं, ऐसे में ये सुविधा उन्हें तरोताजा रखती है। ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को खास तरीके से मॉडिफाई करवाया है। उन्होंने बताया कि पहले वो सामान्य ऑटो चलाते थे, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बदलाव कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये डांस खूब तेजी से वायरल हो रहा और तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट की पब्लिक अपनी नजरें नहीं हटा पा रही। वायरल क्लिप में पीले सूट वाली एक लड़की ने हरियाणवी गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। लड़की के गजब की एक्सप्रेशन, कमाल की एनर्जी और मूव्स ने नेटिजंस का दिल जीत लिया।

0: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: वृंदावन के प्रसिद्ध माके बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रतिनिधियों में चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी और कहा है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्ट ने शयन भोग सेवायत परंपरा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी जबकि राजभोग सेवायत परंपरा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी को समिति का सदस्य बनाया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद वृंदावन का गोस्वामी समुदाय बहुत खुश है।

0: देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी में बड़ा बदलाव किया तो गोस्वामी समाज से जुड़े इन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मंदिर की हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन में अब प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस समिति में समाज की आवाज होंगे।
1: जी बात है, उच्चतम न्यायालय ने आज ठाकुर जी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिससे गोस्वामियों के हृदय में एक बहुत उल्लास और हर्ष की स्थिति है। विगत जब से उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, निरंतर मनमानी और निरंकुश मनमानी अपनी सब आदतें मंदिर के ऊपर थोपे जा रही थी जो गोस्वामियों के और बिहारी जी के मर्यादा के प्रतिकूल थी। निरंतर ऐसी अवहेलना गोस्वामी समाज और भक्तगण निरंतर सहते चले आ रहे थे। आज इसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, इससे बड़ी हर्ष की और बड़ी उल्लास की लहर गोस्वामी समाज में और भक्त समाज में।
2: गोस्वामियों को अपने ठाकुर पे विश्वास था क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन है और बिहारी जी को चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है और गोस्वामियों की तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिहारी जी है। उन्होंने अपने श्री बिहारी जी को नहीं छोड़ा और उनके भजन में लीन रहे क्योंकि जितना भी इन लोगों ने कर सकते थे इन्होंने किया। आज ठाकुर जी ने उसी की लाज रखी है।
3: ये ठाकुर जी की जीत है, समस्त ब्रजवासियों की जीत है, हमारी क्या जीत है।
0: दरअसल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के चार प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस समिति का मकसद मंदिर में दर्शन व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना था, लेकिन आरोप है कि समिति के अधिकारियों ने अपनी पसंद से गोस्वामी प्रतिनिधियों का चयन कर लिया था जिसका गोस्वामी समाज ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
4: रिट पिटिशन थी जो हमने फाइल करी थी क्योंकि जिस कमिटी का गठन हुआ था उस कमिटी के द्वारा कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करे गए थे जो कि डायरेक्टली रिचुअल्स को अफेक्ट कर रहे थे टेंपल के, और जो कमिटी ने जिन चार लोगों को चुना था, गोस्वामियों को चुना था कमिटी में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हमारा ये कहना था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बड़े जो गोस्वामी समूह ने, जो गोस्वामी में दो ग्रुप्स हैं, एक शयनभोग एक राजभोग, जो उन लोगों ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है। तो इसकी मेन मांग थी हमारी रिट पिटिशन।
0: गोस्वामी समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने तीन पुराने सेवायत सदस्यों को हटाकर उनकी जगह पर नए सदस्य शामिल किए। राजभोग सेवा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी, जबकि शयनभोग सेवा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के विकास के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाजनक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए विकास जरूरी है, लेकिन गोस्वामी समाज के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
4: 208 लोगों ने और जो 280 लोगों का ग्रुप है शयनभोग से और कुछ 67 लोगों का ग्रुप है राजभोग से, उसमें से 280 में से 208 उसमें शामिल हुए थे और उसमें से जो 67 उसमें से भी कुछ 50 लोग थे जिन लोगों ने कमिटी में चार लोगों का चयन करा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और जो पहले गोस्वामी थे उस कमिटी के उनको रिप्लेस करके इन चारों को उस कमेटी में आने का आदेश दिया है। दूसरी चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करी है कि कोई भी इंटरनल रिचुअल्स को ना टच करा जाए कमेटी के द्वारा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल हमने अप्रोच आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि कई रिचुअल है जैसे कि टाइम चेंज टेम्पल का नहीं हो सकता। ये हमने ये भी रिक्वेस्ट करी कि ये एक अनऑल्टर्ड एक ट्रेडिशन है जो सालों से चला आ रहा है, और अगर आप 6 बजे की जगह आप बोलते हो कि 5:30 बजे मंदिर खोल दो तो उसमें जो 6 से 5:30 के बीच में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो भी उनका टाइम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो ऑर्डर पास हुआ इससे एक राहत है कि गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो कमिटी में है और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि एसेंशियल रिचुअल्स को अफेक्ट करेगा उस पर कमिटी की फिर से मीटिंग होगी इंक्लूडिंग द न्यू गोस्वामीज एंड देन दे विल डिसाइड अगेन अफ्रेश। इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये भी रखा गया कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये कमेटी बनी थी जो मेन रीजन था वो था क्राउड मैनेजमेंट, पर अभी जो हो रहा है वो ये है कि बैरिकेड्स तो बन गए मंदिर के अंदर पर हमने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स प्रेजेंट की थी कि मंदिर के बाहर का रश बहुत बुरी तरह से बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कमिटी को कि उनको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीजें गौर में रखना चाहिए, कुछ डिजिटल और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए टेम्पल और टेम्पल के जो आसपास के एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है।
0: हाई पावर कमेटी ये डेवलपमेंट प्लान गोस्वामी समाज और स्थानीय लोगों के सुझाव को सुनकर तैयार करेगी और इसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा।
5: सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसके साथ ही ये भी कि अब तक गोस्वामी समाज का ये आरोप था, ये कहना था कि जो कमेटी है कमेटी को बाहरी इंतजाम के लिए नियुक्त किया है, जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कमेटी की दिलचस्पी और उनका इंटरेस्ट आंतरिक मामलों को लेकर ज्यादा है, पूजा प्रक्रिया और सेवा की प्रक्रिया को लेकर ज्यादा है, ना कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके इंतजाम करने के लिए। आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी जिम्मेदारी बाहर की चीजों के पर ध्यान देने की है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कैमरामैन रविकांत होतावार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका पत्थर। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव, आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड, वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक, त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 3 हफ्तों से बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर साधना और कथा वाचन के लिए भगवान बद्री विशाल के दर पर पहुंचे थे। बाबा ने पहले नारायण पर्वत पर एकांतवास और साधना की, फिर उन्होंने बद्री धाम में मौजूद हनुमान मंदिर में आराधना की। अब 21 दिनों की साधना और एकांतवास का संकल्प पूरा हो गया है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और एकांतवास के अपने अनुभवों को वो साझा भी कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से बाबा के अनुयायी उनकी साधना पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तप, जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित रखा। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बाबा बागेश्वर भी यहाँ पर तप और साधना के बाद बेहद खुश और आनंदित नजर आए। चलिए आपको बताते हैं बद्री धाम में कैसी रही बाबा बागेश्वर की ये तपस्या।

0: शास्त्रों में कहा गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कई तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। ये धरती का वही अनुपम स्थान माना जाता है जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने तपस्या के लिए चुना था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। इसी महात्म्य के चलते अनंत काल से सनातन परंपरा के कई साधु संत इस दिव्य स्थान पर तप और साधना के लिए आते रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी एकात्म्य साधना के लिए धरती का बैकुंठ कहलाने वाले इसी दिव्य स्थान को चुना। बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर साधना में लीन रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो भी -2 डिग्री से कम के तापमान पर।
1: ये जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहां पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहां पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहां ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहां ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो, और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों, और नारायण भगवान जो है जब नर नारायण के रूप में आए थे तो नारायण भगवान ने श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई।
0: अपनी 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। पहले 11 दिन उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले पहाड़ों के बीच नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में एकांतवास और कठोर तप किया। शेष 10 दिन धीरेंद्र शास्त्री ने प्राचीन खाप चौक हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विशेष आराधना की। 21 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में न किसी से मिले और न ही दर्शन दिए। अब 21 दिन बाद यहाँ आज से उनकी सत्य नारायण और हनुमान कथा का शुभारम्भ हो गया है। 21 दिनों की एकात्म साधना के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटों तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की। इस मुश्किल यात्रा के दौरान उन्हें कई अनोखे अनुभव हुए। नारायण पर्वत के साथ ही उन्होंने देवताल का भी दर्शन पूजन किया।
2: इन साधना के मध्य में बहुत अभूत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो हम कथा में सुनाएंगे, रोज एक एक दो दो अनुभव सुनाएंगे। हमने और महाराज जी ने मिलकर लगभग 13 घंटा पैदल चलकर नीलकंठ के किनारे से पूरे नारायण पर्वत की परिक्रमा की। ये भगवान की कृपा थी, बड़े अनुभव आए, मौत के मुंह से बच के आए। बड़ा कठिन था वो, लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहां भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है चाइना बॉर्डर के किनारे, वहां पर भी देवतालाब में। तो रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे।
0: 21 दिनों की कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री वापस लौटे तो वे अपने भक्तों के बीच पहुँचे, जिन्हें देखकर उनका मन भी उत्साह से भर गया। बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा भक्तों के बीच पहुँचे तो उन्होंने शीश झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने उन्हें धन, भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। गुफा से आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि 21 दिनों की इस तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई। अपने इस भाव को बाबा बागेश्वर ने बड़े खास अंदाज में बताया।
2: बागेश्वर धाम की और पागलों की खूब याद आई, वो फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें।
0: हंसी मजाक के बीच भक्तों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम बताया।
2: जब तप के प्रभाव के कारण, साधना के प्रभाव के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ भगवान की कृपा के कारण यहाँ का यह 21 दिन का साधना का क्रम एकांतिक समय बहुत अभूतपूर्व रहा। 11 दिन की साधना एक यहाँ 300 मीटर की दूरी पर गुफा में पूर्ण हुई, उसके बाद में फिर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उस दिन खूब संतों का आना हुआ। फिर लगभग 10 दिन की साधना खाक चौक में हनुमान जी की सन्निधि में बैठ कर के की, वो भी अभूतपूर्व रही और अद्भुत अनुभव रहे। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और सभी बागेश्वर धाम के जितने लोग जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जुड़े, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उनके लिए यह साधना की भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी मंगलमय हुई। और बीच में तो ऐसा लगा भाई जैसे संसार में हम ही भर अकेले बचे हों, पर अब सब भरा भरा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा, बहुत प्रसन्नता है और अच्छे से सब हो गया। उसके लिए हम आप सबको साधुवाद दे रहे हैं और जो तप का फल, साधना का फल मिला है, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा से राष्ट्र के काम आवे, इस देश के काम आवे, ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं।
0: आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुंचते हैं। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां बाबा बागेश्वर ने साधना की। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आते हैं, यहीं पर रुकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, लेकिन साधना पूरी होने के बाद आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की सत्यनारायण कथा का शुभारंभ हुआ है। बाबा बागेश्वर के दर्शन और कथा सुनने के लिए बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अपनी 21 दिनों की साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो अगले 5 दिनों तक चलने वाली कथा में भक्तों के साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कल बाबा बागेश्वर की ये साधना समाप्त हुई थी और नारायण पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद से ही वो लगातार कह रहे थे कि इस दौरान उन्हें कई ऐसे अनुभव हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे और वो 5 दिन की कथा के दौरान उन अनुभवों को श्रद्धालुओं के साथ साझा जरूर करेंगे। आज जब कथा का श्री गणेश हुआ तो बद्रीनाथ धाम में गुजरे पिछले 3 हफ्तों के अनुभव बाबा ने बेहद भावपूर्ण अंदाज में बांटे। पहले दिन की कथा के दौरान बाबा के भजनों और प्रवचन के बीच में भक्त भाव विभोर होकर नाचते झूमते हुए नजर आए।

बद्री विशाल के द्वार बालाजी की जयकार हो रही है। 21 दिन की साधना और ध्यान लगाने के बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की कथा का श्री गणेश हो चुका है। यूं तो साल के कई महीने बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं से यूं ही गुलजार रहता है, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के चलते आज सुबह से ही यहाँ भक्तों का सैलाब सा उमड़ा हुआ था। बद्री विशाल के दर्शन की कामना लेकर पावन धाम पहुंचे भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर पर बाबा बागेश्वर से मुलाकात सुखद आश्चर्य की तरह था। यही वजह रही कि बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने और उनकी कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा की शुरुआत से पहले बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गयी। धाम में मौजूद श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर कथा स्थल पर पहुंचे। व्यास गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर का अलग ही रूप नजर आया। अपनी कथाओं से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद नारायण की इस पावन भूमि पर आकर बेहद खुश दिखे। आखिरकार दोपहर 2 बजे के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही सारा प्रांगण भगवान बद्री

0: हिमालय की गोद में 3 हफ्तों तक साधना कर लौटे पंडित धीरेंद्र शास्त्री का अलग ही रंग भक्तों को नजर आया।
1: एक माह लगभग यहाँ गुजारने के बाद हमें एक बात याद आई, पूछो तो बोलूं। तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी अकड़ ऐसी है कि सम्राटों को भी ठुकराया है।
0: बताया जाता है कि बद्रीनाथ धाम की कथा श्री हरि विष्णु के कठोर तप और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के त्याग से जुड़ी है, वही कहानी जिसके फलस्वरूप हिमालय का ये भाग बद्रीनाथ कहलाया। बाबा बागेश्वर ने कथा की शुरुआत बद्रीनाथ धाम की उसी कहानी के साथ की।
1: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपो भूमि पर हम लोग बैठे हैं।
0: कलयुग में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओद्री, यानी जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भी यहाँ आकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ।
1: तो यहाँ उड़ान का आनंद लेना, तो उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो, जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला ना चेली, न ठेला ना ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पो न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद, गुफा पत्थर हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़, आहा बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए, बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो, ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब, बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहाँ पर कम मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ।
0: बाबा बागेश्वर 21 दिनों की साधना पूरी करने के बाद कथा कर रहे हैं। उन्होंने साधना के बाद कहा था कि वो अपनी इन 21 दिनों के अनुभवों को कथा के दौरान भक्तों के साथ साझा करेंगे, सो उन्होंने साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा से जुड़ी कई घटनाएं कथा के दौरान श्रद्धालुओं को सुनाई।
1: जो 21 दिन गुजरे बड़े प्यारे गुजरे, हमने और महाराज जी ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की,

0: पूरे नारायण पर्वत की। वो दिन भी अलग थे, नारायण पर्वत की परिक्रमा की। एक दिन हमर महाराज जी 18,500 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गए। देवताल, देवताल में जहां आज भी देवता स्नान करने आते हैं, वहां पंचताल है, देवताल, नागताल, प्रेतताल, परीताल।
1: बाबा बागेश्वर की कथा में भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का भी रंग नजर आया। दरअसल बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में प्रवास और परिक्रमा के दौरान बाबा की मुलाकात भारतीय सेना और आईटीबीपी समेत सुरक्षा बलों के कई जवानों से हुई। बाबा ने बताया कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा का फर्ज निभाते हुए भी जाबाजों ने उनका बेहद सत्कार किया। इस बात से बाबा बागेश्वर गदगद नजर आए।
0: हमारे देश की आर्मी उस भयंकर माइनस डिग्री में, जहां थोड़ी देर बाहर खड़े हो तो नाक से खून गिरने लगता, इतनी ठंडी। वहां भारत की आर्मी को जब पता लगा इस रास्ते से हम जा रहे, सब ने इतना स्वागत किया। अपनी अपनी बटालियन में आईटीबीपी वाले, असम बटालियन वाले, हाथ पकड़ पकड़, चाय पी के जाओ, चाय पियो, चाय पियो, जब आने लगे जबरदस्ती जूस लो। उनको देखकर, उनके भारत, भारत के प्रति समर्पण तो हमने बहुत आर्मी वालों में देखा, पहली बार हमने भारतीयों के प्रति समर्पण आर्मी में देखा। और हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी तो आर्मी के प्रति बड़े समर्पित हैं, शहीदों को। उनको देखकर मन इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, पूछो मत। और कैसे 21 दिन बीत गए पता नहीं लगा।
1: कथा के दौरान हिमालय की वादियों के बीच गूंजते भजन एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास दे रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में लोग नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए।

0: पवित्र देव भूमि में बद्रीनाथ के दर्शन करना भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। चारों धामों में से एक इस पावन धाम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि चाहे आम भक्त हों, साधु संत हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर, जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और आइए आपको मिलवाते एक नन्हे हाथी से जिसकी अटखेलियां आपका दिल चुरा लेंगी। जमशेदपुर के दलमा के जंगलों में रहने वाले इस हाथी का नाम बादल है। बादल करीब 6 महीने का है और इस छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल से इसका गहरा लगाव हो गया है। बादल को यूं फुटबॉल खेलते देख सैलानी भी काफी खुश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बादल अब इस जंगल का नया आकर्षण बन चुका है।
3: कभी सूखी जमीन पर फुटबॉल से खेल तो कभी पानी में फुटबॉल से मस्ती, मतलब ये कि जगह कोई भी हो, फुटबॉल से इस नन्हे गजराज का लगाव कम नहीं हो रहा। जमशेदपुर से सटे दलमा वन अभ्यारण्य में आकर्षण का नया केंद्र है बादल। दलमा के जंगलों में खेलता कूदता 6 महीने का नन्हा गजराज सबका चहेता बन गया है। पर्यटकों के लिए भी बादल को यूं खेलते देखना काफी लुभा रहा है।
4: ऐसे सर मतलब दो दफा खेलते हैं सर, सुबह और शाम। इसमें जो पिला करके जो हम खिलाते हैं ना सर, तो फुटबॉल अच्छा 10 से 15 मिनट तक मतलब खेल लेता है सर प्रतिदिन, और देखते हैं कोशिश करके मैंने और खिलाने का है। अभी तो मैंने मूड में है नहीं, एक बार खेल चुके हैं सर।
5: मजा आता है?
4: हाँ, बहुत बहुत मजा आता है सर। मुंह में लेकर के ऊपर में जैसे आदमी लोग खेलता है उसी प्रकार मैंने खेल लेता है बादल। दो गो बॉल लाए हैं और इसको खेल सिखा रहे हैं। बैठाने का भी मैंने खेल सिखा, दो पैर में एक ठो मैंने वहाँ नल है, वहाँ छोटा सा मैंने जगह है, उसमें सरकस जैसे खिलाता है उस प्रकार भी खड़ा हो जाता है।
3: करीब 6 महीने पहले बादल को घायल और बेहद गंभीर स्थिति में यहां लाया गया था। वनकर्मी रवि ने बादल को भरपूर प्यार दिया, दिन रात सेवा की, एक नया जीवन दिया। अब ये नन्हा हाथी न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य की शान बन चुका है। इसकी अटखेलियां लोगों को लुभाती हैं, तो इसे फुटबॉल खेलता देख सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। ऐसे में देश भर के चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की कोशिश की जा रही है।
3: धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
6: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
3: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
7: Thank God I get to wake.
0: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक। त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरें ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई है। क्या है इसी पर एक वीडियो खूब तेजी से दी गई है, क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: पश्चिम बंगाल का बताकर एक रोते बिलखते आदमी का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान का है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद से अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। इस वीडियो को भी इसी संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब वन विभाग और सरकारी जमीन पर बसे थे। वीडियो में पीछे देखिए, एक व्यक्ति तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जर्सी में खड़ा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते हुए और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो यह हमें बांग्ला लगा। इससे स्पष्ट रूप से बांग्ला सुनाई पड़ रहा है, मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद हमें वीडियो के एक फ्रेम में खान वस्त्र नाम की एक दुकान नजर आती है। बांग्ला में दुकान का पता लिखा है बांग्लादेश। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर दुकानें बांग्लादेश की कैसी हो सकती है? ये थोड़ा अटपटा लगा। बंगाल का वीडियो होने पर यहाँ दुकानों के पते पर पश्चिम बंगाल का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन पूरे वीडियो में हमें पश्चिम बंगाल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हमने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे बंगाल से जुड़ते हुए कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसका फैक्ट चेक लगातार किया गया है। हमारी जांच में सारे दावे झूठे साबित हुए, लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि ये वायरल वीडियो आखिर कब का और कहां का है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। यह भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो के पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के माइक को साफ साफ देखा जा सकता है। सर्च के दौरान बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के फेसबुक पेज पर इस घटना का पूरा लाइव वीडियो मिला। 20 मई के इस लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के मीरपुर की है, जहां प्रशासन ने बोनियाबाद स्लम इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई थी। इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल वीडियो में दिख रहे लोग भी नजर आते हैं। करीब 10 मिनट की इस रिपोर्ट में 6 मिनट के बाद वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है, जहां वही रोता हुआ आदमी और बच्चे दिखाई देते हैं। 20 मई को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए ये कार्रवाई की थी। इस दौरान स्थानीय लोगों के हमले में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। ये बांग्लादेश के मीरपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सड़क पर नारे लगाते मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। किसी सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगाते मुस्लिमों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इसे केरलम का बताकर दावा कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद इन मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा,
2: केरलम में मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनने की घोषणा के बाद भड़काऊ बयानबाजी तेज। हिंदुओं के नाम लेकर काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले दावे की सच्चाई के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो केरलम का है और वहां एक बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ है दिख रहा है तो कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट और केरलम के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी सर्च किया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती हुई कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ और हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सही है तो वायरल हो रहा वीडियो केरलम के किस हिस्से का है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं किसी और घटना से संबंधित किसी दूसरी जगह से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 28 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर पर संपर्क करने पर हमारी बात सैयद सिफात अली से हुई। उन्होंने बताया कि ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का है और उन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये भीड़ जायरीन के एक जत्थे की है जो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शन करने और चादर चढ़ाने आए थे। जायरीन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों खासतौर पर सूफी संतों की दरगाहों या मजारों की यात्रा करने जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो केरल का नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर का है। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में लगते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
5: आजम के जंगलों से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर भूरे रंग में दिखने वाला हॉग डियर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग में घूमता नजर आया। इस बेहद दुर्लभ नजारे का वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काजीरंगा के हरे भरे घास के मैदान के बीच एक सफेद रंग का हिरण दूर से ही चमक रहा है। ये कोई नई प्रजाति नहीं बल्कि ये सामान्य हॉग हिरण है। जाहिर है कि अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सफेद क्यों है। दरअसल ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। इसमें शरीर के रंग तय करने वाला पिगमेंट यानी कि मेलानिन नहीं होता, जिससे त्वचा और बाल पूरी तरह से सफेद या फिर हल्के हो जाते हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर और मोर का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो किसी घर के आंगन का नजर आ रहा है। एक चारपाई पर बंदर आराम से बैठा नजर आता है, वहीं पास में एक सुंदर मोर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी बंदर को अचानक से शरारत सूझ जाती है। फिर फ्रेम में गजब का सीन कैद हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर अचानक चारपाई से छलांग लगाता है और सीधे मोर की पीठ पर चढ़ जाता है। खुद पर अचानक बंदर को बैठा देख मोर घबरा जाता है और फिर तेजी से फड़फड़ाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। कुछ सेकंड तक ये मजेदार नजारा चलता रहता है। बंदर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है मानो वो किसी सवारी का मजा ले रहा हो। वहीं मोर लगातार इधर उधर भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
6: अरे बीमार है बुजुर्ग है तब तो थोड़ा सा दिल पसीजना चाहिए कि हर जगह पुलिस ही आएगा। इस काम के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए तो आप सभी लोग मिलके इसको कर सकते हो, और थोड़ा थोड़ा करोगे तो पक्का सबको जगह मिल जाएगा।
5: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग को ट्रेन के अंदर सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद पुलिस वाले ने जो किया उससे लोगों को बड़ी सीख मिली। दरअसल ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग काफी देर से भीड़ में खड़े थे, लेकिन कुछ तंदुरुस्त युवक सीट पर आराम से फैले बैठे थे। तभी वहाँ मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी संतोष की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने बिना किसी बहस के युवक को प्यार से थोड़ा खिसकाया और बुजुर्ग को इज्जत के साथ बैठने के लिए जगह दिलाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीका के हरजावे कबीले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तरी तंजानिया के जंगलों में रहने वाले इस कबीले के लोगों को जब पहली बार शीशे में अपना चेहरा दिखाई दिया तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हंस पड़ा। कुछ लोग तो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे दुश्मन समझ लिया और पत्थर फेंक कर हमला कर दिया। दरअसल हरजावे अफ्रीका का सबसे पुराना और अंतिम शिकारी समुदायों में से एक है। ये लोग आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में तीर कमान और पत्थरों के सहारे शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत ही कम रहा है, इसीलिए शीशे जैसी आम वस्तु भी उनके लिए अनजानी थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब एक व्यक्ति को शीशा दिखाया गया तो वो पहले तो घबरा गया, फिर उसने अपना चेहरा देखा और हैरानी से पीछे हट गया। कुछ लोगों ने इसे किसी दूसरे इंसान की छवि समझा और हमला करने की कोशिश की। एक व्यक्ति तो पत्थर उठाकर शीशे पर फेंकने ही वाला था। बाद में जब समझ में आया कि ये उसका अपना ही चेहरा है, तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में शादी का खूबसूरत माहौल नजर आता है। मंडप पूरी तरह से सजा हुआ और दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप पर वरमाला पहने साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, जैसी वीडियो में लग रही थी वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही।
7: आपने फोन में जो फोटो भेजाई थी वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती।
5: दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन भी मुस्कुरा पड़ी और जवाब देते हुए दूल्हे से पूछती है, तो अब क्या करोगे आप?
8: तो अब क्या करेंगे आप?
7: मैं केस करूंगा कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है।
5: इस पर दूल्हा हंसते हुए कहता है, केस करूंगा। इतना सुनते ही मंडप में मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं। दूल्हा दुल्हन की प्यारी सी नोकझोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग भी इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए आप घर से बाहर निकलें और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाए और कपड़े खराब होने का डर सताने लगे। ऐसे में ज्यादातर लोग छाता या फिर रबड़ की चप्पल का सहारा ही लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा अनोखा जुगाड़ निकाला कि लोग देखते ही रह गए। रबड़ की चप्पलों की जगह उसने पैरों में ईंट जैसी ऊंची चप्पल पहन ली। अब ये देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बेहद अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में एक शख्स चलती गाड़ियों के बीच एक बेड चलाता हुआ नजर आता है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि उस बेड पर गद्दा और तकिया भी रखा हुआ है और शख्स आराम से उस पर लेटा हुआ है। आसपास कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन सड़क के बीच चलता ये बेड हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जो भी इस नजारे को देख रहा है वो कुछ पल के लिए रुककर इसे जरूर निहारता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑटो रिक्शा ने सबको हैरान कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है या फिर चलता फिरता घर। इस ऑटो में वॉश बेसिन, नल, आईना, शीशा और घरेलू सामान तक लगा हुआ है। वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक सवार सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने ये खास ऑटो आया। ऑटो के अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ था जिसमें नल से पानी भी निकलता है। बेसिन के ऊपर आईना लगा है ताकि यात्री बैठे बैठे अपना चेहरा भी देख सके और हाथ मुंह धो सके। गर्मी के मौसम में यात्री अक्सर पसीने से तरबतर होते हैं, ऐसे में ये सुविधा उन्हें तरोताजा रखती है। ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को खास तरीके से मॉडिफाई करवाया है। उन्होंने बताया कि पहले वो सामान्य ऑटो चलाते थे, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बदलाव कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये डांस खूब तेजी से वायरल हो रहा और तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट की पब्लिक अपनी नजरें नहीं हटा पा रही। वायरल क्लिप में पीले सूट वाली एक लड़की ने हरियाणवी गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। लड़की के गजब की एक्सप्रेशन, कमाल की एनर्जी और मूव्स ने नेटिजंस का दिल जीत लिया।

0: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
4: It's my music and it's my station.
3: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: रात 9 बजे गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध मां की बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रतिनिधियों में चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी और कहा है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्ट ने शयन भोग सेवायत परंपरा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी जबकि राजभोग सेवायत परंपरा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी को समिति का सदस्य बनाया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद वृंदावन का गोस्वामी समुदाय बहुत खुश है।

0: देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी में बड़ा बदलाव किया तो गोस्वामी समाज से जुड़े इन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मंदिर की हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन में अब प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस समिति में समाज की आवाज होंगे।
1: जिगी बात है, उच्चतम न्यायालय ने आज ठाकुर जी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे गोस्वामियों के हृदय में एक बहुत उल्लास और हर्ष की स्थिति है। विगत जब से उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, निरंतर मनमानी और निरंकुश मनमानी अपनी सब आदतें मंदिर के ऊपर थोपे जा रही थी, जो गोस्वामियों के और बिहारी जी के मर्यादा के प्रतिकूल थी। निरंतर ऐसी अवहेलना गोस्वामी समाज और भक्तगण निरंतर सहते चले आ रहे थे। आज इसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, इससे बड़ी हर्ष की और बड़ी उल्लास की लहर गोस्वामी समाज में और भक्त समाज में।
2: गोस्वामियों को अपने ठाकुर पे विश्वास था, क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन है और बिहारी जी को चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, और गोस्वामियों की तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिहारी जी है। उन्होंने अपने श्री बिहारी जी को नहीं छोड़ा और उनके भजन में लीन रहे, क्योंकि जितना भी इन लोगों ने कर सकते थे इन्होंने किया। आज ठाकुर जी ने उसी की लाज रखी है।
3: ये ठाकुर जी की जीत है, समस्त ब्रजवासियों की जीत है, हमारी क्या जीत है।
0: दरअसल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस समिति का मकसद मंदिर में दर्शन व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना था, लेकिन आरोप है कि समिति के अधिकारियों ने अपनी पसंद से गोस्वामी प्रतिनिधियों का चयन कर लिया था, जिसका गोस्वामी समाज ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
4: रिट पिटिशन थी जो हमने फाइल करी थी, क्योंकि जिस कमिटी का गठन हुआ था उस कमिटी के द्वारा कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करे गए थे जो कि डायरेक्टली रिचुअल्स को अफेक्ट कर रहे थे टेंपल के, और जो कमिटी ने जिन 4 लोगों को चुना था, गोस्वामियों को चुना था कमिटी में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हमारा ये कहना था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बड़े जो गोस्वामी समूह ने, जो गोस्वामी में 2 ग्रुप्स हैं, एक शयनभोग एक राजभोग, जो उन लोगों ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव्स वो नहीं है। तो इसकी मेन मांग थी हमारी रिट पिटिशन।
0: गोस्वामी समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 3 पुराने सेवायत सदस्यों को हटाकर उनकी जगह पर नए सदस्य शामिल किए। राजभोग सेवा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी, जबकि शयनभोग सेवा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के विकास के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाजनक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए विकास जरूरी है, लेकिन गोस्वामी समाज के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
4: 208 लोगों ने, जो 280 लोगों का ग्रुप है शयन भोग से और कुछ 67 लोगों का ग्रुप है राजभोग से, उसमें से 280 में से 208 उसमें शामिल हुए थे, और उसमें से जो 67 उसमें से भी कुछ 50 लोग थे जिन लोगों ने कमिटी में 4 लोगों का चयन करा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और जो पहले गोस्वामी थे उस कमिटी के उनको रिप्लेस करके इन 4 को उस कमेटी में आने का आदेश दिया है। दूसरी चीज, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करी कि कोई भी इंटरनल रिचुअल्स को ना टच करा जाए कमेटी के द्वारा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल्ड हमने अप्रोच आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि कई रिचुअल हैं, जैसे कि टाइम चेंज टेम्पल का नहीं हो सकता। ये हमने ये भी रिक्वेस्ट करी कि ये एक अनऑल्टर्ड एक ट्रेडिशन है जो सालों से चला आ रहा है, और अगर आप 6 बजे की जगह आप बोलते हो कि 5:30 बजे मंदिर खोल दो, तो उसमें जो 6 से 5:30 के बीच में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो भी उनका टाइम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो ऑर्डर पास हुआ इससे एक राहत है कि गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो कमिटी में है, और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि एसेंशियल रिचुअल्स को अफेक्ट करेगा उस पर कमिटी की फिर से मीटिंग होगी, इंक्लूडिंग द न्यू गोस्वामीज, एंड देन दे विल डिसाइड अगेन अफ्रेश। इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये भी रखा गया कि जो क्राउड कोर्ट के सामने आज ये भी रखा गया कि जो क्राउड मैनेजमेंट पर अभी जो हो रहा है वो ये है कि बैरिकेड तरह से बढ़ ही रहा है,
5: बहुत बढ़
4: रहा है, वो कम नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी है कमिटी को कि उनको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीजें गौर में रखना चाहिए, कुछ डिजिटल और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए टेंपल और टेंपल के जो आसपास के एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है।
0: हाई पावर कमेटी ये डेवलपमेंट प्लान गोस्वामी समाज और स्थानीय लोगों के सुझाव को सुनकर तैयार करेगी और इसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा।
6: सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसके साथ ही ये भी कि अब तक गोस्वामी समाज का ये आरोप था, ये कहना था कि जो कमेटी है कमेटी को बाहरी इंतजाम के लिए नियुक्त किया है, जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कमेटी की दिलचस्पी और उनका इंटरेस्ट आंतरिक मामलों को लेकर ज्यादा है, पूजा प्रक्रिया और सेवा की प्रक्रिया को लेकर ज्यादा है, ना कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके इंतजाम करने के लिए। आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी जिम्मेदारी बाहर की चीजों के पर ध्यान देने की है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कैमरामैन रविकांत ओतावार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक, त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।

हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 3 हफ्तों से बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर साधना और कथावाचन के लिए भगवान बद्री विशाल के दर पर पहुंचे थे। बाबा ने पहले नारायण पर्वत पर एकांतवास और साधना की, फिर उन्होंने बद्री धाम में मौजूद हनुमान मंदिर में आराधना की। अब 21 दिनों की साधना और एकांतवास का संकल्प पूरा हो गया है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और एकांतवास के अपने अनुभवों को वो साझा भी कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से बाबा के अनुयायी उनकी साधना पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तप, जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित रखा। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बाबा बागेश्वर भी यहाँ पर तप और साधना के बाद बेहद खुश और आनंदित नजर आए। चलिए आपको बताते हैं बद्री धाम में कैसी रही बाबा बागेश्वर की ये तपस्या।

0: शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कई तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। ये धरती का वही अनुपम स्थान माना जाता है जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने तपस्या के लिए चुना था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। इसी महात्म्य के चलते अनंत काल से सनातन परंपरा के कई साधु संत इस दिव्य स्थान पर तप और साधना के लिए आते रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी एकात्म्य साधना के लिए धरती का बैकुंठ कहलाने वाले इसी दिव्य स्थान को चुना। बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर साधना में लीन रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो भी -2 डिग्री से कम के तापमान पर।
1: ये जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहाँ पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहाँ पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहाँ ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहाँ ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों, और नारायण भगवान जो है जब नर नारायण के रूप में आए थे तो नारायण भगवान ने श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई।
0: अपनी 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। पहले 11 दिन उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले पहाड़ों के बीच नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में एकांतवास और कठोर तप किया। शेष 10 दिन धीरेंद्र शास्त्री ने प्राचीन खाक चौक हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विशेष आराधना की। 21 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में न किसी से मिले और न ही दर्शन दिए। अब 21 दिन बाद यहाँ आज से उनकी सत्य नारायण और हनुमान कथा का शुभारम्भ हो गया है। 21 दिनों की एकात्म साधना के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटों तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की। इस मुश्किल यात्रा के दौरान उन्हें कई अनोखे अनुभव हुए। नारायण पर्वत के साथ ही उन्होंने देवताल का भी दर्शन पूजन किया।
2: इन साधना के मध्य में बहुत अभूत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो हम कथा में सुनाएंगे, रोज एक एक दो दो अनुभव सुनाएंगे। हमने और महाराज जी ने मिलकर लगभग 13 घंटा पैदल चलकर नीलकंठ के किनारे से पूरे नारायण पर्वत की परिक्रमा की। ये भगवान की कृपा थी, बड़े अनुभव आए, मौत के मुंह से बच के आए। बड़ा कठिन था वो, लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहां भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 शायद मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है चाइना बॉर्डर के किनारे, वहां पर भी देव तालाब में। तो रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे।
0: 21 दिनों की कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री वापस लौटे तो वे अपने भक्तों के बीच पहुँचे, जिन्हें देखकर उनका मन भी उत्साह से भर गया। बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा भक्तों के बीच पहुँचे तो उन्होंने शीश झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने उन्हें धन, भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। गुफा से आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि 21 दिनों की इस तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई। अपने इस भाव को बाबा बागेश्वर ने बड़े खास अंदाज में बताया।
2: बागेश्वर धाम की और पागलों की खूब याद आई, वो फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें।
0: हंसी मजाक के बीच भक्तों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम बताया।
2: जब तब के प्रभाव के कारण, साधना के प्रभाव के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ भगवान की कृपा के कारण यहाँ का यह 21 दिन का साधना का क्रम एकांतिक समय बहुत अभूतपूर्व रहा। 11 दिन की साधना एक यहाँ 300 मीटर की दूरी पर गुफा में पूर्ण हुई। उसके बाद में फिर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उस दिन खूब संतों का आना हुआ। फिर लगभग 10 दिन की साधना खाक चौक में हनुमान जी की सन्निधि में बैठ करके की, वो भी अभूतपूर्व रही और अद्भुत अनुभव रहे। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और सभी बागेश्वर धाम के जितने लोग जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जुड़े, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उनके लिए यह साधना की भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी मंगलमय हुई। और बीच में तो ऐसा लगा भाई जैसे संसार में हम ही भर अकेले बचे हों, पर अब सब भरा भरा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा, बहुत प्रसन्नता है और अच्छे से सब हो गया। उसके लिए हम आप सबको साधुवाद दे रहे हैं और जो तप का फल, साधना का फल मिला है, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा से राष्ट्र के काम आवे, इस देश के काम आवे, ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं।
0: आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुंचते हैं। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां बाबा बागेश्वर ने साधना की। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आते हैं, यहीं पर रुकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, लेकिन साधना पूरी होने के बाद आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की सत्यनारायण कथा का शुभारंभ हुआ है। बाबा बागेश्वर के दर्शन और कथा सुनने के लिए बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अपनी 21 दिनों की साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो अगले 5 दिनों तक चलने वाली कथा में भक्तों के साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कल बाबा बागेश्वर की ये साधना समाप्त हुई थी और नारायण पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद से ही वो लगातार कह रहे थे कि इस दौरान उन्हें कई ऐसे अनुभव हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे और वो 5 दिन की कथा के दौरान उन अनुभवों को श्रद्धालुओं के साथ साझा जरूर करेंगे। आज जब कथा का श्री गणेश हुआ तो बद्रीनाथ धाम में गुजरे पिछले 3 हफ्तों के अनुभव बाबा ने बेहद भावपूर्ण अंदाज में बांटे। पहले दिन की कथा के दौरान बाबा के भजनों और प्रवचन के बीच में भक्त भाव विभोर होकर नाचते झूमते हुए नजर आए।

बद्री विशाल के द्वार बालाजी की जयकार हो रही है। 21 दिन की साधना और ध्यान लगाने के बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की कथा का श्री गणेश हो चुका है। यूं तो साल के कई महीने बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं से यूं ही गुलजार रहता है, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के चलते आज सुबह से ही यहाँ भक्तों का सैलाब सा उमड़ा हुआ था। बद्री विशाल के दर्शन की कामना लेकर पावन धाम पहुंचे भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर पर बाबा बागेश्वर से मुलाकात सुखद आश्चर्य की तरह था। यही वजह रही कि बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने और उनकी कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा की शुरुआत से पहले बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गयी। धाम में मौजूद श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर कथा स्थल पर पहुंचे। व्यास गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर का अलग ही रूप नजर आया। अपनी कथाओं से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद नारायण की इस पावन भूमि पर आकर बेहद खुश दिखे। आखिरकार दोपहर 2 बजे के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही सारा प्रांगण भगवान बद्री विशाल के भजनों से गूंज उठा।

0: बात याद आई, पूछो तो बोलूं। तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी अकड़ ऐसी है कि सम्राटों को भी ठुकराया।
1: बताया जाता है कि बद्रीनाथ धाम की कथा श्री हरि विष्णु के कठोर तप और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के त्याग से जुड़ी है, वही कहानी जिसके फलस्वरूप हिमालय का ये भाग बद्रीनाथ कहलाया। बाबा बागेश्वर ने कथा की शुरुआत बद्रीनाथ धाम की उसी कहानी के साथ की।
0: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपोभूमि पर हम लोग बैठे।
1: कलयुग में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भी यहाँ आकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ।
0: तो यहाँ उड़ान का आनंद लेना, उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो, जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला ना चेली, न ठेला ना ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पो न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद, गुफा पत्थर हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़ आहा, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए, बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो, ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब, बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहाँ पर कम मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ।
1: बाबा बागेश्वर 21 दिनों की साधना पूरी करने के बाद कथा कर रहे हैं। उन्होंने साधना के बाद कहा था कि वो अपनी इन 21 दिनों के अनुभवों को कथा के दौरान भक्तों के साथ साझा करेंगे। सो उन्होंने साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा से जुड़ी कई घटनाएं कथा के दौरान श्रद्धालुओं को सुनाई।
0: जो 21 दिन गुजरे बड़े प्यारे गुजरे, हमने और महाराज जी ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की, पूरे नारायण पर्वत, वो दिन भी अलग थे, नारायण पर्वत की परिक्रमा की। एक दिन हम और महाराज जी 18,500 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गए, देवताल, देवताल में जहां आज भी देवता स्नान करने आते हैं, वहां पंचताल है, देवताल, नागताल, प्रेतताल।

0: ताल परी ताल।
1: बाबा बागेश्वर की कथा में भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का भी रंग नजर आया। दरअसल बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में प्रवास और परिक्रमा के दौरान बाबा की मुलाकात भारतीय सेना और आईटीबीपी समेत सुरक्षा बलों के कई जवानों से हुई। बाबा ने बताया कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा का फर्ज निभाते हुए भी जाबाजों ने उनका बेहद सत्कार किया। इस बात से बाबा बागेश्वर गदगद नजर आए।
2: हमारे देश की आर्मी उस भयंकर माइनस डिग्री में, जहां थोड़ी देर बाहर खड़े हो तो नाक से खून गिरने लगता, इतनी ठंडी, वहां भारत की आर्मी को जब पता लगा इस रास्ते से हम जा रहे, सबने इतना स्वागत किया। अपनी अपनी बटालियन में आईटीबीपी वाले, असम बटालियन वाले, हाथ पकड़ पकड़, चाय पी के जाओ, चाय पियो, जब आने लगे जबरदस्ती जूस लो। उनको देखकर, उनके भारत के प्रति समर्पण तो हमने बहुत आर्मी वालों में देखा, पहली बार हमने भारतीयों के प्रति समर्पण आर्मी में देखा। और हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी तो आर्मी के प्रति बड़े समर्पित हैं, शहीदों को, उनको देखकर मन इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, पूछो मत। और कैसे 21 दिन बीत गए पता नहीं लगा।
1: कथा के दौरान हिमालय की वादियों के बीच गूंजते भजन एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास दे रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में लोग नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए।

0: पवित्र देव भूमि में बद्रीनाथ के दर्शन करना भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। चारों धामों में से एक इस पावन धाम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि चाहे आम भक्त हों, साधु संत हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर, जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: और आइए आपको मिलवाते एक नन्हे हाथी से जिसकी अटखेलियां आपका दिल चुरा लेंगी। जमशेदपुर के दलमा के जंगलों में रहने वाले इस हाथी का नाम बादल है। बादल करीब 6 महीने का है और इस छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल से इसका गहरा लगाव हो गया है। बादल को यूं फुटबॉल खेलते देख सैलानी भी काफी खुश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बादल अब इस जंगल का नया आकर्षण बन चुका है।
4: कभी सूखी जमीन पर फुटबॉल से खेल तो कभी पानी में फुटबॉल से मस्ती, मतलब ये कि जगह कोई भी हो, फुटबॉल से इस नन्हे गजराज का लगाव कम नहीं हो रहा। जमशेदपुर से सटे दलमा वन अभयारण्य में आकर्षण का नया केंद्र है बादल। दलमा के जंगलों में खेलता कूदता 6 महीने का नन्हा गजराज सबका चहेता बन गया है। पर्यटकों के लिए भी बादल को यूं खेलते देखना काफी लुभा रहा है।
5: ऐसे सर मतलब दो दफा खेलता है सर, सुबह और शाम। इसमें जब पिला करके जो हम खिलाते हैं ना सर, तो फुटबॉल अच्छा 10 से 15 मिनट तक मतलब खेल लेता है सर प्रतिदिन। और देखते हैं कोशिश करके मैंने और खिलाने का है। अभी तो मैंने मूड में है नहीं, एक बार खेल चुके हैं सर।
6: मजा आता है,
5: बहुत बहुत मजा आता है सर। मुंह में लेकर के ऊपर में जैसे आदमी लोग खेलता है उसी प्रकार मैंने खेल लेता है बादल। दो गो बॉल लाए हैं और इसको खेल सिखा रहे हैं। बैठाने का भी मैंने खेल सिखाए। दो पैर में एक ठो मैंने वहाँ नल है, वहाँ छोटा सा मैंने जगह है, उसमें सरकस जैसे खिलाता है उस प्रकार भी खड़ा हो जाता है।
4: करीब 6 महीने पहले बादल को घायल और बेहद गंभीर स्थिति में यहां लाया गया था। वनकर्मी रवि ने बादल को भरपूर प्यार दिया, दिन रात सेवा की, एक नया जीवन दिया। अब ये नन्हा हाथी न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य की शान बन चुका है। इसकी अटखेलियां लोगों को लुभाती हैं, तो इसे फुटबॉल खेलता देख सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। ऐसे में देश भर के चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की कोशिश की जा रही है।
4: धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
7: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
4: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खानपान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: and all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका मत्था। अकोला के श्यामधाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक। त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरें ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई है। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।

पश्चिम बंगाल का बताकर एक रोते बिलखते आदमी का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिला और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान का है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद से अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। इस वीडियो को भी इसी संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब वन विभाग और सरकारी जमीन पर बसे थे। वीडियो में पीछे देखिए, एक व्यक्ति तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जर्सी में खड़ा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते हुए और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये हमें बांग्ला लगा। इससे स्पष्ट रूप से बांग्ला सुनाई पड़ रहा है, मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद हमें वीडियो के एक फ्रेम में खान वस्त्र नाम की एक दुकान नजर आती है। बांग्ला में दुकान का पता लिखा है बांग्लादेश। अब वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर दुकानें बांग्लादेश की कैसी हो सकती है? ये थोड़ा अटपटा लगा। बंगाल का वीडियो होने पर यहाँ दुकानों के पते पर पश्चिम बंगाल का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन पूरे वीडियो में हमें पश्चिम बंगाल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हमने वायरल वीडियो का सच जानने के लिए इंटरनेट और पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। दरअसल हाल फिलहाल में ऐसे बंगाल से जुड़ते हुए कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसका फैक्ट चेक लगातार किया गया है। हमारी जांच में सारे दावे झूठे साबित हुए, लिहाजा ऐसे में हमने इस वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो कुछ अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल ये सामने आया कि ये वायरल वीडियो आखिर कब का और कहां का है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है। और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
1: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो के पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के माइक को साफ साफ देखा जा सकता है। सर्च के दौरान बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट के फेसबुक पेज पर इस घटना का पूरा लाइव वीडियो मिला। 20 मई के इस लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बांग्लादेश के मीरपुर की है, जहां प्रशासन ने बोनियाबाद स्लम इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई थी। इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल वीडियो में दिख रहे लोग भी नजर आते हैं। करीब 10 मिनट की इस रिपोर्ट में 6 मिनट के बाद वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है, जहां वही रोता हुआ आदमी और बच्चे दिखाई देते हैं। 20 मई को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए ये कार्रवाई की थी। इस दौरान स्थानीय लोगों के हमले में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल वीडियो का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। ये बांग्लादेश के मीरपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सड़क पर नारे लगाते मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। किसी सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगाते मुस्लिमों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इसे केरलम का बताकर दावा कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद इन मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, केरलम में मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनने की घोषणा के बाद भड़काऊ बयानबाजी तेज। हिंदुओं के नाम लेकर काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले दावे की सच्चाई के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो केरलम का है और वहां एक बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ है दिख रहा है तो कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट और केरलम के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी सर्च किया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती हुई कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ और हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सही है तो वायरल हो रहा वीडियो केरलम के किस हिस्से का है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं किसी और घटना से संबंधित किसी दूसरी जगह से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 28 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर पर संपर्क करने पर हमारी बात सैयद सिफात अली से हुई। उन्होंने बताया कि ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का है और उन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये भीड़ जायरीन के एक जत्थे की है जो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शन करने और चादर चढ़ाने आए थे। जायरीन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों खासतौर पर सूफी संतों की दरगाहों या मजारों की यात्रा करने जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो केरल का नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर का है। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में लगते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार-धाड़।
0: और अब वक्त तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
5: आजम के जंगलों से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर भूरे रंग में दिखने वाला हॉग डियर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग में घूमता नजर आया। इस बेहद दुर्लभ नजारे का वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काजीरंगा के हरे भरे घास के मैदान के बीच एक सफेद रंग का हिरण दूर से ही चमक रहा है। ये कोई नई प्रजाति नहीं बल्कि ये सामान्य हॉग हिरण है। जाहिर है कि अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सफेद क्यों है। दरअसल ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। इसमें शरीर के रंग तय करने वाला पिगमेंट यानी कि मेलानिन नहीं होता जिससे त्वचा और बाल पूरी तरह से सफेद या फिर हल्के हो जाते हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर और मोर का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो किसी घर के आंगन का नजर आ रहा है। एक चारपाई पर बंदर आराम से बैठा नजर आता है, वहीं पास में एक सुंदर मोर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन तभी बंदर को अचानक से शरारत सूझ जाती है, फिर फ्रेम में गजब का सीन कैद हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर अचानक चारपाई से छलांग लगाता है और सीधे मोर की पीठ पर चढ़ जाता है। खुद पर अचानक बंदर को बैठा देख मोर घबरा जाता है और फिर तेजी से फड़फड़ाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन बंदर बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। कुछ सेकंड तक ये मजेदार नजारा चलता रहता है। बंदर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है मानो वो किसी सवारी का मजा ले रहा हो। वहीं मोर लगातार इधर उधर भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
6: अरे बीमार है बुजुर्ग है तब तो थोड़ा सा दिल पसीजना चाहिए कि हर जगह पुलिस ही आएगा। इस काम के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए तो आप सभी लोग मिलके इसको कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करोगे तो पक्का सबको जगह मिल जाएगा।
5: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को ट्रेन के अंदर सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद पुलिस वाले ने जो किया उससे लोगों को बड़ी सीख मिली। दरअसल ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग काफी देर से भीड़ में खड़े थे, लेकिन कुछ तंदुरुस्त युवक सीट पर आराम से फैले बैठे थे। तभी वहाँ मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी संतोष की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने बिना किसी बहस के युवक को प्यार से थोड़ा खिसकाया और बुजुर्ग को इज्जत के साथ बैठने के लिए जगह दिलाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीका के हरजावे कबीले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तरी तंजानिया के जंगलों में रहने वाले इस कबीले के लोगों को जब पहली बार शीशे में अपना चेहरा दिखाई दिया तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हंस पड़ा। कुछ लोग तो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे दुश्मन समझ लिया और पत्थर फेंक कर हमला कर दिया। दरअसल हरजावे अफ्रीका का सबसे पुराना और अंतिम शिकारी समुदायों में से एक है। ये लोग आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में तीर कमान और पत्थरों के सहारे शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत ही कम रहा है, इसीलिए शीशे जैसी आम वस्तु भी उनके लिए अनजानी थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब एक व्यक्ति को शीशा दिखाया गया तो वो पहले तो घबरा गया, फिर उसने अपना चेहरा देखा और हैरानी से पीछे हट गया। कुछ लोगों ने इसे किसी दूसरे इंसान की छवि समझा और हमला करने की कोशिश की। एक व्यक्ति तो पत्थर उठाकर शीशे पर फेंकने ही वाला था। बाद में जब समझ में आया कि ये उसका अपना ही चेहरा है, तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में शादी का खूबसूरत माहौल नजर आता है। मंडप पूरी तरह से सजा हुआ और दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप पर वरमाला पहने साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, जैसी वीडियो में लग रही थी वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही।
7: आपने फोन में जो फोटो भेजाई थी वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती।
5: दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन भी मुस्कुरा पड़ी और जवाब देते हुए दूल्हे से पूछती है, तो अब क्या करोगे आप?
8: तो अब क्या करेंगे आप?
7: मैं केस करूंगा कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है।
5: इस पर दूल्हा हंसते हुए कहता है, केस करूंगा। इतना सुनते ही मंडप में मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं। दूल्हा दुल्हन की प्यारी सी नोकझोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग भी इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए आप घर से बाहर निकले और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाए और कपड़े खराब होने का डर सताने लगे। ऐसे में ज्यादातर लोग छाता या फिर रबड़ की चप्पल का सहारा ही लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा अनोखा जुगाड़ निकाला कि लोग देखते ही रह गए। रबड़ की चप्पलों की जगह उसने पैरों में ईंट जैसी ऊंची चप्पल पहन ली। अब ये देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बेहद अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में एक शख्स चलती गाड़ियों के बीच एक बेड चलाता हुआ नजर आता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस बेड पर गद्दा और तकिया भी रखा हुआ है और शख्स आराम से उस पर लेटा हुआ है। आसपास कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन सड़क के बीच चलता ये बेड हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जो भी इस नजारे को देख रहा है वो कुछ पल के लिए रुककर इसे जरूर निहारता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑटो रिक्शा ने सबको हैरान कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है या फिर चलता फिरता घर। इस ऑटो में वॉश बेसिन, नल, आईना, शीशा और घरेलू सामान तक लगा हुआ है। वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक सवार सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने ये खास ऑटो आया। ऑटो के अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ था जिसमें नल से पानी भी निकलता है। बेसिन के ऊपर आईना लगा है ताकि यात्री बैठे बैठे अपना चेहरा भी देख सके और हाथ मुंह धो सके। गर्मी के मौसम में यात्री अक्सर पसीने से तरबतर होते हैं, ऐसे में ये सुविधा उन्हें तरोताजा रखती है। ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को खास तरीके से मॉडिफाई करवाया है। उन्होंने बताया कि पहले वो सामान्य ऑटो चलाते थे, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बदलाव कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये डांस खूब तेजी से वायरल हो रहा और तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट की पब्लिक अपनी नजरें नहीं हटा पा रही। वायरल क्लिप में पीले सूट वाली एक लड़की ने हरियाणवी गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। लड़की के गजब की एक्सप्रेशन, कमाल की एनर्जी और मूव्स ने नेटिजंस का दिल जीत लिया।

0: मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: ऑल स्पोर्ट्स ऑल द टाइम राइट हियर ऑन ट्यून इन। Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
3: and
5: down.
3: Talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रतिनिधियों में चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी और कहा है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्ट ने शयन भोग सेवायत परंपरा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी जबकि राजभोग सेवायत परंपरा से रजत गोस्वामी और शैलेन्द्र गोस्वामी को समिति का सदस्य बनाया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद वृंदावन का गोस्वामी समुदाय बहुत खुश है।

0: देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी में बड़ा बदलाव किया तो गोस्वामी समाज से जुड़े इन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मंदिर की हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन में अब प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस समिति में समाज की आवाज होंगे।
1: जी बात है, उच्चतम न्यायालय ने आज ठाकुर जी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिससे गोस्वामियों के हृदय में एक बहुत उल्लास और हर्ष की स्थिति है। विगत जब से उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, निरंतर मनमानी और निरंकुश मनमानी अपनी सब आदतें मंदिर के ऊपर थोपे जा रही थी जो गोस्वामियों के और बिहारी जी के मर्यादा के प्रतिकूल थी। निरंतर ऐसी अवहेलना गोस्वामी समाज और भक्तगण निरंतर सहते चले आ रहे थे। आज इसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, इससे बड़ी हर्ष की और बड़ी उल्लास की लहर गोस्वामी समाज में और भक्त समाज में।
2: गोस्वामियों को अपने ठाकुर पे विश्वास था क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन है और बिहारी जी को चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है और गोस्वामियों की तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिहारी जी है। उन्होंने अपने श्री बिहारी जी को नहीं छोड़ा और उनके भजन में लीन रहे क्योंकि जितना भी इन लोगों ने कर सकते थे इन्होंने किया। आज ठाकुर जी ने उसी की लाज रखी है।
3: ये ठाकुर जी की जीत है, समस्त ब्रजवासियों की जीत है, हमारी क्या जीत है।
0: दरअसल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के चार प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस समिति का मकसद मंदिर में दर्शन व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना था, लेकिन आरोप है कि समिति के अधिकारियों ने अपनी पसंद से गोस्वामी प्रतिनिधियों का चयन कर लिया था जिसका गोस्वामी समाज ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
4: रिट पिटिशन थी जो हमने फाइल करी थी क्योंकि जिस कमिटी का गठन हुआ था उस कमिटी के द्वारा कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करे गए थे जो कि डायरेक्टली रिचुअल्स को अफेक्ट कर रहे थे टेंपल के, और जो कमिटी ने जिन चार लोगों को चुना था, गोस्वामियों को चुना था कमिटी में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हमारा ये कहना था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बड़े जो गोस्वामी समूह ने, जो गोस्वामी में दो ग्रुप्स हैं, एक शयनभोग एक राजभोग, जो उन लोगों ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है। तो इसकी मेन मांग थी हमारी रिट पिटिशन।
0: गोस्वामी समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने तीन पुराने सेवायत सदस्यों को हटाकर उनकी जगह पर नए सदस्य शामिल किए। राजभोग सेवा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी, जबकि शयनभोग सेवा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के विकास के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाजनक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए विकास जरूरी है, लेकिन गोस्वामी समाज के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
4: 208 लोगों ने और जो 280 लोगों का ग्रुप है शयनभोग से और कुछ 67 लोगों का ग्रुप है राजभोग से, उसमें से 280 में से 208 उसमें शामिल हुए थे और उसमें से जो 67 उसमें से भी कुछ 50 लोग थे जिन लोगों ने कमिटी में चार लोगों का चयन करा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और जो पहले गोस्वामी थे उस कमिटी के उनको रिप्लेस करके इन चारों को उस कमेटी में आने का आदेश दिया है। दूसरी चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करी है कि कोई भी इंटरनल रिचुअल्स को ना टच करा जाए कमेटी के द्वारा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल्ड हमने अप्रोच आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि कई रिचुअल हैं जैसे कि टाइम चेंज टेम्पल का नहीं हो सकता। ये हमने ये भी रिक्वेस्ट करी कि ये एक अनऑल्टर्ड एक ट्रेडिशन है जो सालों से चला आ रहा है, और अगर आप 6 बजे की जगह आप बोलते हो कि 5:30 बजे मंदिर खोल दो तो उसमें जो 6 से 5:30 के बीच में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो भी उनका टाइम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो ऑर्डर पास हुआ इससे एक राहत है कि गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो कमिटी में है और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि एसेंशियल रिचुअल्स को अफेक्ट करेगा उस पर कमिटी की फिर से मीटिंग होगी इंक्लूडिंग द न्यू गोस्वामीज एंड देन दे विल डिसाइड अगेन अफ्रेश। इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये भी रखा गया कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये कमेटी बनी थी जो मेन रीजन था वो था क्राउड मैनेजमेंट, पर अभी जो हो रहा है वो ये है कि बैरिकेड्स तो बन गए मंदिर के अंदर पर हमने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स प्रेजेंट की थी कि मंदिर के बाहर का रश बहुत बुरी तरह से बढ़ ही रहा है,
5: बहुत बढ़ रहा
4: है, वो कम नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कमिटी को कि उनको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीजें गौर में रखना चाहिए, कुछ डिजिटल और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए टेम्पल और टेम्पल के जो आसपास के एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है।
0: हाई पावर कमेटी ये डेवलपमेंट प्लान गोस्वामी समाज और स्थानीय लोगों के सुझाव को सुनकर तैयार करेगी और इसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा।
6: सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसके साथ ही ये भी कि अब तक गोस्वामी समाज का ये आरोप था, ये कहना था कि जो कमेटी है कमेटी को बाहरी इंतजाम के लिए नियुक्त किया है, जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कमेटी की दिलचस्पी और उनका इंटरेस्ट आंतरिक मामलों को लेकर ज्यादा है, पूजा प्रक्रिया और सेवा की प्रक्रिया को लेकर ज्यादा है, ना कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके इंतजाम करने के लिए। आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी जिम्मेदारी बाहर की चीजों के पर ध्यान देने की है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कैमरामैन रविकांत होतावार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक, त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 3 हफ्तों से बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर साधना और कथावाचन के लिए भगवान बद्री विशाल के दर पर पहुंचे थे। बाबा ने पहले नारायण पर्वत पर एकांतवास और साधना की, फिर उन्होंने बद्री धाम में मौजूद हनुमान मंदिर में आराधना की। अब 21 दिनों की साधना और एकांतवास का संकल्प पूरा हो गया है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और एकांतवास के अपने अनुभवों को वो साझा भी कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से बाबा के अनुयायी उनकी साधना पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तप, जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित रखा। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बाबा बागेश्वर भी यहाँ पर तप और साधना के बाद बेहद खुश और आनंदित नजर आए। चलिए आपको बताते हैं बद्री धाम में कैसी रही बाबा बागेश्वर की ये तपस्या।

0: शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में कई तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। ये धरती का वही अनुपम स्थान माना जाता है जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने तपस्या के लिए चुना था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। इसी महात्म्य के चलते अनंत काल से सनातन परंपरा के कई साधु संत इस दिव्य स्थान पर तप और साधना के लिए आते रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी एकात्म्य साधना के लिए धरती का बैकुंठ कहलाने वाले इसी दिव्य स्थान को चुना। बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर साधना में लीन रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो भी -2 डिग्री से कम के तापमान पर।
1: ये जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहाँ पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहाँ पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहाँ ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहाँ ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों, और नारायण भगवान जो है जब नर नारायण के रूप में आए थे तो नारायण भगवान ने श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई।
0: अपनी 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। पहले 11 दिन उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले पहाड़ों के बीच नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में एकांतवास और कठोर तप किया। शेष 10 दिन धीरेंद्र शास्त्री ने प्राचीन खाक चौक हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विशेष आराधना की। 21 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में न किसी से मिले और न ही दर्शन दिए। अब 21 दिन बाद यहाँ आज से उनकी सत्य नारायण और हनुमान कथा का शुभारम्भ हो गया है। 21 दिनों की एकात्म साधना के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटों तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की। इस मुश्किल यात्रा के दौरान उन्हें कई अनोखे अनुभव हुए। नारायण पर्वत के साथ ही उन्होंने देवताल का भी दर्शन पूजन किया।
2: इन साधना के मध्य में बहुत अभूत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो हम कथा में सुनाएंगे, रोज एक एक दो दो अनुभव सुनाएंगे। हमने और महाराज जी ने मिलकर लगभग 13 घंटा पैदल चलकर नीलकंठ के किनारे से पूरे नारायण पर्वत की परिक्रमा की। ये भगवान की कृपा थी, बड़े अनुभव आए, मौत के मुंह से बच के आए। बड़ा कठिन था वो, लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहां भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है चाइना बॉर्डर के किनारे, वहां पर भी देवता लाम में। तो रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे।
0: 21 दिनों की कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री वापस लौटे तो वे अपने भक्तों के बीच पहुँचे, जिन्हें देखकर उनका मन भी उत्साह से भर गया। बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा भक्तों के बीच पहुँचे तो उन्होंने शीश झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने उन्हें धन भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। गुफा से आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि 21 दिनों की इस तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई अपने इस भाव को बाबा बागेश्वर ने बड़े खास अंदाज में बताया।
2: बागेश्वर धाम की और पागलों की खूब याद आई, वो फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें।
0: हंसी मजाक के बीच भक्तों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम बताया।
2: जब तप के प्रभाव के कारण, साधना के प्रभाव के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ भगवान की कृपा के कारण यहाँ का यह 21 दिन का साधना का क्रम एकांतिक समय बहुत अभूतपूर्व रहा। 11 दिन की साधना एक यहाँ 300 मीटर की दूरी पर गुफा में पूर्ण हुई। उसके बाद में फिर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उस दिन खूब संतों का आना हुआ। फिर लगभग 10 दिन की साधना खाक चौक में हनुमान जी की सन्निधि में बैठ कर के की, वो भी अभूतपूर्व रही और अद्भुत अनुभव रहे। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और सभी बागेश्वर धाम के जितने लोग जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जुड़े, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उनके लिए यह साधना की भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी मंगलमयी हुई। और बीच में तो ऐसा लगा भाई जैसे संसार में हम ही भर अकेले बचे हों, पर अब सब भरा भरा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा, बहुत प्रसन्नता है और अच्छे से सब हो गया। उसके लिए हम आप सबको साधुवाद दे रहे हैं और जो तप का फल, साधना का फल मिला है, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा से राष्ट्र के काम आवे, इस देश के काम आवे, ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं।
0: आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुंचते हैं। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां बाबा बागेश्वर ने साधना की। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आते हैं, यहीं पर रुकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, लेकिन साधना पूरी होने के बाद आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की सत्यनारायण कथा का शुभारम्भ हुआ है। बाबा बागेश्वर के दर्शन और कथा सुनने के लिए बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अपनी 21 दिनों की साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो अगले 5 दिनों तक चलने वाली कथा में भक्तों के साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कल बाबा बागेश्वर की ये साधना समाप्त हुई थी और नारायण पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद से ही वो लगातार कह रहे थे कि इस दौरान उन्हें कई ऐसे अनुभव हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे और वो 5 दिन की कथा के दौरान उन अनुभवों को श्रद्धालुओं के साथ साझा जरूर करेंगे। आज जब कथा का श्री गणेश हुआ तो बद्रीनाथ धाम में गुजरे पिछले 3 हफ्तों के अनुभव बाबा ने बेहद भावपूर्ण अंदाज में बांटे। पहले दिन की कथा के दौरान बाबा के भजनों और प्रवचन के बीच में भक्त भाव विभोर होकर नाचते झूमते हुए नजर आए।

बद्री विशाल के द्वार बालाजी की जयकार हो रही है। 21 दिन की साधना और ध्यान लगाने के बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की कथा का श्री गणेश हो चुका है। यूं तो साल के कई महीने बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं से यूं ही गुलजार रहता है, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के चलते आज सुबह से ही यहाँ भक्तों का सैलाब सा उमड़ा हुआ था। बद्री विशाल के दर्शन की कामना लेकर पावन धाम पहुंचे भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर पर बाबा बागेश्वर से मुलाकात सुखद आश्चर्य की तरह था। यही वजह रही कि बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने और उनकी कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा की शुरुआत से पहले बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गयी। धाम में मौजूद श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर कथा स्थल पर पहुंचे। व्यास गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर का अलग ही रूप नजर आया। अपनी कथाओं से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद नारायण की इस पावन भूमि पर आकर बेहद खुश दिखे। आखिरकार दोपहर 2 बजे के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही सारा प्रांगण भगवान बद्री विशाल के भजनों से गूंज उठा।

0: हिमालय की गोद में 3 हफ्तों तक साधना कर लौटे पंडित धीरेंद्र शास्त्री का अलग ही रंग भक्तों को नजर आया।
1: एक माह लगभग यहाँ गुजारने के बाद हमें एक बात याद आई, पूछो तो बोलूं। तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी अकड़ ऐसी है कि सम्राटों को भी ठुकराया है।

0: की बद्रीनाथ धाम की कथा श्री हरि विष्णु के कठोर तप और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के त्याग से जुड़ी है। वही कहानी जिसके फलस्वरूप हिमालय का ये भाग बद्रीनाथ कहलाया। बाबा बागेश्वर ने कथा की शुरुआत बद्रीनाथ धाम की उसी कहानी के साथ की।
1: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे, जो भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपो भूमि पर हम लोग बैठे।
0: कलयुग में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओद्री, यानी जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भी यहाँ आकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ।
1: तो यहाँ उड़ान का आनंद लेना, उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो, जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला ना चेली, न ठेला ना ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पो न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद, गुफा पत्थर हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़ आहा, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो, ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब, बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहाँ पर कम मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ।
0: बाबा बागेश्वर 21 दिनों की साधना पूरी करने के बाद कथा कर रहे हैं। उन्होंने साधना के बाद कहा था कि वो अपनी इन 21 दिनों के अनुभवों को कथा के दौरान भक्तों के साथ साझा करेंगे। सो उन्होंने साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा से जुड़ी कई घटनाएं कथा के दौरान श्रद्धालुओं को सुनाई।
1: जो 21 दिन गुजरे बड़े प्यारे गुजरे, हमने और महाराज जी ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की, पूरे नारायण पर्वत की, वो दिन भी अलग थे, नारायण पर्वत की परिक्रमा की। एक दिन हम और महाराज जी 18,500 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गए, देवताल, देवताल में जहां आज भी देवता स्नान करने आते हैं, वहां पंचताल है, देवताल, नागताल, प्रेतताल, परीताल।
0: बाबा बागेश्वर की कथा में भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का भी रंग नजर आया। दरअसल बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में प्रवास और परिक्रमा के दौरान बाबा की मुलाकात भारतीय सेना और ITBP समेत सुरक्षा बलों के कई जवानों से हुई। बाबा ने बताया कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा का फर्ज निभाते हुए भी जाबाजों ने उनका बेहद सत्कार किया। इस बात से बाबा बागेश्वर गदगद नजर आए।

0: हमारे देश की आर्मी उस भयंकर माइनस डिग्री में, जहां थोड़ी देर बाहर खड़े हो तो नाक से खून गिरने लगता, इतनी ठंडी, वहां भारत की आर्मी को जब पता लगा इस रास्ते से हम जा रहे, सबने इतना स्वागत किया, अपनी अपनी बटालियन में आईटीबीपी वाले, असम बटालियन वाले, हाथ पकड़ पकड़, चाय पी के जाओ, चाय पियो, चाय पियो, जब आने लगे जबरदस्ती जूस लो। उनको देखकर, उनके भारत, भारत के प्रति समर्पण तो हमने बहुत आर्मी वालों में देखा, पहली बार हमने भारतीयों के प्रति समर्पण आर्मी में देखा। और हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी तो आर्मी के प्रति बड़े समर्पित हैं, शहीदों को, उनको देखकर मन इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, पूछो मत। और कैसे 21 दिन बीत गए पता नहीं लगा।
1: कथा के दौरान हिमालय की वादियों के बीच गूंजते भजन एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास दे रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में लोग नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए।

0: पवित्र देव भूमि में बद्रीनाथ के दर्शन करना भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। चारों धामों में से एक इस पावन धाम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि चाहे आम भक्त हों, साधु संत हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर, जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: और आइए आपको मिलवाते एक नन्हे हाथी से जिसकी अटखेलियां आपका दिल चुरा लेंगी। जमशेदपुर के दलमा के जंगलों में रहने वाले इस हाथी का नाम बादल है। बादल करीब 6 महीने का है और इस छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल से इसका गहरा लगाव हो गया है। बादल को यूं फुटबॉल खेलते देख सैलानी भी काफी खुश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बादल अब इस जंगल का नया आकर्षण बन चुका है।
5: कभी सूखी जमीन पर फुटबॉल से खेल तो कभी पानी में फुटबॉल से मस्ती, मतलब ये कि जगह कोई भी हो, फुटबॉल से इस नन्हे गजराज का लगाव कम नहीं हो रहा। जमशेदपुर से सटे दलमा वन अभयारण्य में आकर्षण का नया केंद्र है बादल। दलमा के जंगलों में खेलता कूदता 6 महीने का नन्हा गजराज सबका चहेता बन गया है। पर्यटकों के लिए भी बादल को यूं खेलते देखना काफी लुभा रहा है।
6: ऐसे सर मतलब दो दफा खेलते हैं सर, सुबह और शाम। इसमें जब पिला करके जब हम खिलाते हैं ना सर, तो फुटबॉल अच्छा 10 से 15 मिनट तक मन खेल लेता है सर प्रतिदिन, और देखते हैं कोशिश करके मन और खिलाने का है। अभी तो मैंने मूड में है नहीं, एक बार खेल चुके हैं सर।
7: मजा आता है,
6: बहुत बहुत मजा आता है सर। मुंह में लेकर के ऊपर में जैसे आदमी लोग खेलता है उसी प्रकार मैंने खेल लेता है बादल। दो गो बॉल लाए हैं और इसको खेल सिखा रहे हैं। बैठाने का भी मैंने खेल सिखाए, दो पैर में एक ठो मैंने वहाँ नल है, वहाँ छोटा सा मैंने जगह है, उसमें सरकस जैसे खिलाता है उस प्रकार भी खड़ा हो जाता है।
5: करीब 6 महीने पहले बादल को घायल और बेहद गंभीर स्थिति में यहां लाया गया था। वनकर्मी रवि ने बादल को भरपूर प्यार दिया, दिन रात सेवा की, एक नया जीवन दिया। अब ये नन्हा हाथी न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य की शान बन चुका है। इसकी अटखेलियां लोगों को लुभाती हैं, तो इसे फुटबॉल खेलता देख सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। ऐसे में देश भर के चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की कोशिश की जा रही है।
5: धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारे राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
8: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
5: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है ताकि लोग तेज गर्मी से बच सके। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। राम नगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक। त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ बरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरें ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई है। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: पश्चिम बंगाल का बताकर एक रोते बिलखते आदमी का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी फूट फूट कर रोते और सड़क पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ महिला और छोटे बच्चों को भी रोते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती में हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान का है। दरअसल पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद से अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। इस वीडियो को भी इसी संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब वन विभाग और सरकारी जमीन पर बसे थे। वीडियो में पीछे देखिए, एक व्यक्ति तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जर्सी में खड़ा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सड़क पर नारे लगाते मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: किसी सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नारे लगाते मुस्लिमों का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कुछ लोग इसे केरलम का बताकर दावा कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद इन मुसलमानों ने खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे डाली। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, केरलम में मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनने की घोषणा के बाद भड़काऊ बयानबाजी तेज। हिंदुओं के नाम लेकर काटने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने लोग या हुसैन के नारे लगाते दिखते हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले दावे की सच्चाई के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ दिखाई दिया। अब वीडियो केरलम का है और वहां एक बोर्ड पर दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर लिखा हुआ है दिख रहा है तो कुछ अटपटा सा लगा। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट और केरलम के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी सर्च किया, लेकिन हमें हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती हुई कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ और हमने इस वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा तो कुछ अहम सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सही है तो वायरल हो रहा वीडियो केरलम के किस हिस्से का है, और दूसरा सवाल ये सामने आता है कि कहीं किसी और घटना से संबंधित किसी दूसरी जगह से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, ये भी अहम सवाल है। अब देखिए इसके पीछे की सच्चाई।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहां इसे 28 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। अकाउंट पर मौजूद फोन नंबर पर संपर्क करने पर हमारी बात सैयद सिफात अली से हुई। उन्होंने बताया कि ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर का है और उन्होंने खुद इसे रिकॉर्ड किया है। दरअसल ये भीड़ जायरीन के एक जत्थे की है जो अपने एक पूरे ग्रुप के साथ अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शन करने और चादर चढ़ाने आए थे। जायरीन ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के पवित्र धार्मिक स्थलों खासतौर पर सूफी संतों की दरगाहों या मजारों की यात्रा करने जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो केरल का नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर का है। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में लगते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ वायरल हो रहा है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला। There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
5: आजम के जंगलों से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर भूरे रंग में दिखने वाला हॉग डियर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग में घूमता नजर आया। इस बेहद दुर्लभ नजारे का वीडियो खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काजीरंगा के हरे भरे घास के मैदान के बीच एक सफेद रंग का हिरण दूर से ही चमक रहा है। ये कोई नई प्रजाति नहीं बल्कि ये सामान्य हॉग हिरण है। जाहिर है कि अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सफेद क्यों है। दरअसल ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। इसमें शरीर के रंग तय करने वाला पिगमेंट यानी कि मेलानिन नहीं होता, जिससे त्वचा और बाल पूरी तरह से सफेद या फिर हल्के हो जाते हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर और मोर का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो किसी घर के आंगन का नजर आ रहा है। एक चारपाई पर बंदर आराम से बैठा नजर आता है, वहीं पास में एक सुंदर मोर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी बंदर को अचानक से शरारत सूझ जाती है। फिर फ्रेम में गजब का सीन कैद हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर अचानक चारपाई से छलांग लगाता है और सीधे मोर की पीठ पर चढ़ जाता है। खुद पर अचानक बंदर को बैठा देख मोर घबरा जाता है और फिर तेजी से फड़फड़ाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। कुछ सेकंड तक ये मजेदार नजारा चलता रहता है। बंदर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है मानो वो किसी सवारी का मजा ले रहा हो। वहीं मोर लगातार इधर उधर भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
6: अरे बीमार है, बुजुर्ग है, तब तो थोड़ा सा दिल पसीजना चाहिए कि हर जगह पुलिस ही आएगा। इस काम के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए तो आप सभी लोग मिलके इसको कर सकते हो, और थोड़ा थोड़ा करोगे तो पक्का सबको जगह मिल जाएगा।
5: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को ट्रेन के अंदर सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद पुलिस वाले ने जो किया उससे लोगों को बड़ी सीख मिली। दरअसल ट्रेन में सफर कर रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग काफी देर से भीड़ में खड़े थे, लेकिन कुछ तंदुरुस्त युवक सीट पर आराम से फैले बैठे थे। तभी वहाँ मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी संतोष की नजर बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने बिना किसी बहस के युवक को प्यार से थोड़ा खिसकाया और बुजुर्ग को इज्जत के साथ बैठने के लिए जगह दिलाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफ्रीका के हरजावे कबीले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तरी तंजानिया के जंगलों में रहने वाले इस कबीले के लोगों को जब पहली बार शीशे में अपना चेहरा दिखाई दिया तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर हर कोई हंस पड़ा। कुछ लोग तो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे दुश्मन समझ लिया और पत्थर फेंक कर हमला कर दिया। दरअसल हरजावे अफ्रीका का सबसे पुराना और अंतिम शिकारी समुदायों में से एक है। ये लोग आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में तीर कमान और पत्थरों के सहारे शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। उनका संपर्क बाहरी दुनिया से बहुत ही कम रहा है, इसीलिए शीशे जैसी आम वस्तु भी उनके लिए अनजानी थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब एक व्यक्ति को शीशा दिखाया गया तो वो पहले तो घबरा गया, फिर उसने अपना चेहरा देखा और हैरानी से पीछे हट गया। कुछ लोगों ने इसे किसी दूसरे इंसान की छवि समझा और हमला करने की कोशिश की। एक व्यक्ति तो पत्थर उठाकर शीशे पर फेंकने ही वाला था। बाद में जब समझ में आया कि ये उसका अपना ही चेहरा है, तब उनकी हैरानी और बढ़ गई। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में शादी का खूबसूरत माहौल नजर आता है। मंडप पूरी तरह से सजा हुआ और दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप पर वरमाला पहने साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, जैसी वीडियो में लग रही थी वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही।
7: आपने फोन में जो फोटो भेजाई थी वैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती।
5: दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन भी मुस्कुरा पड़ी और जवाब देते हुए दूल्हे से पूछती है, तो अब क्या करोगे आप?
7: तो अब क्या करेंगे आप?
8: मैं केस करूंगा कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है।
5: इस पर दूल्हा हंसते हुए कहता है, केस करूंगा। इतना सुनते ही मंडप में मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं। दूल्हा दुल्हन की प्यारी सी नोकझोंक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग भी इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए आप घर से बाहर निकले और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाए और कपड़े खराब होने का डर सताने लगे। ऐसे में ज्यादातर लोग छाता या फिर रबड़ की चप्पल का सहारा ही लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने बारिश और कीचड़ से बचने के लिए ऐसा अनोखा जुगाड़ निकाला कि लोग देखते ही रह गए। रबड़ की चप्पलों की जगह उसने पैरों में ईंट जैसी ऊंची चप्पल पहन ली। अब ये देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बेहद अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। वीडियो में एक शख्स चलती गाड़ियों के बीच एक बेड चलाता हुआ नजर आता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस बेड पर गद्दा और तकिया भी रखा हुआ है और शख्स आराम से उस पर लेटा हुआ है। आसपास कारें, बाइक और दूसरी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन सड़क के बीच चलता ये बेड हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जो भी इस नजारे को देख रहा है वो कुछ पल के लिए रुककर इसे जरूर निहारता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑटो रिक्शा ने सबको हैरान कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि ऑटो रिक्शा है या फिर चलता फिरता घर। इस ऑटो में वॉश बेसिन, नल, आईना, शीशा और घरेलू सामान तक लगा हुआ है। वीडियो देखकर लोग दंग रह गए। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाइक सवार सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने ये खास ऑटो आया। ऑटो के अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन लगा हुआ था, जिसमें नल से पानी भी निकलता है। बेसिन के ऊपर आईना लगा है ताकि यात्री बैठे बैठे अपना चेहरा भी देख सके और हाथ मुंह धो सके। गर्मी के मौसम में यात्री अक्सर पसीने से तरबतर होते हैं, ऐसे में ये सुविधा उन्हें तरोताजा रखती है। ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को खास तरीके से मॉडिफाई करवाया है। उन्होंने बताया कि पहले वो सामान्य ऑटो चलाते थे, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बदलाव कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये डांस खूब तेजी से वायरल हो रहा और तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट की पब्लिक अपनी नजरें नहीं हटा पा रही। वायरल क्लिप में पीले सूट वाली एक लड़की ने हरियाणवी गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। लड़की के गजब की एक्सप्रेशन, कमाल की एनर्जी और मूव्स ने नेटिजंस का दिल जीत लिया।

0: मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले लगाती है मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune In has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
5: वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के प्रतिनिधियों में चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा दी और कहा है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोर्ट ने शयन भोग सेवायत परंपरा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी जबकि राजभोग सेवायत परंपरा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी को समिति का सदस्य बनाया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद वृंदावन का गोस्वामी समुदाय बहुत खुश है।

0: देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी में बड़ा बदलाव किया तो गोस्वामी समाज से जुड़े इन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मंदिर की हाई पावर कमेटी में गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधियों के चयन में अब प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस समिति में समाज की आवाज होंगे।
1: जिगी बात है, उच्चतम न्यायालय ने आज ठाकुर जी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे गोस्वामियों के हृदय में एक बहुत उल्लास और हर्ष की स्थिति है। विगत जब से उच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, निरंतर मनमानी और निरंकुश मनमानी अपनी सब आदतें मंदिर के ऊपर थोपे जा रही थी, जो गोस्वामियों के और बिहारी जी के मर्यादा के प्रतिकूल थी। निरंतर ऐसी अवहेलना गोस्वामी समाज और भक्तगण निरंतर सहते चले आ रहे थे। आज इसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, इससे बड़ी हर्ष की और बड़ी उल्लास की लहर गोस्वामी समाज में और भक्त समाज में।
2: गोस्वामियों को अपने ठाकुर पे विश्वास था, क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन है और बिहारी जी को चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, और गोस्वामियों की तो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिहारी जी है। उन्होंने अपने श्री बिहारी जी को नहीं छोड़ा और उनके भजन में लीन रहे, क्योंकि कि जितना भी इन लोगों ने कर सकते थे इन्होंने किया। आज ठाकुर जी ने उसी की लाज रखी है।
3: ये ठाकुर जी की जीत है, समस्त ब्रजवासियों की जीत है, हमारी क्या जीत है।
0: दरअसल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस समिति का मकसद मंदिर में दर्शन व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना था, लेकिन आरोप है कि समिति के अधिकारियों ने अपनी पसंद से गोस्वामी प्रतिनिधियों का चयन कर लिया था, जिसका गोस्वामी समाज ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
4: रिट पिटीशन थी जो हमने फाइल करी थी, क्योंकि जिस कमिटी का गठन हुआ था उस कमिटी के द्वारा कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करे गए थे जो कि डायरेक्टली रिचुअल्स को अफेक्ट कर रहे थे टेंपल के, और जो कमिटी ने जिन 4 लोगों को चुना था, गोस्वामियों को चुना था कमिटी में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हमारा ये कहना था कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बड़े जो गोस्वामी समूह ने, जो गोस्वामी में 2 ग्रुप्स हैं, एक शयन भोग एक राजभोग, जो उन लोगों ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है। तो इसकी मेन मांग थी हमारी रिट पिटीशन।
0: गोस्वामी समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 3 पुराने सेवायत सदस्यों को हटाकर उनकी जगह पर नए सदस्य शामिल किए। राजभोग सेवा से रजत गोस्वामी और शैलेंद्र गोस्वामी, जबकि शयनभोग सेवा से गोपेश गोस्वामी और हिमांशु गोस्वामी को हाई पावर्ड कमेटी में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के विकास के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाजनक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए विकास जरूरी है, लेकिन गोस्वामी समाज के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
4: 208 लोगों ने, और जो 280 लोगों का ग्रुप है शयन भोग से और कुछ 67 लोगों का ग्रुप है राजभोग से, उसमें से 280 में से 208 उसमें शामिल हुए थे, और उसमें से जो 67 उसमें से भी कुछ 50 लोग थे जिन लोगों ने कमिटी में 4 लोगों का चयन करा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और जो पहले गोस्वामी थे उस कमिटी के उनको रिप्लेस करके इन 4 को उस कमेटी में आने का आदेश दिया है। दूसरी चीज, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करी है कि कोई भी इंटरनल रिचुअल्स को ना टच करा जाए कमेटी के द्वारा, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल हमने अप्रोच आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी कि कई रिचुअल हैं, जैसे कि टाइम चेंज टेम्पल का नहीं हो सकता। ये हमने ये भी रिक्वेस्ट करी कि ये एक अनऑल्टर्ड एक ट्रेडिशन है जो सालों से चला आ रहा है, और अगर आप 6 बजे की जगह आप बोलते हो कि 5:30 बजे मंदिर खोल दो, तो उसमें जो 6 से 5:30 के बीच में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो भी उनका टाइम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो ऑर्डर पास हुआ इससे एक राहत है कि गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब वो कमिटी में है, और ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि एसेंशियल रिचुअल्स को अफेक्ट करेगा उस पर कमिटी की फिर से मीटिंग होगी, इंक्लूडिंग द न्यू गोस्वामीज, एंड देन दे विल डिसाइड अगेन अफ्रेश। इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये भी रखा गया कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये कमेटी बनी थी, जो मेन रीजन था वो था क्राउड मैनेजमेंट, पर अभी जो हो रहा है वो ये है कि बैरिकेड्स तो बन गए हैं मंदिर के अंदर, पर हमने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स प्रेजेंट की थी कि मंदिर के बाहर का रश बहुत बुरी तरह से बढ़ ही रहा है,
5: बहुत बढ़
4: रहा है, वो कम नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कमिटी को कि उनको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीजें गौर में रखना चाहिए, कुछ डिजिटल और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए टेम्पल और टेम्पल के जो आसपास के एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला है।
0: हाई पावर कमेटी ये डेवलपमेंट प्लान गोस्वामी समाज और स्थानीय लोगों के सुझाव को सुनकर तैयार करेगी और इसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा।
6: सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसके साथ ही ये भी कि अब तक गोस्वामी समाज का ये आरोप था, ये कहना था कि जो कमेटी है कमेटी को बाहरी इंतजाम के लिए नियुक्त किया है, जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कमेटी की दिलचस्पी और उनका इंटरेस्ट आंतरिक मामलों को लेकर ज्यादा है, पूजा प्रक्रिया और सेवा की प्रक्रिया को लेकर ज्यादा है, ना कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके इंतजाम करने के लिए। आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी जिम्मेदारी बाहर की चीजों के पर ध्यान देने की है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। कैमरामैन रविकांत होतावार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: बुध की कौन सी राशि को बुध की अशुभ राशि मानते हैं? बुध की कौन सी राशि बुध की सर्वाधिक शुभ राशि मानी जाती है? बुध की कौन सी राशि वाले लोग बहुत चालाक होते हैं? और बुध की कौन सी राशि शुक्र के साथ मिलने पर जीवन में तनाव पैदा करती है? कौन सी हैं बुध की राशियां और क्या है उनकी विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: और आपको समझाएंगे, देखिए
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालुओं का मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक, त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात बाबा बागेश्वर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 3 हफ्तों से बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर साधना और कथावाचन के लिए भगवान बद्री विशाल के दर पर पहुंचे थे। बाबा ने पहले नारायण पर्वत पर एकांतवास और साधना की, फिर उन्होंने बद्री धाम में मौजूद हनुमान मंदिर में आराधना की। अब 21 दिनों की साधना और एकांतवास का संकल्प पूरा हो गया है। अब बाबा बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और एकांतवास के अपने अनुभवों को वो साझा भी कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से बाबा के अनुयायी उनकी साधना पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा ने एकांत में रहकर तप, जप और ध्यान किया और भगवान बद्री विशाल की आराधना में स्वयं को समर्पित रखा। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ये मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। नारायण पर्वत को भी अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। बाबा बागेश्वर भी यहाँ पर तप और साधना के बाद बेहद खुश और आनंदित नजर आए। चलिए आपको बताते हैं बद्री धाम में कैसी रही बाबा बागेश्वर की ये तपस्या।

0: शास्त्रों में कहा गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कई तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। ये धरती का वही अनुपम स्थान माना जाता है जिसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने तपस्या के लिए चुना था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। इसी महात्म्य के चलते अनंत काल से सनातन परंपरा के कई साधु संत इस दिव्य स्थान पर तप और साधना के लिए आते रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी एकात्म्य साधना के लिए धरती का बैकुंठ कहलाने वाले इसी दिव्य स्थान को चुना। बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की बर्फीली पहाड़ियों में एक गुफा के नीचे रहकर साधना में लीन रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, वो भी -2 डिग्री से कम के तापमान पर।
1: ये जो नारायण पर्वत है, यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है वो सामने, वहाँ पे उस झरने के बिल्कुल ठीक उसके नीचे उनके मूल पे वहाँ पे गुफा है। तो बागेश्वर धाम सरकार हमारे महाराज श्री ने वहीं पे उसी गुफा में नारायण पर्वत पे ही, जहाँ ऋषि गंगा बहती है अनवरत, ऋषि गंगा मतलब जहाँ ऋषियों का हमेशा संगम रहा हो और उसी जगह पे ऋषि मुनि साधना करते आए हों, और नारायण भगवान जो है जब नर नारायण के रूप में आए थे तो नारायण भगवान ने श्री हरि ने भी यहीं पे तपस्या की। तो आज हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार हमारे जो है पूज्य महाराज जी, उन्होंने भी यहाँ पे 21 दिन की साधना का संकल्प लेके जगत कल्याण के लिए और जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए उनके संकल्प रहे, वो संकल्प सिद्धि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से और महाराज जी के गुरुदेव की जो है अपार आशीर्वाद और कृपा से साधना सफल हुई।
0: अपनी 21 दिवसीय साधना को बाबा बागेश्वर ने 2 चरणों में पूरा किया। पहले 11 दिन उन्होंने 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बर्फीले पहाड़ों के बीच नारायण पर्वत की एक छोटी गुफा में एकांतवास और कठोर तप किया। शेष 10 दिन धीरेंद्र शास्त्री ने प्राचीन खाप चौक हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विशेष आराधना की। 21 दिनों तक बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ धाम में न किसी से मिले और न ही दर्शन दिए। अब 21 दिन बाद यहाँ आज से उनकी सत्य नारायण और हनुमान कथा का शुभारम्भ हो गया है। 21 दिनों की एकात्म साधना के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की। बागेश्वर धाम सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम के महंत बालक योगेश्वर दास महाराज के साथ लगभग 13 घंटों तक दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर ये परिक्रमा पूरी की। इस मुश्किल यात्रा के दौरान उन्हें कई अनोखे अनुभव हुए। नारायण पर्वत के साथ ही उन्होंने देवताल का भी दर्शन पूजन किया।
2: इन साधना के मध्य में बहुत अभूत अनुभव हुए। कुछ अनुभव तो हम कथा में सुनाएंगे, रोज एक एक दो दो अनुभव सुनाएंगे। हमने और महाराज जी ने मिलकर लगभग 13 घंटा पैदल चलकर नीलकंठ के किनारे से पूरे नारायण पर्वत की परिक्रमा की। ये भगवान की कृपा थी, बड़े अनुभव आए, मौत के मुंह से बच के आए। बड़ा कठिन था वो, लगभग 14-15 हजार ऊंचाई पर थे, एकदम सीधी ऐसी चढ़ाई थी, लेकिन चढ़ गए, परिक्रमा हो गई, ये बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन वाहनों की व्यवस्था के द्वारा और शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी, वहां भयंकर बर्फ थी तो देव तालाब के भी जाकर के पूजन किया। देव तालाब जो लगभग 18,500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई, 18,000 शायद मीटर है या फिट की ऊंचाई पर है चाइना बॉर्डर के किनारे, वहां पर भी देव तालाब में। तो रोज के अनुभव एक एक कथा में हम आप सबको सुनाएंगे।
0: 21 दिनों की कठोर साधना पूर्ण करने के बाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री वापस लौटे तो वे अपने भक्तों के बीच पहुँचे, जिन्हें देखकर उनका मन भी उत्साह से भर गया। बाबा बागेश्वर ने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा भक्तों के बीच पहुँचे तो उन्होंने शीश झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने उन्हें धन, भक्ति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। गुफा से आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि 21 दिनों की इस तपस्या के दौरान उन्हें बागेश्वर धाम के अनुयायियों की बहुत याद आई। अपने इस भाव को बाबा बागेश्वर ने बड़े खास अंदाज में बताया।
2: बागेश्वर धाम की और पागलों की खूब याद आई, वो फिल्मी गीत बड़ा याद आया कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें।
0: हंसी मजाक के बीच भक्तों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी साधना को ईश्वर की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम बताया।
2: जब तप के प्रभाव के कारण, साधना के प्रभाव के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ भगवान की कृपा के कारण यहाँ का यह 21 दिन का साधना का क्रम एकांतिक समय बहुत अभूतपूर्व रहा। 11 दिन की साधना एक यहाँ 300 मीटर की दूरी पर गुफा में पूर्ण हुई। उसके बाद में फिर हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उस दिन खूब संतों का आना हुआ। फिर लगभग 10 दिन की साधना खाक चौक में हनुमान जी की सन्निधि में बैठ कर के की, वो भी अभूतपूर्व रही और अद्भुत अनुभव रहे। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए और सभी बागेश्वर धाम के जितने लोग जहां जहां रहते हैं, जहां जहां जुड़े, कुछ आ पाते कुछ नहीं आ पाते, उनके लिए यह साधना की भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से बड़ी मंगलमय हुई। और बीच में तो ऐसा लगा भाई जैसे संसार में हम ही भर अकेले बचे हों, पर अब सब भरा भरा लग रहा, बड़ा आनंद आ रहा, बहुत प्रसन्नता है और अच्छे से सब हो गया। उसके लिए हम आप सबको साधुवाद दे रहे हैं और जो तप का फल, साधना का फल मिला है, ये बागेश्वर बालाजी की कृपा से राष्ट्र के काम आवे, इस देश के काम आवे, ऐसी प्रार्थना हम बालाजी के चरणों में कर रहे हैं।
0: आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पहले वो बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, फिर खाक चौक आश्रम पहुंचते हैं। खाक चौक अलकनंदा ऋषि गंगा के तट पर ही मौजूद है। यहीं पर वो प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां बाबा बागेश्वर ने साधना की। जब भी बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम आते हैं, यहीं पर रुकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन 21 दिनों तक बद्रीनाथ धाम में किसी से नहीं मिले, लेकिन साधना पूरी होने के बाद आज दोपहर 2 बजे से बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की सत्यनारायण कथा का शुभारंभ हुआ है। बाबा बागेश्वर के दर्शन और कथा सुनने के लिए बद्रीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अपनी 21 दिनों की साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा का अनुभव वो अगले 5 दिनों तक चलने वाली कथा में भक्तों के साथ साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कल बाबा बागेश्वर की ये साधना समाप्त हुई थी और नारायण पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद से ही वो लगातार कह रहे थे कि इस दौरान उन्हें कई ऐसे अनुभव हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे और वो 5 दिन की कथा के दौरान उन अनुभवों को श्रद्धालुओं के साथ साझा जरूर करेंगे। आज जब कथा का श्री गणेश हुआ तो बद्रीनाथ धाम में गुजरे पिछले 3 हफ्तों के अनुभव बाबा ने बेहद भावपूर्ण अंदाज में बांटे। पहले दिन की कथा के दौरान बाबा के भजनों और प्रवचन के बीच में भक्त भाव विभोर होकर नाचते झूमते हुए नजर आए।

बद्री विशाल के द्वार बालाजी की जयकार हो रही है। 21 दिन की साधना और ध्यान लगाने के बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर की कथा का श्री गणेश हो चुका है। यूं तो साल के कई महीने बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं से यूं ही गुलजार रहता है, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के चलते आज सुबह से ही यहाँ भक्तों का सैलाब सा उमड़ा हुआ था। बद्री विशाल के दर्शन की कामना लेकर पावन धाम पहुंचे भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर पर बाबा बागेश्वर से मुलाकात सुखद आश्चर्य की तरह था। यही वजह रही कि बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने और उनकी कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा की शुरुआत से पहले बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गयी। धाम में मौजूद श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर कथा स्थल पर पहुंचे। व्यास गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर का अलग ही रूप नजर आया। अपनी कथाओं से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद नारायण की इस पावन भूमि पर आकर बेहद खुश दिखे। आखिरकार दोपहर 2 बजे के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही सारा प्रांगण भगवान बद्री विशाल के भजनों से गूंज उठा।

0: हिमालय की गोद में 3 हफ्तों तक साधना कर लौटे पंडित धीरेंद्र शास्त्री का अलग ही रंग भक्तों को नजर आया।
1: एक माह लगभग यहाँ गुजारने के बाद हमें एक बात याद आई, पूछो तो बोलूं। तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी तरबियत ऐसी है कि फकीरों के साथ खाया है, मेरी अकड़ ऐसी है कि सम्राटों को भी ठुकराए।
0: बताया जाता है कि बद्रीनाथ धाम की कथा श्री हरि विष्णु के कठोर तप और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी के त्याग से जुड़ी है, वही कहानी जिसके फलस्वरूप हिमालय का ये भाग बद्रीनाथ कहलाया। बाबा बागेश्वर ने कथा की शुरुआत बद्रीनाथ धाम की उसी कहानी के साथ की।
1: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा, देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपो भूमि पर हम लोग बैठे।
0: कलयुग में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भी यहाँ आकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ।
1: तो यहाँ उड़ान का आनंद लेना, तो उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है अरमान कम रखो, जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला न चेली, न ठेला न ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पो न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद, गुफा पत्थर हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़ आहा, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो, ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब, बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहाँ पर कब मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ।
0: बाबा बागेश्वर 21 दिनों की साधना पूरी करने के बाद कथा कर रहे हैं। उन्होंने साधना के बाद कहा था कि वो अपनी इन 21 दिनों के अनुभवों को कथा के दौरान भक्तों के साथ साझा करेंगे, सो उन्होंने साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा

0: अन्य भक्तों के साथ साझा करेंगे। सो उन्होंने साधना और नारायण पर्वत की परिक्रमा से जुड़ी कई घटनाएं कथा के दौरान श्रद्धालुओं को सुनाई।
1: जो 21 दिन गुजरे बड़े प्यारे गुजरे, हमने और महाराज जी ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की, पूरे नारायण पर्वत की। वो दिन भी अलग थे, नारायण पर्वत की परिक्रमा की। एक दिन हम और महाराज जी 18,500 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गए, देवताल। देवताल में जहां आज भी देवता स्नान करने आते हैं, वहां पंचताल है, देवताल, नागताल, प्रेतताल, परीताल।
0: बाबा बागेश्वर की कथा में भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का भी रंग नजर आया। दरअसल बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में प्रवास और परिक्रमा के दौरान बाबा की मुलाकात भारतीय सेना और आईटीबीपी समेत सुरक्षा बलों के कई जवानों से हुई। बाबा ने बताया कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा का फर्ज निभाते हुए भी जाबाजों ने उनका बेहद सत्कार किया। इस बात से बाबा बागेश्वर गदगद नजर आए।
1: हमारे देश की आर्मी उस भयंकर माइनस डिग्री में, जहां थोड़ी देर बाहर खड़े हो तो नाक से खून गिरने लगता, इतनी ठंडी। वहां भारत की आर्मी को जब पता लगा इस रास्ते से हम जा रहे हैं, सबने इतना स्वागत किया। अपनी अपनी बटालियन में आईटीबीपी वाले, असम बटालियन वाले, हाथ पकड़ पकड़, चाय पी के जाओ, चाय पियो, चाय पियो, जब आने लगे जबरदस्ती जूस लो। उनको देखकर, उनके भारत के प्रति समर्पण तो हमने बहुत आर्मी वालों में देखा, पहली बार हमने भारतीयों के प्रति समर्पण आर्मी में देखा। और हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी तो आर्मी के प्रति बड़े समर्पित हैं, शहीदों को। उनको देखकर मन इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, पूछो मत। और कैसे 21 दिन बीत गए पता नहीं लगा।
0: कथा के दौरान हिमालय की वादियों के बीच गूंजते भजन एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास दे रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में लोग नाचते गाते भक्ति में लीन नजर आए।

0: पवित्र देव भूमि में बद्रीनाथ के दर्शन करना भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। चारों धामों में से एक इस पावन धाम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि चाहे आम भक्त हों, साधु संत हों या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पीठाधीश्वर, जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जी एंटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: और आइए आपको मिलवाते एक नन्हे हाथी से जिसकी अटखेलियां आपका दिल चुरा लेंगी। जमशेदपुर के दलमा के जंगलों में रहने वाले इस हाथी का नाम बादल है। बादल

0: करीब 6 महीने का है और इस छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल से इसका गहरा लगाव हो गया है। बादल को यूं फुटबॉल खेलते देख सैलानी भी काफी खुश होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बादल अब इस जंगल का नया आकर्षण बन चुका है।
1: कभी सूखी जमीन पर फुटबॉल से खेल तो कभी पानी में फुटबॉल से मस्ती, मतलब ये कि जगह कोई भी हो, फुटबॉल से इस नन्हे गजराज का लगाव कम नहीं हो रहा। जमशेदपुर से सटे दलमा वन अभयारण्य में आकर्षण का नया केंद्र है बादल। दलमा के जंगलों में खेलता कूदता 6 महीने का नन्हा गजराज सबका चहेता बन गया है। पर्यटकों के लिए भी बादल को यूं खेलते देखना काफी लुभा रहा है।
2: ऐसे सर मतलब दो दफा खेलते हैं सर, सुबह और शाम। इसमें जब पिला करके जब हम खिलाते हैं ना सर, तो फुटबॉल अच्छा 10 से 15 मिनट तक मैंने खेल लेता है सर प्रतिदिन, और देखते हैं कोशिश करके मैंने और खिलाने का है। अभी तो मैंने मूड में है नहीं, एक बार खेल चुके हैं सर।
3: मजा आता है,
2: बहुत बहुत मजा आता है सर। मुंह में लेकर के ऊपर में जैसे आदमी लोग खेलता है उसी प्रकार मैंने खेल लेता है बादल। दो गो बॉल लाए हैं और इसको खेल सिखा रहे हैं। बैठाने का भी मैंने खेल सिखा, दो पैर में एक ठो मैंने वहाँ नल है, वहाँ छोटा सा मैंने जगह है, उसमें सरकस जैसे खिलाता है उस प्रकार भी खड़ा हो जाता है।
1: करीब 6 महीने पहले बादल को घायल और बेहद गंभीर स्थिति में यहाँ लाया गया था। वन कर्मी रवि ने बादल को भरपूर प्यार दिया, दिन रात सेवा की, एक नया जीवन दिया। अब ये नन्हा हाथी न सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ है बल्कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य की शान बन चुका है। इसकी अटखेलियां लोगों को लुभाती हैं, तो इसे फुटबॉल खेलता देख सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तपती गर्मी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। ऐसे में देश भर के चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की कोशिश की जा रही है।
1: धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारें राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
4: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
1: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खानपान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सरा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है, ताकि लोग तेज गर्मी से बच सकें। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सिख श्रद्धालु। 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बावजूद अब तक 18,000 से अधिक श्रद्धालु टेका मत्था। अकोला के श्याम धाम मंदिर में कमला एकादशी पर बाबा श्याम का अनोखा आम श्रृंगार, भक्ति सुगंध और श्रद्धा के अद्भुत संगम से सराबोर मंदिर परिसर। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर दिखेगा सनातन संस्कृति का भव्य महोत्सव। आज से 3 जून तक श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का होगा आयोजन, इस दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाया सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड। वैभव इस सीजन में अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों के महारिकॉर्ड को तोड़ा। आज देश भर में मनाया जाएगा बकरीद का त्यौहार, बाजारों में नजर आई रौनक। त्यौहार की तैयारी के लिए लोगों ने की जमकर खरीदारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, तो कोई वीडियो तोड़ परोड़ कर पेश कर दिया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरें ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। परिणाम यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। क्या है इस दावे की सच्चाई, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी अगली खबर में बात होगी उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिंदुओं को काटने की धमकी दी गई है। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।